क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकरर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़ नहीं दिया। अगर फैसले की बात तय न हो गई होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक आजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हां पाएंगे। यही बड़ा फजल है। यही है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूं। जो कोई भलाई कमाएगा

जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरोसामान है, और जो कुछ अल्लाह के हां है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मजे से चलाते हैं, ने कुछ भी रिज़्क उन्हें दिया है करते हैं, जब उन पर है उसका मुकाबला है, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, जो कोई मदे और इस्लाह करे उसका अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ज़िसद नहीं करता। और जो लोग जुल्म होने के बदला उनको नहीं की जाती मुलामत हक तो है जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और अमीने नाक ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दनाक आजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र करे और दरगुजर करे तो ये बड़ी अज़ामों में से है, जिसको अल्लाह ही आही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला बाप नहीं है। तुम देखोगे जालिम जब आजाब देखे तो कहेंगे अब पलटने भी कोई सबील है, और तुम देखोगे जहन्नम के सामने जब लाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके

भेजे होंगे और उसको नजर बचा बचा कर कनंखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल ज़ियाकार वही है जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने मुतअल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और उनके कोई हामियों सरपरस न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت

बस ये दो अल्फाज यूज करते हैं तो इसे पता लगता है कि आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा अब आगे बढ़े तो यहाँ जरूरत इस बात की होती है कि आप कहाँ से किस तरफ कर बात कर रहे हैं, तो यहाँ जरूरत पड़ती है कि आप ये तो ये बताएं कि आप किस कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं। तो वो आप अगर बताते हैं मिन शरीक कतर, कतर कंपनी की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, या कोई और भी दूसरे का आप जिस शरीके से बिलोंग करते हैं हिम्मत है तो कंपनी का नाम आप बताइए। शरीका इसका मतलब है कंपनी, अरबी में इसको शरीका कहते हैं। मैक अहमद मिन शरीकत कतर, अहमद बोला है, मैं अहमद बोल रहा हूँ मिन शरीकत कतर, कतर कंपनी से। तो याद है तो है मैक अहमद या तलहा, मैक के बाद आप अपना नाम जोड़ दें और फिर मिन एक लफ्ज उसके साथ आप अपने शरीका का जो भी नाम है यूज कर सकते हैं। साथ अगर आप वहाँ कोई अपना ठिकाने का जिक्र करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है मीन के बाद, जैसे मैक स्टूडियो कतर, कतर स्टूडियो से मैं अहमद बोल रहा हूँ। तो यहाँ खास कोई यानी कंपनी का नाम नहीं बोल रहे, से आप कहाँ से बोल रहे हैं वो यहाँ नुमाया है। ओवरऑल ये जो मैक अहमद मिन शरीका, यहाँ दरअसल इस जुमले में ये बताना मकसद है कि आप कौन हैं और कहाँ से फोन कर रहे हैं, किन के किस कंपनी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको इजाज़त मांगना है, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा मुअद्दबाना तरीका है, एटिकेट है कि जब आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे किसी से राबता कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूर आपको बताना है कि यानी इजाज़त मांगना है। तो इसके लिए आप ये बहुत ही आसान एक जुमला है, ये यूज़ कर सकते हैं। هل الوقت مناسب الان, क्या अभी आपके लिए वक्त मुनासिब है, या फिर आप ये जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं هل تسمح لي بدقيقة, क्या आप मुझे एक मिनट दे सकते हैं। फिर आप साथ साथ ये भी बताएं कि दरअसल ये जो आप वक्त चाह रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, किस सिलसिले में आपको बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो उसको भी आप क्लियर कर दें, मकसद बता दीजिए। अत्तसल बिखुसूस अलअमल, या बिखुसूस, सिर्फ बिखुसूस लफ्ज को भी आप जिक्र कर सकते हैं और उसके साथ जो है ना आपकी जो खुसूसियत, जिस खुसूसियत की वजह से आप फ़ोन दे रहे हैं उसको जिक्र कर दें, उस खुसूसियत का जिक्र करें बिखुसूस लफ्ज के बाद। जैसे बिखुसूस अलअमल, मैं काम के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। बिखुसूस अल वज़ीफ़ा, मैं वज़ीफ़ा के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता। बिखुसूस अल इजाज़ा, मैं इजाज़ा या फिर लीव लेने के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो देखिए दो टोक अल्फाज हैं, पहले तो आपने कहा अल वक्त मुनासिब अल आन, अत्तसल अत्तसल मैं कॉल कर रहा हूँ दरअसल किस वजह से, ये भी आपके क्लियर कर दूँ। अत्तसल बिखुसूस अल इजाज़ा, मैं सिख लीव के हवाले से, या फिर कोई भी सिख लीव हो, या कोई भी आपके सालाना या फिर किसी भी नौईयत के लीव हो, आप उसको इस तरह से जोड़ दें बिखुसूस अल इजाज़ा, यानी मैं इजाज़ा के लीव के हवाले से आप फ़ोन कर रहा था, या फिर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये दो टोक और चार जुमले हैं जिसमें आप अपने तमाम तर्जुम प्रोफेशनल लेवल को बरकरार रखते हुए आप अपनी कॉल को शुरू कर सकते हैं, जिसमें पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर अपना तारुफ, मैक अहमद, मैक तलहा यानी मैं तलहा बोल रहा हूँ, मिन शरीकत कतर, कतर कंपनी से, मिन शरीकत जो भी आपकी कंपनी हो उस कंपनी का नाम जोड़ दें शरीका के बाद, और फिर आप इजाज़त मांगें। हल अल वक्त मुनासिब अल आन, क्या आपके लिए वक्त मुनासिब है। अत्तसल बिखुसूस अल अमल, मैं काम के सिलसिले में फ़ोन कर रहा हूँ। तो अगर आप इस एटिकेट को फॉलो करते हैं ना, तो देखें ये चार जुमले आपके फ़ोन कॉल को कितना वजनदार और पेशावराना अंदाज दे रहे हैं, सिर्फ चार जुमले। अच्छा ये एक तरीका है, एक अंदाज है। अब आते हैं दोस्ताना और फ्रेंडली कॉल। इससे पहले जो अंदाज हमने इसका जिक्र किया है यानी प्रोफेशनल अंदाज, उसमें आपने देखा है कि हाल पुरसी की जरूरत नहीं, हाल पुरसी की बात आती नहीं है, लेकिन जब आप फ्रेंडली कॉल में आते हैं तो वहाँ हाल पुरसी की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप दोस्त से फोन कर रहे हैं, जान पहचान वाले से आपकी ये बात हो रही है, तो फिर वहाँ पहले ही फोन करके हेलो मरहबा किफ हालक, क्या हाल चाल बताइए। मैं कह रहा हूँ मैं तलहा, अना तलहा, मैं तलहा बोल रहा हूँ, तज़कुरनी, याद है मुझे या मुझे भूल गए हो, तो इस तरह जो है ना हेल तज़कुरनी, क्या मुझे याद है या भूल गए हो, इस तरह आप मुख्तलिफ अल्फाज जोड़ सकते हैं।

0: विश कहते हैं तो ये जुमला जो है ना जो सुनने वाला है या फिर जो रिसीवर है उसके अंदर एक अच्छा तासुर छोड़ता है, एक इज्जत और कदर का एहसास देता है। सभी निकराम खुलासे कलाम यही है कि आपको जो है ना अरबी में जब आप फोन कॉल पर बात कर रहे हैं तो इस तरह के जब आई टिकेट को आप फॉलो अप करते हैं तो अगर कोई अरब बंदा है जो सुन रहा है आपकी बात, साथ आपकी बात हो रही है तो वो सही से आप बात लेने की कोशिश करेगा जरूर बेजरूर, चूंकि आपने अदब और एहतराम का खास लिहाज रखा है और आपको पता है बिल्कुल अरबी में कौन से अल्फाज आपको यूज करने हैं। सलाम अलैकुम, माक अहमद मिन शरिकत कतर। साथ साथ अपना तो और तरह जो है ना मजीद आगे बढ़कर आप उनसे इजाजत मांगे और इस तरह जो है ना मौजू मेन टॉपिक या आप जिस हिसाब फोन कर रहे हैं उसको भी बताएं। अत्तसिल बिखुसूस अल-अमल, अत्तसिल मैं फोन कर रहा था ताकि मैं जो है ना आपके साथ बात करूँ काम के सिलसिले में, लीव के सिलसिले में, बिखुसूस इजाज़ा। तो ये बिखुसूस ये लफ्ज़ काफ़ी यूज़ करते हैं आप जब अगर अरबी जो ज़बान है जो लेक्चर है आप अगर इसको फॉलो करें तो वहाँ बिखुसूस ये लफ्ज़ काफ़ी यूज़ करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि इस चीज़ के हवाले से जो हम कहते हैं ना या सिलसिले में, तो इसका सही मतलब वही है। और ये लफ्ज़ आप अपने जो है ना जुमले के इब्तिदा में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बीच में जिस तरह आपको मुनासिब लगे तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और सही जुमले, सही लहजा, सही इख्तिताम, यही कामयाब फ़ोन कॉल की पहचान बनती है। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं लर्न अरबिक विद अस, ट्यूटर तलहा अशरफ जमान के साथ इंशाल्लाह मजीद तफसीली गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद बिइज़्निल्लाहि तआला।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने जिसका नाम है लर्न अरबिक।
0: सामने किराम, पिछले हिस्से में हमने काफ़ी सारी जो है ना तालीमात और ये वो सुनी कि हमें किस तरह के जुमले इख्तियार करने हैं, क्या कहने हैं, लेकिन अब है तत्बीकी मरहला, प्रैक्टिस टाइम है। तो हम इस मरहले में कोशिश करेंगे कि आप जो है ना किताबी जुमले या जो रट्टे लगाए गए हैं ये किस तरह इन जुमलों को आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। तो आम तौर पर हम जो है ना जब सरासर इस तरह बराह रास्त मुलाकात होती है तो उसमें हम अपनी जो है ना जुमले के साथ साथ जिस्मानी इशारे और इस तरह चेहरे के तासुरात, हाथों की हरकत से बात को आसान बना लेते हैं। लेकिन फ़ोन पर अरे यहाँ तो जब ऑडियो कॉल हो तो चेहरा भी नज़र नहीं आता, हाथ भी नहीं दिखती, सिर्फ आपकी आवाज़ और आपके अल्फाज। तो यही वजह है कि फ़ोन कॉल जब बाज़ औक़ात हम इससे घबराते हैं, ख़ासतौर पर जब वो अगला बंदा अगर वो अरब हो, अरबी ज़बान में बोलने वाला बंदा हो। अच्छा, फिक्र की कोई बात नहीं, आपके साथ हैं आपके ट्यूटर तलहा अशरफ जमान। आज हम वो जुमला सीख रहे हैं जो आपको हर फोन कॉल में पुर एतमाद बना दें। बस मेरे साथ दोहराइए कई जुमले, इसमें से एक अहम जुमला जैसे कि हमने पहले भी कहा था, हल वक्त मुनासिब अलान, क्या अभी जो है ना वक्त मुनासिब है आपके लिए। देखें वही अल्फाज जो उर्दू में हम यूज़ कर रहे हैं, वही अल्फाज, लेकिन शुरू में हल क्वेश्चनर यानी क्या इसका मुकाबल या मुतबादिल लफ्ज़ है उर्दू में, हल कहते हैं क्वेश्चन के लिए, हल क्या अल वक्त मुनासिब अलान, अब वक्त मुनासिब है। या फिर आप अगर इस तरह कहना चाहते हैं कि आप मुझे एक मिनट दे सकते हैं तो इसके लिए आप अरबी में कहेंगे हल तस्मह ली बिदकीका, क्या एक मिनट आप मुझे दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप अपने कॉल को शुरू कर सकते हैं। मजीद अगर जैसे आप तसव्वुर कीजिए फ़ोन की घंटी बज रही है, कोई कॉल आ रही है और फिर आपको अरबी में जवाब देना है। अच्छा, उधर से बंदा अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, या अहला व सहला, आप उसे यानी हमदीद कहें। तो वो अगर पूछते मीन मांगिए, फिर चाहते हो देखो कौन कह रहा है ये जो

इसको हम कह सकते हैं आई कौन है मेरे साथ है इसको अलग दिखेगा माक अहमद मलहा माक जो भी आप जमीन नहीं बात वालेकुम अस्सलाम अहले सलाम फिर मीन माइक माक कह रहा हूं तो इस तरह जो है ना आप अपना पेश किए जी अगर अपनी टिप्पणी वगैरह का नाम भी लेना चाहते हैं तो मीन लफ्ज जो जी का नाम दीजिए इस तरह माक अहमद मीन शरीकत खबर अच्छा फिर मजीद में आपको कॉल करते हैं नतसिल بخصوص العمل انا اصل اسال عن الفم وظيفه يا फिर में पूछ किस वजह से है फिर मैंने की तो जनाब आप रखते हैं अपने कॉल का मकसद या किसी से बात करने की दरख्वास्त कर रहे हैं उसके लिए आप हल यमकिन मुमकिन वो हल रहे हैं हम का मतलब है क्या यमकिन اتحدث عن كما فلان के साथ कर सकता हूं या के साथ करूं اتحدث مع क्या मैं तारिक के साथ बात कर सकता हूं आप कहते हैं क्या बंदा खालिद मुझे ही हल क्या खालिद है तो इस तरह से जो है ना आप मुख्तलिफ सवाल करते हैं अगर आप किसी को इंतजारवाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े हाँ मिनट में यानी हफ्ता खाली मैं चेक लूँ दकीका दकीका दकीका जहाँ तक मैं रख एक लम्हे के लिए रुके जरा चेक करता हूँ इस तरह अगर अगले को फोन कॉल पर लाकर रख चाहें अब इस दौरान कोई अगर नहीं है किसी दूसरे का डर तो कह दीजिए इब खत रजाअन इब आल रजाअन लाइन पर बने रहिए इब आल अल खत रजाअन प्लीज लाइन पर बने तो इस तरह जो है ना हम यूज कर सकते हैं और मजीद आप बात को करवाना चाहते हैं जब आप किसी से बात करो वाजे ना हो तो आप उसे कहिए अफवन अफवन मुझे समझ में नहीं आई माजर मुझे समझ में नहीं आया अफवन मरथानिया आइए जरा यानी मुझे समझ में नहीं आया तो इस तरह जो है ना आप ये आप कहने से इसका ये मतलब था कि मुझे समझ में नहीं आ सकते और मजीद आप अगर कॉल की तम पर पूछे क्या कोई और चीज सिलसिले में आप मुझे कुछ बताना चाहते उसके लिए आप अभी मैं ये जुमला यूज कर सकते हैं जरूर हेल्प चाहिए फिर कुछ से आपको हेल्प कर सकता हूँ अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, फिर कुछ नहीं तो कह दीजिए वक्त एक तमन्ना लगाई वक्त का आप शुक्रिया और दिन अच्छा गुजरे हम इसी को मिलते हैं मासमा खुदा हाफिज तो इस तरह से जुमला एक मरतबा फिर दोहराते हैं वालेकुम मक अहमद मिन शरीकत खता हल मुनासिल आन अच्छा अगर कोई आपसे इस तरह के सवालात कर रहा है तो फिर आपको जवाब में कह क्या अगर यानी पूछ रहा है आपका वक्त ना आपके लिए तो फिर आप कहेंगे नाम तफद्दल जी तफद्दल यानी आप कहिए क्या कहना चाहते हैं तो इस तरह आप जवाब भी दिया इस तरह भी जवाब यानी इख्तितामी जो कलिमात हैं जो अल्फाज हैं वो यूज़ करेंगे शुक्रन ले वक्त एक सतवासल मैक लाहिकन बाद में आपसे मैं दोबारा राबता करूँगा मासलामा तो ये हैं ओवरऑल हमारी जो है ना प्रैक्टिस के सेगमेंट सामिन इकराम जुड़े रहिए हमारे साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद काफ़ी अहम तफसीली गुफ्तगू बाकी रह गई है तो ज़रूर सुनिए हमारे हमें प्रोग्राम के इख्तिताम तक بإذن الله تعالى أبسب

0: उसी तरफ ले जा रहा है। लेकिन जब हुक्म अल-लतीफ की तरफ से आए, मेहरबान जात, तो बज़ाहिर खौफनाक रास्ते के अंदर भी हिफाजत छुपी हो सकती है। वही दरिया मूसा अलैहिस्सलाम को डबोने के बजाय उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां अल्लाह की एक बड़ी तकदीर उनका इंतजार कर रही होती है। इसीलिए अल्लाहु लतीफ़ बिइबादी, ये जिंदगी को पढ़ने का एक अलग जाविया है। अल्लाह अपने बंदों पर बार बार निहायत बारीक अंदाज से लुत्फ फरमाने वाला है। कभी उसका लुत्फ नेमत की सूरत में फौरन दिखाई देती है और कभी हादसे, ताखीर, महरूमी या रुकावट के पर्दे में छुपा होता है। इसलिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हो या उम्मत के हालात में, जब कोई मंजर दिल को ज़ख्मी करे, कोई खबर गमगीन कर दे, कोई सूरत हाल बेबसी का एहसास दिलाए, तो मोमिन सिर्फ मौजूदा मंजर पर आखिरी फैसला नहीं सुनाता, वो कहता है कि अभी कहानी तो मुकम्मल नहीं हुई। वो गम को गम समझता है, तकलीफ को तकलीफ है, मगर उसके साथ अल्लाह के लुत्फ का इंतज़ार भी करता है, क्योंकि कभी समंदर सामने आता है तो रास्ता रोकने के लिए नहीं, रास्ता बनने के लिए आता है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
0: अब इसी उसूल का एक और अजीम तारीखी मंजर हमें सुलह हुदैबिया में भी दिखाई देता है। ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि आप उमरे के लिए मक्का जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि आप और आपके साथी अमन के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, कुछ सर मंडवा रहे हैं और कुछ बाल कतरवा रहे हैं। चुनांचे तकरीबन 1400 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए। मकसद जंग नहीं था, मकसद उमरा था, इसीलिए कुर्बानी के जानवर भी साथ थे। ज़ुल्हुलैफ़ा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, कुर्बानी के जानवरों को इशार और तकलीद के जरिए नुमाया किया ताकि दूर से मालूम हो जाए कि ये बैतुल्लाह के लिए तयशुदा मुकर्रर करदा हदी हैं। अरब मुआशरे में इन अलामात का एहतराम इस कदर मारूफ था कि रास्ते में ऐसा जानवर अलग भी हो जाता तो लोग जानते थे कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुज़ा के एक शख्स को हालात मालूम करने के लिए आगे भेजा, क्योंकि कुरैश को मुसलमानों की आमद की खबर पहुंचना यकीनी था। वो वापस आया तो खबर मामूली न थी, कुरैश पूरी तैयारी के साथ निकल चुके थे। उन्होंने खुराक और दूध का इंतजाम कर लिया था, जंगी तैयारी कर ली थी और अहद कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर अफसोस के साथ फरमाया, या वही हक कुरैश, कुरैश का क्या हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लड़ने नहीं आए थे, आपकी ख्वाहिश ये थी कि कुरैश आपको दूसरे लोगों के साथ मामला करने दे, अगर दूसरे लोग गालिब आ गए तो कुरैश का मकसद खुद हासिल हो जाएगा, और अगर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाया तो फिर कुरैश चाहें तो इस्लाम में दाखिल हों, और अगर मुकाबला ही करना हो तो अपनी कुव्वत महफूज रहने के बाद करें। लेकिन साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म भी वाज़ह था, अल्लाह ने जिस हक के साथ भेजा है उसकी जद्दोजहद तरक नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह उसे गालिब फरमा दे या जान उसी राह में चली जाए। फिर इत्तला मिली कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कुरैश के घुड़सवार दस्ते के साथ रास्ते में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला के बजाय रास्ता बदल दिया, सहाबा से फरमाया कि दाएं जानिब से चलो, क्योंकि मकसद मक्का तक पहुंचना था, खून बहाना नहीं। समीन इकराम, यहाँ सीरत का एक बहुत ही खूबसूरत सबक है कि हर तसादुम से बचना कमजोरी नहीं होता, कभी कभार मंजिल की हिफाजत के लिए गैर जरूरी मारके से बचना ही हिकमत होती है। अब मुसलमान दूसरे रास्ते से निकल गए। खालिद बिन वलीद ने लश्कर की गर्द देखी और समझ गए कि मुसलमान आगे निकल चुके हैं, चुनाचे कुरैश को खबरदार करने वो वापस दौड़े, और फिर हुदैबिया के मकाम पर एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया।

0: FM 107. Time check. Time
1: check. आइए आइए भाई साहब, संडे मार्केट स्पेशल उठने वालों को डिस्काउंट 6:01 पे व्हाट्सएप उठा के जो मैसेज करेगा उसको डिस्काउंट 150 150 666 221 07 पे। आइए भाई साहब मैसेज कीजिए। गुड मॉर्निंग करने वालों को दुआएं और बहुत सारा डिस्काउंट। आइए 150 150 150

और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: अच्छा डायलॉग था, अच्छा डायलॉग था, बहुत बढ़िया।
1: अगर मेरे आदमी कॉल कर लेते हैं चार बजे, गाना सुन लेते हैं, तो कौन सा जुर्म करते
0: हैं? होए होए होए होए
1: होए। मैं कहता हूँ कोई जुर्म नहीं करते,
0: बिल्कुल नहीं करते। क्या आज गब्बर साहब बने आप?
1: लेकिन गब्बर ने फैसला किया आज के बाद चार बजे वाला शो बंद।
0: अरे रे रे रे, क्यों क्यों क्यों ऐसे क्यों?
1: अमिता और दो आदमी तुमने भेजे थे, दो, एक फजील, एक अमिता।
0: अच्छा,
1: गब्बर से मुकाबला करने के लिए।
0: रुको मैं बैकग्राउंड में आपके लिए लगा दूं फिर गब्बर। देखो अब डायलॉग बोलो,
1: आज के बाद चार से चार वाला शो बंद।
0: क्या बात है गब्बर साहब।
1: कल जो तुम्हारा सुबह सुबह मैंने 6 बजे खोला जुमा का दिन, पहले तुम्हारा वो कहानी आ गया।
0: होई होई, फिर क्या हुआ?
1: वो दुबई वाला, वो जो अफ्रीका ने लूट के दुबई को चला गया,
0: फिर
1: वही कहानी शुरू हो गया सुबह सुबह। खुदा करना मुझे सुबह सुबह कोई अच्छा गाना सुना दो यार।
0: नहीं नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा। देखो अगर आप मुझसे बहस करोगे तो मैं जो फिर बोलूंगा आपसे कि मैं फोन रख रहा हूँ, अच्छा लगेगा बताओ।
1: मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
0: हाँ
1: यकीन मैंने तुम्हारे में वो अफ्रीकन वाला गुण है तुम्हारे अंदर। लेकिन क्या है, तुम लेट हो गया है। पूछो कैसा, पूछो कैसा,
0: कैसे बताओ,
1: पूछो कैसा।
0: हाँ बताओ कैसा।
1: वो तुम्हारे आदमी लोग के पास सबके पास 2 रियाल, किसी के पास 3 रियाल, किसी के पास 4 रियाल, कैसे देगा तुमको?
0: हाँ ये परेशानी है, ये परेशानी है।
1: इसने लूटा दुबई को, लूटा दुबई में करोड़पति बन गया आदमी लोग।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अभी तुम्हारे पास जमा करेंगे 2 रियाल 3 रियाल तो कभी जमा होगा तुम्हारे?
0: कुछ जमा नहीं होगा। बात तो सही है आपकी, क्या बात है।
1: ये मुश्किल है। ओके भाई, कबीर भाई
0: ठीक है, ख्याल रखो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। लेकिन भाई के पीछे गब्बर की आवाज एकदम सही लग रही थी भाई, जो बात है। अलग प्लेनेट की बात करके चले जाते हैं। अच्छा एक मुझे सलाम कबीर भाई, वालेकुम सलाम सुजीत भाई, क्या हाल है भाई के। और एक मुझे वॉइस नोट आया भाई, वॉइस नोट अभी सुनूंगा मैं। ये तहसीन जी के मैसेज है, इनके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, माय ट्विन किड्स आसरा इमारा आर गोइंग टू स्कूल, कैन यू प्लीज से हाई टू देम। ऑफ कोर्स इजाज अहमद साहब, ये इजाज भाई के मैसेज, वालेकुम सलाम सबसे पहले तो, और इनके ट्विन बच्चों को असरा या आसरा कैसे, मतलब डबल ई है कि सिंगल ई है, और इमारा, दोनों को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार माशाल्लाह। ये राइमिंग वर्ड आपने सोचे होंगे ना ट्विन से, तो चलो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ट्विन बच्चों को बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार। एंड एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, I watched the billboards. I do not waste their investment. अच्छा ये मैंने सवाल ये पूछना कि सिग्नल पे करते क्या हैं आप लोग टाइम पास के लिए? तो ये सैयद ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब कहते हैं कि मैं तो बिलबोर्ड देखता हूँ जो भी लगा होता है। उनकी बेचारों की मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में फेल नहीं कराना चाहता भाई, यू डिजर्व इट। पर कतर में तो बिलबोर्ड दिखते नहीं, बहुत कम दिखते हैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल। वालेकुम अस्सलाम अलीना, हाउ आर यू बच्चे? और इन्होंने मैसेज किया है, हाउ आर यू, आई ऑलवेज हैव अ बैग फिल्ड विद एंटरटेनमेंट, दैट इज़ विद मी मोस्ट ऑफ द टाइम, आई रैंडमली सेलेक्ट एन एंटरटेनमेंट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। बहुत बढ़िया बच्चे, यू कैन एंटरटेन योर सेल्फ, आई कैन सी दैट। और मैसेज किया है, समटाइम्स वैन आई डोंट हैव एनी थिंग देन आई अनॉय माई पेरेंट्स और एनी वन अराउंड मी। अलीना अलीना यू आर सो स्वीट बच्चे, आई डोंट थिंक यू कैन अनॉय देम, आई ऑनेस्टली थिंक सो यू कैन नॉट। मैं मिला हूँ अलीना से, आई नो शी इज सच अ स्वीट हार्ट, ये अनॉय कर ही नहीं सकती बच्ची है, बट ये कहने के लिए बहुत बड़ी बात है अलीना के लिए भाई, शी डिजर्व्स द हूटर। ये शाबाश सुमल, मैंने मैसेज किया, कोई नई कार को देख के रिसर्च कर लेती थी। क्या बात है ये भाई, ये सब हूटर लेंगे क्या आज? वेरी गुड ये सुमल, मैंने मैसेज किया, मैं भी ये करता हूँ जब सिग्नल पर टाइम पास करने की बारी आती है, तो समटाइम्स आई सी ये कौन सी गाड़ी है, और अगर गलती से उस टाइम हरा सिग्नल हो जाए तो मुझे उस गाड़ी को जानना होता है, वरना खुजली रहेगी पूरे दिन भेजे में कि ये गाड़ी कौन सी थी यार साइड से निकली। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, उनके रंग ऐसे होते हैं कि गाड़ी का नाम नहीं पढ़ा जाता है। क्यों रखते हो ऐसे रंग भाई? कल मैंने लिटरली बैंगन के रंग की गाड़ी देखी है भाई सिग्नल पर, और मैंने इतनी अपने दिमाग में कॉमेंट्री बिठा ली थी, ये इस आदमी को क्या ख्याल आया होगा जब ये गाड़ी लेने गया होगा कि मुझे जो है काली वाली गाड़ी नहीं चाहिए, सफ़ेद भी नहीं चाहिए, ब्राउन भी नहीं चाहिए, मुझे ऑलिव रंग भी नहीं चाहिए, मुझे तो बैंगन रंग की गाड़ी दिखाओ। क्या है भाई कमाल है, मैं पिंक गाड़ी से भी आजिज था। ये देख के मुझे और थोड़ा सा अफसोस में चला गया हूँ मैं। तला भाई कह रहे हैं, भाई इंटीरियर का चेक मारता हूँ मैं। मैं भी यही करता हूँ तला भाई, जब कोई सॉलिड गाड़ी साइड में खड़ी हो ना सिग्नल पे, मैं अंदर झांकता हूँ, और ऐसे झांकता हूँ कि साइड वाली गाड़ी में जो शख्स बैठा है उसे ये ना लगे कि ये मुझे क्यों घूर रहा है। मैं उसकी गाड़ी का इंटीरियर देखता हूँ, बढ़िया है, अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया स्क्रीन लग रही है इसकी गाड़ी, और उतने में ग्रीन सिग्नल हो जाता है। दैट जस्ट पिंचेस मी मैन, बुरा लगता है कि मैं पूरी गाड़ी नहीं देख पाया, रोक के देखूँ मैं। और बताओ मैं एक और चीज़

0: मतलब क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, सिग्नल पे टाइम पास करने का मेरा एक और तरीका है, मैं हर गाड़ी के अंदर रेडियो कौन सा चल रहा है जानने की कोशिश करता हूँ। मैं सच में करता हूँ भाई, क्या करूँ, इस प्रोफेशन से हूँ तो मेरे अंदर एक है कीड़ा ये जानने का कि यार ये सुन क्या रहा है, ये कहीं मोबाइल से तो नहीं सुन रहा है, ये कौन सा रेडियो सुन रहा है, कहीं इसका डैशबोर्ड जो है वो मुझे दिख जाए, बस मैं देखना चाहता हूँ क्या सुन रहा है ये। तला भाई कह रहे हैं मैं भी ऐसे देखता हूँ जैसे उसके साथ में बैठा हूँ कार में। तला भाई आप और मैं मुझे लगता है किसी दिन ना पे जाएंगे भाई। ये जो आदत है ना तला भाई आपकी मेरी, ये जब तक चल रही तब तक चल रही है भाई। मुझे लग रहा बस तब तक ही है ये, हम किसी को बताएंगे नहीं तला भाई, वी विल कीप इट अ सीक्रेट। अगर आपके पास कोई ट्रिक है ये देखने की कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है तो मुझे बताएं तला भाई, आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि कोई मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि मैं बता सकूँ आपको। वैसे तेज तरह नज़र तो मुझे लगती है आपकी, मेरे तो फिर भी चश्मे चढ़े हुए। कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। तला भाई कि मैं तो बढ़िया, तला भाई ना पे जाएंगे, तला भाई कुछ करो मुझे। तो ये सिग्नल पे खड़े हो क्या, कितना देख पाते, क्योंकि कई वो गाड़ी तो टिंटेड होते हैं ना, दुख नहीं होता उस टाइम पे यार, काली शीशी क्यों कराए
1: है? ऐसा देखता हूँ, मैं समझ रहा था कि मैं बाकी ऐसा देख रहा था कि मैं तो उसके साथ ही बैठ गया बंदे के ना।
0: हाँ वही तो,
1: एक दो दफा मेरे साथ हुआ है।
0: हाँ।
1: कि ये एक नया एक कार आई है, यही ना बॉक्स बॉक्स शेप में ना।
0: हाँ।
1: बड़ी ह्यूज है वो, मैं मॉडल को उसका नाम नहीं दे रहा।
0: हाँ।
1: ठीक है ना, ब्रांड का।
0: हाँ।
1: तो वो मैं देख रहा ना, वो एक फोर्ट सीट पे बैठा हुआ था मैं, और मैं देखे जा रहा था भाई, लगा अपना लोकल था।
0: पर मोहब्बत में बोला था, चिड़के बोला था
1: भाई वो, उसने सरकैजम में बोला था, मेरे का यार देखो अभी पॉजिटिव ले लेता हूँ मैं, गाड़ी देखने को मिलती
0: बेहतरीन यार, बहुत बढ़िया। फिर तो सरकैज़म भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये पता देसी अंदाज़ में उसने क्या बोला, भाई तो एक काम कर अंदर ही आके बैठ जा, छोड़ दे अपनी गाड़ी, अंदर आके बैठ जा।
1: भाई तो बहुत शरीर गरीब है, तेरी शक्ल तो खराब, गुर्बत कपक रही है, अलग है तू फिर अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन तू बहुत गरीब है और तू नदीदा भी है। उनमें तो बहती भी साइड में थूक बहती है ना।
0: हाँ।
1: वो देख ली।
0: भाई तो राल मत डबका, तू अपना फोन दे मैं खींच के देता हूँ अंदर का।
1: कम बगल मारते तू नजर लगा रहा है, बैठा बैठा और कुछ नहीं कर रहा।
0: ये लेकिन पता है ये टास्क जो है ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सिम करता हूँ, बस मुझे ये डर रहता है कि वो ये ना कहते भाई तो अंदर ही आके बैठ जा, गरीब आदमी तो अंदर आ देख ले गाड़ी अच्छे से।
1: अपन जा चुके, नेक्स्ट इनॉग्रेशन कर दी हमने।
0: हाँ।
1: अगला तुम्हारा पता चलना चाहिए कौन सी गाड़ी में बैठे हो तुम और किसके साथ बैठे हो,
0: लेकिन
1: ध्यान से बैठना देखो।
0: हाँ।
1: ये ना हो कि निकल जाए वो तुम्हें लेके।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, पूरा ध्यान रखा जाए। नहीं पर ये सिग्नल पे क्या आप भी नंबर देख के थोड़ा लगता है कि नंबर नोटिस करते हैं हम गाड़ियों के, नहीं करते
1: यार? वो तो देखो डिप्रेशन वाली बात है ना, वो तो देखो हम वैसे इस पे चल रहे हैं, फिर नंबर नंबर देख के भाई, देखे लीमो का नंबर भी तो चार नंबर होता है, उसको देख के भी खुश हो जाओ फिर।
0: अरे भाई
1: चार नंबर की बात है ना, तो लीमो का नंबर भी चार है, चार नंबर की गाड़ी होती है वो भी।
0: इतनी सस्ती बात करके ना मेरा इतनी सस्ती बात करे ना सुबह सुबह आपने।
1: यार भाई अभी जी वैगन की बातें करी है मेरे सामने।
0: हाँ।
1: तीन नंबर और दो नंबर वाली।
0: हाँ।
1: और चार नंबर वाली और चार नंबर की गाड़ी है इसके पास भाई, ये तो पता ही अमीर होगा।
0: हाँ।
1: तो फिर लीमो वाला तो फिर यार पति चल रहा है, उसके बाद तो तीन गाड़ी वो भी चार चार नंबर की।
0: नहीं बताऊं आजकल कतर में कैब में भी ऐसी गाड़ियां चल रही है ना कि उनके अंदर देखने का मन करता है क्या कौन सी गाड़ी है। अबे तो ये तो ज्यादा लेता होगा है ना, सही कह रहा हूँ, बहुत गाड़ी देखी
1: भाई। सही बोल रहा है, एक बंदे के साथ तो मैंने किया था, उसने मुझे ना घुमा के

0: y la chamaca que mala, va.
1: क्या क्या हुआ?
0: मैं वो भाई वो उबर ब्लैक करके बुक करके आया ऑफिस.
1: हाँ.
0: तो क्या कहते हैं, अब वो आया तो वही मर्सिडीज थी भाई, वो उबर ब्लैक में भाई इसके पास.
1: अरे भाई साहब,
0: आया वो उतना. हाँ भाई, वो फेफड़े वाला आदमी है वो भाई, वो हर डेढ़ हफ्ते बाद उधार मांगता है वो आदमी है, वो जो उबर ब्लैक में उतरा. मैं साले खाने के पैसे नहीं, मैं खाने के पैसे नहीं तेरे पास. हर डेढ़ महीने बाद तेरी हॉबी एक रिमाइंडर ही मैसेज छेड़ देता है कि भाई मुझे लोन चाहिए. मेरा पूरा ऑटोमेटिक लोन पे लगा हुआ है और तू अभी उबर से उतरा है. वो कहला, देखो जब तुम्हारी शक्ल गरीबों वाली हो तो बातें गरीबों वाली नहीं करा करो.
1: पर ये आपने बुक कर, ये बुक करने की हिम्मत कैसे, क्यों बुक करी, क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने सीधा है?
0: भाई साहब मैंने बोला उसको, उसने मुझे बोल के निकल गया. मतलब मेरे रिप्लाई का जवाब का ना जवाब ही नहीं सुना भाई ने मेरा ना. मैं यार ये तो वाकई मतलब आज तो एटीट्यूड में आ गया भाई. मैंने उस दिन से ठान लिया, अभी तक मैंने अब इसका एक मैसेज आना चाहिए इसका, कहना पैसों का भाई पैसे तो दे दे फिर तू देख. मैं ना इसको सोशल मीडिया पोस्ट करूंगा कमबख्त मारे. उस दिन तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था. अच्छा हुआ तुझे.
1: पर ये बताओ ब्लैक क्यों बुक करी उस दिन, क्यों मन किया ब्लैक बुक करने का?
0: भाई बात ही नहीं सुनी ना लगे बंदे ना, वो अभी तक एटीट्यूड में भाई, वो सरिया लगा हुआ उसी गर्दन में आज तक. तीन चार दिन हो गए भाई, वो जमीन, वो ताले जमीन पे देख ही नहीं रहा है, वो तो ताल पे देख रहा है वो.
1: मैं समझ गया ये.
0: अल्लाह रहम करे भाई, आज रात को दिहाड़ी शायद अच्छी लग गई, क्या सीन है समझ नहीं आ रहा मुझे.
1: नहीं पर ये चीज है भाई, कुछ गाड़ियां सच में देखनी पड़ती है, सिग्नल पे खड़े हो गए सबसे बड़े टाइम पास यही है. ये कैब में गाड़ी चल रही है, ये तो कमाल हो गया.
0: यार कैब से ना मुझे याद आया. हाँ. यार क्या तो हो सकता है, मैं मुझे पता है रीजन पता है, लेकिन मैं वो यार लेम सवाल किया मैंने एक बंदे से.
1: हाँ.
0: अभी वो ये जो जो टैक्सी चल रही है, वो रिबोटिक टैक्सी जो चल रही है.
1: हाँ.
0: जो विदाउट ड्राइवर ना.
1: हाँ.
0: ड्राइवरलेस.
1: हाँ.
0: ठीक है, अब वो टैक्सी तो भाई विदाउट ड्राइवर है, मतलब वो ड्राइवरलेस प्रोपो इजी है.
1: हाँ.
0: कि भाई ये ड्राइवरलेस होगी, ऊपर तो बड़ा कैमरा लगा हुआ और सारी चीजें ना.
1: हाँ.
0: बंदा क्यूरियस होता है यार, देख गाड़ी बगा टैक्सी चल रही है ना भाई. जब आगे जाओ तो काला कोकोमेलन बैठा होता अंदर गाड़ी में, वो चला रहा होता है.
1: तो वो तो क्या
0: क्या सीन है भाई,
1: वो तो रखा होगा उन्होंने, क्योंकि मेरे ख्याल में पता क्या है, वो सारे के सारे मैप अभी ट्रैक नहीं हुए हैं, अभी सारे मैप उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है. वो बोला भी गया कुछ थोड़ा टाइम लगेगा.
0: बताओ ना ये बात, हम अपने से समझेंगे ये बात, ये बताओ ना ये बात,
1: ये
0: अपने से क्यों समझे ये बात.
1: ये मैंने न्यूज बताई थी, ठीक है मैं दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बारे में पूरा शो कर लेंगे भाई, दिक्कत नहीं है.
0: मेरा दिल घबरा गया दो दफा, दिल घबरा गया. मैं बीच वाली लेन में था, इस तरफ भी वही गाड़ी, लेफ्ट पे भी राइट पे भी. मैंने लेफ्ट पे आगे जाके देखा, मैंने यार मैंने ना देखना, मैंने बच्चों को भी दिखाना ना, मैं आगे गया देखो तो बड़ी धड़ करके इतना बड़ा मुंह लेके बैठा बंदा है कोकोमेलन. फिर राइट पे देखा धोबी कोकोमेलन, यार क्या चल रहा है मेरे साथ. तो मेरा यकीन करो तो दिल का भरा गया उस दिन मेरा यार, सही वाला.
1: मैं इस बारे में शो करूंगा. अच्छा आपने टॉपिक दे दिया मुझे, पर ये सही है, टाइम पास जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, तो इस बात पे हाई फाइव भाई, बहुत बढ़िया ताला भाई. With you on
0: this.
1: खैर भाई.
0: वही है. देखो मैं उठा लिया गया ना, मैं बताऊंगा. देखो एक और है, आज चल दो जाएंगे हम साथ ना, अकेला नहीं जाऊंगा मैं.
1: ये मुझे भी लग रहा है.
0: तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा बता रहा हूँ.
1: मैं साथ में हूँ.
0: तुम जाओ तो मुझे लेके जाना. हाँ. मैं जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा.
1: मैं आपके साथ हूँ. डन है. ठीक है भाई. ओके भाई, अल्लाह हाफिज. तो तला भाई के बाद और दो मैसेज. मैं एक्चुअली में सवाल ये कर रहा था कि सिग्नल पे आप टाइम पास कैसे करते हैं? देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे लोग करते हैं. एक भाई ने मैसेज किया है, सलाम, जब गाड़ी का नाम नहीं ले सकता, आई से हमारी नेक्स्ट कार. हाँ ये मेरे साथ भी होता है भाई. ताले भाई और रूटर हमारे साथ में. ये फौजी जी ने मैसेज किया, उनका कहना है ये कहने से ही दिल खुश हो जाता है, एंड आई इमेजिन माई सेल्फ ड्राइविंग इट इन वन डे. बिल्कुल सही है फौजी जी, मैं आपके साथ हूँ, ये सेम मैं भी करता हूँ. अगर कोई मेरी पसंदीदा गाड़ी साइड में से निकलती है, मेरी पसंदीदा गाड़ी का बजट भी कम है. आपने तो बहुत हाई फाई गाड़ी बोल दी. और उन्होंने लिखा है, अच्छा वो डबल आर वाली गुजरती है बराबर से तो गर्दन ऊंची हो जाती है, पता नहीं क्यों अपनी अपनी सी लगती है. वेरी गुड वेरी गुड. एक मैसेज संबुल भंगे लिखते हैं, कबीर इमेजिन आजू बाजू अगर लेडी ड्राइवर है क्रूजर में और आप बीच में हो देन क्या करेंगे? मैं सीधा सामने देखता हूँ और वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ गाड़ी के. एक मैसेज और है, अब अहमद साहब लिखते हैं, व्हेन द कार दैट ओवरटुक मी गेट्स स्टक एट अ सिग्नल आई ट्राई टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द ड्राइवर आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई द ड्राइवर ऑफ द कार दैट ओवरटेक्स बाय फ्लैशिंग इट्स लाइट एंड देन आई क्विकली सेंड यू अ मैसेज. अब अहमद साहब कहते हैं सिग्नल पर सबसे बढ़िया टाइम पास ही होता है. जिस गाड़ी ने मुझे पिछले सिग्नल आगे निकलने की कोशिश करी थी मेरी गाड़ी से, ओवरटेक किया था, जब वो सिग्नल पे बेबस बैठा होता है तो मैं उसकी तरफ घूरता हूँ और फिर आपको मैसेज करता हूँ। ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरा ही बड़ा मन करता है उन लोगों को मैं देखूँ जिसने ओवरटेक किया है मुझे, और फिर सिग्नल पर उसकी शक्ल देखता हूँ मैं, और मेरे मन में आता है हाँ पायलट कहाँ जाने का सीन था भाई, रुक गए सिग्नल में। क्या हुआ, उड़ नहीं पा रही गाड़ी। इरशादुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं गाड़ियों का नंबर प्लेट देख देख के यूनिक नंबर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये एक्टिविटी बहुत महंगी एक्टिविटी है भाई, ये बहुत महंगी एक्टिविटी है, ये इजी नहीं है काम। तब तो मैंने मैसेज किया है सिग्नल पे टाइम पास करने की बात पे, कहती हैं कबीर भाई मैं तो सेव ड्रील्स देखती हूँ, अगर कभी गलती से बाहर देखूँ तो दूसरी गाड़ी भी देखते रहते। अच्छा वो आप अपने आप ही एक अजीब कॉन्वर्सेशन होती है, एक नंबर प्लेट्स भी देखती हूँ, यूनिकनेस ढूंढती हूँ। मैं भी ये सोचता हूँ, मैं पता मैं क्या करता हूँ, मेरा सिग्नल पर टाइम पास एक और है, मैं जब किसी गाड़ी को देखता हूँ और उसका मुझे नंबर दिखता है जिसमें कोई एयर हो तो मैं सोचता हूँ यार इसकी गाड़ी में 1983 क्यों है, 1990 क्यों है, ज़रूर इसके बच्चे की बर्थ डेट होगी ये, मैं टेंशन ले रहा हूँ उसके लिए, मैं उसके लिए टेंशन ले रहा हूँ, और यही मैं टाइम पास पर टेंशन लेता हूँ फालतू की। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कोई टेंशन है नहीं, पर मैं ऐसी वाली टेंशन लेता हूँ यार इसकी गाड़ी में 1990 है तो या तो ये इसके फादर साहब का होगा बर्थ डेट, नहीं नहीं इसके बेटे का होगा, बेटे से बहुत प्यार करता होगा ये। ये मैं सोच रहा होता हूँ गाड़ी के अंदर खामखा। कोई लेना देने नहीं उसके घर वालों से, पर फिर भी कॉल आ रही है। ओके अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: अरे वालेकुम सलाम भाई हीरो, क्या बात है, याद नहीं आई मेरी, एक दिन कॉल नहीं करी तो गायब हो गए तुम है।
2: नहीं वो 4 दिन स्कूल की हॉलीडे थी ना इसलिए।
1: हाँ अच्छा अच्छा, तो पेपर कैसे गया, एग्जाम कैसे गया, सबसे पहले बताओ।
2: अच्छा गया, अभी तो रिजल्ट तो नहीं है।
1: क्या क्या
2: ये, हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं अच्छा कितने एग्जाम बचे, हो गए सारे एग्जाम डन,
2: हो गए सब, ट्यूसडे का लास्ट एग्जाम था।
1: ट्यूसडे कौन सा एग्जाम था,
2: इंग्लिश।
1: इंग्लिश का कैसा गया पेपर ये बताओ, इंग्लिश का तो अच्छा गया होगा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड, बहुत। अभी रिजल्ट जब आएगा ना तो मुझे बताते रहना रिजल्ट, हाँ क्योंकि मेरे मुझे तुम्हारे हिंदी के पेपर पे शक है, तुमने हिंदी के पेपर में क्या किया है मुझे ये जानना है, समझ गए। और बताओ कैसे हो,
2: अच्छा
1: हो। आज क्या है टिफिन में, क्या है आज, क्या खाने वाले हो
2: टिफिन में।
1: हाँ
2: आज मेरे को
1: पैनकेक दिए। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पैनकेक क्या बात है। और वीकेंड पे क्या किया तुमने,
2: वीकेंड में
1: कुछ भी नहीं किया,
2: कुछ भी नहीं किया, खेले
1: सही। और अरे वेरी नाइस, अब तो एग्जाम भी नहीं है, अब तो खेलो, वीकेंड भी तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, बहुत बढ़िया शानदार वेरी गुड।
2: हमारा और कुछ खाना हो डब्बे में,
1: क्या क्या क्या वेरी नाइस। आज का दिन, आज के दिन तो कोई टेस्ट नहीं है ना, बढ़िया। आप तो आज स्कूल बढ़िया जाएगा, सुकून से जाएगा है ना। चलो यार आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मैं डर गया था तुम्हारे हिंदी के एग्जाम की वजह से, बट मुझे जब रिजल्ट आया तो बताना, मैं जानना चाहूंगा, दोनों बैठ के डिस्कस करेंगे ठीक है।
2: ठीक
1: है चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से,
2: ठीक है बाय
1: बाय बाय बाय। तो ये याद है आपको, इनका हिंदी एग्जाम था, इन्होंने बोला 60 में 40 लिखा होगा, नहीं बेटा डिस्कस करेंगे बैठ के। एक मैसेज फराज भाई का, ये बता रहे हैं कि सिग्नल पे टाइम पास कैसे करते हैं, कह रहे हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम। फराज भाई कह रहे हैं मैं कभी किसी को गलत टेक ओवर कर लूँ तो अदर कार बराबर में जाकर जब स्टेयर करता है तो मैं इग्नोर पटन करता हूँ, मैं भाई बिल्कुल सीधा देखता हूँ जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो, एकदम निर्दोष। एक मैसेज है, क्या हाल है मेरे भाई, मैं सिग्नल पे ये देखता हूँ कि बड़ी वाली गाड़ी वो जो लाइटें मारती है वो कितनी है, और दूसरी बड़ी वाली गाड़ी जो लाइटें मारती है वो कितनी है, दोनों का ब्रांड का नाम नहीं ले सकता लेकिन आप समझ गए होंगे, यही दो गाड़ियां हैं मार्केट में जो पीछे से लाइटें मारती हैं, अगर आप लेफ्ट में हैं तो भाई मैं आपके साथ हूँ इसमें, मैं ये गिनता हूँ कभी कभार। एक मैसेज, आज का टॉपिक क्या है बता देते हैं, टॉपिक क्या आज मैं कह रहा हूँ कि सिग्नल पे आप टाइम पास कैसे करते हैं, What do you do? जब आप एक लाल सिग्नल पे खड़े होते हैं। एक भाई ने मैसेज किया, मैं तो लाउड म्यूजिक करके सुनता हूँ, इश्तियाक अंसारी भाई कह रहे हैं, मैं भी ये करता हूँ भाई, फुल कोई बढ़िया सा रैप ढूंढ के चला देता हूँ मैं। एक मैसेज है, नंबर प्लेट के नंबर्स ऐड करता हूँ और सिग्नल्स, ब्रेन बिजी रहता है ना, कार देखो ना मिर्ज़ा गालिब की गज़ल, अच्छा एन मिर्ज़ा गालिब की गज़लें गाता हूँ, क्या बात है, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, कासिम भाई भाई बहुत ही अलग जीवन जी रहे हैं आप सिग्नल पे भी, सिग्नल पे भाई सब खड़े हुए सोच रहे हैं आप। غزلیں سن رہے میرا بھائی, بہت کام ڈاؤن ہے آپ, ماشاءاللہ کافی کام ڈاؤن ہے. یہ تو میں بھی کرتا ہوں, نمبر پلیٹس کو میں دیکھتا ہوں اور میں ہمیشہ جیسے میں نے کہا میں دماغ لگاتا ہوں اس ٹائم پہ کہ یہ نمبر پلیٹ اس نے یہ کیوں لی ہوگی, اگر اسپیشل نمبر پلیٹ ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو فگر آؤٹ یہ ان کے بچے کے لیے انہوں نے لی ہوگی کیونکہ اس کے نمبر پلیٹ میں 1990 ہے. نہیں نہیں اس میں نمبر 1970 ہے تو ضرور ان کے ابا کی برتھ ڈیٹ کے حساب سے لی ہوگی. پھر میں اگر میرے سائڈ میں کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم دونوں مل کے اس پہ وہ لگاتے ہیں شرطیں, کتنے کا ہوگا, 1 million کا تو ہوگا یہ. جیسے ہمیں بڑا فائدہ ملنے والا ہے اس سے. سگنل پہ سب سے بڑی ٹائم پاس یہ ہے, نمبر پلیٹ پہ بیڈنگ کرتے ہیں بھائی ہم, میں تو اکیلے بیڈنگ کر لیتا ہوں, کتنے کا ہوگا یار, میری گاڑی سے 4 گنا مہنگا تو نمبر ہوگا اس کا. اور میں یہی سوچتے سوچتے پورے رستے جاتا ہوں میں. ٹائم پاس کرنا بہت ضروری ہے سگنل پہ, میں آپ کو بتاؤں اسپیشلی وہ سگنل تھوڑے لمبے ہوتے ہیں. ایک میسج آیا میرے پاس, آداب وعلیکم السلام, آداب آپ کو بھی, حفصہ بہن کیسی ہیں آپ. اور ایک میسج ہے فرد بھائی کا, فرد بھائی کہہ رہے ہیں فرد بھائی حضرت فرد بھائی ریلیٹ کر گئے. ذیشان بھائی کہتے ہیں وعلیکم السلام. ذیشان بھائی ایک میسج ہے عبد الکریم بھائی کا, لکھتے ہیں میں زیادہ تر نمبر پلیٹ کو فالو کرتا ہوں اور سوچتا ہوں لیکن لیموزین والا بہت کھاتا ہے ان سے. ایک میسج ہے بھائی غزل سنڈے ہے کہیں غلط گولے کے تو نہیں آ گئے. بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں فرد بھائی میں خود ڈر گیا, غزلیں سننے بتاؤ. ایک میسج ہے میرے پاس بھی کہانی بھیج دیا کیجیے, رجسٹریشن ہے تمہارا, دکھاؤ رجسٹریشن پلیٹ. جیس بھائی کہتے ہیں السلام علیکم بابر شیر. وعلیکم السلام, کہتے ہیں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے, بیسٹ ویکینڈ کیا ہوگا سرور بھائی کے, کیا حال ہے, بڑھیا بھائی. تو ان کو پکچر دکھائی نا بڑھیا والی. ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے بڑھیا ٹائم پاس کیا ہے آپ کا, سگنل پہ جب کھڑے ہوتے ہیں لال بتی پہ جب گاڑی ہوتی ہے تو اس ٹائم آپ کے ذہن و دل پہ کیا آتا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں. میں ایک اور چیز کرتا ہوں, نہ صرف نمبر پلیٹ کو فالو کرتا ہوں, یہ سب تو ایک چیز رہتی ہے, میں بہت کچھ سوچ لیتا ہوں بھائی اگلے دن کے شو کے لیے. مجھے فائدہ رہتا ہے, لوگوں کے لیے بڑا سگنل برا ہوگا, میرے لیے بہت بڑھیا رہتا ہے بھائی. کیونکہ میں کہیں پہ بھی لیٹ نہیں جا رہا ہوں, مطلب شو کے بعد تو میں خالی ہوں, کدھر لیٹ پہنچوں گا میں, کدھر جلدی پہنچ کے کیا کر لوں گا میں, تو آئی ڈونٹ کیئر, آئی وانٹ لانگ سگنلس. الگ ہی میری زندگی چل رہی ہے. ایک کال آ رہی ہے, رکو بھائی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب خیریت؟
1: بڑھیا بھائی, ایک نمبر. جیس بھائی آپ سناؤ بھائی, کیا حال ہے بھائی کے؟
3: الحمد للہ بڑھیا بھائی, سب مزے میں.
1: تو جیس بھائی آپ کیا کرتے ہو بھائی, لال بتی پہ کیسے ٹائم پاس کرتے ہو, کیا ذہن میں آتا ہے اس ٹائم پہ, کوئی نمبر پلیٹ دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے؟
3: اگر بھائی چھوٹے موٹے سگنل ہوتے ہیں تو وہاں تو ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے.
1: اچھا پھر
3: اگر ہاں جہاں کہیں ٹائم ہوتا ہے نا تو وہاں پہ نا اپنا دوسرا موبائل آن کرتے ہیں, پزل کھیلتے ہیں بھائی.
1: ارے بھائی آپ کی وہی گاڑی تو نہیں ہوتی اس کے پیچھے لوگ ہارن بجاتے ہیں ہری بتی ہوتے کے ساتھ ہی؟
3: نہیں بھائی صاحب, میری گاڑی کے پیچھے کوئی ہارن نہیں بجاتا, کیونکہ اپنی گاڑی کی جو ہے نا لیول ہے نا.
1: ارے
3: دوسرے
1: دیکھ کے ویسے اس بات پہ تو کیا بات ہے, کیا بات ہے جیس بھائی, کیا بات ہے یار, بہت بڑھیا جیس بھائی, کیا اورا فارمنگ کری ہے آپ نے صبح صبح آ کے بھائی. ویری نائس.
3: ٹاپک بھی لے کر بیٹھے ہو بلکہ یار, یہ تو اپنا ریلیٹڈ ٹاپک
1: ہے.
3: اپنی گاڑی کو دیکھ کے نا بھائی سب دور سے سائڈ ملتی رہتی ہے.
1: اچھا میں سمجھ
3: گیا, کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے نہ ہارن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے.
1: سمجھ گیا,
3: دیکھے ہیں نا کہ اسپیڈ میں آ رہی ہے گاڑی سائڈ.
1: میں سمجھ گیا آپ کی, آپ کا رولا اتنا کیوں ہے سڑک پہ, وہ میں سمجھ پا رہا ہوں. اچھا ہوا کہ آپ نے برانڈ کا نام نہیں لیا, پر میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ رولا کیوں ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. تو آپ تو پھر آپ کا تو حق بنتا ہے بھائی, حق سے پزل کے لیے. میں تو کہتا ہوں ریلی ویلی دیکھیے, پکچریں دیکھ ڈالو بھائی, کوئی ٹینشن نہیں. کیا بات ہے,
3: میں تو کھیلتا رہتا ہوں, جب دیکھتا ہوں نا کہ ہاں یہ اشارہ لمبا ہے, اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا, تو میں تو آرام سے آن کیا اور واٹر پزل کھیلنا شروع.
1: واٹر پزل یار, بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے بھائی یار, ہم کہاں سمجھ پائیں گے جیس بھائی یار.
3: ارے یار کیا
1: اونچے لوگ اونچی پسند میرا بھائی, صحیح جا رہے ہو یار.
3: یہ بھائی آپ کہہ رہا ہے کیسا ویکینڈ گیا وہ تو مجھے پتا ہے بھائی.
1: بڑھیا بھائی, ایک دم شاندار گیلا ویکینڈ. کیا
3: لال گلی تو نہیں ہوئی تھی؟
1: نہیں نہیں بھائی, سب شاندار.
3: میں دوپہر کو پوچھوں گا ضرور.
1: نہیں بالکل بالکل بھائی, بالکل پوچھے بھائی, میں تو کہوں گا یہ ضرور پوچھا جائے, میرے بارے میں فیڈ بیک آپ کو ملے گا, مزہ آ جائیں گے آپ کو بھائی, ضرور ضرور پوچھے بھائی. ویری امپورٹنٹ
3: بھائی صاحب, نہیں تو ادھر سے رپلائی یہی ملے گا کہ یار انہوں نے تو عورتوں کو بھی مات دے رکھی ہے کہ چگلی کرنے میں.
1: نہیں بھائی, آج کل اس میں عورت مرد والی باتیں نہیں ہے, سب برابر چگلی کر رہے ہیں, مارکیٹ میں بہت کچھ چل رہا ہے.
3: نہیں بھائی صاحب,
1: کریکٹ بھائی, یہ تو ہے, یہ سب ابھی سب برابر چل رہے ہیں, یہی تو یونٹی ہے میرے بھائی, ये यूनिटी इज डाइवर्सिटी, एवरीबॉडी इज इक्वल, इक्वालिटी सब कुछ चल रहा है।

0: समाज में, कौन कह रहा है समाज इधर खराब हो रहा है, सब बढ़िया जा रहा है, वेरी नाइस बट भाई थैंक यू सो मच जस भाई, और जरूर पूछेगा जब 1:30 बजे का शो सुने आप।
1: इंशाल्लाह जरूर भाई, जरूर पूछूंगा, ये चीज तो आज मैं जहन में बिल्कुल फिट करके रखा हूँ कि जरूर पूछूंगा भाई।
0: डन है भाई ठीक है भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
1: ओके भाई,
0: ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो वही कह रहा था मैं कि सिग्नल पे आप टाइम पास करते कैसे हैं, मैं एक जरा कॉल उठा लूं फिर मैं एक और चीज बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम। एकदम बढ़िया भाई, एक नंबर शानदार। आप बताएं मेरे भाई कैसे?
2: शुक्र अल्लाह का। ये भाई जैस भाई ने सही की ना कि आजकल इक्वालिटी है।
0: हाँ,
2: इक्वालिटी वाले, जैसे लेडीज कहती है ना कि हम भी मर्दों के बराबर हैं, मर्द भी कहते हैं हम भी चुगलियों में औरतों के बराबर
0: पर एक टॉपिक पे आ जाओ, जरा ये बताओ सिग्नल पे कैसे टाइम पास करते हो भाई?
2: मैं गाड़ियों के ना नंबर एडजस्ट कर रहा था। सपोज फर्ज कीजिए कि किसी का नंबर है 313415, मैं कहता हूँ यार 313413 हो जाता तो कितना जबरदस्त हो।
0: अरे मेरा भाई,
2: इसका नंबर ऐसे नहीं
0: क्या बात। मैं बताऊं ये दुख मेरे साथ है, जो आप करते हैं ना ये दुख मेरे साथ है। मेरी गाड़ी के अगर लास्ट के दो डिजिट कुछ और होते तो भाई
2: सर आपके
0: बहुत बढ़िया
2: मेरा एक और होता ना तो मेरा नंबर चेंज हो जाता।
0: अरे भाई भाई हाथ मिलाइए भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई सेम मेरे साथ है भाई।
2: मुझे तकरीबन मेरे सब फ्रेंड्स ने बोल दिया भाई तेरा अगर इसकी जगह ये नंबर लास्ट वाला होता ना
0: हाँ
2: तो भाई तेरा स्पेशल नंबर होता
0: भाई। मैं खुद आपके दोस्तों ने बोला, मैं ना नंबर प्लेट गिर गई थी, मैं आपको बताऊं और सभी जो सुनने वाले, मैं नंबर प्लेट लगवाने गया था उन वहां पे जो लगाते हैं ना नंबर प्लेट, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे ये लास्ट के अगर दो नंबर कुछ और होते बाबा ये तो बहुत महंगा बिकता, मेरा खून जलता जब मैं सुनता हूँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो लास्ट का क्या नंबर होता अगर आपके नंबर प्लेट का लास्ट का डिजिट
2: मेरा 4 की जगह अगर 6 होता ना
0: हाँ
2: तो मेरा रिपीटेड नंबर हो जाता।
0: अरे यार ओहो, कितने में चला जाता, कितने में बिक जाता फिर
2: सर 50 तो कहीं पे भी नहीं गया था।
0: अरे
2: मिनिमम।
0: अरे भाई यार बुरा भी लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप ना बेचते, क्या नंबर बढ़िया मैं क्यों बेचूं और महंगा बेचूंगा।
2: बिल्कुल मेरे पास था इससे पहले जो गाड़ी थी ना वो उसमें भी बड़ा स्पेशल नंबर था लेकिन वो स्पेशल हुआ हुआ नहीं था, इस वजह से वो फिर मैंने छोड़ दिया।
0: भाई आप
2: फुल मोड था कि वो तो आपका क्या होता तो कितना
0: भाई अगर लास्ट में 3-0 हो जाता ना, ओहो हो भाई आपको पता नहीं है क्या होता, आंधी तूफान आ जाता आपका भाई
2: में चला जाता।
0: अरे भाई आप 50 की बात कर रहे हैं, पार हो जाता 50 तो कब का पार हो जाता, ऐसा नंबर था।
2: मिलियन चला जाता, 1 मिलियन
0: प्यार से भाई, प्यार से हम दोनों ने भी अपना अपना नुकसान शेयर किया है तब भी हंस रहे, देखिए क्या क्या हाई क्वालिटी के लोग हैं।
2: बिल्कुल।
0: अरे मेरा भाई थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यारा आपको। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो अभी जो है मैंने भाई ने दोनों ने अपना अपना नुकसान शेयर किया, नुकसान भी देख रहे हैं छोटा मोटा नुकसान नहीं है, 50-1 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे सवेरे और अब सब मैंने मैसेज किया है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हस्बैंड की एनुअल लीव सी, मेरी छुट्टी थी ड्राइविंग से, आज से ड्यूटी स्टार्ट, बच्चों को ड्रॉप करने की, ऑल द बेस्ट बहन। और आगे लिखती हैं आप कैसे हैं, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और लिखती हैं मैं सुन रही हूँ सुबह से, मैं सिग्नल पे से पहले 7 वाली गाड़ी देखती हूँ और हर वो पॉसिबल चीज़ जो टाइम पास करने के लिए, स्क्रोलिंग टाइपिंग स्नूपिंग। अच्छा ये वाला सिग्नल लंबा था तो इतना टाइप कर पाई बहन, काफ़ी तेज़ टाइपिंग स्पीड है। मैं समझ गया अगर आप क्या कहते हैं लड़ेंगी मैसेजेस में तो आपको हरा नहीं पाएगा। मोहसिन भाई कहते हैं मैं तो देखता हूं कोई दोस्त वगैरह की कार तो नहीं खड़ी सिग्नल पे, ये आपकी उम्मीद इतनी हाई है कि किसी दोस्त वगैरह की गाड़ी तो नहीं, भाई कितने दोस्त हैं आपके माशाल्लाह। तबसुमैन मैसेज करते हैं, लिखते हैं मेरे हस्बैंड सिग्नल पे फोन देखते हैं और डेटा कम हो तो मुझे डिटेल्स बताते हैं, वो देखो इस वाली बड़ी गाड़ी में प्लास्टिक कोटिंग लगी है इस पे धूल नहीं बैठती पता है तुम्हें, और शीशे ब्लैक करने से गाड़ी थोड़ी ठंडी रहती है, उस गाड़ी के टायर देखो उस पर डिजाइन कवर लगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज सो मी टाइप, बहुत बढ़िया बहन। फरद भाई लिखते हैं तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है,

आधा वर्दी फरद भाई, क्या क्या बात हो फरद, फरद भाई ठीक तो है, चक्कर क्या हो, नब चक करना नब जिंदगी क्या हो गया इन्हें। ये आज भाई ने मैसेज किया, आज भाई ने अपना गरीबों वाला सवाल किया है, मौका मिलेगा तो बताऊं। गरीबों वाला सवाल नहीं बेटे, यहाँ 50 मिलियन की बात है, कहना गरीबों वाला सवाल है ये। एक मैसेज जयस भाई का, कहते ये तो खास बात होती है, बड़े लोग ये छोटे मोटे नुकसान पर ध्यान देते नहीं भाई, हम ध्यान समझ रहे हैं, मेरी गाड़ी का अगर लास्ट के 2 डिजिट कुछ और होते तो क्या करता बता, मैं बात भी ना करूं किसी से। पर इसी ने अल्लाह मैंने कहा ना बेटे ना ना ना। तो मिला नहीं, अगर मेरी गाड़ी के लास्ट के 2 डिजिट अलग होते भाई, मैं बात ना कर दूं किसी से, रिश्तेदारों के फोन ना उठाऊं, वैसे तो अभी भी नहीं उठाता, फिर तो और ना उठाऊं, प्लस कॉल वापस करके और सुनाऊं। एक मैसेज है, ये तो रैक्स वाला सीन हो गया भाई के साथ, 1 मिलियन का नुकसान मुझे भी हुआ है तला भाई। एक मैसेज है ताहिर भाई के, लिखते हैं जैसे नमाज के फौरन बाद मस्जिद से निकलकर सब अपना मोबाइल चेक करते हैं, मैं भी नमाज की कबूलियत का मैसेज आया हुआ एस बिटवीन सिग्नल्स सोशल मीडिया चेक करके, कोई भी मैसेज तो नहीं आया चेक कर दो। अरे ताहिर भाई क्या स्ट्रक्चरिंग थी मैसेज की भाई, 10/10 ताहिर भाई, 10/10 भाई। एक मैसेज है, आज प्रिंस भाई जवाब दे नहीं पाएंगे इस टॉपिक पे, क्यों नहीं दे पाएंगे, क्यों लगता है आपको, प्रिंस भाई इस पे भी कुछ ना कुछ बोलेंगे माज भाई, क्या क्या बात कर रहे हैं माज भाई, क्या बात करो माजू, और इतनी हैप्पी फोटो लगाई है आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे हंस रहा है मेरा बच्चा माशाल्लाह। और आते बने अस्सलाम वालेकुम, सिग्नल पे गेम खेलता हूँ, नंबर प्लेट की बात तो हमारा भी यूनिक है, किसी के पास नहीं है पूरे कतर में। आते भाई क्या है ऐसा नंबर में दिखा तो दो, अब पूरी बात तो की नहीं इन्होंने, आधा खून जला के चले गए। मेरे पास है ऐसा नंबर पर मैं बताऊंगा नहीं, बता दो ना क्या नंबर है, मुझे बता दो भाई, मैं ऑनर नहीं बताऊंगा। इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, KBR 500 MJ। लिखते मैं अपने दोस्तों को रील भेजता हूँ, जो नहीं भेजनी होती वो भी भेज देता हूँ, फिर आई क्रॉस चेक डिड आई चेक और नॉट, डिड ही चेक और नॉट। ये इरफान भाई ये जो अब हमारे अंदर खाला आ गई है ना, कि मैंने अपने दोस्त को रील भेजी, उसने देख के रिप्लाई तक नहीं किया, अच्छा अभी दोस्ती खत्म करता हूं मैं, ये हो गया है मेरे साथ भी, कोई अगर रील ना देखे ना भेजे वाले, इसको आज के बाद नहीं भेजूंगा मैं आज के बाद। एक मैसेज है, सबका नंबर यूनिक ही है, किसी और के पास थोड़ी होगा। ये माज भाई ने मैसेज किया, नहीं सुना आपने, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, कह रहे हैं सबका नंबर यूनिक ही है, किसी और के पास थोड़ी होगा, क्या क्या करें क्या करें, बात करना छोड़ दें इनसे, दूरी बनानी पड़ेगी, मुझे वही लग रहा है। मैं माज भाई यार आई एम रियली सॉरी, पर ब्लॉक और रिपोर्ट मैं करूँगा, तो अगर मेरी प्रोफाइल दिखना बंद हो जाए अचानक से, सो आपको पता है कि क्यों हुआ है सब। ओके एक मैसेज है, हाँ टाइपिंग अच्छी, आई लर्न सो अब समझ में समझ गया था आपकी राइटिंग बहुत डेंजर है, कोई लर्न नहीं सकता बहन से व्हाट्सअप पर। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, लॉन्ग सिग्नल पे मैं व्हीकल प्लेट नंबर रिसर्च कर डालता हूँ भाई। और सुदीप तो सर आगे लिखते हैं, स्पेशली आई ट्राई टू फाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूलाज विद इन द सेट्स ऑफ नंबर्स। अरे भाई सुदीप तो सर कह रहे हैं, I tried to find mathematical formulas within the set of numbers. Sir, सर ये मुझे समझाएंगे इक्वेशन क्या लगाते हैं आप इसमें नंबर मतलब ढूंढने के लिए। और मोना बहन ने बिल्कुल सही किया, स्लो क्लैप्स बहन, क्लैप्स जो एक हाथ से बजाओ आज आप, ये मास की गुद्दी पे टैटू बनाओ आज, नहीं ये दोनों हाथों से ताली नहीं बजनी चाहिए, मैं खिलाफ हूँ चीज़ के। एक मैसेज है मुझे, क्या भाई सही बोला, मैं गलत बोलता ही नहीं करीम भाई। तला भाई भी कह रहे हैं फ़ौरन ब्लॉग, भाई फ़ौरन मैं इस बात बातें नहीं करूँगा मैं, कहाँ से आते हैं मास भाई के लिए बोला है। उस्मानी मैंने बाप रे। फराज भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई सिग्नल से प्लानिंग करता हूँ कि बिलीनर कैसे बनना है। द मोमेंट प्लानिंग कंप्लीट होती है ग्रीन सिग्नल आ जाता है भाई, आपके साथ हूँ मैं। मैं भी सिग्नल पर सोचता हूँ यार, मैं और थोड़ा अगर बड़ा आदमी बन गया तो क्या होगा फिर यार। कबीर साहब आप किन किन से बात करेंगे, किन किन से दूर हो जाएंगे, मैं ही सोच रहा होता हूँ। और जैसी हरी बत्ती आती है सारा थॉट प्रोसेस गया कूड़े में।
और अरसलान भट्ट साहब कहते हैं ओए भाई साहब बस सेंटर वाले नंबर भी 72 हो जाता तो अरे बॉय बॉय बॉय बॉय बॉय बॉय। और अरसलान भाई ये आपका आपकी नंबर प्लेट है गाड़ी की, बाप रे बाप भाई ये तो करोड़ों का नुकसान हो गया भाई। उन्होंने नंबर उन्होंने भेजा, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, बट अगर मैं इतना बता दूं उनके नंबर प्लेट में एक और 72 होता तो अरसलान भट्ट साहब मुझसे तो बात नहीं कर रहे होते कि भगाओ गरीबों से कौन बात कर ये तो करोड़ों का नुकसान हुआ भाई, ये तो बहुत महंगा नंबर हो जाता है ये तो। एक मैसेज है, द मैसेज क्या है, अस्सलाम वालेकुम कोविड भाई क्यों, माय नंबर प्लेट इज वेरी गुड, द लास्ट पार्ट इज जस्ट इकबाल भाई, इतना भी अच्छा नंबर नहीं है ये ठीक ठाक नंबर है, 5 डिजिट है इस गाड़ी के नंबर में, सही है लेकिन करोड़ वाली बात नहीं है, हजार वाली बात है ये, हजार में तो बिक जाएगा। एक मैसेज है, ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट माई सेल्फी डिजिट्स। वकास इकबाल भाई कह रहे हैं कि वो सिग्नल पे टाइम पास करने के लिए नंबर प्लेट में अपनी सैलरी ढूंढते हैं भाई। ऑल आई कैन से इज दिस कितना उत्तेजित लोग, उत्तेजित लोग, उत्तेजित का इससे यहाँ पे फिट नहीं होता उत्तेजित भाई ये क्यों बोला आपने। एक मैसेज है भाई, माज भाई नू समझा लो, हर नंबर यूनिक है तो मैं तो फिर मैं टेंशन लेने की क्या जरूरत। आते भाई क्या कहा आपने वहां तक पहुंचा नहीं मैं। एक मैसेज है, माई फेवरेट नंबर, अच्छा ये फेवरेट नंबर क्यों है आपका मोहसिन भाई, अच्छा हाँ सऊदी अरब के तो नंबर ही थोड़े अलग होते हैं, ये यूनिक नंबर है सऊदी अरब का, मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं, पर मुझे बताइएगा इफ़ इट इज़ अ यूनिक नंबर एट ऑल, वहाँ का मुझे इतना ज्ञान है नहीं है भाई तो मैं कह नहीं सकता हूँ। और एक और मैसेज आया है, कह रहे हैं भाई सिग्नल पर टाइम पास करने की बात है तो मैं रील्स देखता हूँ और कई मरतबा हरे सिग्नल होने के बाद वो रील छूट जाती है तो बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वापस ऑन करने पर रील चली जाती है। अरे अरे रे रे रे रे रे ये दुख काय खत्म नहीं होता, ये चीज़ होती है। आपने सिग्नल लाल बत्ती पे आपने एक रील देखी, आपको लगा भाई रील कंप्लीट कर लूँगा बस उतने में हरी बत्ती हो गई, और फिर आपने जब अगले सिग्नल पे जाके उस रील को वापस देखना चाहा तो रील जा चुकी है, आप क्या कीजिएगा, वो जो गम है ना हिसाब किताब नहीं है भाई इसका। और एक मैसेज है नदीम भाई का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हम काम वाले लोग हैं, आसपास साइट चल रही हो तो बस बोर्ड देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपनी काम कर रही है, बाकी नंबर देखना मोबाइल चलाना तो कॉमन है मोस्टली, ये मेरी गाड़ी का नंबर। अरे भाई साहब नदीम भाई आपको भी करोड़ों का नुकसान हुआ है भाई, अच्छा खासा यूनिक नंबर है यार ये भी, ये नंबर अगर थोड़ा सा इधर का उधर होता ना तो आपने झंडे गाड़ दिए होते नदीम भाई, आपको भी नुकसान हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मैसेज है, माय कार नंबर हैज 3 डिजिट्स फ्रंट में होते तो मज़ा आ जाता, ये तो मेहर भाई ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं ज़बरदस्ती मेरा नंबर अच्छा होता, मानो आना मानो पर आपके लिए होटर बनता है मेहर भाई, क्या बात की आपने। एक मैसेज है, अरे कबीर भाई लॉन्ग टाइम नो लिसन ये अच्छा था गुरु, भाई लॉन्ग टाइम नो लिसन तो आपकी तरफ से, आप गायब थे समी भाई, मैं तो उधर ही था, आप किधर थे, आप तो हमसे रूठ गए बात भी नहीं कर रहे, और बाकियों को ओहो बाकियों को देखो स्पेनिश ऑमलेट भेज रहे हैं फोटो में हैं, जब नाजिया बहन शो करनी थी हमें तो कभी नहीं भेजा आपने स्पेनिश ऑमलेट हमें तो ऐसी वैसी बातें करते हैं, और नाजिया बहन ये देखिए नाश्ता ऑमलेट ब्राउन खूब्स, हमें तो कभी नहीं भेजा ब्राउन खूब्स, भाई इनको ब्लॉक करो इनसे बात नहीं करनी है समय भाई सॉरी भाई एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं जब सिग्नल पे होता हूँ तो ये देखता हूँ कि आगे कितनी टैक्सी वाले हैं खड़े हैं और इनसे कितना बच के रहना है वेरी गुड कोई बात नहीं कहते समय मेरा भाई बहुत प्यार भाई बहुत प्यार भाई, जज़ाकअल्लाह मैसेज करने के लिए। जिंगल का टाइम हो गया, सवाल ये कि सिग्नल पे टाइम पास करने के लिए अब क्या करते हैं, 7:02 होने वाले हैं और आप भी 7:02, you know what to do.

0: FM 107 Time Check.
1: आपको पता मैं क्या करने वाला हूँ, साथ दो और आप भी मेरा साथ दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और मैं का जी ये पूछ रहा था लाडले के आप बताएं ये सिग्नल पे खड़े खड़े आप क्या करते हैं, मतलब टाइम पास के लिए क्या करते हैं। कुछ लोग रीले देख रहे हैं, कुछ लोग दूसरे की गाड़ी में झांकना चाहते हैं कि गाड़ी इतनी बढ़िया है, इसका इंटीरियर कैसा है। उन्हीं में से हूँ मैं। एंड ये कुछ मैसेजेस आए मेरे पास, और मैं भाई म्यूजिक रोक के मैं ट्रिब्यूट एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ इरफान भाई को। हमारे ही इरफान भाई हैं। इरफान भाई कह रहे हैं कह रहे मुझे क्यों जला रहे हो, और आगे पता क्या लिखा उन्होंने भाई, बिल्कुल बेबसी में लिखा उन्होंने, मेरा तो इतना बकवास नंबर है कि अंधा भी ना देखे। मैं उनकी गाड़ी का नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर मैं देखने के बाद इतना कहना चाहता हूँ, तो बस सारा मूड खराब कर दे। इरफान भाई सच में बहुत बुरा नंबर है भाई गाड़ी का आपकी। आई एम जस्ट सॉरी भाई। अरे ये कोई ये गाड़ी जहाँ से लिया आपने, उनको कोई दुश्मनी वुश्मनी थी क्या था ये? ये अगर कोई मुझसे पूछेगा सबसे ज्यादा नॉट यूनिक नंबर कहाँ देखा है आपने, तो आज मैं कह सकता हूँ जीत गए इरफान भाई, आप जीत गए। इरफान भाई के लिए रिवर्स साइकोलॉजी। और वैसे जो ये नंबर ये ही नंबर है, ये किस चीज़ का नंबर बता रहे हैं फराज भाई अब। और इमेजे गुड मॉर्निंग कबीर भाई, सिग्नल पर टाइम पास किया है उस पर रुक कर मैसेज करता हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ। सईद भाई बहुत सारा प्यार भाई आपको, थैंक यू सो मच। और जैस भाई कहते हैं भाई रहने दो, क्यों गरीबों को दिल पर छुरियाँ चला रहे हो, नंबर की बात करी ना, मैं तो कह रहा हूँ सिग्नल पर कैसे टाइम पास करते हो। नहीं फराज भाई वो वाला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। एक मैसेज है, अरे भाई आपका नंबर ही बहुत बढ़िया था, अब नहीं, फ्री में भेज दिया गाड़ी के साथ। एक नंबर दिखाया, उन्होंने कह रहे हैं फ्री में भेज दिया गाड़ी के साथ। इतना बुरा भी नंबर नहीं था भाई। और एक मैसेज मोहम्मद भाई का, मोहम्मद भाई कह रहे हैं भाई मैं तो सिग्नल पे प्लेट्स रीड करता हूँ कितना लकी है कौन, और मेरे नंबर प्लेट ही बहुत यूनिक है। अरे भाई साहब है तो यूनिक मोहम्मद भाई। और मुझे माज भाई ने यूनिकनेस का भी भाषण दिया था कुछ देर पहले, लेक्चर दे रहे थे अभी, खुद ही मुझे एक नंबर प्लेट दिखाई है गाड़ी की, और वो ऐसा नंबर है कि मेरी किडनी और आत्मा दोनों भी बिक जाएं तब भी वो गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं खरीद पाऊंगा। शुएब भाई वालेकुम अस्सलाम, अपनी गाड़ी भाई नंबर प्लेट का टॉपिक क्यों बन रहा है, नंबर प्लेट की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ सिग्नल पे टाइम पास के लिए अब करते क्या है। कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, और प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम। प्रिंस भाई क्या, प्रिंस भाई ने मेरे को भेजा, जरा देख लेते हैं। अरे बाप रे बाप भाई आप बड़े बड़े लोग हैं प्रिंस भाई। प्रिंस भाई दे दो यार, ये डेजर्ट वेजर्ट घूम जाएंगे, बच्चों को दे दो गाड़ी। एक मैसेज है, और आई टेक दिस काइंड ऑफ पिक्स। अरे रे रे रे तायर भाई, तायर भाई मैंने लेकिन आपका वीडियो देखा, यू वर ट्रेनिंग फॉर मार्शल आर्ट्स समथिंग, पर तायर भाई यार आपकी क्लास में आने का मेरे को, आई क्लास में आने का, ये फोटो मैं भी निकलता हूँ तारे भाई। वैसे एक मैसेज मैं तो सिग्नल पे रुककर कोई फेमस आरजे है कबीर नाम का उसका शो सुनता हूँ और उसको मैसेज भी करता हूँ। मैं रजीज भाई को सबसे पहले भाई बहुत सारा प्यार भाई आपको, इनके लिए भाई हॉर्न सबसे पहले बहुत जोर से। मेहर भाई यार मैं आपने स्पीचलेस कर दिया यार मेरे को, यार एक आरजे को चुप कराने का मतलब समझते हैं आप, वेरी गुड। एक मैसेज है इरफान भाई का जिनका नंबर प्लेट मैंने कहा, दिल से मेरा रो गया मेरा दिल, कहते हैं मेरे बच्चे भी कम नहीं है, कहते हैं बाबा इस नंबर प्लेट को देखो। कह रहे हैं बदन में आग लग जाती है। इरफान भाई का नंबर इतना बुरा है भाई मैं बता नहीं सकता। इरफान भाई रियली सॉरी यार, मैं समझ सकता हूँ। इरफान भाई को तो मैं कोई नॉर्मल नंबर भी दिखा दूँ ना, नॉर्मल नंबर, तो उस पर भी इरफान भाई का खून जल जाएगा, इतना बुरा नंबर है यार। भाई ये पक्का जो है ना, मुझे लगता है ये जिन्होंने गाड़ी दी उन्होंने दुश्मनी निकाली भाई आपसे, कुछ तो आपने किया होगा। इरफान भाई का नंबर प्लेट होता है फाइंड मैथमेटिक्स इन इट। फाइंड मैथमेटिक्स, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या मतलब आपको, सुदीप तो सर कैसे निकालते हैं मैथमेटिक्स, आई रियली वॉन्ट टू नो। इतने बुरे नंबर की भी आपको मैथमेटिक्स निकालेंगे तो सर तो ये तो ये लो निकाल लो मैथमेटिक्स। एक मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आरिफ भाई क्या हाल है। एक मैसेज है एट कॉनिश, इफ आई एम एट अ सिग्नल आई सी द ब्लू वाटर्स। माशाल्लाह सिग्नल अगर कॉर्निश का है तो भाई मैं तो ये करता हूँ, एक्सलेंट व्यू इट इज एंड ऑल्सो वॉच स्मॉल आईलैंड इन कॉर्निश वेदर इट इज देयर और ऑलरेडी गॉन। सैयद ख्वाजा साहब व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू सेंड अ मैसेज। अपने आप बात फ्रेंच हो जाती है, मैसेज से नवी मैसेज। तो can I most welcome, bro? It's Aikido. Acha Aikido. Japanese martial arts. Thayer bhai, I'm really impressed, bhai. I've seen your videos, bhai. Big fan, bhai. Ek message Sheikh Atik bhai ka. Aray Atik bhai, kya solid number hai, bhai? अरे भाई आप तो यार आप तो करोड़ों में खेल सकते हैं इजीली. फरहत भाई कह रहे हैं भाई 90% लोग जब भी ऑफिस जाते हैं वो लोग सिग्नल पर रुकते ही मैसेज करते हैं. डेफिनेटली सबसे पहला काम तो यही है. और क्या कहते हैं तौबा यार खाजा साहब ये कह रहे हैं इरफान भाई मेरी फ्रेंच कैसे लगी सबसे पहले तो इरफान भाई बताए मेरी फ्रेंच कैसे लगी आपको. ब्यूटीफुल व्यू. एक बजे अस्सलाम वालेकुम ब्रदर. मैं तो सिग्नल पर दिखता हूँ दूसरे लोग क्या करते हैं रहते हैं. मैं भी ये देखता हूँ क्योंकि पता है मेरी आदत किसने ख़राब करी है. मैं बताता हूँ आसिफ आलम भाई मैं ऑनेस्टली बताता हूँ. एक शख्स था जो मैं सिग्नल को देखा वो खरबूजा खा रहा था भाई मज़े में खा रहा था. वो दुनिया गई तेल लेने आगे सिग्नल है हरी बत्ती होगी नहीं होगी उसका फ़र्क नहीं पड़ता भाई. तेल प्रिंस भाई कॉल आ रही है शायद. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई.
1: अरे भाई साहब क्या हाल है आपके प्रिंस भाई.
2: अरे बढ़िया मेरे भाई बहुत ही बढ़िया. दो दिन के इंतजार के बाद में आपकी आवाज सुनने मिले तो कैसा लगेगा. मिल रहा है.
1: अरे रे रे रे रे प्रिंस भाई मैं भी फ्रेंच बोल दूंगा. मेरी फ्रेंच बहुत खतरनाक है डर जाओगे आप बोलोगे. तो प्रिंस भाई आप क्या करते हैं सिग्नल पर टाइम पास करने के लिए. व्हाट इज योर फन एक्टिविटी.
2: फन एक्टिविटी आई सर्च पेट्स इन द कार.
1: व्हाट क्या.
2: मैं पेट्स देखता हूँ कोई कार में लेके
1: गाड़ी के अंदर आप पेट्स सुनते भाई. ये तो बड़ा ही यूनिक किस्म का शौक है भाई. ऐसी कितनी ही गाड़ियां जिनके अंदर पेट्स मिलता होगा आपको.
2: मेरी गाड़ी में तो मिल ही जाएगा.
1: अच्छा
2: मैं घूमने के लिए निकलता हूँ.
1: अरे वाह क्या बात है. कितने पेट्स लेके घूमते हैं आप गाड़ी में.
2: जब भी लेके घूमता तब एक को ही लेके निकल सकता हूँ क्योंकि या तो फिर जर्मन को लेके निकलूंगा या फिर एक है मेरे पास बहुत ही स्वीट टाइप ऑफ कैट है डॉल्फिन पर्शियन है.
1: अच्छा
2: उसको लेके निकलता हूँ या तो फिर भाई जब ड्राइवर साहब हमारे गाड़ी चलाते हैं तब मेरे सगर को लेके निकलता हूँ.
1: क्या बात है भाई. ये तो यार तो आप सिग्नल पे आपकी एक्टिविटी है कि दूसरी गाड़ी में देख लूं एक बार ये पैट्स वैट्स है कि नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं इतने आपको गाड़ियां दिखती होंगी जिनमें पैट्स होता होगा.
2: नहीं नहीं बहुत ही रेयर बहुत ही रेयर
1: भाई.
2: एक ये चीज पे एक तो पेट्स इसलिए लेके निकलता हूँ भाई कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगले वाले का व्यू अपनी तरफ कैसा होता है.
1: अरे रे रे रे रे ये दोबारा क्या कहा आपने. काफी डीप बात कह गए.
2: ग्लासेस उतारे और आराम से गाड़ी चलाए या फिर चलवाने लगाए अगर हो तो और आप उस पेट के साथ में बैठ के आप लिटरली आप उसको दुनिया दिखाए दुनिया आपको देखती रहेगी.
1: ये तो बड़ा यूनिक शौक है भाई. कभी इस पर्सपेक्टिव से मैंने कभी सोचा नहीं. तो आप क्या करते हैं खिड़की खोल देते हैं कि आपका पेट बाहर देखते रहे.
2: नहीं नहीं मैं उसको सामने अपने पास बैठा के पूरी सीट कम्प्लीटली पीछे करके.
1: अच्छा
2: एक्सटेंशन है मेरे पास उस पे मैं जर्मन को बैठा देता हूँ. शिवा नाम है उसका.
1: अच्छा भाई अचानक से मेरे मेरे दूसरे गोले की बात लग रही है मुझे. तो कहा आगे वाली सीट बैठा दें. आगे वाली सीट पैसे
2: आगे वाली
1: भाई साहब. वेरी नाइस वेरी नाइस. तो आप इसके अलावा तो आपके पास टाइम पास के लिए ज्यादा टाइम बचता ही नहीं होगा तो आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते होंगे ना. मतलब सो ऑक्यूपाइड.
2: मेरे साथ में पेट्स नहीं होते ना भाई.
1: हाँ
2: तब वैसे तो मुझे पता है लोग नंबर की तरफ ध्यान देते ही रहते होंगे.
1: हाँ
2: समाओ एक और नंबर है जिसकी स्टार्टिंग 914 है. अच्छा. तो उससे भी अक्सर लोग ध्यान देते हैं.
1: हाँ बिल्कुल मैं तो देता हूँ भाई. हाँ बिल्कुल
2: अक्सर लोग देखते ही होंगे.
1: अच्छा आपकी गाड़ी में 974 स्टार्टिंग में.
2: जी.
1: अरे भाई है यार क्या बात है. तो कितने में बेच रहे हैं आप. है?
2: आप ये बताएं कि ऐसा कोई खरीदार है भी.
1: अरे रे रे रे रे भाई इस बात पे तो क्या बात है यार प्रिंस भाई. क्या क्या पंच लाइन मारी है भाई एकदम. मतलब होता ना वो माइकल वो माइक टाइसन वाला बच्चा है मुक्का मारा तेजी से के बताओ खरीदा रह गया. अरे भाई ये तो साउथ का डायलॉग हो गया यार. हिला डाला ना
2: डबिंग वाली मूवी.
1: हाँ डबिंग वाली मूवी है हिला डाला ना.
2: अगर मेरा कभी टाइम पास नहीं होता तो उसमें बहुत ही एकदम वाहियात वाले डायलॉग.
1: यार आप तो मतलब यार अलग अलग प्राणी निकले भाई. मैं अगर बताए मूवी साउथ की बनेगी आपको हीरो रख के मैं डबिंग करूंगा. ठीक है
2: सही है भाई.
1: हाँ वो जो वो लाउड डायलॉग्स होते हैं ना
2: बनानी है.
1: हाँ बनाइए. मैं तो कह रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ. लाउड डायलॉग्स मैं रिकॉर्ड करूंगा. वो आपने देखा हीरो आता बीच में हिला डाला ना वैसा वाला डायलॉग.
2: बहुत ही इतने घटिया तरीके से बोलता है मुझे लगता है कि यही विलन है.
1: पर भाई आपका टाइम पास करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है भाई, माशाल्लाह भाई बहुत बढ़िया।
2: मोस्टली भाई मैंने कई बार एक बार नहीं अपनी गाड़ी को रुकवा के ड्राइवर से और जो पेट्स जो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ना
1: जी जी,
2: उनको अपने हाथ से रोड क्रॉस कराई है। क्योंकि यूजुअली जब मैं देखता हूँ कि बंदे गाड़ी बचाने के लिए किसी की जान ले लेते हैं,
1: तो आप गाड़ी रोक के पेट्स क्रॉस कराते हैं, माशाल्लाह भाई ये तो बहुत ओके अलग चीज।
2: कभी उतर के भी करवाता हूँ, कभी गाड़ी ब्रेक भी कर देता हूँ।
1: अरे
2: डाउन करके
1: क्या बात है यार, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। तो फ्रेंड्स भाई आज आपने फिर से हमें एक डायरेक्शन अलग दे दी है मुझे लगता है ये तो पर्सपेक्टिव नहीं होगा किसी के पास प्रिटी श्योर। क्या बात है
2: भाई, मुझे भाई वो भी तो बेजुबान जानवर है, वो अलग बात है कि उनकी मुंह जुबान है वो अपनी तरह बोल नहीं पाते। बस
1: क्या विचार,
2: कई बार भूख की वजह से, कई बार मौसम की वजह से उनको समझ नहीं आता कि कैसे रोड क्रॉस करें। बहुत ही आप कभी गौर करना इस चीज को, बहुत रेयरली देखने के लिए मिलेगा। एक बार तो एक बंदे को मैंने चेस करके रोका था।
1: अच्छा यार ये तो जी। आप तो धनिया बोल देते होंगे जिंदगी बाप रे बाप।
2: अरे भाई उसने लिटरली एक स्ट्रीट डॉग को हिट कर दिया था बहुत बुरी तरह।
1: अरे रे रे रे, नहीं फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे, तो ये तो गलत है। आई
2: कंडेम रोका था, मैंने ऑलरेडी वायरलेस पे इन्फॉर्म कर दिया था।
1: अरे रे रे भाई साहब
2: आगे ये नंबर की गाड़ी, इसको रोक ले, उससे पहले मैंने ही रोक लिया था।
1: बट प्रिंस भाई कमिंग कमिंग कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये 974 के नंबर कितने ऑफर आ चुके हैं आपके पास ये नंबर खरीदने के? ईमानदारी से बताइएगा, ऑफर तो आए होंगे नहीं आए?
2: आपको लगता है कि मेरा नंबर हर जगह ऐसे ही बटा होगा कि लोग मुझे ऑफर देते रहे?
1: नहीं नहीं, मतलब आसपास होता है ना, जैसे आप कहीं गए तो किसी ने देख लिया, बोला कि यार ये कितना होगा।
2: हाँ दोस्तों में अक्सर होता है।
1: दोस्तों में अब बीडिंग कहाँ तक गई है?
2: देखिए भाई एक सेकेंड हैंड आप रोल्स रॉयस दे सकते
1: हैं। अरे बाप अरे बाप रे बाप, खत्म हो गया भाई आज का शो, खलास खलास, इट्स ओवर नाउ। समझ गया मैं, मिली सब ठीक है।
2: सबसे बड़ी परेशानी मेरी ये है कि मुझे रोल्स रॉयस पसंद नहीं है।
1: अच्छा ये बड़े लोगों की परेशानी है भाई ये बड़े लोगों की परेशानी है।
2: ऑलमोस्ट मुझे ब्रावोस अच्छी लगती है
1: भाई। आप एक आपके लिए एड आया था इंडिया में, उसमें था ऊंचे लोग मुझे पसंद तो वो जरूर से
2: वेरी गुड। मुझे किसी ने दिखाया था, मुझे करेक्टली बंदे का नाम याद नहीं है, मेरा एक शेफ था।
1: अच्छा
2: हमारे घर का।
1: अच्छा
2: वो समहाउ कोई हैदराबाद से ही था शायद।
1: अच्छा
2: तो उसने दिखाया था।
1: वेरी नाइस यार।
2: सर आप इसकी मूवी देख रहे थे ना? मतलब मूवी नहीं देख रहा था भाई, मैं ये बंदे की सीरीज देख रहा था मनोज जी की। तो बोले आप उनका एड देखें,
1: तो
2: भाई मैं लिटरली हंस रहा जब वो न्यूज़पेपर को प्रेस करके लिखा।
1: हाँ नहीं मैं आपको कुछ काफी उन्हीं चीज दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मगर प्रिंस भाई आज की स्टोरी नहीं मिस करनी है आपने, काफी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर है, सो अगर आपके टाइम हो तो सुनिएगा।
2: जरूर जरूर, क्योंकि आप अभी तक भी एक भी बार आप मंडेला इफेक्ट के ऊपर कुछ लेकर नहीं आए हो।
1: किस पे?
2: नहीं ये कोई टॉपिक मंडेला इफेक्ट।
1: हाँ अच्छा ओके ओके, डन डन डन, वेरी गुड पॉइंट, इस पे मैं ढूंढता हूँ। डन हो गया।
2: आप इस पे टॉपिक भी ला सकते हो, आप इस पे स्टोरी भी ला सकते हो।
1: डन डन डन, ऑन इट प्रिंस भाई,
2: क्योंकि मेरी बहुत रिसर्च है इसके ऊपर।
1: ठीक है इसी पे लाते हैं।
2: संभव मैं भी गुजरा हूँ इससे, इसीलिए इससे ज्यादा रिसर्च है।
1: नहीं मैं लाता हूँ इस पे कुछ ना वो ढूंढता हूँ। डन हो गया प्रिंस भाई।
2: जरूर भाई, हम 80s किड हैं तो ऑब्वियसली हमें तो लगता ही है कि हाँ ऐसा हुआ है।
1: जल्द जल्द जल्द लेके आता हूँ फिर मैं। ठीक है भाई, फिर कहानी सुनेगा इंशाल्लाह
2: भाई। और भी मेरे भाई लोग इंतजार में होंगे।
1: डन।
2: और टीचर दीदी ने
1: कल देखिए कल मैं क्या करता हूँ। कल है मेरे पास ऐसा मुद्दा सॉलिड जिसपे उनके पास
2: बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, बहुत चले भाई। आप सब अपना ख्याल रखें,
1: आप भी ख्याल रखें प्रिंस भाई,
2: और खासतौर से आप भी भाई, क्योंकि आप
1: बेहद बेहद बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है
1: प्रिंस भाई। थैंक यू सो मच भाई।
2: जी भाई,
1: ओके भाई,
2: अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जरा मैसेजेस पढ़ दूं मैं जल्दी से, बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं कह रहा था कि सिग्नल पे टाइम पास करने के लिए आप करते क्या हैं? तो मैसेज है हमारी बहन है, उन्होंने मैसेज किया, उनका नाम है फरा, और फरा लिखती हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई। गुड मॉर्निंग बहना, क्या हाल है? मैं एकदम बढ़िया। और कहती हैं यूनिक नंबर कैन ऑल्सो बी फाउंड विद द शेख साहब, ऑफकोर्स। हाउ कैन पीपल लाइक अस पॉसिबली पॉसिबली हैव अ यूनिक नंबर. बहन कोई कोई लकी नंबर डायल हो जाता है कुछ लोगों का. एक मैसेज है, एट द ट्रैफिक सिग्नल आई कीप वॉचिंग विच चाइल्ड इज गेटिंग स्कोल्डेड. कौन से बच्चे को डांट पड़ रही है बहन ये देखते हैं. और आगे लिखते हैं, विच मदर इज टेलिंग हर चाइल्ड ऑफ इन द कार एंड ऑनेस्टली आई एंजॉयड द होल ड्रामा. बिग बॉस की जनता है ना हम सब, देसी जनता तो बिग बॉस वाली जनता है. देन आई टर्न टू माई ओन किड्स एंड से, देख रहे बेटा चुप बैठा करो, बिहेव योर सेल्फ, इधर उधर का मत सोचना, वो देखो दूसरी गाड़ी में मम्मी पिटाई कर रही है उसकी, बिल्कुल वैसी करूंगी बता रही हूँ. तो माय कार नंबर इज, ओहो यूनिक नंबर है आपके पास तो खुद, आपको तो बनते ही नहीं बहन ये कहना. एक मैसेज है, लोगों की शक्लें देखते हैं क्या करें. कह रहे आपकी फ्रेंच बहुत अच्छी है. मुशीर आलम भाई कह रहे हैं, मैं सिग्नल पे बस दूसरों की शक्लें देखता हूँ भाई. एक मैसेज है, हेलो फराह एयर, ऑल हैदराबादीज विल रिलेट, प्लीज से हेलो फराह. हेलो फराह है ये, क्या है हेलो फराह है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मलिक वकास साहब लिखते हैं, 3-2-1 मेरी कार की स्टार्टिंग में है. अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, तो कितने भेज रहे हो भाई. एक मैसेज है, मेरे तो हर सिग्नल पे चेक करता हूँ, कैमरा तो नहीं है, गर्दन घुमा घुमा के देखता हूँ. पैट्स का नाम भी कितने प्यारे हैं, मेरा नंबर प्लेट से भी ज़्यादा. इरफान भाई आपका सबसे बुरा नंबर प्लेट है, आई एम जस्ट सैड भाई, कांट से एनीथिंग. और अलसरान व्हाट्सएप दूसरा गोला है वो जो आपने डिलीट किया है वो मैंने पढ़ लिया. एक मैसेज, साउथ की मूवी में मैनीक्योर दिखाना पड़ेगा प्रिंस भाई के लिए. फराज भाई सब हो जाएगा, पैसा हो सब हो जाएगा. नदीम भाई कहते हैं, प्रिंस भाई मुझे पेट बना लो. भाई अरे भाई. एक वैसे रियाज भाई का कह रहे हैं, प्रिंस भाई का नंबर ब्लॉक कर दे, हम लोगों को गरीबों वाली फीलिंग आती है. अरे ओह अल्लाह. एक मैसेज हो रहा है, अरे भाई मत करो यार. आसिफ आलम कह रहे हैं, भाई बड़े लोगों की थिंकिंग हम गरीब लोग क्या समझेंगे, अलग ही लेवल की शौकीन है. और मैं सलाम कबीर भाई, क्या हाल है भाई, ये दुख का ही नहीं खत्म होता है. फैसल भाई नहीं होगा, चलता रहेगा. कहाँ पहुँच गया मैं. आरिफ अंसारी भाई वालेकुम अस्सलाम, जवान शेख साहब कुछ देर में कॉल करता हूँ. और जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम, भाई मैं कुछ देर में कॉल उठाऊंगा क्योंकि अभी मैसेज बहुत सारे इकट्ठा हो गए. कह रहे मैं सिग्नल पे जब रुकता हूँ ना तो मैं अच्छा वाला नंबर है मैं चेक करता हूँ, कितना फाइन है, कितना स्पीड कैमरा है. अब्दुल भाई ये हुई मिडिल क्लास वाली बात, हाथ में लगी. थैंक यू सो मच भाई. एक मैसेज है, हैविंग अ लिटिल मीडिया

0: सही कुछ है। एक मैसेज है, दो दिन किधर थे बॉस? मालिक घर पे था मालिक, मालिक वो जिस घर पे गया था उन लोगों ने बहुत काम करा, जाने नहीं दिया मुझे। एक मैसेज है, पासपोर्ट भी छीन लिया। अच्छा ये वाला है, ये मुझे पता नहीं भाई, मैं देखूंगा ये। एक मैसेज है, अरे दिस इज़ अ वंडरफुल नंबर, इरफान भाई आपके नंबर की मैथमेटिशियन करके ये मुझे दी है, क्या कहते हैं हमारे सुदीप्तो सर ने, तो मैं ये आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको अच्छा फील होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट लेट मी जस्ट गिव यू, ताकि पता नहीं आपको कैसा फील होगा। ये लो, वेन एवर आई स्टॉप एट ट्रैफिक आई ऑलवेज चेक हु इज पिकिंग देयर नोज। एक कॉल उठा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, के आला कैप्टन साहब।
0: बढ़िया भाई, जमा जहाज बना रखा भाई, सो गो तो आज सवेरे से भाई।
1: सवेर भाजी तुसी जिथे भी जांदे हो
0: सिरा करोने हो
1: चांदे हो।
0: अरे मेरा भाई बढ़िया, भाई बढ़िया तो भाई गाबा जी क्या होता है भाई, सिग्नल पे कैसे टाइम पास करते हो भाई?
1: यहाँ पे तो कबीर भाई टाइम पास करने से भी एक अच्छी चीज मेरे को लगती है।
0: क्या?
1: जब मैं सिग्नल पे रुकता हूँ ना,
0: हाँ,
1: तो मोस्टली आपके बगल में कोई ना कोई बाइक राइडर डिलीवरी वाला जरूर रुका होता है। तो मैं शीशा डाउन करता हूँ, बंदे से सलाम करके एक दो मिनट जितना टाइम सिग्नल बंद होता है बातचीत करके बंदे से, बंदा भी खुश और मैं भी खुश।
0: पता

0: अगर इंडिया में कहीं रेड सिग्नल हो जाए ना, स्पेशली दिल्ली में, तो चलती फिरती दुकानें इतनी आपके पास आ जाती है ना भाई, बंदा बोर ही नहीं हो सकता वहाँ पे।
1: नहीं नहीं, दिल्ली की तो बात ही नहीं है भाई, दिल्ली में तो अगर आप सिग्नल पे नहीं भी हैं तब भी आप सिग्नल पर ही हैं। समझ रहे हो? दिल्ली में सिग्नल की जरूरत नहीं है भाई, सिग्नल पे है ही नहीं जरूरत। वहाँ तो आप गाड़ी ऐसी गुड़गांव ले जाइए आप, गुड़गांव में, और वहाँ पर आपकी गाड़ी वैसी ही सिग्नल पर रहेगी पूरे टाइम, 3-4 घंटे आप सिग्नल पर।
0: स्पेशली कबीर भाई, यार आपने उस जगह की याद दिला दी जिसको बोलते हैं धौला कुआं
1: भाई, धौला कुआं भाई, यहाँ पे खतर में भी धौला कुआं टाइप जगह है आजकल। बन चुकी है एटलीस्ट, इतना ट्रैफिक होने लगा है।
0: वो पीक आवर्स में होती है कबीर भाई।
1: हाँ, हाँ,
0: मगर फिर भी इतना वो सिस्टम नहीं है, एक तरफ से गधा गाड़ी वाला बंदा आ रहा है, एक तरफ
1: नहीं,
0: से
1: वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। एटलीस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना तो चलता है, बट हाँ ऐसा ही है भाई। तो टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए यहाँ पे लोग नंबर नंबर देखते हैं। आप नहीं देखते नंबर?
0: जब एयर नहीं, मैं नहीं नोट करता कभी।
1: क्यों भाई, क्यों ये ऐसा क्यों यार, आप इकलौते बंदे हो नंबर नंबर नहीं देखता काय को?
0: नहीं भाई, मेरे को शौक नहीं है कबीर भाई।
1: अच्छा, कमाल की बात है।
0: जी बिल्कुल,
1: ठीक है, चलो फिर अभी जो है बाकी कॉल भी जल्दी उठाते हैं। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना काबा जी, स्टिक टू वन टॉपिक, ठीक है। तो सिग्नल पे आपका टाइम पास ही रहता है, या तो आप राइडर से बात करते हैं या फिर आप सिद्धू मूसे वाला चलाएंगे,
0: या फिर प्लेलिस्ट में सिद्धू मूसे वाले के सॉन्ग
1: आज चलेगा भाई। सिद्धू मूसे वाला डन हो गया भाई, आज तो मैं चला के रहूंगा। आप वॉल्यूम बढ़ा लो भाई, वॉल्यूम बढ़ा लो, अभी चलेगा भाई। 22 पे रखो भाई, सबसे बढ़िया है वो, 22 पे रखो, अभी आ रहा है भाई सीधा आपके लिए, क्योंकि मेरा भी
0: मन भाई।
1: लव यू मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार।
0: टेक केयर।
1: तो क्या है कि भाई गाना तो चलाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। और मैं कह रहा था सिग्नल पे भाई टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं आप? हाँ जी,
2: हाँ

0: आज कुछ मैसेजेस है मेरे पास, मैं कह रहा था कि आप लाल बत्ती पे जब खड़े होते हैं कतर में कोई भी सिग्नल हो तो आपका टाइम पास क्या रहता है। तहसीन जी ने मुझे मैसेज किया है एंड मैं उनकी बात जो है सुन के डर गया। मैं पता उन्होंने क्या कहा, वो कह रही है जब मैं सिग्नल पे होती हूँ मैं टचअप कर लेती हूँ, उतनी देर में मेकअप ठीक कर लेती हूँ। मैं अंदाज़ा लगा नहीं सकता आपकी कितनी स्पीड होगी यार टचअप करने के लिए, इसके लिए तो बहुत अच्छी स्पीड अच्छी है, तो क्या बात है बहन, आपके लिए मैं ताली बजाना चाहूँगा और साथ में हमारा हूटर डिजर्व करती हैं आप। भाई सिग्नल पे अगर टचअप हो पा रहा है ये तो बहुत कमाल की बात है ये तो। अभी देखो मैं बता दूँ लोग कैसे पलटते हैं, मैं आपको बताऊँ देखो लोग कैसे पलटते हैं। एक हमारे भाई हैं जुबैली कदर अनीस ने लिखा हुआ है, अनीस भाई ने सबसे पहले मुझे मीठा सा गाना भेजा, कतई मीठा भाई, इतना मीठा कि आप जो है मुझे ढूंढ के फिर जो है पीटते। मैंने कहा भाई बहुत मीठा गाना, ये रेडियो पर नहीं चलेगा। अगला मैसेज पता क्या है, चलो बैंगर लगा दो बादशाह का। क्यों पलट गए, जो मैंने गाना सुनो बैंगर की सुनना है, अच्छे है। और तला मैंने मैसेज किया है, एक अपनी फोटो भेजिए महंगी वाली, उसके बाद लिखते हेलीकॉप्टर यही प्ले करना बाकी है। और इरफान भाई ने मुझे मैसेज किया, कह रहे हैं भाई मेरी नंबर प्लेट इतनी ज़्यादा मनहूस है कि पासिंग के वक्त रिजेक्ट हुआ बिकॉज क्या फेड हो गए थे, अफसोस पैसे दे के दोबारा न्यू वाली लिया। रे रे इरफान भाई, मैं आपके लिए मुझे लगता है मैं शाम तक तो मैं इस दर्द में रहूँगा भाई, आई फील सो बैड फॉर यू मैन, काइंड ऑफ नॉट बट आई ऑल्सो डू फील बैड, आई एम कन्फ्यूज। एक मैसेज है, भाई क्या भेजा आपने, ये भी देखता हूँ ये क्या दिखते हो, उसमें क्या दिख रहे हो, ये मैं मुझे क्यों दिख पा रहा है, ये जो आपको दिख रहा है मुझे क्यों नहीं दिख रहा, क्या है ये। एक मैसेज है अरबाज भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कारी मौलाना कबीर साहब, करें सिग्नल पर हम खड़े होते हैं तो पहले तो सिग्नल वालों को मैं खूब सुनाता हूँ कि क्यों बंद कर दिया, अरे ये क्या बात है। और आगे लिखते हैं, और बस सर फोन में लगा रहता हूँ सिग्नल जब बंद होता है, मेरे ऊपर तो 3 बार सिग्नल बंद हो गया खुल गया, और सर मैं मैसेज में ही खड़ा था, पीछे गाड़ी पर खड़े थे वो भी सो रहे थे, मैं भी फोन में लगा हुआ था। बहुत शानदार, पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिग्नल पे खड़ा होता हूँ मैं, फोन में इतना लग जाता हूँ, मैं भी फोन में लगा हुआ, एक बार तो ये पीछे वाला ही फोन में लगा हुआ वो सो रहा है और मैं फोन में लगा हुआ, बहुत बढ़िया। ये अपने जैसे लोग आप तलाश कर लेते हैं, ये टैलेंट है भाई। एक मैसेज है, क्या कह रहे हैं भाई, दिन सेट हो गया, लव यू भाई, थैंक यू सो मच आरिफ अंसारी भाई। और एक मैसेज आया याया भाई का, याया भाई क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई आपको सुनते हैं FM 107 दिल से, अच्छा। और आगे लिखते हैं, वरना बस गरीबों वाली नज़र से अच्छे अच्छे गाड़ियां देखते रहते हैं, लगता है आपने प्रिंस भाई की कॉल नहीं सुनी। याया भाई एक मरतबा प्रिंस भाई की कॉल सुन लेते ना, आपकी लाइफ ऐसे डबल रोटी की तरह हो जाती है, पलट जाती रह गए आप 10 मिनट से रह गए आप एक मैसेज प्रिंस भाई, यार लॉट्स ऑफ लव भाई, आप टॉपिक में जो ऊपर से कहते ना स्वाद अनुसार गिराते हैं नमक, वो वाला काम करते हैं, बहुत बढ़िया भाई। एक मैसेज है, क्या मैसेज है, मैसेज रह गया, टचअप वो एक सिग्नल पर थोड़ी कंप्लीट होता होगा। अरे मेरे अजीज भाई तहसीन बहन वही कह रही हैं, वो सिग्नल पर टचअप कर लेती हैं, आप कह रहे हैं कंप्लीट थोड़ी होता होगा, भाई स्पीड है उनकी जलो नहीं ठीक है और क्या ज्यादा लो अभी इरफान भाई ने बोला था, कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नाक में उंगली करते हैं ट्रैफिक पे, तौबा तौबा तौबा ये मेरे साथ ही है क्या, मतलब ज्यादा खुल जाते हैं मॉर्निंग में इसको तो हम बोल ही सकते हैं दिल की बात, मुझे भी ऐसी लगता है डू आई हैव टू नहीं। मोहम्मद भाई आपका कह रहे हैं नंबर प्लेट इज 9422, अच्छा ये तो बहुत महंगा है फिर, कितने में बेच रहे हैं हम। एक मैसेज है भाई, सिग्नल पर कोई गाड़ी अगर ठुकी रहती है देखता हूँ तो सोचता हूँ कैसे ठुकी होगी अनिश भाई कह रहे हैं मैं गाड़ी को अगर ऐसे टकराया हुआ देखता हूँ सोचता हूँ कैसे, मतलब कैसे लगी होगी, किधर से ये फिजिक्स इधर से आएगी, इतनी स्पीड इतनी वेलोसिटी होगी, फिर इसने देखा नहीं होगा, कॉल आ गई होगी, घरवाली ने कॉल कर दी होगी तभी ठुक गया होगा, यही सोचते रहो सिग्नल पे, बहुत खाली पब्लिक है भाई एक मैसेज है, ये इरशादुल्लाह यूसुफ जई साहब कहते हैं, कबीर भाई अगर इरफान भाई ने गाड़ी दीवार में ठोक दी तो जिम्मेदारी आपकी मैं क्या करूँ, इतना बुरा नंबर है उनका, तो बहुत बुरा नंबर है भाई एक मैसेज है, ये सलवा रोड पर क्या हुआ ट्रैफिक, ये मुझे नहीं पता आप सब फैन कुछ हुआ है कि वहाँ पे, प्लीज़ लेट मी नो। एक मैसेज है, मैं सिग्नल पे ख्यालों में खो जाता हूँ, ओल्ड डेज गुड डेज, क्या बात है क्या बात है, दो ही लोग शरीफ मिले हैं मुझे, गाबा भाई और एक आप, इरफान भाई दूसरे वाले अली, वो कहते हैं सिग्नल पर रुके कबीर भाई का शो मैसेज करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट्स वाले बोर्ड देखता हूँ, आसपास कौन सी दुकान है वो देखता हूँ, टाई नॉट करना, हेयर सेट करना, ये है मेरा भाई, हीरो बनते गाड़ी बैठे हुए। और कह रहे हैं चाय पीता हूँ, लोगों की ड्रेसिंग जज करता हूँ, लास्टली कौन सी गाड़ी साफ है और क्या है जो ओवरटेक करता है और जो नाक में उंगली डाल के कौन ओटर बात खत्म कर दी। एक मैसेज है भाई आपको सुनता हूँ मूड ठीक हो जाता है। न्याज भाई यही करा करें, डॉक्टर भी यही कहता है, बहुत अच्छा नुस्खा है, नानी का बताया हुआ। तला भाई असर है। और एक मैसेज है 2905 2, अरे भाई आपको तो बहुत महंगा नंबर है मोहम्मद भाई, तो भेज दीजिए इसे, फिर हमसे बात नहीं करेंगे, भेज दिया तो। माजिद भाई कहते हैं अगर लंबा सिग्नल हो तो भूख लगती है मुझे, सिग्नल पे मोबाइल मैसेज चेक करता हूँ, नाक में उंगली मैं भी करता हूँ। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला आप लोग अपने अपने जो है ना गाड़ी के नंबर बता दो, आप लोगों की गाड़ी की तरफ मैं देखूंगा ही नहीं भाई, देखूंगा ही नहीं कि माजिद भाई की गाड़ी क्या, उधर देखो माजिद की गाड़ी, शीशे चढ़ाओ, शीशे चढ़ा दो, नहीं नहीं उधर देखने नहीं, वो कह रहे हैं माजिद भाई सलाम करें, अरे करने दो सलाम घर पे जाके कर देंगे, वालेकुम सलाम अभी छोड़ो। एक मैसेज है सर मैं ये दूसरा ये सोचता हूँ कि कोई अगर सिग्नल से निकल जाए ये मेरा कैमरा उस पर फ्लैश करे तो बहुत अच्छा सीन हो, तो वाह वाह वाह ये तो मैं भी करता हूँ। एक मैसेज है बनारस वाले आरिफ खान मैं सिग्नल पर दूसरी गाड़ियों का हवा देखता हूँ, यार ये तो बहुत ही अजीब पास टाइम है आपका, दूसरी गाड़ियों के टायर की हवा देखते हैं आप ये कैसा शौक है भाई, ये कैसा शौक है। और एक मैसेज है बहन को टचअप जैसे सिग्नल पे विंडशील्ड का साफ होना है वाटर स्पीड, प्रिंस भाई आपको ये इट इज समथिंग वी शुड अप्रिशिएट भाई, तो करना कोई आसान काम थोड़ी है। और रिजवान भाई आपकी गाड़ी का नंबर भी सही है, थोड़ा इधर उधर होते डिजिट तो आप भी करोड़पति थे भाई, पता नहीं हो भी मुझे क्या पता भाई, बताएंगे थोड़ी इवेंसे कोई बंदा है जो गाड़ी में क्या रहता है समझा नहीं मैं। इवेंसे कबीर भाई यूजुअली सिग्नल बंद होने के टाइम पर सिंपली वेट करता हूँ, और जब भी कुछ काम होता है सिग्नल आने का वेट करता हूँ, देन सिग्नल ग्रीन मिलते हैं। आजाद भाई आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड चल रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं नाक में उंगली हमारा टचअप है, आई मीन मर्दों का टचअप। माजिद भाई सॉरी माजिद भाई आई हैव टू डिफर, अगर आप सही भी हैं तो मैं मानूंगा नहीं आज। नवेद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई पार्किंग मिल जाए दुआ करता हूँ, अरे मेरा भाई मासूम भाई मेरा इतना सा इधर आओ छोटा बाबू मिल जाएगी पार्किंग, घबराते रहिए। वैसे आप सिग्नल पर नाक साफ करने से पहले कबीर भाई का लिसनर नहीं देख रहा है तो रेडियो पर फेमस कर देगा, हाई क्या मेरा भाई क्या कह गए ओके ओके इरफान अली भाई कहते हैं फ्रॉम छोटा इरफान टू बड़ा इरफान भाई गाड़ी का नंबर प्लेट, दिल से बुरा लगता है भाई प्लीज़ भाई सब एक दूसरे के पास ले रहे भाई। वैसे गुड मॉर्निंग कबीर भाई मुझे उन लोगों से नफरत है जो स्पीड कैमरा के आने से 5 मिनट पहले स्पीड 80 कर लेते हैं, भाई दो हूटर ये इंटू टू कर लीजिए क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं पता है उन लोगों से मुझे लिटरली आपको नफरत होती है, मुझे जलन होती है कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं, यार ये कैसे कर लेते हैं, ये आते बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर सिविल आते हैं गाड़ी को, यार मैं सोचता हूँ ये टैलेंट है, दिस इज अनदर टैलेंट, और सिग्नल पे मैं देखता हूँ यार क्या टैलेंटेड बंदा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट की नींद ले लेता हूँ, ये 2 मिनट की नींद खींच लेते हैं रियाज भाई कह रहे भाई आपके सवाल के आंसर मैं रेड लाइट पर गाड़ी के नंबर प्लेट देखता हूँ, अरे भाई क्या करें नियाज भाई दुनिया ऐसी है मेरा भाई क्या कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं फरहत भाई, भाई आज क्या हो गया है सब लोग के नाक क्यों साफ कर रहे हैं मैं इन सबकी गाड़ियों के नंबर प्लेट लूंगा फरहत भाई, जितने भी लोगों ने नाक वाला मैसेज किया ना एक की तरफ नहीं देखूंगा मैं, भाग जाऊंगा। अरमान भाई कह रहे हैं मैं तो सिग्नल पर दोहा वाले कबीर को मैसेज करता हूँ, बहुत प्यार भाई को भाई बहुत प्यार दिल से भाई दिल से। एक मैसेज है आज क्या प्रिंस भाई को मेरी तरफ से मुतवज्जे कर दीजिए, क्या करना है नफरत क्यों भाई, इट्स आर पॉलिसी आई डू दैट, स्पीड कम के कर लेना बिफोर सिग्नल, आई एम टैलेंटेड आल्सो आई अप्रिशिएट बट नंबर बहुत बुरा यार, तौबा तौबा यार इरफान भाई जो भी है भाई इरफान भाई को मुझे चढ़ूंगा, इरफान भाई अच्छी बात भी करें बोलूँगा, इरफान भाई सब अच्छा है नंबर बहुत बुरा भाई तौबा तौबा तौबा भाई बुरा लगता है भाई दिल से बुरा लगता है एक मैसेज है व्हेन आई स्टॉप एट द सिग्नल आई वॉच सोशल मीडिया अपडेट, बेटे ऐसा है किसी दिन अगर कैमरे ने अपडेट ले ली ना आपकी दिक्कत हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और कमाल भाई कह रहे हैं, कल मैं सिग्नल पर, उस सिग्नल से 17 गाड़ी सऊदीया से निकली, 2 कुवैती गाड़ी, 1 दुबई की गाड़ी क्रॉस हुई। कमाल भाई मुझे लग रहा है आप जोश जोश में बॉर्डर क्रॉस कर गए, इतनी सारी गाड़ियाँ बाहर की। एक मैसेज है, मैं सिग्नल पर FM 107 सुनता हूँ, जब अच्छा नहीं लग रहा होता तो गाड़ियाँ और लोगों की शक्ल देखता रहता हूँ, जिसका शक्ल अच्छा नहीं लगता उसके टायर की तरफ देखता हूँ, ड्राइवर को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ये अच्छा था, कह रहा लोगों को देखता हूँ, अगर मुझे शक्ल अच्छी नहीं लगी तो टायर की तरफ देखता हूँ, फिर ड्राइवर टेंशन में जाता, ये साइड वाला गाड़ी के टायर क्यों दिख रहा है। आगे लिखते हैं, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा लुक दिया कि एक ड्राइवर नहीं की तरफ, वो लिटरली फास्ट लेन पे गाड़ी रुक के चेक करने लगा, पीछे से हॉर्न की बारिश होने लगी। मैं सीधा चला गया। ये अलग तरीका निकाला है इन्होंने भाई, ये अलग तरीका निकाला। कह रहे भाई, जो बहन ने बताया कि टचअप करती हैं, सोचो कि ये लड़कियां एक सिग्नल में एक जैसे और दूसरे में अलग क्यों। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था। एक मैसेज है याजा भाई का, भाई ये लोग जो नाक में उंगली करते हैं सिग्नल पर, तो क्या ये सुबह की जनता जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। एक मैसेज है, मेरे साथ क्या, मेरे साथ आज हुआ, 120 पे अच्छा गाड़ी थी और 140 जा रहे थे फर्स्ट लेन में, सडनली एक लेडी फर्स्ट लाइन में आई, 100 कर ली गाड़ी की स्पीड, और भाई ये तो तकलीफ हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ मेरे अजीज़ भाई। एक मैसेज है, कार रिप्लेसमेंट चेक करवाता हूँ पोल्स पे, मत किया करो बेटे, ये अच्छी बात नहीं है। और एक जीशान भाई ने मुझे मैसेज किया, पढ़ता हूँ, गाड़ी साफ करता, क्या गाड़ी सफाई करता रहता है ना, क्या मतलब समझा नहीं मैं। अब्दुल रऊफ भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई। और एक भाई ने कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओ भाई साहब, ये आपकी गाड़ी का नंबर है, कम भाई, बहुत बहुत है ना आपका नंबर, तो कम भाई का नंबर बहुत है। चलो आप कहानी की तरफ मैं बढ़ाऊँ, क्योंकि हमने बहुत टाइम पास कर लिया, टॉपिक ऐसा था भाई, मजा आ गया भाई। ये सब जनता के लिए, सुबह की पूरी ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा, मजे करा देते हो यार आप। खो गया था पता है टॉपिक में आज, मैं कसम से खो गया था मैं आज। तो अब मैं कहानी की तरफ बढ़ूंगा सिर्फ एक गाने के बाद, एंड लिटरली लव्ड इट भाई, मजा आ गया आज के टॉपिक में मुझे। आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आया जितना मुझे आया है। और एक गाने के बाद मिल रहा है, आज की कहानी इज क्वाइट स्पेशल एंड आपको मजा भी जरूर आएगा। एक गाने के बाद मिलते हैं, एंड मुझे बताइएगा आज के टॉपिक में आपको मजा आया कि नहीं आया, मुझे बहुत आया। एंड इरफान भाई, भाई नंबर के लिए बुरा लगता है भाई, सॉरी भाई, बहुत बुरा नंबर है भाई।
1: मन देवे ना तू
0: भड़क रहा छोरी, भाई साहब इसके बाद आ रही कहानी बढ़ियाली, मौज करा देंगे
1: तेरा दमन बामन गजियाड़ा।
0: ठीक है भाई साहब, मैसेज मुसेज कर देना जब लाल बत्ती आ जाए, ठीक है, 666-22107।

हाँ भाई साहब, 7:44 हो लिए भाई, और जिस गाड़ी का इसमें जिक्र है ना, वाह गाड़ी में बैठ के आपका भाई देगा पोज बढ़िया मॉडल वाले, पीछे लिखा होगा जाट बॉयज भाई। पर आज बहुत मजा आया, सुबह से जितनी हमने बातें करी हैं बहुत मजा आया, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। संडे की शुरुआत इससे बेहतर हो नहीं सकती, सो थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं वो नकली वाली तालियां नहीं बजाऊंगा, साउंड इफेक्ट वाली नेचुरल तालियां भाई, बहुत बढ़िया यार, क्या ऑडियंस है, क्या ऑडियंस है सुबह वाली। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव भाई, बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों को। अब जरा आज की कहानी की तरफ बढ़ेंगे, एंड आज का जो किस्सा है इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज एवरी स्टोरी इज ट्रू। शुरू करें ओके, तो फिर वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। हाँ जी, तो जो आज का किस्सा है ना, ये ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा इस किस्से में, बिकॉज यू हैव टू लाइक फील इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ज्यादा गहराई से समझ में आएगी। तो आज के किस्से को शुरू करते हैं, ले जाता हूं मैं आपको 1978 में। जनवरी का महीना था, साल अभी शुरू हुआ था, लोग अलग अलग जगहों पे जश्न मना रहे थे न्यूयॉर्क का। उस टाइम पे वैसे भी लोगों के पास फोन्स तो थे नहीं, तो जो न्यूयॉर्क का सेलिब्रेशन था वो पूरे 10 दिन तक चलता था, अभी भी चलता है बट नॉट दैट मच, लोग भूल जाते हैं। जब 31 दिसंबर पास ऑन हुआ, बनाया न्यू ईयर, सब खत्म है ना, खत्म हो गई बात। बट बैक इन द डे लोग इस जश्न को और मनाते थे, बहुत शौक से मनाते थे, चाहे वो कोई सा भी मुल्क हो, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। आपको याद है हम और आप भी एक्साइटेड रहते थे कि क्या होगा, क्या स्पेशल आ रहा होगा टीवी पे, अगर उस टाइम पे टीवी थे। बट बस वैसा ही माहौल था, ये जगह थी इंग्लैंड और मौसम बड़ा ही खूबसूरत था इस वक्त। एक घर में, और काफी मॉडेस्ट होम, एक खातून थी जिनका नाम था जेनेट विलियम्स। जेनेट और उनके हस्बैंड पॉल जो थे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे, और घर में काफी सारा डेकोरेशन था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेकोरेशन था, नॉट अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन, लेकिन वो जेनेट की तरफ से था क्योंकि इनकी एक बेटी थी चंद महीनों की, और उसके लिए जेनेट बहुत ज़्यादा ही केयरफुल थी, बहुत ज़्यादा केयरफुल कि मेरी बच्ची जो है वो फर्श पे ना रेंगे। तो फर्श पर उन्होंने लिटरली थर्माकोल की लेयरिंग और अलग अलग मटेरियल की लेयरिंग कर रखी थी, नहीं नहीं नहीं बहुत नाजुक पैर हैं इसके, इधर ना पड़ जाएं उधर ना पड़ जाएं। तो शी जस्ट वॉन्टेड टू बी सुपर सुपर केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। और लोग कहते थे जेनेट से कि जेनेट यार कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं, दिस इज टू मच, थोड़ा सांस लेने दो उसे, बच्चा है, इट्स ओके। एंड बैक इन द डे कोई ऐसे सोचे, अभी तो मैं समझ सकता हूँ कि लोग थोड़े हाई फाई हो चुके हैं, लोग ये सब सोचते में, पर सब समझ रहे, लेट 70s में इतनी ओवर प्रोटेक्टिव ममता थी जेनेट की, और लोग समझाते थे, इवन उनके हस्बैंड पॉल भी कहते थे कि अरे जेनेट ये थोड़ा ज्यादा नहीं कर रही तू, पर जेनेट नहीं मानती थी। नहीं, इवन जो इनके फैमिली डॉक्टर थे और उनमें से एक पीडियाट्रिशियन थे, उनका भी घर आना जाना था, और वो हमेशा वो जेनेट को बोलते थे, जेनेट ये थोड़ा ज़्यादा कर रही हैं, मतलब इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा होगा, थोड़ा सा गिरेगा पड़ेगा, ठीक है, लेट इट बी। पर जेनेट तो ना ना ना ना ना। तो हुआ ये, इस 5 जनवरी की शाम को सेलिब्रेशन जारी था और रात को पार्टी होने वाली थी। पॉल जो थे वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, और जेनेट जो थी वो इस वक्त अपनी बेटी को खाना वाना खिला रही थी। बेटी का नाम था लीसा, तो लीसा को खाना वाना खिला रही थी वो, और खाना खिलाने के बाद उनको लगा अभी से सुकून आ चुका है, तो उन्होंने उसे क्रिब में अच्छे से बिठा दिया, और उसके बाद वो चली गई किचन में तैयारी करने के लिए। किचन से काम वाम थोड़ा निपटा के, खाना वाना चढ़ा के, वो वापस आई लीसा को देखने के लिए। जब वो वापस आई तो वो बहुत डर गई उसे देख के, क्योंकि उनकी बेटी जो कुछ महीनों की ही थी
उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रे हो रहा है, कुछ चीज उसके गले में फंस रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर। और जेनेट को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, किसके पास जाएं। वो चिल्लाई जोर से, पॉल पॉल जल्दी जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। और पॉल जो था वो भाग के आया, उन्होंने देखा कि उनकी 3 महीने की बेटी जो लीसा है वो सांस नहीं ले पा रही शायद। एंड दे ट्राइड एवरीथिंग, माँ बाप होने के नाते उनके लिए एक तो ये बहुत हॉन्टिंग था क्योंकि उनका पहला बच्चा, और फिर सामने ये चीज़ हो रही थी, तो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि इस टाइम हम क्या करें। और वो चोकिंग साउंड जो आती है वो आ रही थी, तो गले में डेफिनेटली कुछ फंस गया था, एक किस्म का फंदा लग रहा था। एंड बहुत जेनेट को गुस्सा आ रहा था कि वो किचन में क्यों चले गई काम करने के लिए, उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए था, या लीसा को अपने साथ किचन में ले जाती, तो वो भी रिग्रेट साथ में चल रहा था। एंड पॉल ने कोशिश करी कि भाई वो पेट थपथपाएं, थोड़ा सहलाएं, हो सकता है जो गले में फंसा है वो बाहर निकला है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में थे। उन्होंने कहा ठीक है काम करते हैं, हम अभी के अभी हॉस्पिटल जाते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल करीब था, इतना करीब कि लिटरली इनको बस रोड क्रॉस करना था। इनकी खुशनसीबी थी कि इनका घर बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही था, सो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। तो जल्दी जल्दी ये लोग दोनों एकदम पैनिक, रोते चीखते हुए अपने घर से बाहर निकले। जितना ट्रैफिक था वो सारा का सारा रुक गया, लोग जितने भी सड़क पे चल रहे थे इस वक्त, आधे लोग सेलिब्रेशन मोड में, वो सब देख रहे थे इस कपल को क्या हो गया, और बच्ची को लेके भाग रहे हैं रोते हुए। रोड क्रॉस करके ये सीधा हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे, और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे, सेंट हेलेंस हेलेंस ये हॉस्पिटल का नाम, इसके अंदर पहुंचे तो चिल्लाना शुरू। पॉल ने एंट्री करते के साथ ही डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर हर जगह आवाज लगाई। एंड उसके बाद जो डॉक्टर से ऑफकोर्स भागते हुए आए, एक नर्स भागते हुए आई, उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है लीसा वो सांस नहीं ले रही है। एवरीबडी वॉज स्केयर्ड, और वो बता भी नहीं पा रही थी जेनेट के उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। उन्होंने बताया कि बस मैं थोड़ी देर के लिए किचन की तरफ गई थी और पता नहीं क्या हुआ है, चोकिंग साउंड आ रही थी, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। नर्स और डॉक्टर ने कोई दूसरा सवाल पूछा भी नहीं, उन्होंने बस सीधा लीसा को अपनी गोद में लिया एंड वो भागे लिटरली एग्जाम रूम की तरफ। माँ बाप दोनों पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे थे उस टाइम पे। ऑब्वियसली सब पैनिक कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने जो उस टाइम पे थे मौजूद, उन्होंने बोला देखिए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गले में कुछ फंसा हुआ है, खाना है, खाने के साथ कुछ है, वी डोंट नो, बट देर इज समथिंग, अब प्लीज प्लीज प्लीज काम डाउन बैठिए आप। एंड फिर डॉक्टर ने वही किया जो अमूमन ये ट्रेनिंग में माँ बाप ने माँ बाप उतरे सिखाया जाता है, वही डॉक्टर ने किया। उन्होंने लीसा को अपने हाथ में लिया, उसे उसकी पीठ को सहलाने की कोशिश करी, थोड़ा प्रेशर दिया पीठ पे, कोशिश कर रहे थे कि शायद ये जो फंसा हुआ है गले में, जो चोकिंग हो रही है वो ठीक हो जाए और सांस ले सके वापस वो। इट वॉज नॉट हैपनिंग, और डॉक्टर्स पैनिक कर रहे हैं कि हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। एंड बाहर पॉल और जेनेट दोनों के दोनों झांक रहे थे एग्जाम रूम में, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर आती जाती नर्स से पूछ रहे प्लीज चेक कीजिए प्लीज चेक कीजिए, एंड नर्सेज वर लाइक प्लीज आपको बैठना होगा प्लीज काम डाउन, एंड ये पूरा केओस चल रहा था। फिर उस एग्जाम रूम की उस जरा सी विंडो पे से जेनेट ने देखा कि डॉक्टर्स ने कोशिश करना बंद कर दिया है, शायद उनकी बेटी सांस ले रही है, पर उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स ज्यादा खास खुश नजर नहीं आ रहे। उनमें से एक डॉक्टर भाग के बाहर आया और संभला देखिए इट्स अ वेरी टफ डिसीजन, अभी हम उसको एग्जामिनेशन रूम में हमने रखा है उसे, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, वी डोंट हैव द राइट इक्विपमेंट्स, हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम पूरी तरह से इलाज कर सकें, प्लीज़ आप समझिए इस बात को, हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसे तुरंत। और साथ साथ डॉक्टर्स के साइड में जो लोग थे वो जो स्टाफ थे वो दे कॉलिंग द एम्बुलेंस के एम्बुलेंस जल्दी से आए, दे कैन टेक हर टू द नियरेस्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। एंड डॉक्टर अभी ठीक से कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर इतना था कि क्लॉक वॉज टिकिंग, बहुत कम टाइम रह गया, डॉक्टर के बात करने के तरीके से वो पता लग रहा था, एंड वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। जेनेट पूछी डॉक्टर प्लीज बताइए अभी क्या कंडीशन, डॉक्टर ने बोला देखिए अभी कोई सवाल नहीं, वी हैव टू मूव हर राइट नाउ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमें ले जाना पड़ेगा अभी के अभी। और ये खबर जो थी ये डायरेक्ट की गई, ये मैसेज जिसे किया गया, वो ड्राइवर थे डेविड लैम करके उनका नाम था, डेविड साहब जो थे वो लेकर आए अपनी गाड़ी, जो एम्बुलेंस थी
बहुत स्पीड अप करके लेके आए, एंड उन्हें उस टाइम पता नहीं था कि क्या कंडीशन है, क्या पेशेंट है, किधर जाना है. फिर उन्हें बताया गया कि डेविड लिसन टू मी रियली केयरफुली, इस बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तुम्हें जल्दी पहुंचना पड़ेगा. एक उन्हें एड्रेस जो उन्हें ऑब्वियसली पता चले हॉस्पिटल का, वहां पे तो मिले जाना पड़ेगा. अब डेविड ऑब्वियसली उसके घर में भी उसकी एक बेटी थी, एंड डेविड को जब ये पता लगा कि कुछ महीनों की ही हुई है लीजा एंड वो उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, टाइम बहुत कम है, तो डेविड वॉज लाइक मैं पहुंचा के रहूंगा. एंड डेविड ने लिटरली जो एम्बुलेंस के शीशे होते हैं नीचे गिराया, एंड वो वहां से निकले. डॉक्टर की उन्हें बात याद थी कि स्किन जो है, जो स्किन है लीजा की, इट्स टर्निंग ग्रे. और एक बात जो वो कह नहीं पा रहे थे वो ये थी कि शायद हम नहीं बचा पाएंगे. लेकिन डेविड को जब बताया, डेविड ने कहा नहीं मैं टाइम पे पहुंचाऊंगा. शीशे नीचे करके चिल्लाता हुआ डेविड एम्बुलेंस को लेके जा रहा था, चिल्लाता हुआ लिटरली, हटो हटो सामने से, हटो, गिव वे. और वो ऐसा लग रहा था कि अभी कहीं भी ले आ सकता है अभी एम्बुलेंस को, बहुत स्पीड से निकल रहा था. ही वॉज नॉट केयरिंग एट ऑल कि सामने कौन है, कोई बात नहीं, कोई रस्ते में आया तो आया, अभी तो गाड़ी उसे पहुंचानी है बस जैसे भी. तो फुल स्पीड से जा रहा था, इंटरसेक्शन आए, रेड लाइट आए, इट डज नॉट मैटर. मगर वो दोनों तरफ देख के चिल्लाता हुआ हटो हटो हटो हटो आगे बढ़ता चला जा रहा था. फिर एक टर्न आया और टर्न पे उसने देखा कि टर्न जैसी आने वाला था, अप्रोच कर रहा था, वहां पे लाल सिग्नल हो गया. अब दूसरी तरफ से भी ट्रैफिक चालू हो चुका था. अब वो कंफ्यूज हो गया, अभी वो स्पीड से निकाल नहीं सकता, कितने लोगों को रोक लेगा वो चिल्ला के. और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा, क्या करूं. और अभी एम्बुलेंस लिटरली खड़ी हुई है, बाकी सबने रास्ता दे दिया है, एंड द फर्स्ट कार, ये जो एम्बुलेंस की है, इट वॉज नॉट अ वैन, इट वॉज अ कार बेसिकली, वो खड़ी हुई है. और अभी वो भागने की तैयारी पर कैसे भागे, एक साइड से सिग्नल खुला हुआ है और गाड़ियां जाए जा रही हैं. और डेविड अपना दिमाग लगा रहा था, नहीं आई हैव टू बी क्विक, मुझे जल्दी पहुंचना है. जैसे होता ना कि आपको निशाना लगाना है, एक डार्ट फेंक के मारना है कि बस ये निशाने पे लगना ही चाहिए, दिस इज द लास्ट चांस. मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मुझे कैसे भी निकलना पड़ेगा. एंड अपने दिमाग में डेविड ये सोच रहा था कि एम्बुलेंस, क्योंकि लाइट्स भी ऑन है, तो मैं अगर जल्दी भगाऊंगा तो एम्बुलेंस की शायद सिग्नल को देख के लोग अपनी गाड़ियां रोक देंगे और मैं निकल जाऊंगा, तो मुझे स्पीड दे देनी चाहिए. ये उसके दिमाग में चल रहा था. तो विद इन सेकेंड, ये सब कुछ जो आपको बता रहा हूं, ये विद इन वन मिनट के अंदर अंदर हुआ है. उसने इधर देखा, उधर देखा, उसने एक्सीलेटर पे पांव दबाया और गाड़ी को भगाया. दूसरे सिग्नल से जो आने वाली गाड़ी थी उनकी भी अच्छी खासी स्पीड थी, और वही हुआ जिसका डर था. एक लाउड बैंग आवाज आई मेटल्स की टकराने की. अब साथ में जब एम्बुलेंस में ले जा रहे थे डेविड लीसा को, इस बच्ची को, तो साथ में माँ बाप नहीं थे. जेनेट और पॉल को बता दिया गया था कि आप एक कैब लेकर पहुंचिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, डायरेक्टली वहीं पे मिलते हैं. तो 20 मिनट बाद जेनेट और पॉल कैब में पहुंच चुके थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और वहाँ पे वो रिसेप्शन एरिया पे गए और बहुत पैनिक मोड में थे. एंड वहाँ पे पूछने लगे वो रिसेप्शनिस्ट से, बताइए वो हमारी बेटी लीसा यहाँ पर पहुँची क्या, यहाँ पर पहुँची क्या. एंड रिसेप्शनिस्ट ने नर्स को बुलाया, नर्स वहाँ पर आई, एंड नर्स ने कॉल लगा के पूछा क्या अपडेट है, किधर है एम्बुलेंस. एंड काफ़ी यंग नर्स थी, एंड शी स्टार्टिंग सॉर्ट ऑफ पैनिकिंग, एंड रो आंसू हो चुकी थी, वो बस अभी रो देगी. एंड उसने बड़ी मुश्किल से, एंड बड़ा मुश्किल होता भी होगा नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए ऐसी खबरें बताना किसी को भी, और इनके लिए भी था, शी वॉज अ यंग नर्स. उन्होंने बोला सर मैम एक्चुअली एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया. जस्ट इमेजिन जेनेट और पॉल के दिल पे क्या गुजरी होगी ये सुनने के बाद, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो चुका है. उन्होंने बताया सर एक्चुअली मैं एम्बुलेंस जो है, बताया जा रहा है कि वो जा रही थी सिग्नल क्रॉस कर रही थी, एक गाड़ी वाला वो टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाया, समथिंग हैपन, वो दूसरी गाड़ी टकराई एंड एम्बुलेंस घूमी और उसके बाद एक होटल के साइड में जाके बुरी तरह टकराई. जेनेट और पॉल ने जब ये सुना, जेनेट उसी टाइम बेहोश हो गई, शी कुड नॉट टेक इट. मतलब होता ना कि इससे बुरा तो क्या होगा, ये वो वाला बुरा था, क्या इससे बुरा भी हो सकता है, ये वो वाला बुरा था.
मगर फिर 25 मिनट के बाद, तकरीबन आधा घंटा बीत जाने के बाद, नर्स एक दूसरी अपडेट लेके आई इन दोनों के पास, पॉल और जेनेट। जेनेट जो ऑब्वियसली अभी एडमिट हो चुकी थी क्योंकि उनकी हालत नहीं थी, वो होश में आ रही थी। पॉल रोए जा रहे थे, उनके पास आके नर्स ने बोला कि एक अपडेट आई है सर, आपकी बेटी की जान बच गई है। एंड पॉल वॉज कन्फ्यूज, मतलब ऑब्वियसली वो खुश था मगर वो कन्फ्यूज भी था। जान बच गई? तो बोली यस, वो जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से आपकी बेटी की जान बच गई। तो बोला एक्सीडेंट की वजह से बेटी की जान बच गई है? तो हुआ दरअसल ये, जो एम्बुलेंस गई और टकराई उससे, गाड़ी एम्बुलेंस पूरी तरह से घूमी, लिटरली घूमी और टकराई एक होटल के साइड में। ये इतना डेडली इम्पैक्ट था, बहुत भारी इम्पैक्ट था, और इस इम्पैक्ट की वजह से, जोर की वजह से एक परफेक्ट चीज हुई। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं हाइमिक मैन्यूवर। तो जैसी गाड़ी टकराई वैन में, इस एम्बुलेंस में, गाड़ी में लीसा थी, उसके गले में जो कुछ भी फंसा था वो इस झटके से एकदम से बाहर आ गया, एंड वो सांस फाइनली लेने लगी। शी लिटरली सर्वाइव्ड, कोई उसे चोट नहीं आई, कोई भी चोट नहीं आई, Completely cured. In fact, ambulance चलाने वाले David Lamb, जिनकी कोई नियत नहीं थी traffic की, वो तो बच्ची को बचाने के लिए निकला था, वो भी एकदम safe था. He also survived. जहां वो टकराए किसी को कोई injury नहीं आई, and everybody walked away safely. लीसा की जान जो शायद हॉस्पिटल भी नहीं बचा पाते, या हॉस्पिटल एक पिछला नहीं बचा पाया, वो एक हादसे ने बचा ली, which turned out to be a national news, you know. ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम भेज तो रहे हैं, बट इंटरनली उन्हें खुद पता था कि शायद वहाँ पहुँच के भी लोग टाइम पे बचा नहीं पाएंगे इस बच्ची को, क्योंकि एक तो चंद महीने की है और शी वॉज टर्निंग ग्रे ऑलरेडी, तो सांस ऑलरेडी नहीं आ रही थी, बट ये लास्ट अटैम्प्ट था। मगर दैट इम्पैक्ट, वो जो हादसा था, दैट एक्सीडेंट, इट चेंज्ड एवरीथिंग। मगर कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। जब लीसा को बचा लिया गया, ऑब्वियसली वो देखना चाहते थे कि क्या था क्या नहीं था, जो गले में इतना फंसा हुआ था कि निकल ही नहीं पा रहा था। तो दे रियलाइज कि थर्माकोल का मटेरियल था जो उनकी बच्ची के हाथ में था, जो उन्होंने नोटिस नहीं किया। और दूसरी चीज़, उन्होंने जब खिलाया उसे तो वो खाने के बाद वो शायद उसने क्रिब में अपने मुँह में शायद फंसा लिया था, एंड उसकी वजह से वो फंस गया एंड वो चोक करने लगी।

और वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उनमें से एक डॉक्टर और डॉक्टर थे मिस्टर नेमन नाम था उनका। डॉक्टर नेमन साहब ने जेनेट से कहा, इनफैक्ट उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया तमाम माँ बाप के लिए जो भी लंदन में रहते हैं उस टाइम पर। उन्होंने बोला देखिए हम समझते हैं कि जो भी नए माँ बाप हैं वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं हो जाना चाहिए कि आप उन डिटेल्स को मिस कर जाएं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं आप, जैसे जेनेट के केस में क्या था कि जेनेट इतनी ओवर प्रोटेक्टिव ममता दिखा चुकी थी कि वो थर्माकोल का फर्श लगा फर्श पे थर्माकोल लगा दिया, इधर वो लगा दिया, इधर वो लगा दिया, बट शी फॉरगॉट कि एंड ऑफ द डे वो बच्ची है, उसके हाथ में अगर यही फ्लोर का कुछ पार्टिकल या कुछ भी फंस गया तो वो उसके गले में भी अटक सकता है। वहाँ तक सोच नहीं जा रही थी जेनेट, क्योंकि जेनेट ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टिव मॉम थी, नहीं आई मीन शी इज़ नॉट अ विलन, मगर इतना ज़्यादा भी थोड़ा भारी पड़ जाता है। दिस वॉज द स्टोरी of Lisa and right now she survived, so सब बढ़िया रहा, भला चंगा रहा। एंड लीसा ने लेटर ऑन जब बड़ी हो गई तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में ऑब्वियसली उन्हें कुछ याद तो नहीं था, मगर उनके इर्द गिर्द का सबसे बड़ा किस्सा उनकी ज़िंदगी का यही रहा। एंड ये थी कहानी जो है अब आपके हवाले। 666-22-107 666-22-107 डू लेट मी नो कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, और मैं इंतज़ार करूँगा आपके मैसेजेस का। प्लीज़ Let me know, okay? जाना आपने नहीं, बेस्ट जगह पर है, आपको पता ही है। Stay tuned.

0: कम और ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, ये अल रायान की तरफ होते हुए जा रहे हैं। एंड किधर का एरिया है भाई, कौन सा एरिया, एजुकेशन इंटरसेक्शन की तरफ। ओके यहाँ बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ है। यूसुफ भाई कहते हैं कबीर कोई भी माँ बाप चाहे नए हो पुराने, अपनी रात को धक्का भी लगे तकलीफ होती है, पेरेंट्स की जान निकलती है। हाँ वो तो ठीक है, बट कहानी आपने सुनी, कहानी में क्या था आपने सुना यूसुफ भाई। एक मैसेज है कलीम पठान, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, मैं नहीं सुन पाया, बहुत सैड फील कर रहा हूँ आपके लिए। एक कॉल आ रही है जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी मेरा भाई अब बताइए कैसे हैं आप।
1: आपकी आपकी स्टोरी सुन के है ना मुझे कई चीजें याद आ गई, तो मैंने कहा यार नहीं इनको बताना चाहिए,
0: प्लीज बताइए।
1: एक्चुअल में
0: बताइए,
1: जैसे होता नहीं है कि कोई भी चीज हो इंतदाल पसंद अगर हो तो वो अच्छी होती है, मोतजिल यानी मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम, केयरलेस भी ना हो इतना ज्यादा भी नहीं कि अब वो
0: बीच का रास्ता होना चाहिए। करेक्ट, हाँ
1: हाँ होना ऐसा चाहिए कि ठीक है। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार हो जाते थे ना तो दवा वगैरह उनकी जब आती थी हॉस्पिटल से तो आपको भी पता है, आप शायद या नहीं पता तो कुछ दिन में हो ही जाएगा इंशाल्लाह,
0: इंशाल्लाह
1: अल्लाह करे जल्दी हो जाए। तो बच्चों को दवा पिलाने पर बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, जल्दी मुंह नहीं खोलते। तो मैं अपनी मोहतरमा से देखा था, कई बार देखा मैंने, वो मुंह ऐसे जोर से पकड़ती थी कि मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता था, एक उंगली मुंह में डाल के
0: ऑटोमेटिक दवा पिला। ये तो भाई देखो ये कला पता है आ जाती है उसको ना, ये कला जो है कई बार नेचुरल होती है, कुछ लोग सीख लेते हैं।
1: यानी कोई बच्चा ऐसा हो कि जो दवा बिल्कुल किसी तरह पीना ना जानता हो उसको भी दवा पिला।
0: टैलेंट है भाई, ये तो टैलेंट है ये। तो आपको कहानी के बारे में क्या कहना है जमाल भाई, कैसी लगी ये जर्नी आपको पूरी इस कहानी की, व्हाट डू यू हैव टू से।
1: नहीं भाई इतनी बात, इसी वजह से मैंने अव्वल ही बात कह दिया कि रास्ता होता है वो बेहतर होता है। सही बात है, इतना ज्यादा भी केयरफुल, अब देखिए जिस चीज को उस बच्ची के लिए है ना बेहतर समझ कर वो कर रही थी, वही चीज वो वाले जान बन रही थी।
0: हाँ, हाँ।
1: और ऐसी कि फिर उनको जिंदगी भर रोना पड़ता, जाने कितने दिनों तक फिर वो अंधोह और गम के अंधेरे में मतलब डूब कर अपने आप को शायद बहुत कुछ हद तक बर्बाद कर ले जाते।
0: हाँ।
1: तो सही है, और केयरफुली का मतलब अगर केयरफुल देखा जाए कि आपको केयरफुली रहना था तो आप किचन में कहीं किसी चीज पर लेके जाते, आजकल तो इतने सारे रिसोर्स है झूले वगैरह वहां डाल के और सामने देखते भी रहो।
0: नहीं तो 1970s का किस्सा है ना, तो उस दौर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही केयरफुल थी भाई।
1: इतना भी सच है कि इतना भी केयरफुल नहीं होना चाहिए, बच्चों के सही केयरफुली तो बहुत जरूरी है। ओके ठीक है, बट बहुत ज्यादा हो गया था वो,
0: बहुत ज्यादा केयरफुल हो गया
1: था, इतना ज्यादा हो गया था ना, वो कहते नहीं है कि किसी से मोहब्बत का इतना भी नहीं वो मत वो कि आप प्यार करते मोहब्बत करते उसकी जान ले लो है ना। बाकी भाई स्टोरी तो एक नंबर की थी, उससे पहले कॉल कर रहा था जब मैं, तो जैसे ही मैंने ट्यून किया तो कौन सा था वो प्रिंस,
0: प्रिंस
1: भाई कॉल डिस्कस कर रहे थे वो, तो उनको सुनने के बाद फिर मुझे एक चीज याद आया बड़ी शिद्दत के साथ।
0: क्या याद आया?
1: किसी ने कहा था कि हमने कांटों को भी छुआ है तो नरमी से, मगर लोग बेदर्द हैं फूलों को मसल देते हैं।
0: अरे रे रे रे, डिजर्व इट, डिजर्व इट भाई।
1: कहना ये था कि मैं अगर बात हुई हमारी तो मैं कबीर भाई से कहूंगा कि आप नेक्स्ट कॉल में प्रिंस भाई से ये पूछिएगा कि वो मतलब चिकन वगैरह खाते हैं या नहीं।
0: अच्छा ये सवाल पूछना है, प्रिंस भाई चिकन वगैरह खाते हैं या नहीं भाई, ये पूछ ये क्या सवाल था भाई।
1: नहीं नहीं होता नहीं, कई बार यार बेजुबान जानवर था ना, कुछ हो गया लोगों ने मार डाला उसे।
0: अच्छा वो क्या एंगल दे रहे यार जमाल भाई, आपसे आपसे इस ह्यूमर की मुझे उम्मीद नहीं थी, आज आपका ह्यूमर निकल के बड़ी खुशी हो रही है भाई, क्या बात है यार, डार्क ह्यूमर मार रहे हैं। बहुत बढ़िया जमाल भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ये सुबह के शो का असर है भाई, इसी संगत में रहो भाई।
1: नहीं भाई अब पर तो होना ही है, अब जाहिर है आदमी अगर किसी चीज को सैराब कर रहा हो है ना, जबकि वो मतलब पूरी तरह से मुरझा के पसमुर्दा हो चुका हो और उसको फिर जब सैराब कर दिया जाए तो उसमें हरियाली आना तो लाजमी है।
0: क्या
1: तो
0: बात है यार, कैसे ब्यूटीफुली आप पुट कर देते हैं ना, ओहो मजा ही आ जाता है, बहुत बढ़िया जमाल भाई। और आप टाइम पास के लिए करते हैं सिग्नल जमाल भाई, बता दो।
1: हाँ तो मैसेज किया था आपने, हमारा मैसेज ही नहीं पड़ा।
0: अरे सॉरी भाई,

0: कभी भी सिग्नल आया तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे कंपनी का मतलब एक ग्रुप है मैसेज का, तो उसमें हम लोगों के लिए कभी कुछ होते हैं तो एक तो वो एक दूसरे ग्रुप है इधर, हम वही चेक कर लिया रहते हैं, देखें कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जरूरी वाली कि जिसका रिप्लाई जरूरी हो या उस पर कुछ वॉइस नोट ही जल्दी से जब तक तब तक वही सब कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर खाली टाइम बचता है तो गाड़ियां हम भी देखते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी कॉस्टली कितनी महंगी वाली गाड़ियां हैं कितनी सस्ती वाली गाड़ियां, तो जरा वो इंसानी फितरत है ना, आंखों को भी कुछ चाहिए।
1: ये भी आपने खूबसूरती से कह रही यार, कहीं तो छोड़ दो, बहुत बढ़िया हर जगह कह डाल रखा है जमाल भाई, आपने कॉल कर दिया भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई कॉल करने के लिए, बहुत सारा प्यार आपको।
0: ओके मेरे भाई, बाकी कहीं एक चीज कहना चाहूंगा यार।
1: जी बोलिए ना।
0: आजकल मॉर्निंग बन जाता है सच में, सुबह जो है ना
1: जी भाई,
0: वो इतनी दिलकश हो जाती है, इतनी पुरौनक हो जाती है ना। आजकल की सुबह के बारे में तो किसी ने कहा था एक बात बड़ी अच्छी सी कि मेरी रात मुंतजिर है किसी और सुबह नौ की। तो वो जो सुबह नौ है ना, नई सुबह, वो मुझे लगता है कि वो आपकी वजह से होता है। आमिर उस्मानी का गालिबन ये शेर है कि मुझे मेरी रात मुंतजर है किसी और सुबह, हर सुबह मुबारक जो है जुल्मतों की मार, हमारी जो सुबह है वो आप जैसे जुल्मत कदा नहीं है बल्कि वो रौनक है और पुरखिस है, दिलकश है और उसके अंदर शोखियां आपकी वजह से आती है, बड़ा मजा आता है।
1: अरे क्या बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल भाई, ये तो इस स्टाइल में तो मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर पाता, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच भाई मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, थैंक यू भाई, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये तो मैं भी नहीं कर पाता है, मतलब ये जो कर जाते हैं ये सिर्फ जमाल भाई ही कर सकते हैं। अगली कॉल है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ जी भैया, क्या हाल है भैया?
2: बस हाल तो ठीक है भाई, ये बताइए अभी भी सामने जाने की ख्वाहिश है आपकी?
1: नहीं भाई, एकदम खुश है भाई।
2: हाँ तो बस रजिस्ट्रेशन करवाइए मॉर्निंग में।
1: करा लिया भाई, एकदम दस्तखत कर दिए भाई, कब्जा प्लॉट पे कब्जा। हाँ बताइए भाई, क्या कहना चाहिए?
2: तो भाई कहानी आपकी सुना, एक हादसे ने उसकी जिंदगी बचा ली, बताइए। एक हादसा उसके साथ हुआ कि उसने थर्माकोल खा ली, दूसरा हादसा ये हुआ कि उसकी जिंदगी बच गई।
1: सोचिए,
2: आपने जब बोला ना कि एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं सोचा कि भाई गए और बच्ची बच गई, लेकिन भाई दोनों को बचा लिया आपने आज।
1: उम्मीद थी आपको मैं बचाऊंगा लोग, क्या बात है यार कमाल भाई, थैंक यू सो मच भरोसा करने के लिए।
2: उम्मीद थी जब आपने एक्सीडेंट की बात की ना, बच्ची को लेके गए, एक्सीडेंट की बात हुई, तब समझ में आ गया कि जो है बच्ची बचेगी, हो सकता है कि जो है भाई सब ड्राइवर सब चले जाएं, लेकिन आपने दोनों को बचा लिया।
1: वेरी नाइस, गुड जॉब कबीर साहब, गुड जॉब, थैंक यू कमाल भाई। पर भाई आपको आपको फील आई, मतलब यू आर इन द स्टोरी, सस्पेंस फील हो रहा था आपको या आपको अभी आदत हो चुकी है?
2: नहीं, सस्पेंस तो फील थोड़ा हुआ था, बोला हो सकता है आगे चल के बच्ची के कुछ और, जब तक जो है आपने कहानी को जो है मोड़ दे दिया और एंडिंग भी कर दी। शॉर्ट कहानी लेकिन अच्छी कहानी है।
1: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।
2: जिंदगी जिंदगी जब तक है, हयात है, कोई नहीं मार सकता उसको।
1: अरे क्या बात की कमाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार। और अगली बहुत सारी
2: सामने जाने का मत सोचिए,
1: नहीं सोच रहे भाई, नहीं
2: छुट्टी तो नहीं जाना है ना आपकी, छुट्टी से डर लगता है भाई, छुट्टी गए तो भाग के लिए।
1: नहीं अभी छुट्टी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है भाई, छुट्टी तो आएगी बस कुछ टाइम में।
2: ठीक है, मैं मैसेज करता हूं आपको।
1: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो एक कॉल और आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई।
1: जी मेरा भाई, क्या हाल है भाई के?
3: जी मैं ठीक हूँ, मैं अमन बोल रहा हूँ, दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ आज।
1: जभी आवाज नहीं बचाना है। अमन भाई बताओ क्या हाल है भाई?
3: जी ठीक हूँ, मैंने स्टोरी भी सुनी है, बहुत अच्छी लगी।
1: जी भाई,
3: ये इंसिडेंट हमारी बेटी के साथ हुआ था जब वो दो दिन की थी।
1: अच्छा कैसे भाई?
3: दो दिन की मतलब जी इंसिडेंट मतलब वो डिफरेंट था, मतलब दूध ना पिलाने की वजह से वो भूखी हो गई थी और उसको जॉन्डिस हो गया था।
1: अच्छा
3: मतलब जन्म के बाद उसको कुछ नहीं मिला, हम लोग सोच रहे थे कि वो दूध पी रही है, लेकिन कुछ एक बूंद भी उसके अंदर नहीं गई, तो हॉस्पिटल लेके गए थे हम भागे भागे। तो ऐसा फील हो गया, मैं तो एकदम से वो हो गया ना, शॉक्ड हो गया जब आपने बोला वो सिग्नल पे एक्सीडेंट हो गया ना, और मैं तो ड्राइव कर रहा था, मैं तो अंदर से थोड़ा हिल गया।
1: यही मकसद था भाई,
3: मकसद आपका बहुत खतरनाक होता है।

0: थैंक यू भाई, इसी बात के तो पैसे भाई देखो।
1: चलिए बाद में बच गए और एक लेसन भी मिला है, जो जिनके बच्चे अभी नए बॉर्न होंगे उनको ये लेसन भी मिल गया, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे।
0: हाँ मतलब ठीक है, केयरफुल होना बड़ी अच्छी बात है, बट यू हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, इतना भी नहीं होना है, ठीक ठाक होना है।
1: जी जी
0: पर थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू कबीर भाई,
0: ख्याल रखिए मेरा भाई। ओके भाई,
1: काम शुरू करता हूँ।
0: बिल्कुल मेरा भाई, टेक केयर भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये अमन भाई थे हमारे, इनके बाद कुछ मैसेजेस हैं भाई। एक सिद्धू बाजे का सॉन्ग और हो जाए भाई, थोड़ा सा आरिफ भाई बाकी को सोचना पड़ता है भाई, क्या करेगा भाई। सॉरी भाई सुन नहीं पाया, इंशाल्लाह बाद में चैनल में सुनूंगा, जरूर सुनना पड़ेगा। एक मैसेज है, प्रिंस भाई डर गया भाई, इतनी उर्दू बर्दाश्त कर पाया। एक मैसेज है, वाह वाह गालिब जमाल हज़र हुसैनी साहब ने मैसेज किया। एक कॉल और आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये जो बैकग्राउंड में आवाज आप ले आते हैं हमेशा कॉल पे, माशाल्लाह। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: कैसे हैं आप? ठीक
0: हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप एकदम बढ़िया।
2: लिटरली यार आपने बड़ा डरा दिया है, बहुत डरा दिया
0: है ना, ये इसी बात में पैसे हैं भाई।
2: मेरी ना भांजी है तकरीबन अभी 3-4 माह की है, तो उसके साथ मेरा बड़ा प्यार है। तो जब पैदा हुई मैं स्पेशल होके भी आया ना पाकिस्तान, तो वो मैं जहन में, वो पता है किसी की स्टोरी सुन रहे हो तो कोई और भी जहन में चल रहा होता है, मैं बड़ा अपने जहन में ना सस्पेंस में चला गया, बड़ा डीप चला गया। और उस टाइम पे तो और मैं जरा कंफ्यूज हो गया जब आपने बताया कि एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का ही, तो फिर आप वो कहते हैं ना रोते रोते को हंसा दिया आपने, बाद में फिर वो जब खुशी दी है वो उसका वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें, वो जब आपने बताया कि वो जिस नर्स ने बताया कि जी ठीक हो गया एक्सीडेंट, वो बच गए हैं, बेटी भी बच गया और ड्राइवर भी बच गया,
0: जी जी जी,
2: किसी को चोट नहीं आई, बड़ी बड़ी एक दफा सुकून मिल गया दिल को।
0: बस भाई ऐसे घुमाना था मुझे गाने को।
2: ये स्टोरी जरा मुझे, ये तो थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी आपके पास वो अलादीन ने आपको बुक दे दी है?
0: ये चिराग मैं नहीं दूंगा मेरे भाई। इसी से तो मेरी दुकान चल रही है, मैं चिराग आपको दे दूंगा ऐसा कैसे। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं बस जगह एक जगह से नहीं ढूंढता, मैं 2-3 जगह पर अगर आप भी ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी मेडिकल मिस्टेक मिलेंगे, बट आई हैव टू सर्च लाइक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है, और कई मरतबा लिटरली पढ़ाई करनी पड़ जाती है, तो सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है भाई।
2: मुझे तो लगता है कोई अलादीन आपने रखा हुआ है, रात को वो आपको सोए हुए सारी स्टोरी सुना के चला जाता है सुबह।
0: मैं नहीं बताऊंगा पर देखो आपको मजा आना चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है।
2: तो इसीलिए अपनी टाइमिंग सब कुछ चेंज कर दिया कि यार क्या आप करें, आप हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कबीर भाई, तो हम गरीबों का सोचते नहीं है।
0: अरे भाई ऐसी कैसी बात कर दी आपने भाई, तो आपको कहानी वैसे डेली मिल रही है ना?
2: हाँ डेली, मैं कभी कभार मैं ऑन टाइम होता हूँ, स्टोरी के टाइम पे मैं मौजूद होता हूँ गाड़ी में, कभी कभार ये होता है कि फिर लैपटॉप वगैरह पे बाद में ऑफिस जाके सुन लेता हूँ मैं स्कूल से,
0: कोई गल नहीं वीर जी,
2: ब्रेक टाइम में या फिर ड्यूटी टाइम में भी सुनते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ब्रेक टाइम में, ड्यूटी में भी सुनते हैं सब।
0: क्या बात है भाई, ये सुनना था मुझे, इसी यही है कमाई मेन, ड्यूटी टाइम में भी आपने सुन लिया, ये मेरी जीत है भाई। अच्छा मुझे जानने
2: दो, हड्डर आपने है ना, असल बात तो हड्डर
0: समझदार हो। सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई।
2: तो सुबह वो ट्रैफिक की बात कर रहे थे, वो मैं यकीन माने मुझे इतना गुस्सा आता है कि 100 का रोड हो ना, जब वो 5 मिनट पहले ही कोई गाड़ी अपनी वो फर्स्ट लाइन से, फिर वो साइड में भी नहीं करते लोग,
0: पर आप करते हैं सिग्नल सिग्नल पे, मैं कह रहा था सिग्नल पे लोग टाइम पास कैसे करते हैं, आप कैसे टाइम पास करते हैं, आपका क्या रहता है लंबा सिग्नल?
2: टाइम पास रेडियो की आवाज सेट कर ली या फिर अपने बाल छाल या परफ्यूम जिस तरह का कुछ कर
0: लिया। मेरा भाई रास्ते पर परफ्यूम लग रहा है एकदम नहाए हुए, जहां से निकलूंगा वहां से पता लगेगा। सही है भाई, सही है, सही है, टचअप तो हमें भी करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए, बहुत प्यार भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो भाई ने एकदम सेट बात करी है, 8:21 हो रहे हैं, एक मैसेज आया जैस भाई का, यार भाई तो कुछ ज्यादा ही डीप चले गया आवाज भी, भाई एकदम सही बात कह के गए हैं, मजाक मजाक में कहा समझ रहे हो, सलाम सर गुड स्टोरी। ये अबू साहब ने मैसेज किया, एक मैसेज, अल्लाह पाक का करिश्मा, एक्सीडेंट का बहाना था ब्रदर, सुपर, आज बंदे नहीं मारे कबीर भाई। एक तो लोगों को उम्मीद है मुझसे बड़ी यूनिक है, आलम सिद्दीकी साहब ये कोई बात होती? फरोशिया स्ट्रीट की तरफ जैम लगा हुआ है, ये मुझे मैसेज आया है, क्या नाम है इनका, इस्लाम साहब थैंक यू सो मच, और एक भाई ने लिखा है गूज बम्स, थैंक यू सो मच भाई। और यूसुफ भाई लिखते हैं, स्टोरी के लास्ट पार्ट सुन पाए एज ऑलवेज, बट पूरी

और आप लोग बच्चों की बातें कर रहे थे। बेटे सही मस्जिद में जाके जो है झाड़ू लगाओ। ये आपने ही मुझे ये नुस्खा बताया था अरबाज भाई, आप खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। एक मैसेज है इनसे, कहो लोगों को हमसे मिलो 100 वाले रोड पर, नहीं आपसे तो बिल्कुल दूरी। अदील अहमद साहब जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गाने के बाद जरा अहमद भाई को कॉल लगाते हैं। अहमद भाई बोले कॉल करने का तो करने का। 8:23 बाद क्लॉक मजीद वाला कबीर है, मजे करा दिया आपने, बड़ा ऐसा ना मतलब फील आ गई आज के शो में यार, हैं बात तो है। मेरा दिल मिलते हैं इस गाने के बाद, जाना नहीं है आपने। हाँ जी हेलो।

हाजी भट्टी क्या हाल है 826 घड़ी में और एक हमारे भाई हैं जिन्होंने बोला कॉल करने के लिए अहमद भाई की जरा कॉल लगाए जरा अहमद भाई कह रहे थे कॉल करने के लिए अहमद भाई पता नहीं अभी अवेलेबिलिटी क्या है पता नहीं है पर एक मैसेज आया मेरे पास हमें तो कोई मिल नहीं रहा क्या मैं शादी भाई मोहसिन भाई सजेशन दूंगा मैं आपको अलग से इसके लिए डोंट वरी एक मैसेज है जस्ट ज्वाइन इन सवाल तो कब का हो गया हिदायत भाई मैं कह रहा था सिग्नल पे कैसे टाइम पास कर दें हिदायत भाई ये था सवाल मेरा तो वो हो गया कहानी भी हो गई हिदायत भाई जो आए बिल्कुल लास्ट में तो इंस्पेक्टर साहब हीरो चला गया हीरोइन को बचा के कुछ नहीं बचाया इंस्पेक्टर साहब आप आराम से बैठ के चाय पीजिए कोई टेंशन नहीं है अरे और अहमद भाई कॉल नहीं उठा रहे अहमद भाई दिस इज नॉट डन मेरे हिसाब से मैं लेट हो गया हूँ तो मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता नहीं कॉल उठाएंगे तो कोई बात नहीं ये मैं अपनी गलती मान के अपने आप को ही माफ़ कर दूंगा ठीक है मैं अपने आप को ही माफ़ कर देता हूँ वेरी गुड भाई अभी डाउनलोड नहीं किया है कासा अभी प्लेलिस्ट में नहीं है रिजवान भाई तो इसलिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं प्ले कर सकता इफ़ यू नो व्हाट आई मीन एक मैसेज ज़रूर सुनूंगा रात में लेकिन आपने पूछा कहानी सुनिए नहीं तो मैंने कहा यूसुफ भाई इतना सीरियस मत हो करो यार मैं तो मज़े ले रहा था आपसे एक मैसेज विलन अभी आया ना कतर जस्ट एंटर्ड इन टर्न इनटू योर शो ओहो हिदायत मेरे भाई डायलॉग बाजी सवेरे फवेरे मैं ज़रा कुछ खबरें जो हैं वो ज़रा पढ़ देता हूँ उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सो अभी

कतर में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, यू नो अभी गर्मी चली जाएगी और फिर इवेंट्स की एंट्री हो जाएगी, सो कतर भी तैयार है कुछ इवेंट्स को लेकर. और एक इवेंट होस्ट किया है कतर ने, विच इज टू एक्सेलरेट ग्लोबल एक्शन ऑन ऑटिज्म. जो इवेंट था इसमें कई बहुत ही लार्ज स्केल पे एक तो पार्टिसिपेशन देखा गया, अलग अलग सीनियर ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड मोस्ट नोटेबली इसमें यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर पार्टनरशिप एट यूनिसेफ, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया. एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया. एंड मकसद ये कि ऑटिज्म को लेकर एक ग्लोबल एक्सेलरेशन अवेयरनेस पैदा हो कि लोग इसको कैसे डील करें, क्या किया जाए, सारी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश में कतर सबसे आगे पहली सफ में खड़ा हुआ है, विच इज़ अमेजिंग. सो कुडोज़ टू कतर ऑन दैट. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी कि MOPH ने कंक्लूड कर लिया है अपने 12th कतर पेशेंट सेफ्टी वीक, जिसकी शुरुआत 17 को हुई थी, 17 सितंबर को, और 23 सितंबर को ये पूरी की पूरी जो पूरा जो उनका क्या कहते हैं सो कैंपेन ये पूरा हुआ है. इसकी थीम थी इस बार की सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और इसका एक स्लोगन भी था सेफ केयर फॉर लाइफ. ये जो वीक पूरा बीता है इसमें गवर्नमेंटल और सेमी गवर्नमेंटल और प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स ने सबने पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ मेडिकल फील्ड से मगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें हिस्सा लिया और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें जुड़ी रहीं, कई सारे रेलिवेंट एंटिटीज थी जिन्होंने हिस्सा लिया और साथ में ऑफकोर्स पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज ने. सो काफ़ी लार्ज स्केल पे ये सेफ्टी वीक पूरा हुआ है, माशाल्लाह वेल डन कतर इस मामले में भी. इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज सेंटर्स का एक डेटा सामने आया, जिसमें सामने आया है कि दे हैव रिकॉर्डेड 50,918 कंप्लीटेड सर्विसेज. ये अगस्त का डेटा है, ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है. ये दिखाता है कि कतर ने हर साल इसमें बढ़ोतरी दिखाई है और इस बार भी जो डिलीवरी है ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज वो इंक्रीज ही हुई है, इतने सारे लोगों की मदद हुई है. एंड ये सिर्फ अगस्त का डेटा है, तो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स के लिए, हर किसी के लिए. और आई रियली होप कि इंशाल्लाह आगे वाले आने वाले वक्त में ये और नंबर्स इंक्रीज होने वाले हैं. इसके अलावा लास्ट खबर है कतर यूनिवर्सिटी से. कतर यूनिवर्सिटी का जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा मटेरियल जो कि एक किस्म के डेजर्ट के एक चीज़ पर, इसे मैं इसका नाम डेजर्ट बीटल अगर आसान शब्दों में कहूँ तो उस पर मॉडल्ड है, और ये पुल कर सकता है मिलीलीटर्स ऑफ वाटर आउट ऑफ ह्यूमिड एयर. और समझ रहे हैं, हम कहते हैं बहुत नमी है और ये आज तो बाहर मौसम में, तो ह्यूमिडिटी में से ये पानी को खींच सकता है विद इन एन आवर. एंड काफ़ी लो एनर्जी सोर्स पे ये काम भी करता है, एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर फ्रेश वाटर फॉर कतर और अदर जो रीजन से जहाँ पर पानी पहुँचता नहीं है, बारिश नहीं हो पा रही है. तो ये बहुत बड़ा एक रिसर्च कंप्लीट हो रही है, और अभी सिर्फ इसका प्रोटोटाइप भी नहीं कहूँगा, प्रोटोटाइप का एक दूसरा स्टेज पे ये आ चुका है. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी में जब पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा, देन वी कैन सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आइज. बट अगेन भाई ज़बरदस्त, क्या क्या काम हो रहा है दुनिया में. एंड एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम, क्या कह रहे हैं, डिलीट कर दिए लो, पढ़ने जा रहा था मैं. अरबाज में कह रहे हैं अगर कोई सिंगल है तो इकट्ठे चलते हैं मस्जिद में. हाँ कुछ नहीं होगा अरबाज भाई, नियत ही नहीं है. अभी मैसेज मैंने भेज दिया क्या भाई, हेल्प मी, क्या है ये. मैं भी DJ और साउंड ऑपरेटर था, तो अभी क्यों नहीं है, मतलब तो अभी क्या कर रहे हैं रिजवान भाई, आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए. ये तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम नहीं घूम रहे हैं अभी, तो क्या बात है भाई. पर आपने यहाँ नहीं ट्राई किया कतर में कभी इस चीज़ को लेके, दिस इज़ अ लिटिल शॉकिंग टू मी, यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई किया आपने. अब्दुल करीम भाई ने भी एक और है भाई, ये तो बहुत सॉलिड नंबर है, कोई बहुत ही सॉलिड नंबर है. 8:32 घड़ी में हो गए हैं और आप जो हैं कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं तो ज़रूर बताइएगा 666-22107. और मैंने चाय की तलब जगा ली है, तो अब तो चाय पिए मैंने आपका भाई, माने को नहीं भाई. और आप मैसेज जरूर कर देना 666-22107 पर. सिग्नल पे जो टाइम पास कर रहे हैं दूसरों की गाड़ी के नंबर देख के, अस्सलाम वालेकुम, सामने ध्यान दो भाई. ऐसे ही छेड़ूंगा, नशे से चढ़ गई हो.

0: गए।
1: हाँ भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये अपनी क्या कहते हैं, अंगूठी को पूरी तरह से शोबाजी करते हुए अरबाज भाई ने फोटो भेजी है। भाई ये इतनी बड़ी अंगूठी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बड़े बड़े लोग सुनते हैं भाई।
2: शोशा सीधा रेडियो पे धुआं, बातें हैं फायर ख्यालों का कुआं, भेजे के कसरत बोली से सुनवा, कंपटीशन को नहीं मारा रेडियो का फूफा, सुबह आएगी एनर्जी लगे।

0: wake up.
1: Assalamu alaikum. मैं दुआ वाला कबीर. 8:37 by the clock. और आज कुछ internationally marked दिन है. आपको पता ही मैं चेक करने लगता हूँ कि आज कैलेंडर में क्या क्या है जी. तो मैं आज बताऊँ कौन कौन से दिन है आपको. 27 सितंबर 2026 आज की तारीख. और आज है रिवर डे. आज नदियों का दिन है. अब वर्ल्ड रिवर्स डे है. अब इसमें भी आपको बहुत सारे लोग आके यही सुन अपनी पता है एक्टिंग. मैं अपनी एक्टिंग करके बताता हूँ. कुछ लगाएंगे बोलेंगे भारी आवाज में हमें हमारे रिवर्स को बचाना चाहिए. ऐसे कोई नहीं सुनेगा. ऐसे कोई नहीं. इनको बताओ इज्जत करो रिवर की भाई. नहीं तो घूमने फिरने कहाँ जाओगे तब समझेंगे. इनको ये बताओ सोशल मीडिया पे फोटो नहीं आ भाई रिवर के आसपास तब समझेंगे. इनको थोड़ी बोलूँगा मैं कि रिवर्स का ख्याल रखो सब एकदम बढ़िया हो जाएगा. नहीं समझती आजकल की जनता सुने को नहीं. और आज दिन है आज है चॉकलेट मिल्क डे. वेरी नाइस. हालांकि मैं पीता नहीं हूँ मगर पता नहीं ये पढ़ने के बाद मुझे अंदर से ऐसी इच्छा सी जाग गई. आज है क्रश अ कैन डे. ये भी कोई दिन होता है क्या बात है. आज क्रश अ कैन डे. वो कैन में आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो सोडा पीते हो वो वट एवर उसे क्रश करने का दिन है. मैं तो जी कूदता हूँ मतलब ख़त्म कर लिया. अगर मैं कहीं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं उसको कूद सकता हूँ तो मैं कैन को खाली कैन को नीचे रख के उसको कूदना शुरू कर देता हूँ. इफ़ दैट इज़ अलाउड तो क्रश अ कैन डे मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ. आज है Ancestors Appreciation Day. अपने दादा पर दादा नाना पर नाना सबको अप्रिशिएट करने का दिन है. कुछ लोग करेंगे अप्रिशिएट कुछ लोग बोलेंगे क्या किया ये इतना सब कुछ था तो कहाँ गया. आज है नेशनल डे ऑफ फॉरगिवनेस. मुआफ कर देने वाला दिन है. मुआफ बोलना नहीं लेकिन माफ जरूर कर देना भूलना नहीं ठीक है. बाकी मैसेज आया कबीर शाह साहब का क्या कह रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई क्या हाल है आपके कबीर भाई. ये मेरे हम नाम है हम नाम. इनकी वजह से मेरी स्पेलिंग दुनिया गलत लिखती है. के ए बी डबल ई आर लिखते हैं. इनके चक्कर में सब गलत लिख रहे हैं. क्यों धनिया बो रखा जिंदगी मेरी कबीर भाई. आई यार कर लो यार मतलब. अच्छा कहाँ पहुँचे हो. बिन उमरान में हूँ. बहुत बढ़िया मुबारक हो सबसे बेहतरीन जगह है ये तो. यहीं हमारा ऑफिस भी है. वेलकम. और आप अगली तरफ अगले जो सेगमेंट की तरफ में बढ़ने वाला उससे पहले मैं बता दूं आप मैसेज कर सकते हैं ट्रैफिक की अपडेट दे सकते हैं. बिकॉज एज आई कैन सी फिलहाल तो कहीं कहीं ट्रैफिक है. बिन उमरान में तो नहीं होगा क्यों कबीर शाह साहब. इधर कोई ट्रैफिक नज़र आ रहा है आपको. फिलहाल कहाँ कहाँ है जो मुझे नज़र आ रहा है बताता हूँ. अलजामिया स्ट्रीट के पास अगर आप हैं और यहाँ से आप खलीफा स्ट्रीट की तरफ आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन पे आपको वक्त लगेगा. फरोशिया स्ट्रीट पर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तबीयत हरी कर देने वाला जाम है. इसके बाद अलमरखिया स्ट्रीट से अगर आप जा रहे हैं दो कंपाउंड होते हुए कॉर्निश की तरफ जाएंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा. हालांकि मूविंग है मगर है ट्रैफिक. इस तरफ आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है. कतर जनरल पोस्ट ऑफिस के पास खलीफा स्ट्रीट के पास टाइम लगेगा. कॉर्निश स्ट्रीट से अगर आप आ रहे हैं मोहम्मद बिन सानी स्ट्रीट और कॉर्निश स्ट्रीट की तरफ कनेक्ट करते हुए आपको ट्रैफिक मिलेगा. यहाँ पर टाइम लगेगा. कॉर्निश पे एक तरफ ट्रैफिक है बाकी इट्स ऑल ऑलमोस्ट क्लियर तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओनाइजा इट्स ऑल क्लियर. नॉर्मल सा है वो जो सिग्नल के पास होता है ना वही वाला जाम. मज़ा नहीं आया. इसके अलावा ओल्ड रियान की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा. बट दैट इज़ अगेन मूविंग. अलवाब स्ट्रीट पर हालांकि थोड़ा बहुत है. सलो रोड की तरफ अगर आप हैं तो ट्रैफिक मिलेगा. एंड इसके अलावा और किधर है भाई मेन दोहा खास इधर तो कहीं दिख रहा. अच्छा है रौजातुल खैर स्ट्रीट हमारे घर के पास. बीरिंग रोड क्लियर चल रही है. सीरिंग रोड पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है. एंड जितने भी लोग सीरिंग रोड से कनेक्ट होते हुए जा रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं ये सलवा रोड की तरफ तो यहाँ पे ट्रैफिक आपको मिलेगा. ये थी अपडेट 666-22107 पर. ये आप जरूर बता सकते हैं. और यहाँ कह रहे हैं यहाँ नहीं है ट्रैफिक. बिन उमरान पे तो नहीं होता इस टाइम तो. इट्स ऑल वेरी नाइस एकदम चिलपो माहौल होता है. और एक और मैसेज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कह रहे हैं भाई अभी मैं कहाँ पर रमानदा सिग्नल के पास हूँ. यहाँ पर हल्का जाम है. थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन रिजान. 666-22107 इज द नंबर. और आग मिलते हैं एक गाने के बाद. जाना नहीं है और वॉल्यूम बढ़ा के रखनी है. सुर देख रहे हैं आप. 8:52 गुड मॉर्निंग. दिल से देश से भाई क्या फ्लूट बजी है इसमें समझ रहे हैं आप. हाँ हाँ गुड मॉर्निंग.

0: हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड मैं ये कह रहा था, और अच्छी बात है अरबाज भाई ने याद दिलाया, इमरान हाशमी का नया लुक देखा आपने भाई साहब? गन मास्टर जी नाइन, मजे आ गए भाई, मजे। जेनेलिया डिसूजा के साथ उनकी मूवी आने वाली है और ये रिलीज होने वाली है 27 नवंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27 नवंबर को। बट हिमेश रेशमिया कर रहे हैं म्यूजिकल पूरा का पूरा, अगेन दिस कॉम्बो इज बैक ब्रो। क्या टाइम था वो, क्या टाइम था, एंड फाइनली उसके गाने भी रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड आई थिंक और गाने तो नहीं सुने अभी, एक ही गाना सुना है, बट लेट्स सी कि क्या आता है। फिलहाल 666-22107 पर लोग बता रहे हैं, और एक भाई ने और मैसेज किया है, थोड़ी आवाज़ जो सॉन्ग की दी ना मैंने, बढ़ा दी एकदम आपके लिए मेरे भाई मोहसिन भाई, दिक्कत को नहीं। और एक मैसेज और आया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कबीर भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और ये मैं आपकी बहुत काम आएगी। सॉरी मैं आपको लेट मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं कर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं। शेख इरफान अलकासमी साहब, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और एक कॉल आ रही है, उठाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, क्या हाल है भाई के?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी मेरा भाई।
1: आप जब रहते तो सुबह तो कैरी रहेगा।
0: थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपका नाम तो बता दो।
1: अरफात।
0: अरफात भाई क्या चल रहा है भाई, आज इतना लेट कैसे है अरफात भाई, 9:15 पे आ रहे हैं?
1: अभी डीडी मैडम को छोड़ के कॉल किया था।
0: अच्छा, ओके। हाँ,
1: मजे का एक बात है, अब जब एक्सीडेंट का बात कर रहा था उसी का सामने मेरा एक्सीडेंट में गाड़ी रुका हुआ था।
0: अरे मेरा भाई यार मैं बच जाऊंगा, लोग बोलेंगे इसकी जुबान पर काबू करवाओ। अल्लाह खैर करे भाई, सब ठीक तो है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नहीं, रूट पे फुरुशिया स्ट्रीट में जो मैं फोटो भेजा ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। अभी अभी काम शुरू हुआ है आपका मतलब?
1: हाँ, 6 बजे से स्टार्ट होता है।
0: तो कहानी तो नहीं सुन पाएंगे, सुन पाए नहीं सुन पाए, मुझे लग नहीं रहा आप सुन पाए।
1: कहानी पूरा सुन पाया,
0: क्या उसी बता दो फिर, क्या कहना है आपका?
1: कहानी बढ़िया, जब कहानी शुरू किया था मेरा आँख में आंसू आ गया था, मैं उसमें को गया था क्या होगा क्या होगा।
0: अरे मेरा भाई,
1: तो मतलब मेरा अगर मैं भी छोटे छोटे बच्चे, मेरा बहन है,
0: प्यार देना भाई,
1: सबका सोच रहा हूँ,
0: हमारी तरफ से सारे बच्चों को प्यार आपके घर में। अरफात भाई टाइम कैसे पास करते हो सिग्नल पे भाई, क्या करते हो लाल बत्ती पे?
1: मैं वो डिपेंड करता है कब किस तरह पे रहता हूँ, जब मैं पूरा सामने में से रहता हूँ तो वो सिग्नल का तरफ देखता रहता हूँ, कब सिग्नल खुल जाए, पीछे से हॉर्न नहीं मार दे।
0: अच्छा भाई, ये तो बेच
1: कुछ कुछ है,
0: बेचैनी में रहता हूँ भाई,
1: रहता तो गाड़ियाँ देखता रहता।
0: अच्छा भाई, ऐसी गाड़ी देखते रहे, सही टाइम पास है, ठीक है। वही मैं सोचता, मैंने कुछ लोग कुछ नहीं देखते, सिर्फ सिग्नल की तरफ देखते हैं। मैं इन लोगों को सलूट करता हूँ कि तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं जा रहा है इधर उधर, यार क्या बात है भाई, बहुत
1: पीछे से हॉर्न मार देता है, हालात सिग्नल को थोड़ा सा हट जाएगा तो पीछे से हॉर्न मार देगा, तो नीचे लाइट मार देगा।
0: चिड़ तो चिड़ छूट जाती है भाई, कोई हॉर्न मार दे ऐसे चिड़ हो जाती है। अरफात भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको, शुरुआत से जुड़े रहते हैं आप शो में,
1: थैंक यू,
0: बहुत प्यार भाई को, आपका दिन बहुत बढ़िया जाए भाई।
1: ओके जरूर, ख्याल
0: रखिएगा, आप भी दुआ में याद रखिए मेरी बहन, थैंक यू सो मच, ओके भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या मैसेज आया है? अस्सलाम वालेकुम सर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्या? कौन से नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कौन से नंबर पे, मैं समझा नहीं। और एक वॉइस नोट आया मुझे जॉनल साहब का, भाई अभी तो कॉल उठाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं अभी कॉल तो नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आप बता दें क्या मैटर है, किस बारे में करनी है आपने बात। मैटर को देखते हुए हो सकता है मैं आपको बाद में कॉल पर ले लूँ,

चरणप्रीत और बादशाह। इस गाने के बाद मिलते हैं, टाटा बाय बाय भी कर लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। धरा बैठो भी खत्म थोड़ी हुआ। भाई इस गाने का हुक ना डेडली, भाई डेडली। साल भर में कुछ ही गाने होते हैं, उंगलियों पे गिन सकता हूँ, जिनके हुक बहुत अच्छे होते हैं, गाने बेहतरीन।

मजा आ गया यार, क्या फील है भाई, एग्जिट करने के लिए बहुत ही बढ़िया गाना मिल गया आज मेरे को। अस्सलाम वालेकुम, मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे सवेरे से तीन घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं आपके साथ, मुझे हो ही गए मतलब डजंट काउंट क्योंकि अभी तो निकल ही जाना, तीन घंटे मान ही लेते हैं। बहुत मजा आया भाई आज, मजे आ गए। हर रोज ना ऐसी शुरुआत हो जाए तो आदमी कैसे टेंशन ले। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो मैसेजेस हैं पर थैंक यू सो मच, इरफान साहब ने मैसेज किया है, कबीर भाई संडे मॉर्निंग थोड़ा वेकअप वाला सॉन्ग लगाएं प्लीज। वेकअप वाला सॉन्ग कौन सा वाला पसंद है आपको, जो अभी चलता है करंटली वही वाला ना, तो मैंने लगाया था वो तो बढ़िया है एकदम। थैंक यू सो मच, आप चाहें तो भेज दूंगा आपको। फिलहाल जो है आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह बढ़िया फवेरे 6 बजे मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, तो बहुत सारी बातों के साथ। बाकी 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन के लिए तैयार हो जाइए, और साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar FM 107 Qatar जहाँ पे हम मौजूद रहेंगे, और वहाँ पे कई बार हम लाइव भी जाते हैं, जैसे हमारी न्यूज़ अभी लाइव जाने वाली है। बट फॉर नाउ दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

इसमें बहरे कैस्पियन में बहरी मशकों के दौरान फौजी अहलकारों के डूबने पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल सानी ने तंजानिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर मोवेगोलो नचेम्बा से मुलाकात में ट्रांसपोर्ट के शोबे में दो तरफा तआवुन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद तंजानिया के वज़ीर आज़म और उनके वफ्द ने मवासलात कंपनी और लुसेल बस डिपो का दौरा किया, जहाँ उन्हें कतर के जदीद और पायदार अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम, इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग के बुनियादी ढांचे और ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को इलेक्ट्रिक बसों के इंतज़ाम, स्मार्ट ऑपरेशनल हलों और कार्बन अखराज में कमी के इकदाम से भी आगाह किया गया। लुसेल बस डिपो कतर के इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के अहम मंसूबों में शामिल है और गुंजाइश के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस डिपो होने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तजुर्बात के तबादले और पायदार अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबे में तआवुन के फ़रोग़ के लिए किया गया। वज़ीर आज़म के मशीर और वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने रियासत कतर की नुमाइंदगी करते हुए न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर आला सतही इजलास से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर रियासतों की खुद मुख्तार बराबरी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए कतर के आज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून का मुअसर नफाज बिला इम्तियाज़ होना चाहिए और किसी रियासत को इस्तस्ना या दोहरे मेयार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब, फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और 1967 की सरहदों पर मशरिकी अलकुद्स को दारुल हुकूमत बनाने वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत की। डॉक्टर अल अंसारी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम, इमदाद की रुकावट और तिबी अमले, इमदादी कारकुनों और सहाफ़ियों पर हमले फौरी तौर पर रोकने और ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने आलमी बरादरी पर कसीरुल जहती तआवुन मजबूत बनाने और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर अमन के मौसर निज़ाम के क़याम पर ज़ोर दिया। रियासत कतर ने एथोपिया की वफाकी अफवाज के खिलाफ फौजी कशीदगी की मजम्मत करते हुए उसे वफाकी जमहूरिया एथोपिया की थाद और ख़ुद मुख्तारी और खिताया शाखे अफ्रीका की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है। वजारत खारजा ने आज एक बयान में फौरी तौर पर कशीदगी और दुश्मनाना कार्रवाइयों के खात्मे, शहरियों के तहफ़ को यकीनी बनाने और प्रेटोरिया अमन माहदे की पासदारी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वजारत खारजा ने एथोपिया में कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों के लिए रियासत कतर की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हुए कहा कि इससे तमाम इख्तलाफात को बातचीत और पूरा मंजराए से हल करने की राह हमवार होगी। कतर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 81वें इजलास के मौके पर तालीम, आलमी सेहत, यूथ लीडरशिप, पायदारी और मसनू जहानत से मुतालिक प्रोग्रामों और मुबाहिसों में शिरकत की। फाउंडेशन के माहिरीन ने आलमी चैलेंजेस और जामे व पायदार मुस्तकबिल के लिए कतर के नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया। आलमी तालीमी थिंक टैंक वाइज ने तालीम के मुस्तकबिल, जिद्दत और महारतों की तरक्की पर मुकालमे में हिस्सा लिया। वाइज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आसिया काजमी ने बुनियादी लिटरेसी और हिसाब की सलाहियतों को अहम चैलेंज करार देते हुए सियासी अज़म, मरकूज़ इकदाम और मौसर तदरीस की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में कतर डिबेट के नुमाइंदों ने 2026 कनकोडिया सालाना सरबराही इजलास में शिरकत की। नुमाइंदों में अली अल मालवी ने नौजवानों की सफारतकारी, नूर अल सानी ने ख़वातीन की क़्यादत, जबकि शेखा अल अनूद अल सानी ने मसनू जहानत, जवाबदही और अमन साजी पर इजहार ख्याल किया। कतर फाउंडेशन ने गोल्स हाउस न्यूयॉर्क में रिवायत से मुस्तकबिल तक के उनवान से मुकालमे की मेज़बानी की, जिसमें सकाफती विरसे और नसल दर नसल मुंतकिल होने वाले इल्म के ज़रिए तालीम और पायदारी के मसाइल से निमटने पर गौर किया गया। मशाइल एम अल नोएमी ने रिवायात को इल्म के निज़ाम और जिद्दत की बुनियाद करार दिया, जबकि मोहम्मद अहमद अल शौबी ने आलमी महारतों की माशरती ज़रूरियात और सकाफती इकदार से हम आहंग करने की अहमियत उजागर की।
صحت اور شمولیت کے شعبے میں عالمی آٹزم آگاہی اتحاد نے اپنے قیام کا ایک سال مکمل ہونے پر پیش رفت کا

0: खबरों के इस मरहले में अब समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइन, बिजनेस न्यूज हेडलाइन विद मोहम्मद अमीन, विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस हेडलाइंस में कतर रेड क्रेसेंट और जिनेवा सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज ने पांच रोजा हेल्थ ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी वर्कशॉप का इख्तिताम किया। कतर चैंबर ने दूसरा अजरबैजान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत की। कतर चैंबर ने कुआलालंपुर में ग्लोबल हलाल समिट के मौके पर मलेशिया के साथ तिजारती तालुकात पर बातचीत की। और जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अलबुदावी ने तवानाई, तिजारत, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी के शोबों में मजीद इलाकाई यकजहती और ताउन पर जोर दिया है ताकि खलीज में माशी तरक्की को फरोग और सरमायाकारी के नए मौके पैदा किए जा सकें। बिजनेस हेडलाइंस में आज इतना ही। आप अभी अब आप स्पोर्ट्स हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस, स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: आज के स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर का लुसेल इंटरनेशनल सर्किट 2027 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड की मेजबानी करेगा, ये बात जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक सामने आई है। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल फ्रेंडली में इंडिया ने जुमे को 44th रैंक्ड पनामा को 1-1 मुकाबले पे ड्रॉ रखा। कतर ने आईची नागोवा 2026 एशियन गेम्स में मेंस 3x3 बास्केटबॉल में सिल्वर मेडल हासिल किया। फाइनल में कतर को साउथ कोरिया के हाथों 10 के मुकाबले में 19 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। आईची नागोवा 2026 एशियन गेम्स में नेपाल ने ग्रुप ए के अपने एक ओपनिंग मैच में अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी। और दिफाई वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गोकेश की क्यादत में इंडिया ने जुमे को 46th चेस ओलंपियाड के 9th राउंड में जर्मनी को 1.5 पॉइंट्स के मुकाबले में 2.5 पॉइंट से शिकस्त दी, जबकि इंडिया की वुमेन्स टीम ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
3: साहिब सुमो अमीर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर, वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान से टेलीफोन पर राब्ता किया। साहिब सुमो अमीर ने जमहूरी कजाकिस्तान के सदर को बहरे कैस्पियन में बहरी मशकों के दौरान फौजी अहलकारों के डूबने पर अफसोस और ताजियत कब्र के पैगाम इरसाल किया है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने तंजानिया के वजीर आजम से मुलाकात में ट्रांसपोर्ट के शोबे में दो तरफा तआवुन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। और रियासत कतर ने एथोपिया की वफाकी अफवाज के खिलाफ फौजी कशीदगी की मजम्मत करते हुए उसे वफाकी जमहूरिया एथोपिया के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी और खिताए शाख अफ्रीका की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माऊ नूर और न्यूज स्टूडियो से इस मोहम्मद अमीन इंतखाब आलम और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामईन किराम, आज की दुआ है नूह अलैहिस्सलाम की, जब उन्होंने अपने कौम के इनकार, तकजीब और जुल्म और सितम के बाद अल्लाह की मदद मांगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सदियों तक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया और हक के मुकाबले में सरकशी इख्तियार की। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने दिल की गहराई से पुकारा, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं मगलूब और कमजोर हूँ, या रब तू मेरी मदद फरमा। अन्नी मगलूबुन, ए अल्लाह मैं मगलूब हूँ, कौम ने मेरी बात न मानी, मैं कमजोर और बेबस हो गया हूँ। फंतसर, तू ही मेरा मददगार है, मेरी तरफ से फैसला फरमा और मुझे जालिमों के मुकाबले में फतह अता कर। सबने कराम, ये दुआ मजलूम की पुकार है जिसमें बंदा अपनी बेबसी का इतराफ करके अल्लाह की नुसरत पर भरोसा करता है। सामिन इकराम, आज की दुआ हमें ये सबक देती है कि मुश्किलात और मजालिम के वक्त सबसे बड़ी पनाह अल्लाह की है। जब बंदा कहता है इन्नी मगलूबुन फंतसर, तो गोया वो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। आइए हम सब दिल की आजिजी के साथ ये दुआ पढ़ें, इन्नी मगलूबुन फंतसर। इसके शुरू में अगर रब्बी जोड़ देते हैं तो जुमला पूरा हो जाता है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, या रब मैं मगलूब और कमजोर हूँ, बस तू मेरी मदद फरमा।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
6: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
7: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो With Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107. Dil se Desi.
8: Qatar ka pehla Desi radio station FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की कहानी है जर्मनी के टेनिस सुपरस्टार अलेक्जेंडर ज़वरेव की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने सालों तक ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी का इंतजार किया, इंजरीज और डायबिटीज जैसी चैलेंजेस का सामना किया और फिर 2026 में टेनिस की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अलेक्जेंडर ज़वरेव ने बचपन से ही टेनिस को अपनी जिंदगी बना लिया था। टेनिस फैमिली में परवरिश पाने वाले ज़वरेव ने सिर्फ 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उनके वालिद अलेक्जेंडर ज़वरेव सीनियर और वालिदा इरेना दोनों प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, जबकि उनके भाई मिश्चा भी ATP टूर पर खेल चुके हैं। लेकिन ज़वरेव की कहानी सिर्फ टेनिस की नहीं है। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई। यकीनन ये एक चैलेंज था फॉर ज़वरेव टू एक्सेल इन टेनिस। डिफिकल्ट। डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया ताकि डायबिटीज की वजह से उनकी जिंदगी और स्पोर्ट्स करियर मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी वालदा ने हार नहीं मानी। ज़वरेव ने 2026 का US ओपन जीतने के बाद इमोशनल स्पीच में बताया कि उनकी वालदा ने हमेशा यकीन रखा कि इस बीमारी उनके बेटे के फ्यूचर का फैसला नहीं करेगी। सी सच अ डिटर्मिनेशन। और आपके पास अगर सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, तो एन अल्लाह का दुआ, आई मीन डेफिनेटली विदाउट अल्लाह दुआ नथिंग इज पॉसिबल। सो इस दोनों के साथ फैमिली का सपोर्ट और ऊपर वाले के दुआ, एंड इसी वजह से शायद अलेक्जेंडर ज़वरेव यहां तक पहुंचे इस साल यानी सन 2026 में 2 ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज। US ओपन से पहले ही वॉन द फ्रेंच ओपन। क्या बात है। ज़वरेव ने 2022 में अपनी डायबिटीज को पब्लिकली डिस्क्लोज किया और अलेक्जेंडर ज़वरेव फाउंडेशन कायम की, जिसका मकसद डायबिटीज से मुतासिर बच्चों की मदद और अवेयरनेस फैलाना था। प्रोफेशनल टेनिस में ज़वरेव ने बहुत जल्द ही अपनी पहचान बना ली। उनकी पावरफुल सर्व, 2-handed बैकहैंड और कोर्ट कवरेज ने उन्हें दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शामिल कर दिया, लेकिन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उनसे दूर रही। सन 2020 US ओपन फाइनल में ज़वरेव ने डोमिनिक थिएम के खिलाफ 2 सेट्स की लीड हासिल की और मैच के लिए सर्व भी किया, लेकिन आखिर में टाइटल हार गए। सन 2022 फ्रेंच ओपन में राफेल नदाल के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान उन्हें सीवियर एंकल इंजरी हुई, जिसने उन्हें महीनों तक कोर्ट से दूर रखा। फिर सन 2026 ने सब कुछ बदल दिया। फ्रेंच ओपन 2026 ज़वरेव का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। रोला गारो फाइनल में ज़वरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को 5 सेट्स में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 सेट से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। मैच सुन लीजिए 4 घंटे और 16 मिनट तक चला। है आपके पास इतना पेशेंस? है आपके पास ये हार्डवर्क? इट्स डिफिकल्ट और वो भी डायबिटिक पेशेंट। और सिर्फ 3 महीने बाद US ओपन टाइटल इन न्यूयॉर्क। ज़वरेव ने अमेरिकन स्टार बेन शेल्टन को फाइनल में 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 सेट से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया और इस फतेह के साथ ज़वरेव ने सन 2026 में फ्रेंच ओपन और US ओपन दोनों टाइटल्स अपने नाम कर लिए। अच्छा, US ओपन फाइनल में उनकी फर्स्ट सर्व परफॉर्मेंस भी लाजवाब रही। उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्व पर 85% पॉइंट्स जीते। लेकिन दोस्तों, ज़वरेव की मेडिकल जर्नी भी उतनी ही रिमार्केबल है। टाइप 1 डायबिटीज के साथ प्रोफेशनल टेनिस खेलने के लिए उन्हें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। मैचेस के दौरान वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर या CGM यूज करते हैं। उनका फोन ग्लूकोज रीडिंग्स दिखाता है और जरूरत पर वो इंसुलिन भी ले सकते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने उन्हें मेडिकल एग्जेम्पशन दी हुई है ताकि वो कोर्ट पर अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सके। ये सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2026 विंबलडन के दौरान भी ज़वरेव ने बताया था कि डायबिटिस मैनेजमेंट उनके प्रोफेशनल करियर का एक कॉन्स्टेंट हिस्सा है। हेल में एक ग्लूकोज सेंसर की मैलफंक्शन की वजह से उन्हें इंसुलिन और ब्लड शुगर को अर्जेंटली मैनेज करना पड़ा था।
यानी जब ज़वरेव कोर्ट पर ओपोनेंट के सामने खड़े होते हैं तो उनकी फाइट सिर्फ टेनिस बॉल और रैकेट की नहीं होती है दोस्तों, उन्हें अपने ग्लूकोज लेवल्स को भी मैनेज करना होता है। इसलिए उनकी 2026 की ग्रैंड स्लैम जर्नी और भी खास बन जाती है। दोस्तों अलेक्जेंडर ज़वरेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी मेडिकल कंडीशन को अपनी पहचान बनने देना जरूरी नहीं। 4 साल की उम्र में डायबिटीज का डायग्नोसिस, इंजरीज, ग्रैंड स्लैम फाइनल्स की हार और फिर 2026 में 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, फ्रेंच ओपन चैंपियन, यूएस ओपन चैंपियन और अब अलेक्जेंडर ज़वरेव टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं। तो दोस्तों यह था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: स्कैटर कर दें। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है और ये ट्रिक आमतौर पे स्कैमर्स नहीं, नॉर्मल लोग भी अपनाते हैं। रिव्यूज और डोमेन एज चेक जरूर करें। किसी भी ऐसी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले इंटरनेट पर उसके रिव्यूज को सर्च करें और चेक करें कि वो वेबसाइट कब बनी थी। इवन अगर आप ये नहीं चेक कर सकते तो आप उनके लिंक को चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ताला लगा होता है लिंक पर, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, कई बार बहुत ज्यादा ओरिजिनल लग रही होती है वेबसाइट, लेकिन छोटी डिटेल्स अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो छोटी डिटेल्स गलत करके रखते हैं। तो ऐसे में उन डिटेल्स को अगर आप चेक करते हैं तो भी आप बच सकते हैं। तो वो छोटी डिटेल्स को पकड़ना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें। दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
5: स्मार्ट मनी।
6: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों हर शख्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं। देखिए एसेट से मुराद वो कीमती चीजें हैं जो हमें वैल्यू देती हैं या फ्यूचर में फायदा पहुंचाती हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी कोई मशीनरी हो सकती है, आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई व्हीकल है या टेक्नोलॉजी या इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे इन्हें मैनेज करने की। जी हाँ, मैनेजिंग एसेट्स कहे जाते हैं कि कामयाबी का असली राज यही है। देखिए एसेट मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने एसेट्स को इस तरह मैनेज करना कि उनकी वैल्यू, जी हाँ उनकी वैल्यू बरकरार रहे, उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो और लंबे अरसे तक उससे आपको फायदा हासिल हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास एक कार है और वो उसकी रेगुलर सर्विसिंग करवाता है, ऑयल टाइमली चेंज करवाता है और उसका ख्याल रखता है, तो कार ज्यादा अरसे तक बेहतर परफॉर्मेंस देगी, है ना। ये एसेट मैनेजमेंट की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी मिसाल है। अब सवाल ये उठता है कि एसेट्स को मैनेज करना क्यों जरूरी है। बहुत से लोग एसेट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उनका सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है या उन पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स खरीदे, उन कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस ना की जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट ना किए जाए और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना हो तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। इसी तरह घर में रखी हुई प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट अगर मॉनिटर ना किए जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू या परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अब क्या स्टेप्स हो इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले है एसेट इन्वेंट्री बनवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपने तमाम एसेट्स की लिस्ट तैयार करें। इनमें आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और शायद आपके बिजनेस इक्विपमेंट्स। जब आपके पास इन सब का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है। वहीं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं और ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इसको समझें और इस पर अमल करें। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अहमद और बिलाल का। अहमद और बिलाल दोनों ने एक ही साल में एक जैसे डिलीवरी वैन्स खरीदे। अहमद ने रेगुलर मेंटेनेंस करवाई, फ्यूल इफिशेंसी मॉनिटर की और

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम।
2: मुझे असल में मेरी आवाज़, मतलब मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। आ गए क्या हम?
1: मैं देख रही हूँ एग्जैक्टली, मैं देख रही हूँ कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे, लेकिन नहीं बोला तो चलो।
2: म्यूट पे बैठी हुई और मुझे आवाज़ नहीं।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु टू ऑल कतर। और हम आ गए हैं यू मैटर के साथ, मैं और
2: सफा और भाई
1: महवश।
2: और भाई संडे कैसा चल रहा है पार्टी?
1: यहाँ में तो फुल जो है ना सोया हुआ चल रहा है।
2: आज माविश है ना, माविश पिछले हफ्ते से ना रिकवर नहीं कर पाई।
1: हाँ, मुझे तो इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद। इस दफ़ा तो वीकेंड, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स अब ये वाले शुरू हो गए ना, ये वाला वीक से, तो जाना भी नहीं था कहीं पे, पहले डिसाइडेड था, मतलब
2: लेजी चल रहा है।
1: मैं तो ऐसी सोई हूँ, ऐसी सोई हूँ, फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली, नहीं मुझे तो खैर मिली है, लेकिन फिर भी मुझे इतना, मतलब अभी भी मेरा दिल चाह रहा है यार सब छोड़ूँ, बस मैं सो जाऊँ।
2: और एक मेरा हाल है, नींद मिल नहीं रही, कहाँ ढूंढूँ, कौन से बाजार में कितने केजी की मिलेगी। तो भाई आप लोगों को खुश आमदीद।
1: आप लोगों के क्या हाल चाल है? कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, ऑटम आ गया है, फॉल शुरू हो गया है, लेकिन वही ह्यूमिडिटी है
2: हमारे लिए फॉल
1: वाली।
2: हमारे लिए फॉल शुरू हो गया, हमें पता ही ना चला।
1: एग्जैक्टली, हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर के कहीं कोई पत्ते गिरे हुए हो, कहीं कुछ हो, मतलब कोई छोटी सी निशानी
2: गिरा हुआ नहीं मिल रहा। मावे जरूर यहाँ वहाँ गिरी।
1: बिल्कुल, कभी इधर सोफे पे, कभी उधर बेड पे, ये चल रहा है भाई। तो खैर, आप लोग बताएं भाई क्या हाल चाल है आपके, कैसा गुजरा वीकेंड? सब कुछ अच्छा गुजरा होगा उम्मीद है। और हम आ गए हैं फिर एक घंटे के लिए आपके साथ। 10:03 हो रहे हैं बाय द वे।
2: अच्छा, 10:03 हो गए, तो आपको याद दिलाते चलें कि ये एक इंटरैक्टिव शो है, तो आपने करना ये है कि आपने हमारे साथ शामिल होना है शो में। आप हमें चाहें तो कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज के लिए नंबर है
1: 6622107। तो आपको जिस पे आसानी हो आप भेजिएगा हमें मैसेज या फिर कॉल कीजिएगा। और उससे पहले कि आप हमें कॉल करें, हम आपको बता
2: मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर
1: आज का टॉपिक।
2: अच्छा भाई, आज का मुद्दा ये चल रहा है कि क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने सुकून को कायम रखते हुए, अपने सुकून को सेक्रीफाइस ना करते हुए। वो जो हम कहते हैं ना एक इनर पीस होता है, उसको स्टेक पे ना लगाते हुए आप फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं क्या? देखिए, अक्सर हम ये समझते हैं कि सक्सेसफुल होना इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा पैसा और जो है ना घर, बंगला, गाड़ी, मशहूर होना होता है ना आज के वक्त में, ये कि भाई वायरल हो जाओ, ये सक्सेस है आज के वक्त में। लेकिन अगर इन चीज़ों को हासिल करते करते इंसान की नींद, सेहत, रिलेशंस, मेंटल पीस सब दाव पे लग जाए, तो फिर बाद में सवाल ये आता है बाबू कि ये बताओ गोभी दे फूलों, सवाल ये है कि हम असल में क्या हासिल करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: क्या खो जाता है? और
1: अच्छा,
2: क्या
1: मुझे ना एक रील याद आ गई, अभी पिछले दिनों मैंने देखी थी, एक बच्चा जो ना दरख्त के नीचे लेटा हुआ है, दूसरा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो वो जो स्कूल जाने वाला बच्चा वो कहता है कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे सो रहे, स्कूल नहीं जा रहे? तो कहते हैं स्कूल जाने से क्या होगा? तो कहते हैं पढ़ेंगे, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के जॉब करेंगे उससे क्या होगा, पैसे मिलेंगे उसके बाद क्या होगा, तो फिर उसके बाद आराम की जिंदगी होगी। तो कहते हैं मैं अभी क्या कर रहा हूँ,
2: उसके साथ ही बैठ जाते हैं सारे।
1: तो अच्छा, सक्सेस क्या है भाई? ये वाली सक्सेस चाहिए या फिर कौन सी सक्सेस चाहिए आपको, ये बताएं।
2: अच्छा, इसकी एक मिसाल देना अगर, तो ऐसा होता है कि जो बात हम कर रहे हैं ना, तो उसकी मिसाल कुछ ऐसी कि एक शख्स ना प्रमोशन के लिए रोज 12-13 घंटे काम करे लगातार, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक, आप खुद सोचें उसके पास सैलरी भी आ रही है, उसकी पोजीशन भी जो है ना बढ़ रही है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा, वो नींद अपनी पूरी नहीं कर पा रहा, घर वालों के साथ तमीज से बात नहीं कर पा रहा, तो वो क्या हासिल कर रहा है?
1: ये पूछते हैं कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
3: जी, कैसे हैं आप लोग?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
3: आसिफ अंसारी।
1: आसिफ अंसारी, क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा आपका वीकेंड?
3: वीकेंड
2: एंड हो गया बस।
3: क्योंकि एक्चुअल होता क्या है, सबसे ज्यादा टाइम जो है सोने में जाता है ना, सबसे सुकून वही है।
2: आसिफ भाई मुझे उस हर शख्स से जेलसी है इस वक्त। हाँ नहीं नहीं नफरत नहीं है, मुझे मुझे मुझे इस वक्त जेलसी है कि जिसको वीकेंड के टाइम पर सोने को मिल जाता है, जिसको सुकून मिल जाता है वीकेंड के टाइम पर। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग?
1: तुम क्या करती हो, डबल जॉब्स कर रही हो, क्या कर रही हो बहन, तुम्हें क्यों नहीं सोने को मिल रहा?
2: भाई वीकेंड पे तो वो काम निपटाए जाते हैं जो वीक डेज में नहीं किए जा रहे होते।
1: हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी नींद तो मिल ही जाती है बंदे को, कहीं पे भी आ जाती है।
2: यकीन जाने मैं, मेरी हालत ऐसी है कि मेरा दिल करता है कि मैं शायद वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर सो जाऊं तो मुझे कोई ना छेड़ेगा, या अलमारी के ऊपर चली जाऊं जहां में जगह होती है, अलमारी के ऊपर अपना कोई बिस्तर लगा लूं। मतलब मैं सोफे के पास से भी गुजरूंगी ना तो घर वालों को ये होगा अच्छा रिमोट तो पकड़ा देना। मैंने कहा तुम लोग को अगर मैं नहीं मिलती तो तुम लोग रिमोट कैसे उठाते फिर, टूंडे मंडे बैठे हुए हो।
1: सो सैड, इसकी पूरी दुनिया के अपने गम है, इसके अपने गम है। जी आप बताएं आसिफ साहब।
3: जी
1: तो आसिफ भाई भूल गए, उनसे पूछा गया था।
2: आसिफ भाई सवाल ये चल रहा है कि जरा बताएं कि इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है बगैर अपना सुकून सैक्रिफाइस किए हुए?
3: नहीं हो सकता,
2: नहीं हो सकता,
3: कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि पैसा, तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता है, लोगों का साथ होता है, घर वालों का साथ होता है। अब आप अगर एक चीज के पीछे भागोगे तो घर का सुकून खत्म।
2: सही,
3: ठीक है, तो सारी चीजों को जब तक मैनेज नहीं करोगे, परफेक्ट सक्सेसफुल बंदा वो है जो अपने घर को भी टाइम दे रहा है।
2: सही,
3: थोड़ा कम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन हम किसके पीछे भाग रहे हैं? अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। तो सक्सेस वो नहीं है, मेरी समझ से तो वो सक्सेस नहीं है जो पैसा ही है, क्योंकि पैसा होने के बाद भी आदमी को सुकून से नींद नहीं आती।
2: एग्जैक्टली,
3: क्योंकि जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो फिर ये इनकम टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, वो टैक्स हो गया, ठीक है,

0: अब उसको खर्च कहाँ करें,
1: ये भी एक मसला होता है, ये भी एक मसला होता है,
0: सारी चीजें भी तो देखनी ही रहती है ना। बेहतर मेरी समझ से सक्सेसफुल ये चीज है कि हम फैमिली के साथ में अच्छा वक्त गुजारें, थोड़ा पैसा कम हो लेकिन फैमिली को अच्छे से रखें बस।
1: सही। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है सक्सेस आपके लिए क्या चीज है?
0: मेरे लिए सक्सेस वही है जो मेरे मेरे साथ सबका साथ हो मेरे साथ। ठीक है। पैसा तो फिर कमा लेंगे।
1: पैसा तो फिर कमा लेंगे, हमारे मेरे अब्बा वाली बात कर ली, पैसा तो कमा लेंगे, रिश्ते कहाँ से कमाओगे?
0: क्योंकि जो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, जाएगा आएगा वो तो उसका काम ही है, लेकिन जो लोग पीछे छूट जाते हैं ना वो नहीं मिलते दोबारा।
2: सही
1: सही।
0: क्योंकि बंदा इतना आगे निकल जाता है जो पीछे होते हैं, जो आपने देखा होगा जो रनिंग करते हैं बंदे राउंड में जो चलता है, तो यही नहीं पता चलता है लोगों को कि कौन आगे और कौन पीछे है।
1: बस भागते जाते हैं भागते जाते हैं
0: भागते जाते हैं,
1: वो जाके आखिरी एंड पे पता चलता है पट्टी पे।
0: एक्चुअल होता क्या है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, बाद में फिर हम वहाँ से यू टर्न मारते हैं अपनों के पीछे भागने के लिए,
1: लेकिन उस वक्त
0: काफी दूर निकल जाते हैं वो लोग, काफी दूर निकल जाते हैं, क्योंकि जब पैसा आता है ईगो आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा से लोग जो है अपने आप को दूर करने लगते हैं आपसे।
1: अच्छा ये एक बड़ी सेंसिटिव सी बात है कि है साइकिल बना दिया गया ऐसा, मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ का साइकिल ऐसा ही है, मैं कहूँगी बना दिया गया, इसको कल्चरल इफेक्ट या सोसाइटी इफेक्ट कुछ ऐसा कह लें कि फॉर एग्जांपल अगर हम औलाद की बात लें ना, तो एक ज़माने में लोग कहा करते थे भाई पैसा बेशक कम हो लेकिन अपने बच्चों के साथ बेगम के साथ टाइम गुजारना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मज़े की बात ये कि जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं उन्हीं को आप वक्त नहीं दे पा रहे।
0: एक चीज और है, पहले के टाइम में और अब के टाइम में हम सोचते हैं महंगाई ये सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, हमारे खर्च बढ़ चुके हैं जरूरत से ज्यादा। ठीक है, हम पैसा तो उतना ही कमा रहे हैं जितना पहले के लोग कमाते थे, सुकून था, लेकिन आज के टाइम पे हमारे खर्च बढ़ चुके हैं।
1: सही बोल रहे हैं, आई एग्री विद यू,
0: फालतू के जो खर्च है वो बढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे घरों में बरकत नहीं है आज के टाइम पे, हमारी कमाई में बरकत नहीं होती है और हम जरूरत से ज्यादा भागने लगते। पहले के लोग सुकून में क्यों थे, इसी वजह से।
1: वो कहा गया ना कि अपना आप अपने आप को कंट्रोल में रखो, बैलेंस में रखो,
0: बस
1: वो गुम हो गया,
0: वो चीज खत्म हो गया। किसके लाइफ में सुकून है, मेरी या आपकी, किसी की लाइफ में
1: भाग रहे हैं। ये मुझे आपकी मिसाल बड़ी अच्छी लगी, वो होता है ना आप भाग रहे होते हो रेस में, ओलंपिक मेडल के चक्कर में आप भाग रहे होते हो, ये पता ही नहीं चलता कि साथ कौन किसके साथ शुरू किया था, कौन साथ है कौन पीछे रह गया, पता ही नहीं है, बस भाग रहे हो।
0: साइकिल वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई बहुत छोटी सी चीज है कि हम जिसको भाग रहे हैं वो पीछे, वो हमारे आगे चल रहा होता है कभी कभी। ठीक है,
1: या अक्सर औकात ऐसा होता है जिनके लिए भाग रहे होते हैं ना, जैसे बच्चों के लिए। अब मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी रील देखी थी, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, बच्चों के जो खेलने कूदने के दिन थे वो गुम हो जाएंगे। आपके पीछे जब वो भाग रहे थे और आप टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि आपकी ऑफिस की ईमेल्स थी, आपने काम पे जाना था, आपने करना था, आपने वो करना था, आपके फलाना फलाना काम थे, आफ्टर 20 ईयर्स वो आपसे भाग रहे होंगे, आप फिर अकेले होगे जैसे वो अकेले थे।
0: ना कि वो पहले वो अकेले थे फिर हम अकेले होंगे, हाँ। उनके साथ के लिए, ठीक है, तो दोनों ही चीजें जो है,
1: क्योंकि आफ्टर
0: 20 इयर्स के बाद वो खुद जो आज हम कर रहे हैं वो आफ्टर 20 इयर्स के बाद वो करेंगे,
1: साइकिल ऑफ लाइफ बना लिया,
0: उनकी अलग उलझने होंगी।
1: अल्लाह ताला खैर वाफित का मामला रखे भाई, हमारे पास इतनी है तो उनके पास तो पता नहीं क्या ही होना है, मुझे बहुत डर लगता है।
0: नहीं, बस यही है कि आज बच्चों को एक एक साल दो दो साल हम लोग यहाँ होते हैं, अपने मुल्क से दूर होते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, खैर अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क यहाँ लिखा हुआ एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं सही मायनों में एक इस चीज को, अगर ये यहाँ पे लोग हम सब काम कर रहे हैं तो एक तरह से ये एक शहादत दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपने सारे घर के लोगों से, अपने परायों से दूर, को किसकी फौत हो जाती है, किसकी शादियां हो जाती है,
1: पता ही नहीं चलता, नहीं
0: तो पता ही नहीं चलता, तो एक तरह से हम भी आदत होती है यहाँ पे, हम अपनी अपनी नफ्सियात को जो है पता नहीं कहाँ कुर्बान कर
1: रहे हैं। हाँ, हाँ, सही सही
0: यही है बस। अल्लाह ताला
1: अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। चलें जी अपना जी सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच,
2: थैंक्स अ लॉट आपकी कॉल के लिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रेंज तो हम बात करें कि क्या ज़रूरी है कि हम सक्सेस हासिल करें, उसके लिए अपना सुकून जो है वो सैक्रिफाइस कर दें। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: नसीम भाई कैसे हैं आप? नसीम भाई ये तो बताएं ज़रा कि आज नाश्ते में क्या खाया था? गुमशुदा तलाश किसकी तलाश थी?
3: मैं भेजा हूँ एक फोटो।
2: अच्छा वो देखते हैं, हम देखते हैं अभी, देखते हैं बिल्कुल कि आपने क्या फोटो भेजा है।
1: कहीं रेक्स की तलाश में तो नहीं है ये भी?
2: अच्छा इस गुमशुदा की तलाश है।
1: और इतनी तो कोई भयानक तस्वीर, इतना तो कोई भयानक पोज। अच्छा भाई ये बताएं कि आपसे अगर पूछा जाए कि क्या बिजी रहना हमेशा सक्सेसफुल होने की निशानी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे?
3: बिजी रहना सक्सेसफुल नहीं, बिजी रहना मैनेज करना। अगर मैनेज नहीं कर रहे खाली
1: खाली चल रहे बस,
3: सही
1: सही सही सही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप सक्सेस किस चीज़ को लेते हैं, क्या चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेसफुल होना है, किस किस चीज़, क्या चीज़ है आपके लिए ऐसी?
3: टारगेट पूछ रहे हैं या फिर कुछ
1: और? टारगेट बता दें आप अपना।
3: टारगेट तो है लेकिन वो बताने वाला नहीं, लेकिन सक्सेसफुल आप किस चीज़ को टारगेट रख के उसके जस्तजू में है, उसके तलाश में है।
1: अच्छा आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए अपना सुकून कुर्बान करना पड़ता है इंसान को?
3: बिल्कुल, अगर आप कुर्बान नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे
1: हो? ये एक बात है।
3: कहते हैं कि मन जतो जता जिसने कोशिश की उसने पाया।
1: सही। चलें जी
3: और दरिमा
1: और तो कुछ नहीं भाई, और तो बस यही पढ़ रहे। चलिए जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आसिफ भाई, आसिफ भाई बोल रही हूँ, नसीम भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
2: चलिए जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये मतलब सुकून क्यों?
1: मैंने एक चीज पढ़ी
2: थी, सक्सेस आपको चाहिए, कामयाबी चाहिए, कामयाबी और सुकून
1: दो अलग अलग चीजें हैं।
2: अलग अलग चीजें तो हैं लेकिन
1: ये दोनों साथ चलती हैं। मैंने एक जगह एक चीज पढ़ी थी, एक कोट पढ़ा था मैंने आज से तकरीबन कितने 10-12 साल पहले पढ़ा था, और उसके बाद से ना वो चीज मेरे दिमाग में ऐसी फंस गई है, अटक गई है कि अब जब भी मैं अपने आप को लो फील करती हूँ ना, खासतौर पर किसी चीज को अचीव करने के चक्कर में, तो मेरे दिमाग में वो चीज खटकती है, वापस से आती है। वो ये थी कि इफ यू वॉन्ट समथिंग यू नेवर हैड बिफोर, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड बिफोर। और उसके लिए वो घूम फिर कर बात ही जाती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, और कंफर्ट जोन में बहुत सुकून होता है।
2: एग्जैक्टली, नहीं कंफर्ट जोन एक सुकून एक अलग तरह का है, लेकिन हम बात करें ना अगर मेंटल पीस की इन केस, तो उधर सक्सेस है वही जिसमें आपको मेंटल पीस भी साथ साथ मिल रहा हो, तो वही सक्सेस है ना। अदरवाइज फिर तो चीजें आधी अधूरी हैं।
1: हाँ, अब कुछ लोगों का जुनून इस हद तक बढ़ जाता है, अगर मिसाल के तौर पर हम लेना कि मिसाल के तौर पर आप कह लें एक शख्स प्रमोशन के लिए 12 घंटे काम कर रहा है, कुछ सालों बाद उसकी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाता। एक चीज आप अचीव कर सकते
2: हैं, सक्सेस नहीं है।
1: तो आप सक्सेस के लिए
2: सही डेफिनेशन जो है ना हमें बनाना बहुत जरूरी है।
1: यही तो बात है कि आपको पहले ये प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आप अपनी फैमिली को खुश रखो, या आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँ। वो जैसे आसिफ भाई बात कर रहे थे ना कि इंसान का जो है ना चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया और प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। पहले भी लोग कमाते थे लेकिन फिर भी खुश रहते थे, अब जो है लोगों की हसरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो वांट्स हैं, वो नीड्स नहीं है। अगर पहले के लोगों को कंपेयर किया जाए तो वो नीड्स में खुश होते थे, यहाँ पे लोगों की वांट्स भी पूरी हो रही तब भी वो खुश नहीं हो रहे,
2: ये प्रॉब्लम,
1: क्योंकि उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो
2: उसे होता आप सक्सेस थोड़ी कह सकते हो, सक्सेस
1: वो बिल्कुल ऐसे ऐसे आग लगती है ना जंगल में तो हर चीज खाती चली जाती है, खाती चली जाती है।
2: अच्छा मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हमें तो लाइब्रेरी का, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?

0: सफा जी और आप दोनों को वेलकम यू मैटर में. हैप्पी संडे मॉर्निंग. कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड? मेरा तो सोते हुए गुजरा सफा.
1: मेरा तो ऐसे गुजरा है जैसे मैं किसी मिलिट्री ट्रेनिंग पर थी.
0: लेकिन मेरा सोते हुए गुजरा. और कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए अपना सुकून खोना पड़ता है, कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं. वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तभी कामयाबी मिलती है. हाँ, कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले जिन्हें सुकून और सक्सेस दोनों एक साथ मिलते हैं बिना कुछ खोए, लेकिन बहुत कम. ये इनका कहना. अच्छा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग मतलब एक चीज है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना. ठीक है, वो तो सही है. कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले तो आपने बेसिकली काम किया, हार्डवर्क किया. लेकिन अब हार्डवर्क करके आपका सुकून क्यों खत्म हो जाएगा? सुकून चेंज है ना, पीस. आप मतलब जहनी तौर पर पुरसकून रहते हो, आपकी जिंदगी में कोई गिल्ट नहीं होता. मुझे ये लगता है सुकून ये होता है. ठीक है, या फिर आपको कोई पछतावे नहीं है, आप सुकून की नींद सो सकते हो.
1: मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो ये कह सके. लोग पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं भाई इनर पीस ढूंढने के लिए. सहराओं के सफर कर लेते हैं लोग इनर पीस ढूंढने के लिए, मुतमईन होने के लिए. वो इनर पीस वही होती है ना कि आप जिंदगी से मुतमईन हो जाओ. और मुझे नहीं लगता, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में 1% भी कोई ऐसा शख्स है जो ये कह सके आकर कि भाई मुझे इनर पीस मिल गया. वो मैंने एक मूवी देखी थी, बच्चों की मूवी थी, कुंफू पांडा. उसके अंदर ना वो इनर पीस ढूंढता है. इनर पीस क्या होती है? अब वो इनर पीस हर किसी के लिए डिफरेंट है. जो मेरे लिए वो लाजमी नहीं है आपके लिए होगी. क्या पता आपके लिए एक पोजीशन पर आना, फॉर एग्जाम्पल जॉब में एक पोजीशन पर आना आपके लिए इनर पीस हो. लेकिन क्या पता मेरे लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इनर पीस हो. क्या पता किसी के लिए पैसा हो. क्या पता किसी के लिए क्या चीज
0: हो. सकता है डेफिनेशन अलग अलग हो, लेकिन मेरा यहाँ पे यही एक मतलब कहना है कि इनर पीस जैसे कहते हैं पुरसुकून. अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार आपके पास बहुत पैसा होता है लेकिन आपको सुकून की नींद नहीं आती. आपको कोई ना कोई परेशानी खाई जा रही होती है, कोई ना कोई कोई ऐसी चीज होती है, कोई टेंशन होती है, सब कुछ होता है. तो यार अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब आप पुरसुकून हो. अगर आप पूरे दिन काम करते हो, सही है, पूरे दिन आप थके हारे हो, सब कुछ है, सारे काम करते हो और आप रात में सोते हो, आप पुरसुकून सो जाते हो. आपके दिल में कोई ऐसे ना मतलब दूसरों को लेके ना हसद है, ना जलन है, ना प्रॉब्लम्स है, ना आप किसी की जिंदगी से चल रहे हो, ना आपकी जिंदगी में कोई रिग्रेट्स है, ना आपको किसी से कोई कोई
1: नहीं है.
0: ठीक है, इस तरह का कुछ भी नहीं है. तो इसका मतलब सुकून है.
1: लोग इस जमाने में यही डेफिनेशन तो भूल गए. हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सोते हैं ना रात के टाइम. हम जब सोने लगते हैं, आंखें बंद करने लगते हैं तो एकदम से आपके दिल से निकलता है, मुंह से क्या, दिल से निकलता है आपके अल्हम्दुलिल्लाह. लोगों के पास से वो अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड गुम हो गया है माविश. क्योंकि लाइफ इतनी बिजी चल रही है. हर किसी ने, मैंने जो सवाल किया था ना कि आपको लगता है कि बिजी रहना जो है हमेशा सक्सेस की निशानी होती है, इतनी बिजी चल रही है सबकी लाइफ के आपको वो शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड याद नहीं रहता. और ये एक हकीकत बात है कि अल्लाह ताला ने कहा है जिसको मैं जितना देता हूँ अगर तुम उसके अंदर खुश हो जाते हो तो मैं तुम्हें और वसी कर, तुम्हारे दिल को वसी कर देता हूँ. और अगर तुम शिकायत करते हो, नाशुक्रपन करते हो, तो मैं तुम्हारा दिल तंग कर दूंगा.
0: एग्जैक्टली. और वो सक्सेस है.
1: और वो मजे की बात है, वो चीज के अंदर नहीं है. वो कहा गया दिल तंग कर दूंगा, दिल.
0: हाँ, वो यही. अच्छा, आजकल मैं बहुत अरसा हो गया मतलब सुनते हुए डॉक्टर सुफियान, मैंने तुम्हें भी भेजी थी वीडियो उनकी और अपने शो में भी रिकमेंड की थी, तो उनका मैं सुन रही थी. वो किसी से कह रहे थे, किसी एथियस्ट से उनकी बहस वगैरह हो रही थी. बहस तो नहीं, वो बड़े आराम तरीके से समझा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं. तो उस पर कह रहे, उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं ना बड़ा भटका हूँ चीज़ों के पीछे, बहुत भटका हूँ, बहुत भटका हूँ. आज अब जितना सुकून में मुझे देख रहे हैं ना, मैं पहले नहीं था, अब मैं उस सुकून की स्टेट में हूँ. बंदा काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसके साथ वो सारी रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसके पास सुकून है और वो कामयाब भी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे हम कंफ्यूज हैं सुकून को लेके और मेहनत को लेके. मेहनत जो है वो एक अलग चीज़ है, सुकून अलग चीज़ है.
1: सही.
0: चल हम देखते हैं हमारे साथ कॉलर वो क्या कहते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
0: मुझे लगा आपने फोन बंद कर दिया हमारे मुंह पे.
2: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, शुक्र है. वैसे आपका डिस्कशन खुद ही इस सवाल का जवाब आपने उसमें दे दिया है. और इंसान हर चीज़ों को अच्छे तरीके से करके, लेकिन बाज़ का एक एज या इस तरह होती है ना, जैसे वो कहते हैं ना वहाँ पहुँचने तो धक्के मार के कुछ करके इस तरह पहुंचा जाता है, तो अफरा तफरी, तो वो बेसुकूनी समटाइम हमें खुद क्रिएट कर लेते हैं. लेकिन ये तजर्बे से, वक्त से हमें समझ आती है. तो बाकी बिजी रहना और बहुत मसरूफ रखना भाई.

या आप सुबह से शाम दो चार पाँच छः क्या कहते हैं प्रोग्राम कर लें कि मैं इस पोजीशन में पहुंच जाए, तो बोले नहीं ये मुमकिन नहीं, आपका प्रोटोकॉल है, आप इसमें इतना ही कर सकते हैं और यही आपके पैरामीटर।

0: हो रहा है सबका यही चल रहा है भाई
1: तो इस वजह से वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं और खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। आप अपने आप पे रिलैक्स हो, अपना काम अच्छे तरीके से करें, इसका मतलब ये नहीं अच्छे तरीके से करें, उसमें अच्छी कोशिश करें और अपने आप को रिलैक्स और पुरसुकून रखेंगे तो नेक्स्ट डे आप इस काबिल होंगे कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे।
2: अच्छा ये आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो आपने कहा ना कि ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे हर अपॉर्चुनिटी को ना आप ये मत समझे कि मुझे उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अफरा तफरी वाला जो आपने कहा ना, वो जो अफरा तफरी वाला रहता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है जो वो ओवरलोड कर देता है आपको चीज़ों से, उससे थोड़ा सा हल्के हो जाएं। उससे मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ जो आपके सामने आए आप उसको बस अभी बदलो नहीं, मुझे अभी चाहिए। एक उम्र होती है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस अभी सब कुछ अचीव करना है। उसके अंदर अगर वो चीज़ आपने काबू कर ली ना अपने अंदर की, वो मैं मुझे नहीं पता उसे हसरत कहेंगे, उसे जुनून कहेंगे, क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाए उसके लिए, लेकिन अगर वो चीज़ आपने उस वक्त के लिए थोड़ा अपने दिमाग को दिल को संभाल लिया ना कि हाँ वन थिंग वन डे एट अ टाइम, तो उससे आपका मेंटल और इनर पीस सेक्रीफाइस नहीं होता। अचीवमेंट आप कर लेते हो, सक्सेस तक आप पहुँच जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन आप थोड़ा अपने पेस में रह कर जो है ना फिर वो चलते हो। फिर
1: इसमें लक का भी बड़ा हाथ है। अगर आप देखें ना, कुछ लोग यंग एज में बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उनके बड़े कोई साथ वाले हैं, यार मेरी तो उम्र गुजर गई, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये तो झट से आया और इसको ये मिल गई नसीब से ही। और उसके अलावा कुछ लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि दूसरों को जिच भी करते हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास कुछ करने को नहीं है, हर एक का है फॉर एनी रीजन। वो ऑफिस यानी कहीं उनको फैसिलिटी भी है ना कि वो ऑफिस के बाद या टाइमिंग के बाद भी बैठे हैं बिला वजह, वहीं पे खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या व्हाटसोएवर स्पेंडिंग टाइम, तो अगलों को जिता रहे हैं। मैं तो जॉब के बाद भी 2-3 घंटे तक बैठा रहा। अब कोई अगला पूछे भाई क्यों बैठे रहे, क्या कर रहे थे, किससे कहते हैं नज़र, क्या होते हैं ना मेरे मेरी जॉब का टाइम ख़त्म है, ये कर लिया मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हो भाई, मैं तो 2 घंटे बैठा रहा भाई, बैठे रहे आपका अपना मसला है, क्यों बैठे रहे। तो इस तरह के एटीट्यूड जो दूसरों को ना तंग करके बेसुकूनी में और परेशानी में, अगला बंदा अगर कोई सीनियर है हो सकता है मुंह पे ना कहता हो, दिल में तो वो उसको कोस ही रहा होगा कि भाई आप बैठे रहे हैं, आपके बीवी बच्चे इधर नहीं है या घर में वो चैन नहीं है आपको, तो आप इधर सुकून की तलाश में बैठे हैं, हमें घर में दूसरे काम है।
2: बिल्कुल सही।
1: तो इस वजह से तो इसमें आप खुद भी सुकून से रहें और दूसरों के लिए भी सुकून रखें उनको भी, और
2: अल्लाह करे आपकी इस बात को लोग सुन रहे हो कि बेटा खुद भी खुश रहो, ना टेंशन देने का ना लेने का।
1: अच्छा यहाँ ये इसको ना कुछ लोगों ने तकिया कलाम उल्टा बनाया हुआ है, लेने का नहीं देने का।
2: हाँ। नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है वो खुश वही लोग रहते हैं जो ना टेंशन लेते हैं ना देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे भाई, वक्त ऐसा कोई चक्कर चलाता है ना कि उस गड्ढे में आप जरूर गिरते हो किसी ना किसी दिन जाकर, अगर आपने दूसरों के लिए खड्डा खोदा हो तो।
1: नहीं, अच्छा इन चीजों में ना आपको ये फिल्म ड्रामे ये इनके जो डायलॉग हैं यंग एज में कई लोग इसको ले लेते हैं समझे बिना और इसको हल्का फुल्का वो अपना ना इंजॉय या वो करते हैं, वो कहते हैं ना कि इनके सोशल
2: मीम्स बना लेते हैं।
1: हाँ, उसमें इन चीजों को उनको इतना शौर नहीं होता। और वही बात है, आप जब किताबें और बुक्स पढ़ें, मैंने अभी देखें हर चीज़ अल्टीमेटली इसी पर आ रही है। देखें बेड टाइम स्टोरीज, अब बेड टाइम स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन जोर आके खुल जाती है, आप बेसुकून हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन बेड टाइम स्टोरीज क्या आप रिलैक्स होते हैं, अच्छी फीलिंग्स होती हैं, और उसमें फिर वही फैमिली सिस्टम, आपके नाना नानी दादा दादी, बेसिकली इनमें फीमेल्स का ज़्यादा करेक्टर है, नानी है या दादी है या जिनके पास बच्चे उनको सुनते हैं, यानी एक तो ये चीज़ें वापस मेरे अबू अल्लाह जन्नत बख्शे उनको कहते थे बेटे, पहले जो लोगों के पास, अभी जो आपके पास क्विक रेफरेंस होते हैं ना, उनके पास सदियों के तजर्बात होते थे उन चीजों को ना नसल दर नसल, वो जो कोई बात करते थे ना, अभी तो वो क्विक कहते हैं ना इस तरह है, सम टाइम उनको रीजन का नहीं पता, इतनी साइंटिफिक नॉलेज या वो नहीं थी, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता था कि ये बात इस तरह हो रही है, इन डेप्थ जैसे नहीं पता चल रहा, लेकिन वो तजर्बात सदियों के थे। बात बिल्कुल सही है। اسی طرح انشاءاللہ ریلیکس رہیں اور الحمدللہ. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی

0: एक क्रिश्चियन खातून, शी इज वेरी नाइस. अभी मैंने जुमे में भी उसका तस्करा किया था तलाल हाशमी के प्रोग्राम में, इसी रेफरेंस से चल रहा था. तो वो कह रही थी कि मैंने ना ये ऑनलाइन यानी कुछ मैं इंस्पायर हुई हूँ तो कुरान ना मैं तर्जुमा आयत बाय आयत मैंने ये सीरीज शुरू की है, मैं खुद पढ़ूंगी खुद समझूंगी.
1: हाँ जी.
0: तो वन सूरतुल बकरा पे थी ये, लास्ट फ्राइडे को मैंने देखा, 190 से 194 आयत पढ़ के बड़ी इमोशनल हो गई, रोने लग गई. कहती है हमें जो बताया गया है वो इस बात पे थी कि जहाँ काफिर मिले मार दो, ये तो बताया ही नहीं है कि क्या कंडीशन है, बल्कि तला साहब ने उसको कहा कि ये सुलह हुदैबिया या कोई कुफार से इनका मुआहदा था कि इस तरह वो पासदारी ना करें, आप पे हमलावर हो या इस तरह करें इस कंडीशन में, वरना उनके साथ रहम का सलूक करो. तो उन्होंने कहा कि हमें तो मिसगाइड किया गया, ये तो ऐसी बात ही नहीं है. तो कहने का मकसद मेन है कि आप खुद चीजों को पर्सनली जाने, खुद उनके ऊपर एफर्ट करें, खुद टाइम करें. दूसरों की सुनी सुनाई के ऊपर नहीं कि इसने कहा है मार दो, यार क्या मार दो, सो व्हाट रीजन, के जब वो आपको मारने आए अपने आप को सेल्फ डिफेंस में, और फिर भी उनके साथ रहम का सलूक करो. इस पे बड़ी वो मुतासिर हुई थी कि वार टाइम में आपने दूसरों के साथ किस तरह सिंपेथाइज करना है. तो ये हमारे मजहब की बड़ी वो, बल्कि वो कह रही थी कि मैं अपने जो नेबरिंग मुस्लिम है उनके साथ ना मेरा रवैया अच्छा नहीं था, इसको पढ़ने के बाद मैं उनसे सॉरी करती हूँ. तो हम लोग खुद अपने दीन को पहले खुद अच्छी तरह समझें, दूसरों के साथ करें. वो लोग पढ़ते हैं अकल से, समझ से, टाइम लगाते हैं, और मुझे सरप्राइज हुआ कि इन डेप्थ उनकी उनकी समझने की सलाहियत कितनी अच्छी है हमसे.
1: बिल्कुल. अच्छा, ये भी इनर पीस से ही ताल्लुक रखता है कि इन चीजों को करके ना फिर आपको दिली सुकून मिलता है.
2: एग्जैक्टली. बिल्कुल.
0: आप यहाँ फनार में जाए ना, यहाँ मैं एक दफा फनार में कतर में जब गया था तो वहाँ आपको ना वो एक एक्सप्लेनेशन या उसके ऊपर ना बैठे हुए थे मुसलमान, यानी आप कह लें कि मुसलमान हुए इसको कोई चर्चा हुआ था, वो एक्सप्लेनेशन कर रहा था. उसने कहा कि हम लोग इसको समझ के, आप लोग तो है ना बाय बर्थ मुसलमान के घर पैदा हुए, हम लोग समझ के ही उसको करते हैं, हम उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं, फिर हम उसको ये जो बात कर रहे हैं याद ही बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं. हम उसकी बड़ी इसकी ना वो कीमत भी अदा करते हैं, और इसको हम लोग बड़ा कीमती जान के इसकी हिफाजत भी करते हैं.
1: ये मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे वो फल होता है ना, कोई सोचें अफ्रीका में जो फल उग रहा है और वहाँ पे कंटिन्यूसली वो फल मिल रहा है लोगों को, तो वो उसी कदर भूल जाते हैं. लेकिन दुनिया के बिल्कुल एक ऑपोजिट हिस्से में जहाँ पे वो फल नज़र ही नहीं आता, फॉर एग्जांपल आम कहीं किसी ऐसी जगह पर ले जाएं जहाँ पे एक्सटेंट हो आम, मतलब आपको नज़र ना आए आम, तो लोग उसी कैसे कदर करेंगे.
0: तो बहरहाल चलें. ओके जी, अल्लाह
2: हाफिज़. चलें जी ज़ुल्कर्नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू.
0: दुआ कीजिएगा.
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर. चलें जी, थैंक यू. राइट, तो इसके साथ ही हमने ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक दो मैसेजेस तो पहले के आए हुए तो वो शामिल कर देती हूँ. अस्सलाम वालेकुम मैम, टॉपिक के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने गांव में, अपने विलेज में, अपने अल्लाह के इलाके में, आई थिंक इलाके में बहुत मशहूर हूँ. दूसरी बात ये कि कामयाबी का तो पता नहीं है, वो अल्लाह का काम है, क्योंकि हम कामयाब होने वाले नहीं हैं, हमारे चेहरे कामयाब होने वाले नहीं हैं. ओके, और मेरी कामयाबी वो होगी मैम कि मेरे पास बेइंतहा पैसा हो, और फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए. आपके लिए ट्रैक एंजॉय कीजिए, साथ रहिए, सुनते रहे हैं फिर 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी
2: राइट वेलकम बैक. एक दफा फिर हम लोग आपके साथ आ गए हैं और हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं. कॉल भी आप हमें कर सकते हैं जब तक आप कॉल मिलाते हैं, जब तक हम मैसेज शामिल कर लेते हैं. आसिफ अंसारी कहते हैं, सब कुछ अगर जिंदगी में मिल जाएगा तो ख्वाहिशें किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जीना मजा देती है.
3: ये होता है मिसाल के तौर पर कहा जाता है ना कि किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता.
2: हाँ,
3: देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट एंड देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन.
2: मैं अभी घर पे भी हम लोग की बात कर रहे थे कि जब आपको सब मिल जाता है ना तो वो मजा नहीं रहता,
3: आप बोर हो जाते हो.
2: हाँ, जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना, ख्वाब उस वक्त का जो मजा होता है ना वो फिर उस वक्त का नहीं होता जब चीजें मिल जाती हैं. फिर आप कहते हो यार अब नेक्स्ट क्या.
3: मामेश, मैंने मुझे वो बात याद आ गई कि जो मजा हसरतों में है वो पा लेने में कहा, जो मजा हसरत करने में है वो पा लेने में कहा.
2: उसको वो भी एंजॉय करना चाहिए, मुझे तो लगता है ऐसा ना कि सुकून छीन रही हो चीज, क्या पागल हो रहे हो. नहीं नहीं भाई, एंजॉय करो उस फील को, उस चीज को एंजॉय करो. क्या ड्रीम है आपके पास यार.
3: मुझे ऐसा लगता है सुकून जो है ना वो माइंड सेट होता है.
2: हाँ,
3: आप चाहो तो आप छोटे से घर में भी, दो कमरों के घर में भी सुकून से रह सकते हो. और आप अगर ना चाहो तो आपको अगर मैं वॉशिंगटन डीसी के किसी बहुत बड़े महल या मेंशन में बिठा दूं ना तब भी आप वहां बेसुकून रहोगे.
2: ऐसा ही है. कॉलर हमारे साथ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम अल्लाह बरकात आप दोनों को भी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह.
2: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं भाई.
4: मोहम्मद आजम.
2: मोहम्मद आजम आपकी आवाज ना बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा सा कुछ करीब अपना मोबाइल फोन कर लीजिए.
4: नहीं, करीब ही है मोबाइल तो.
2: अभी थोड़ा बेहतर हुआ है लेकिन फिर भी कुछ कसर है अभी भी.
3: मुझे लगता है ब्लूटूथ. हाँ, अब
4: कसर तो रहेगी.
2: सही हो.
4: देखो, कसर तो हर चीज में ही रहती है.
2: फलसफा आ गया.
3: क्या तो बात कही आजम भाई आपने.
2: जी आजम,
4: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: अल्लाह का शुक्र भाई,
4: अल्लाह खुश रखे.
3: क्या कहना चाहेंगे.
4: मैं आपकी बात से जो है ना इत्तेफाक करता हूँ कि अगर माइंड ओके है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, वो चाहे ड्रीम है तो वो सही है, बिल्कुल ठीक है. अगर माइंड आपका अपसेट है तो आपको जहां मर्जी किसी भी जगह पे, जैसे आप कह रही वर्क कोई लेके दे दें या जैसे भी, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा.

0: सही, सारा माइंड का गेम है, माइंड का,
1: माइंड का गेम है, माइंड ओके है।
0: अच्छा माइंड को ओके कराने में भी हमारा सबसे बड़ा हाथ होता है, मजे की बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो,
0: हमारा हाथ होता है माइंड,
1: मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना।
2: जी भाई हैं क्या, चले गए?
1: हाँ जी हाँ जी,
2: अच्छा,
1: मैं
2: है,
1: बोल रहा
2: हूँ। अच्छा अच्छा सही से, जी जी
1: कहाँ जाएंगे हम, यहीं पे रहेंगे हम,
2: कहाँ जाएंगे जी भाई, तो और कुछ कहना चाहेंगे?
1: नहीं जी बस ठीक है, इसी तरह ही है, आपकी बातें सुन के बहुत जो है ना जी सबक होता है हमें, टीचर की तरह आप जो है ना हमें गाइड करते हैं सबको, FM 107 की जो टीम है माशाल्लाह।
2: चले नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट कि आपने कॉल किया, आपने बताया, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। तो आजम भाई का कहना है कि भाई ये सारा का सारा माइंड का चक्कर है, अगर आप माइंड को अपने पुरसकून रखोगे तो आप पुरसकून रहोगे, आप खुश रहोगे और सब कुछ सेट रहेगा, तो ये वाला सीन है। करजी सवाल एक दफा फिर हम अपना दोहरा लेते हैं, हमने आज आपसे सवाल किया था, क्या कामयाब होने के लिए अपना सुकून बर्बाद करना जरूरी होता है या फिर ये एक मिथ है, मतलब ये ऐसे ही कहा जाता है, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं आज। और मेरा अपना ये ओपिनियन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल भी चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी कामयाबी की डेफिनेशन पहले तो वही जैसे सफा कह रही थी कि हर बंदे की कामयाबी की डेफिनेशन अलग होती है, तो हाँ उस हिसाब से हो सकता है कि कोई मसला हो, मतलब कोई कुछ सोच रहा हो, किसी की बहुत ही एम्बिशियस किस्म की पर्सनालिटी हो, तो उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में इतना कुछ चाहिए हो उसे कि जब तक वो ना मिले, जब तक वो इधर उधर परेशान ही घूमता रहे, उसको तसल्ली ना हो रही हो।
0: बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिंदगी में गोल सेट करते हैं, ये होता है, हम मुझे ऐसा लगता है मोस्टली तकरीबन हम सब ने ये एक फेज देखा होगा कि हम एक गोल सेट करते हैं, उसको अचीव भी कर लेते हैं, वक्ती तौर की खुशी होती है, उसके बाद हम बेचैन रहते हैं।
2: हाँ ऐसे ही है, मतलब अगर आपके
0: पार्ट ऑफ लाइफ
2: गोल्स जो है ना वो टेम्पररी और इस तरह के होंगे जो अब वर्थ होनी चाहिए ना, वही वाली फिर वही वाली बात आ जाएगी, ये हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। अच्छा जी, तो इस वक्त हमारे साथ हैं एक कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर भाई?
3: जी जी
2: जी मुदस्सिर भाई, काफी दिनों से गायब रहे आप, कैसे?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
2: सब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है।
3: आवाज कम आ रही है, सिर्फ आपको कम आ रही है, सभी कम आ रही है?
2: सफा
0: नहीं, ये मुझे लग रहा है आपने ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है, तभी ये ब्लूटूथ में मसला होता है।
3: अभी सही है,
2: बेहतर है, हाँ बेहतर है
3: जी। कैसे आप लोग, ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक,
0: बिल्कुल खैर आफियत से
3: जी। आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम जो कामयाबी के लिए सुकून का होना चाहिए नहीं होना चाहिए ना, ये इसमें दो बात जरूरी होती है ना, जब एक इंसान कामयाबी की तरफ जाता है ना, वो कामयाबी उसकी सारी कामयाबी क्या, हमारा सिर्फ हम पैसा कमाते हैं ना, पैसा कमाते हैं, अगर हम उसके साथ अच्छे काम करते हैं, टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, तो लाजिम कामयाबी भी है सुकून भी है। ज्यादा लोग हम देखते हैं वो प्यास पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन उस उन लोगों का सुकून इससे नहीं होता है कि फिर वो दूसरे रास्तों पे निकलते हैं। अगर आपके साथ पैसा भी है, कामयाबी हो गया, तो अच्छे काम करोगे तो लाजिम सुकून को सुकून होता है। फिर मसलन एक घर है, एक घर में सुबह की अजान होता है, एक घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता है, उसके साथ जितना भी पैसा होगा तो लाजिम उस घर में तो सुकून नहीं आएगा। तो उसके साथ अगर तुमने सुबह की नमाज के जाओ तो शुरुआत सुबह की नमाज से करोगे तो कामयाबी भी है और सुकून भी है।
2: सही हो गया, बिल्कुल सही।
3: ओके
2: जी चलें, ठीक है बस इतना ही। चले जी मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा खैर बहुत अच्छी बात की आपने, मुख्तसर लेकिन अच्छी।
0: अच्छा ये इन्होंने दीनी लिहाज से बात की और ये एक हकीकत बात है कि जो सुकून आपको दिल का और रूह का दीनी एस्पेक्ट से मिलता है ना, वो दुनिया तो नहीं दे सकती। जिस दुनिया में आपको भेजा गया है आजमाइश के लिए, आप उसमें सुकून कहाँ से ढूंढते हो?
2: एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब हम गलत चीज गलत जगह पर ढूंढते हैं बेसिकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।
2: जी कौन है हमारे साथ?
4: फजल।
2: फजल

0: क्या हाल चाल है भाई आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन टॉपिक आपने चूज किया है,
0: बहुत शुक्रिया भाई।
1: देखिए मुख्तसर सी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमको जो दुआ बताई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार, इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला हमको सिखा रहे हैं कि दुनिया मांगो, फिर आखिरत मांगो, फिर जहन्नम के आग से निजात। तो अल्लाह ताला खुद हमको प्रायोरिटी सिखाए हैं कि पहले दुनिया की कामयाबी मांगो, फिर आखिरत की कामयाबी। उसका रीजन ये है, देखिए आप फाइनेंशियली साउंड होंगे ना तो फिर आप दूसरी चीजों पे यानी आखिरत पे, दूसरों की चैरिटी वगैरह पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैं लोगों को अक्सर एडवाइस देता हूँ, एक काम करो एक वक्त पे, लेकिन उस काम को ऐसे करो कि आगे आपके लिए आसानी। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं तो जो टास्क बॉस ने दिया है वो इतना बेहतरीन, देखिए 10 चीजें करोगे तो एक भी अच्छा नहीं करोगे, राइट? एक टास्क को पकड़ो, एक टास्क को पकड़ो, इतना बेहतरीन तरीके से उसको करो कि आपके बॉस के मुंह से तारीफ निकलना हो जाए। दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो फर्स्ट कस्टमर का काम उठाओ और इतना बेहतरीन तरीके से प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, जो भी वाइज, इतना अच्छा करो कि वो कस्टमर खुद आपको 10 कस्टमर लाके दे। इससे क्या होगा ना, वो जो कहते हैं ना वर्क एंड लाइफ बैलेंस, वो मेंटेन होगा। लोग गलती क्या करते हैं, 10 चीजों के पीछे भागते हैं और वो बेचारे 10 में से एक भी सही नहीं करते। मैं बोलते 10 के पीछे मत भागो, एक साथ अपने हाथ में दो, उसको बिल्कुल निचोड़ दो जैसे नींबू को निचोड़ते हैं। यानी इतना बेहतरीन तरीके से करो कि आप भी सेट,
2: पूरी डिवोशन के साथ।
1: अगर मैं एक टास्क अच्छे से करता हूँ ना तो दुनिया बाद में पहले मैं खुद सेटिस्फाई हो जाता, हाँ भाई मैंने बढ़िया काम किया। और इंशाल्लाह उसके अब मेरे साथ होते हैं ऐसा, मेरे मैक्सिमम कस्टमर मेरे को ये बोलते हैं कि भाई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, मैं 3 दिन का टाइम लेता हूं टास्क का, अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 दिन में दे देता हूं। तो आप सोच सकते हैं कि कस्टमर कितना खुश होते हैं, अरे यार आपने तो 3 दिन बोला, आप तो 1 दिन में दे दिया, आप तो 2 दिन में दे दिए। अगर मुझे लगा ये काम 3-4 दिन लग जाएगा तो मैं 1 हफ्ता बोलता हूँ, 1 हफ्ता बोलता हूँ। क्यों? देखिए एक ह्यूमन साइकी है, आप उसको अगर 1 हफ्ता बोलोगे ना तो वो 7वें दिन आपसे फॉलो अप शुरू कर देगा।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: आपको भी यही करना है। बॉस ने पूछा ये टास्क कितने दिन लगेगी, आपको लगता है 2 घंटे में होता, आप 4 घंटे बोलो, 4 घंटे में होता आप 8 घंटे बोलो, 1 दिन में होता आप 2 दिन बोलो, भले ही वो नाराज हो जाए, इतनी देर क्यों लगती है सर, थोड़ा मेरे पास मैं बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहाने बनाओ। अगर आप टाइम पहले करके दोगे ना तो मामला ही बदल जाए।
0: अच्छा वैसे ये बात बिल्कुल आपने फजल सही बोली है कि अगर आपने जो ना अपनी एक मार्केट वैल्यू बनानी है ना तो आपको ये करना पड़ता है, आपकी दयानत, आपकी ईमानदारी, आपकी जो मेहनत है ना, वो अक्सर क्या होता है आप देखते होंगे कुछ बिजनेस शुरू होते हैं और वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, और उसके पीछे रीजन ये होता है कि कोशिश होती है वो जो मुर्गी के जो सोने वाली अंडे देने वाली मुर्गी है ना उसको एक दफा में ज़िबा कर लिया जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस रखना या फिर कहीं मतलब ये होता है कि कीमत कुछ और रखी है और कुछ और ले ली और समझा ये जाता है कि शायद मतलब इससे ना मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस तरह की चीज नहीं चलती कभी भी।
1: हर एक चीज आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि रेडियो पे नहीं बोलना चाहिए। अब मैंने कुछ अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट किया फेसबुक पे, तो मुझे 6 घंटे में 176 मैसेजेस आ गए, मैंने वो एड बंद कर दिया। क्यों? अब देखिए 176 लोगों से मेरे को खाली रिप्लाई देने 24 घंटे लगे, मैं सोया नहीं 24 घंटे, मैं बोला पहले रिप्लाई दे, वो मिलने के लिए मुझे 15 दिन लगे। तो आई एम नॉट बीइंग इम्प्रैक्टिकल, अरे यार और आने दो, सत्यानाश हो जाए। मैंने बोला भाई इनको रोको, पहले इनसे डील करते हैं। देखिए लोगों में एक क्या, अरे फजल भाई के पास 176 कस्टमर आ गए, नहीं मैसेजेस आए। अब इसमें से एक्चुअल जिनके साथ मैंने बिजनेस किया सिर्फ 15 है।
0: सही,
1: आप समझ रहे हैं ना।
0: हाँ जी, हाँ
1: रेशियो चलता है, इंक्वायरी आती है, लेकिन ये इंक्वायरी जरूरी नहीं है सेल में कन्वर्ट हो जाए।
0: हाँ,
1: ये चीज समझना है। उसके लिए मैंने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 लोगों को जो काम करके दिया ना,
0: अब सेट वाला
1: होना शुरू हो गया।
0: सही, वेरी
1: नाइस, होना शुरू हो गया।
0: गुड,
1: तो हमको क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है,
0: हमको क्वालिटी के पीछे भागना है।
1: अक्सर बोलता हूँ बिजनेस में प्राइस के पीछे मत भागो, अमाउंट के पीछे मत भागो, क्वालिटी ऑफ वर्क के पीछे भागो, ये खुद ब खुद तुमको पैसा ला के
2: देगा. जिंदगी का भी यही हिसाब है भाई, जिंदगी का भी हिसाब है कि क्वालिटी जो भी आप कर रहे हो ना उसके अंदर आप इतनी क्वालिटी,
0: तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए. अगर आपकी मतलब आपको जो काम आप कर रहे हो उसके ऊपर फजल भाई ने बड़ी अच्छी

0: मत बोलिए कि एक काम करो लेकिन दिल लगा के करो खूब अच्छी तरीके से, उस पर फिर आप मुतमईन हो जाओगे, आपको कोई ऐसा मतलब ना दिल में चीज नहीं होगी।
1: ऐसे बोलता हूँ भाई, नींबू निचोड़ते हैं ना गन्ने की मशीन में, गन्ना डाल के निचोड़ते हैं ना, बस उसका आप पैसे निचोड़ते, यानी उसमें कोई खामी नहीं रहनी चाहिए।
2: और एक और चीज की कंसिस्टेंसी, जैसे अल्लाह ताला भी कहता है कंसिस्टेंसी पसंद है,
1: 100% सैटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने बढ़िया काम करके दिया, अब क्या करूं, अब कुछ नहीं करूं, अब अल्लाह ताला पे छोड़ दो, यू हैव डन योर जॉब, अब अल्लाह ताला पे छोड़ दो, दुआ करो अल्लाह से, या अल्लाह मैंने तो बेस्ट किया तो इसको कामयाब करने वाला, देखो फिर अल्लाह ताला आपको कैसी रहमत कैसी बरकत सब कुछ हो जाए।
0: वेरी नाइस, जबरदस्त पसंद, बहुत अच्छा, थैंक यू। जबरदस्त फजल, आपने मतलब एक तरह से ना पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज कर दिया, बहुत जबरदस्त, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो फजल हमारे साथ थे और फजल ने मतलब वाकई बड़ी मतलब हम जो बात जो मैं समझना चाह रही थी ना कि वो वाला जवाब वो फजल ने वाकई दिया है कि जरूरी नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप दुनिया में ना मतलब आपको सक्सेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप सक्सेस वाकई आपके पास होनी चाहिए, दुनिया में भी होनी चाहिए, दुनिया में होगी तो फिर आखिरत में सक्सेस होगी, लेकिन उसके लिए आप अपने पीस को अगर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दो तो फिर वो सक्सेस नहीं है, आप ये समझो कि करना क्या आपने। एक कॉल है हमारे पास, हेलो,
3: वालेकुम,
0: जी आखिरी कॉल, कौन है हमारे साथ?
3: अरे भाई आपका पहला कॉलर
0: रईस भाई, जल्दी से पॉइंट पे आ जाएं क्योंकि टाइम बड़ा कम है, तो ये जल्दी से बताएं मुख्तसर
3: क्या चल रहा है। मैं असल में बिजी था, मैं तो रेडियो तो ऑन किया लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे काम में वो गया, तो
0: चले कोई मसला नहीं, जल्दी से फटाफट बता दें क्योंकि आज बिल्कुल हमारे पास मुख्तसर टाइम है
3: भाई। आपका मौजू मैं थोड़ा सा सुन लूं आप लोगों,
2: हाँ वो कह रहे मौजू क्या है, मौजू ये है कि आप जरा बताएं कि इंसान दुनिया में सक्सेसफुल हो सकता है अपने पीस को, इनर पीस को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर।
3: हाँ सक्सेसफुल हो सकता है अगर आदमी अपना जद्दोजहद अपना मेहनत अपना ये लगन जो मतलब ये नहीं कि मतलब हर काम में मेरे कहने का मतलब है जो सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। अब हर काम में आपको बिना जाने हर एक उसमें अगर आप हाथ डालते रहोगे तो फिर वो आपका मतलब मजाक उड़ा जाएगा। ये भी बात है कि बंदे को हाला मैं किसी का मौजूद नहीं सुना हूँ, मैं अपने हिसाब से आपका
0: जबरदस्त
3: कि हर काम में बंदे को कि अब कुछ लोग हैं कि उनसे कहा जाए कि आपको ये काम मालूम, हाँ बिल्कुल एकदम मैं कर सकता हूँ इस काम को, इस तरीके से उसको अपने अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो उस काम को आप करें आगे बढ़ के, नहीं तो औरों से मशवरा करके या उस काम को अपने हिसाब से वो अच्छे से आपको मालूमात रहे तो उस काम में हाथ डालें, नहीं तो फिर उसको छोड़ दें दूसरों पे। जिसका हर काम कोई जरूरी नहीं है बंदा की हर काम कर ले हर एक बंदा,
0: बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल आपसे लंबी बात करेंगे, आज हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है।
3: एक बात बताना चाहता हूँ आपको, एक वीडियो भेजा था मैं वो मेहंदी लगवाने वाला भी स्किल था तो उसी हिसाब से मतलब ये कर रही थी तो आप वो देख लेना आपको पता।
0: चले ठीक है, चले बिल्कुल देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई। चले जी, इसी के साथ हमारा भी हो रहा है जाने का वक्त और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। तो आखिर में मुझे फजल की कॉल बड़ी जबरदस्त लगी, फजल ने बिल्कुल एक चीज मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं समंदर को कूजे में बंद कर दिया तो वो हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कॉल्स का मैसेजेस का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल एक और अच्छे से टॉपिक के साथ।
2: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

आज की किताब पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Apni dil ka khayal rakhiye. Aaj hamara mauzu hai dil ki sehat. दिल हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है जो मुसलसल खून को पूरे जिस्म तक पहुंचाने के लिए काम करता है। हम दिल के बारे में अमूमन तब सोचते हैं जब कोई मसला हो, लेकिन दिल की सेहत का ख्याल रोजमर्रा जिंदगी से शुरू होता है। दिल के लिए जो हमारी आदत हैं उन्हें देखना समझना बहुत जरूरी है। हम अपनी गिजा पर नजर डालें तो क्या आप या हम बहुत ज्यादा नमक तो नहीं लेते? क्या अक्सर तली हुई चीजें खाते हैं? क्या शुगरी ड्रिंक्स रोजाना लेते हैं? क्या सब्जियां और फल हमारी गिजा में शामिल हैं? क्या फिजिकल एक्टिविटी वो हमारी होती है? ये सवालात हमें अपने लाइफस्टाइल को समझने में मदद देते हैं। सॉल्ट नमक पर तवज्जो दीजिए। बहुत ज्यादा सोडियम बाज अफराद में ब्लड प्रेशर बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है, इसलिए खाने में इजाफी नमक डालने की आदत कम करने की कोशिश कीजिए। पैक्ड फूड के लेबल्स आप जरूर देखिए कि उनमें कितना सॉल्ट मौजूद है। दिल भी एक मसल है और ओवरऑल फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत अहम है। रूटीन इस तरह से होनी चाहिए कि जो बहुत सारे अफराद हैं अपनी एक्टिविटी और एक आसान सी एक्सरसाइज जैसे वॉक है उसी से शुरू कर दीजिए। और अगर आप काफ़ी अरसे से इनएक्टिव हैं, यानी कभी वॉक नहीं की, कभी एक्सरसाइज जो है वो नहीं की, तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए और फिजिकल कैपेसिटी के मुताबिक एक्टिविटी को ज़्यादा करते जाइए। वॉक को, एक्सरसाइज को दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर अपने दिल समेत मजमूई सेहत के लिए इसे क्विट करने, इसे छोड़ने पर गौर कीजिए। अगर छोड़ना मुश्किल लगता है तो मेडिकल प्रोफेशनल से सपोर्ट लीजिए। मदद लेना फेलोर नहीं है। अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर जानिए और इसमें अक्सर जो है वो अलामत नहीं होती, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुनासिब जो अफराद हैं उनमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत अहम है। अगर डॉक्टर्स ने आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने को कहा है तो रीडिंग को रिकॉर्ड करना मुफीद हो सकता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर बहुत अहम अवामिल हैं। कार्डियोवास्कुलर सेहत भी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर ही डिपेंड करती है। हर शख्स को एक जैसे टेस्ट या एक ही फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अपने डॉक्टर से अपनी उम्र और रिस्क फैक्टर्स के मुताबिक मशवरा कीजिए। ख्वातीन को भी मोहतात रहने की बेहद ज़रूरी है कि ये ना समझा जाए कि सिर्फ जो हार्ट डिजीज़ हैं वो मर्द हजरात में ही होती हैं। ख्वातीन में भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, यानी दिल के अमराज जो हैं वो होते हैं और अलामत हर शख्स में एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। जो हमारे वार्निंग साइन हमारा जिस्म हमें दे रहा होता है उस पर तवज्जो करनी बेहद अहम है। अगर किसी शख्स को सीने में शदीद प्रेशर या डिस्कम्फर्ट हो, सांस लेने में मुश्किल हो, ठंडा पसीना आए और इसी तरह से नौसिया या मतली हो, डिस्कम्फर्ट हो बाजू में, कंधे में, जबड़े में, गर्दन या कमर तक महसूस हो, तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। ऐसी सूरत हाल में फौरी मेडिकल हेल्प हासिल करना ज़रूरी है। अचानक शदीद कमज़ोरी, बेहोशी या दूसरी सीरियस जो अलामतें हैं वो भी फौरी अटेंशन का तकाजा करती हैं। फार्मूला यानी दिल के लिए ये फार्मूला जो है बहुत ही आसान है और ये चार चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। बेटर फूड, मोर मूवमेंट, नो स्मोकिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और इसी तरह इसके साथ ही स्ट्रेस और स्लीप का भी ख्याल रखिए। लिसनर्स, अपने दिल का ख्याल सिर्फ इस वक्त ना रखें जब दिल मुश्किल में हो, यानी तकलीफ में हो। दिल की सेहत की हिफाजत आज की आदतों से शुरू होती है। आज हम अपने लिए एक छोटा सा डिसीजन लेते हैं। 15 मिनट वॉक कीजिए, नमक जो है वो आप कुछ कम कर दीजिए, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ने की तरफ पहला कदम बढ़ा लीजिए। छोटी तब्दीली भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अपने दिल को अपने लिए ही आप ज्यादा सेहतमंद बनाइए। योर हेल्थ मैटर्स।
2: शहर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में

0: वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पर दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
2: आज ही राबता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम, नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं। और आज भी एक ऐसे स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। वेल, आज का स्कैम कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आपके साथ ये स्कैम ना हो, लेकिन आप इस स्कैम की तरफ बढ़ें। स्कैमर्स आपके पास नहीं आते, लेकिन हो सकता है आप स्कैमर्स के पास जाएं।

0: वेल क्या है ये स्कैम कि आप मजबूर हो जाते हैं? वेल दोस्तों ये है फेक मिस्ट्री बॉक्स ओवर स्टॉक लिक्विडेशन स्कैम। कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। वेल सोशल मीडिया पर आम तौर पर ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो दावा करते हैं कि कोई बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर या ऑनलाइन जायंट क्लोज हो रहा है या उनका अनक्लेम्ड पैकेजेस का स्टॉक साफ किया जा रहा है। ये स्कैमर्स आपको मिस्ट्री बॉक्सेस ऑफर करते हैं जिनमें एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स होते हैं और उनकी कीमत 30 या 40 कतरी रियाल से भी ऊपर बताई जाती है, 50, 60, 100, 1000, 500, यू नो व्हाटएवर, जो अमाउंट आपको लुभा सके, जो अमाउंट आपको लालच की तरफ बढ़ा सके, ये अमाउंट डाली जाती है। इनकी वेबसाइट्स देखने में हाईली प्रोफेशनल लगती है और उन पर काउंटडाउन टाइमर्स भी चल रहे होते हैं ताकि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लें। पे आउट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि यार सामान तो आया ही नहीं और फिर आपके साथ स्कैम हो गया। कोई सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में आपके साथ हो जाता है बड़ा स्कैम। लेकिन इस तरीके के जो स्कैम है इनसे बचने के काफी तरीके हैं, हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए वो है ऑफिशियल यूआरएल डबल चेक करना। ऐसे एड्स पर क्लिक करने के बाद ब्राउजर का एड्रेस बार चेक करें। अगर लिंक में किसी बड़े ब्रांड के नाम की स्पेलिंग गलत है तो वेबसाइट फेक है। मिसाल के तौर पे आप माने कोई ABC असल में कोई ABC ब्रांड है, उसमें ABD लिखा हो या फिर हो सकता है CBA लिखा हो। सो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करके उस वेबसाइट को देखना चाहिए क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है, क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनीज है जो बंद हो रही होती है वो अपना स्टॉक क्लियर करती है। स्टॉक क्लियर करेंगी अगर सेम रेट पे जो आम तौर पे मार्केट में अवेलेबल है तो वो स्टॉक क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे में वो बड़ी कंपनियां या फिर इवन छोटे स्टोर्स करते हैं ये है कि उसे सस्ते में 10 रियाल की चीज 2 रियाल 3 रियाल में जल्दी जल्दी उसे बेच देते हैं ताकि स्टॉक क्लियर हो, पैसा वापस आए अपने जेब में आए और फिर इस स्टोर को बंद किया जाए ताकि उसका रेंट और ना देना पड़े। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो स्टोर्स अपनाते हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार स्टोर बंद नहीं हो रहे होते लेकिन पुराने स्टॉक जो एक्सपायर हो सकते हैं उनको जल्दी निकालने के लिए उनको सस्ते में बेच दिया जाता है और नए स्टॉक को मंगाने के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। फिर नए स्टॉक को मंगाने के बाद उसे रखा जाता है और उसे नॉर्मल रेट में बेचा जाता है। लेकिन बचने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकंड जो तरीका है बचने का वो है काउंटडाउन टाइमर्स के प्रेशर में ना आए। कभी भी आपको जल्दबाजी दिखाई जाए ना किसी भी प्रोडक्ट को लेने में तो उस पर, तो इवन जो सच्ची वेबसाइट्स हैं उस पर भी अगर जल्दबाजी दिखाई जाए तो आपको होशियार रहना चाहिए। इसलिए होशियार रहना चाहिए कि यार ये तो होता रहता है। सो काउंटडाउन टाइमर्स से बिल्कुल प्रेशर में ना आए। स्कैमर्स हमेशा काउंटडाउन टाइमर्स का यूज करते हैं ताकि आप डर के मारे जल्दी कार्ड डिटेल्स एंटर कर दें। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है और ये ट्रिक आमतौर पर स्कैमर्स नहीं नॉर्मल लोग भी अपनाते हैं। रिव्यूज और डोमेन एज चेक जरूर करें। किसी भी ऐसी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले इंटरनेट पर उसके रिव्यूज को सर्च करें और चेक करें कि वो वेबसाइट कब बनी थी। इवन अगर आप ये नहीं चेक कर सकते तो आप उनके लिंक को चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ताला लगा होता है लिंक पर, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे कई बार बहुत ज्यादा ओरिजिनल लग रही होती है वेबसाइट लेकिन छोटी डिटेल्स अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो छोटी डिटेल्स गलत करके रखते हैं। तो ऐसे में उन डिटेल्स को अगर आप चेक करते हैं तो भी आप बच सकते हैं। तो वो छोटी डिटेल्स को पकड़ना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें। दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की कहानी है जर्मनी के टेनिस सुपरस्टार अलेक्जेंडर ज़वरेव की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने सालों तक ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी का इंतजार किया, इंजरीज और डायबिटीज जैसी चैलेंजेस का सामना किया और फिर 2026 में टेनिस की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अलेक्जेंडर ज़वरेव ने बचपन से ही टेनिस को अपनी जिंदगी बना लिया था। टेनिस फैमिली में परवरिश पाने वाले ज़वरेव ने सिर्फ 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उनके वालिद अलेक्जेंडर ज़वरेव सीनियर और वालिदा इरेना दोनों प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, जबकि उनके भाई मिशा भी ATP टूर पर खेल चुके हैं। लेकिन ज़वरेव की कहानी सिर्फ टेनिस की नहीं है। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई। यकीनन ये एक चैलेंज था फॉर ज़वरेव टू एक्सेल इन टेनिस। डिफिकल्ट। डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया था कि डायबिटीज की वजह से उनकी जिंदगी और स्पोर्ट्स करियर मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी वालदा ने हार नहीं मानी। ज़वरेव ने 2026 का US ओपन जीतने के बाद इमोशनल स्पीच में बताया कि उनकी वालदा ने हमेशा यकीन रखा कि इस बीमारी उनके बेटे के फ्यूचर का फैसला नहीं करेगी। सी सच अ डिटर्मिनेशन। और आपके पास अगर सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो, तो एन अल्लाह दुआ, आई मीन डेफिनेटली विदाउट अल्लाह दुआ नथिंग इज पॉसिबल। सो इस दोनों के साथ फैमिली का सपोर्ट और ऊपर वाले के दुआ, एंड इसी वजह से शायद अलेक्जेंडर ज़वरेव यहाँ तक पहुँचे। इस साल यानी सन 2026 में 2 ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज, US ओपन से पहले ही वॉन द फ्रेंच ओपन। क्या बात है। ज़वरेव ने 2022 में अपनी डायबिटीज को पब्लिकली डिस्क्लोज किया और अलेक्जेंडर ज़वरेव फाउंडेशन

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में कहानी सुनने की रिवायत बहुत दिलचस्प और कीमती है। पुराने जमाने में कहानियां सिर्फ तफरी का जरिया नहीं होती थी, बल्कि तजुर्बा, नसीहत, तारीखी यादें और इखलाकी सबक पहुंचाने का एक तरीका भी थी। रात के वक्त या शाम की महफिल में लोग अक्सर एक जगह जमा होते थे। घर की मजलिस, खेमे या समंदरी सफर की जगह पर बुजुर्ग अपने तजुर्बे और यादें सुनाते, बच्चे तवज्जो से बैठकर उन कहानियों को सुनते और उनसे अपने माशरे और जिंदगी के बारे में सीखते। कतरी रिवायती कहानियों में रेगिस्तान, समंदर, सफर, खानदान, जानवरों और रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू नजर आ सकते हैं। इन कहानियों में अक्सर मेहनत, हिम्मत, सब्र, वफादारी और समझदारी जैसे उसूलों को नुमाया किया जाता है। रेगिस्तान से जुड़ी कहानियों में सफर और मुश्किल हालात का जिक्र मिलता है। पुराने लोग लंबी मुसाफतों का सामना करते, पानी और मौसम का ख्याल रखते और कुदरती निशानियों की मदद से रास्ते पहचानते थे। ऐसी कहानियां नई नस्ल को बताती हैं कि लोग किस तरह सब्र और हिकमत के साथ जिंदगी गुजारते थे। समुद्री कहानियां भी कतर के विरसे का खूबसूरत हिस्सा है। मछली पकड़ने, कश्ती चलाने या मोती की तलाश में जाने वालों के तजुर्बे कहानियों की सूरत में आगे पहुंचते थे। इनमें समंदर के एहतराम, टीम वर्क और सफर की जिम्मेदारियों का जिक्र होता था। कहवे और खजूर के साथ कहानी सुनने का माहौल और भी पुरकशिश हो जाता था। एक शख्स कहानी शुरू करता और दूसरे अफराद दिलचस्पी से सुनते। कभी कहानी के किसी पहलू पर सवाल होता, कभी कोई बुजुर्ग अपना तजुर्बा भी शेयर कर देते। इस तरह एक पुरानी कहानी नई गुफ्तगू का सबब बन जाती। बुजुर्गों का किरदार इस रिवायत में बहुत अहम रहा है। उनके पास खानदान और इलाके से मुतालिक बहुत सी यादें होती हैं। जब वो अपने तजुर्बात सुनाते हैं तो बच्चों को अपने बुजुर्गों की जिंदगी समझने का मौका मिलता है। ये कहानियां खानदानी रिश्तों को मजबूत करती हैं और वर्षों को महफूज रखती हैं। कहानियां सिर्फ बोलकर सुनाने का नाम नहीं, बल्कि अंदाजे बयां भी बहुत अहम होता है। अच्छी कहानी में मौजू अल्फाज, मुनासिब लहजा और मुनज्जम तरतीब होती है। बुजुर्ग कहानी को इस तरह सुनाते हैं कि सुनने वाला खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगता है। कतरी कहानियों में कभी जानवर भी किरदार के तौर पर शामिल होते हैं। ऐसी कहानियों का मकसद आमतौर पर किसी सिर्फ या रवैये को आसान मिसाल के जरिए समझाना होता है। बच्चे इन कहानियों से लुत्फ भी लेते हैं और अच्छे इखलाक का सबक भी हासिल करते हैं। कहानी सुनाने के महफिल अदब का भी तकाजा करती है। कहानी सुनते वक्त तवज्जो देना, दरमियान में बिला जरूरत मुदाखलत ना करना और कहानी खत्म होने पर शुक्रिया अदा करना अच्छे रवैये हैं। ये अदाब बच्चों को मजलिस और समाजी जिंदगी में बेहतर अंदाज से शिरकत करना सिखाते हैं। आज के जदीद कतर में कहानी सुनाने के अंदाज बदल गए हैं। किताबें, स्कूल प्रोग्राम, म्यूजियम, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहानियों को नए सुनने वालों तक पहुंचाने में मदद देते हैं। फिर भी पुराने अंदाज में आमने सामने बैठकर कहानी सुनने का सुकून अपनी जगह ही अपनी वैल्यू रखता है। रेडियो भी कहानी सुनाने का एक खूबसूरत जरिया है। आवाज के उतार चढ़ाव, रुकने के मुनासिब लम्हात और अल्फाज के इंतखाब से मामूली सी बात भी दिलकश महसूस हो सकती है। इसी तरह कतर की कहानियां रेडियो के जरिए भी मुख्तलिफ उम्रों और जबानों के लोगों तक पहुंचती हैं। नई नस्ल के लिए इन कहानियों को महफूज रखना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने पुस्तकों से कहानियां सुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं या ऑडियो की सूरत में महफूज कर सकते हैं। इससे खानदानी यादें भी बचती हैं और सकाफती वर्षा भी महफूज होता है। कहानियां हमें ये समझाती हैं कि जिंदगी के तजुर्बे कीमती खजाना होते हैं। हर बुजुर्ग की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकती है। कहानी सुनना और सुनाना लोगों के दरमियान राबता पैदा करता है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि कतर की रिवायती कहानियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त की यादें नहीं बल्कि आज के लिए भी रहनुमाई रखती हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इट्स अ गोल शो आप सभी का इस्तकबाल है मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज दिन चला है इतवार एंड वीकेंड तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों और एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा सवाल नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी है कि आप लोगों ने वीकेंड पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में अगर किसी स्पोर्ट्स को देखा होगा तो वो कौन सा स्पोर्ट होगा आज का सवाल यही है आज कोई स्पेशल क्विज नहीं है कोई क्रिकेट से हवाले से कुछ पूछूंगा नहीं बट मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों के इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों का इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स आप लोगों के रुझान स्पोर्ट्स में है तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जो दो दिन आप लोगों के सामने फर्राट के साथ निकला और ये जो दिन जो गुजरे दोनों दिनों में आप लोगों ने स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या क्या टीवी में देखा ही होगा तो टीवी में अगर आपने फॉलो किया या सोशल मीडिया को फॉलो किया होगा तो कौन सा स्पोर्ट्स जो आप लोगों को बेहद पसंद था है और आप देखना पसंद कर रहे हैं तो वो कौन सा स्पोर्ट है जो आप मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आपने नाम के साथ बताइए क्या थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा बताइए आप वीकेंड में करते क्या हैं आप लोग लिसनर्स हैं एफएम 107 के लिसनर्स हैं और वो क्या कहते हैं कि विदाउट द लिसनर्स रेडियो स्टेशन जो है हमारा रेडियो स्टेशन इतना जो मकाम हासिल कर चुका है पिछले कई सालों से यानी 1980 से आज तक तो इस रेडियो स्टेशन को आप लोगों ने बहुत बहुत इज्जत दी है दोस्तों और मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स के ज़रिए भी आप लोगों तक हम पहुँचते हैं और स्पोर्ट्स आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये बताइए कि वीकेंड में आप लोगों ने अपने छुट्टियों में ना हो सकता ना कि जब आप लोग हाथ में मोबाइल हो तो आप लोग एक टटोल लेते हैं कि भाई फलाने मैच का स्कोर क्या है फलाने मैच में क्या हो रहा है ये देखना तो आपने कौन से स्पोर्ट के लिए अब अपना मोबाइल का इस्तेमाल किया था आप मुझे बता सकते हैं 666-22-107 पर चलिए बढ़ते हैं कि आज के जो टॉप हाइलाइट्स है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि क्या हुआ है एशियन गेम्स दोस्तों आपको पता है कि एशियन गेम्स जारी है एंड एशियन गेम्स में कतर एवरीवेयर इज़ कतर बिकॉज कतर इज़ डूइंग जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि कतर के पास कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें कतर विल डू वेल तो उसमें जैसे कि बीच वॉलीबॉल मैंने जिक्र किया था मैंने बास्केटबॉल 3x3 बास्केटबॉल का जिक्र किया था और एक आधी मैंने एथलेटिक्स के बारे में बताया था सो उसमें कतर इज़ रियली गेनिंग दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस जो उनसे उम्मीद की जा रही थी एथलीट से फ्रॉम द कतर ओलंपिक कमेटी और ये बता दूं कि फाइनली कतर 3x3 जो बास्केटबॉल मेंस बास्केटबॉल टीम है उनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ है एंड दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस सिल्वर मेडल फाइनल में कतर को हार का सामना ज़रूर करना पड़ा अगेंस्ट साउथ कोरिया लेकिन वो मैच काफ़ी टाइट था 10 पॉइंट्स के मुकाबले में अगर 19 पॉइंट्स आपने कंसीड किए हैं तो विच मीन्स दैट इज़ नॉट अ वन साइडेड गेम और जनूबी कोरिया इस मैच को जीत कर दे वन द गोल्ड मेडल लेकिन कतर रियली वाज वेरी क्लोज टू विनिंग द गोल्ड बट मैंने लास्ट वीक कहा था कतर इज़ वन ऑफ द बेस्ट 3x3 बास्केटबॉल और इसमें कतर की जीत हुई है और कई और इवेंट्स हैं जहां पे कतर को मिलना है गोल्ड मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा जो बीच वॉलीबॉल में कतर के जो दोनों खिलाड़ी है ना ये टीम है बेसिकली दोनों खिलाड़ियों से मुश्तमिल ये टीम है बीच वॉलीबॉल में यूनस और तीजान ये बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं कभी एक टाइम था तीन चार साल पहले देवर वर्ल्ड नंबर वन एंड 2020 जो टोक्यो ओलंपिक्स में कतर के लिए उन्होंने गोल्ड भी जीता था सो दे

are the good players and good team right now, or they have qualified for the round of 16, which means gold medal to hum chaliye inshallah ho sakta hai, lekin ek medal yahan se, I would say ek medal Qatar ko mil jayega. और वहीं अगर मैं बात करूं और इवेंट के बारे में, जैसे शूटिंग में कतर को काफ़ी सक्सेस इस बार मिला है. एंड कतर जो शूटर्स राशिद अल अदबा, उन्होंने तो अगर देखिए टीम गोल्ड को अगर काउंट कर लें तो एक, और इंडिविजुअल गोल्ड में भी स्कीट इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. सो ऑब्वियसली आई वुड से कि दो गोल्ड मेडल्स फॉर राशिद अल अदबा, जो ऑब्वियस बात है कि इस एशियन गेम्स में, सन 2026 एशियन गेम्स में कतर का one of the biggest star nikla hai. And he is a maruf shooter hai. Ye koi purani baat to nahi hai ki ye abhi aaye hain. Aur maine kehne se murad hai ki ye bahut saalon se he has been shooting. Bahut hi down to earth banda hai, bahut hi down to earth banda hai. Unse agar aap panch baatein unse agar sawal puchenge to ek jawab deta hai. And he is very shy, very down to earth character. तो और यहाँ पर एक और भी बता दूँ कि इंडोर वॉलीबॉल, जैसे मैंने बीच वॉलीबॉल कहा, तो वहीं इंडोर वॉलीबॉल ने कतर ने हांगकांग को हरा दिया है. एंड दैट इज यू नो गुड न्यूज, दे हैव स्टार्टेड देयर कैंपेन वेल इन द अदर इवेंट्स. एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन वॉचिंग कतर के, अगर जानी अगर मैं बात करूँ तो कतर हैज़ रियली डन वेल सो फार. अच्छा, इंडिया की बात करूँ, इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ, यस्टरडे पाकिस्तान स्क्वाश में, जहाँ यू नो पाकिस्तान इज सो पावरफुल इन स्क्वाश, एक ज़माना था जनशेर खान, जहांगीर खान, यू नो द जमान ब्रदर्स, तो ये जितने भी पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर्स थे, ये दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से थे. जहांगीर खान को तो कौन नहीं जानता है, वन ऑफ द लिविंग लेजेंड जहांगीर खान इन स्क्वाश. और उन फिर उसके बाद आते हैं जहांगीर खान, उसके बाद तारिक जमान, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं. और यहाँ पर कतर को, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान को यस्टरडे दे वन अ ब्रॉन्ज इन मेंस स्क्वाश. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तानी स्क्वाश फेडरेशन. यू नो ओवरऑल पिछले कई सालों से पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एट दैट सेम लेवल एज दे यूज टू बी. इजिप्ट का भी बहुत ही बोलबाला है इन स्क्वाश में. तो फिलहाल पाकिस्तान की इस ब्रॉन्ज जीतने से हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा उस मकाम तक पहुंचे जहां पे दे यूज टू रूल. जहांशेर, जहांगीर, तारिक जमान, ये सब खिलाड़ी जो थे भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे. सो गुड लक टू द पाकिस्तानी कंटिंजेंट. और वहीं इंडियन टीम ने कबड्डी में, दे हैव वन अ गोल्ड, कबड्डी में दे हैव वन अ गोल्ड, एंड दैट इज समथिंग. कबड्डी देसी गेम है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा. तो कबड्डी एक तो होता है कि बहुत ही स्पीड और स्टेमिना वाले गेम है, और ये देसी खेल है. एंड इसमें इंडिया को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, यानी हासिल हुआ है, एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़. सो आप लोगों ने करा क्या है इस वीकेंड में, आप मुझे बताइए. मैं जो आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में आप लोगों ने करा क्या, विच न्यूज़ यू हैव वॉच्ड, विच गेम यू हैव वॉच्ड, आप लोगों ने कौन सा गेम फॉलो किया है पिछले दो दिनों में, यानी जुमरात. और जुमरात को अगर ले लीजिए, वीकेंड स्टार्ट तो वहीं से होता है. आप जुमरात से लेके हफ्ते तक, यानी सैटरडे तक, आप लोगों ने कौन से मैचेस फॉलो किए हैं, आप मुझे बताइए. 666-22-107 इंतज़ार में हूँ आप लोगों के इस जवाब को. मैं देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, और मुझे थोड़ा इससे थोड़ा सा और भी मुझे इनकरेज मिले कि हाँ, और भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश करूँ. तो दोस्तों आप लोग अपना फ़ोन उठाइए, जिन्होंने भी ट्यून इन किया लेट. अब मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड प्रोग्राम. लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो और भी ढेरम ढेर मजीद और न्यूज़ के साथ, अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ आऊँगा. तो कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: वेलकम बैक दिल से देसी लोग और FM 107 सुन रहे हैं आप इट्स अ गोल शो है ये प्रोग्राम है टोटली एंड एक्सक्लूसिवली ऑन स्पोर्ट्स और ज़्यादा यहाँ पे मूवीज़ के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ दोस्तों इसलिए मैं स्पोर्ट्स के बारे में पूछते रहता हूँ और स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है एक वो एवेन्यू है जहाँ से आप लोग अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करवा सकते हैं तंदुरुस्त रह सकते हैं यू नो गुड फीलिंग दैट यू कैन ऑलवेज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी स्पोर्ट्स किसी भी खेल को अपनाइए आपको देखें आप देखेंगे कि आप फिट रहते हैं मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यहाँ पर जो मुकीम है हमारे देसी लोग जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल से जो पार्किंग लॉट्स हैं ये आप लोगों को पता है इट्स सो फेमस नाउ अभी तो आइकॉनिक है कोई भी पार्किंग लॉट्स में क्रिकेट खेलते हैं अपने यू नो अपने मुल्क के वो उस क्रिकेट जर्सी को पहनकर दे पार्टिसिपेट इवन फुटबॉल में भी यहाँ के जो लोग मुकीम हैं वो भी वीकेंड में फुटबॉल खेलते हैं इवन नॉट ओनली जस्ट देसी लोग बट जो यू नो अरब मुबालिक के हैं इनके दरमियान मुकाबला जो है वो सीरियस टाइप के होते हैं एंड फुटबॉल पार्टिसिपेट करते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट्स करवाते हैं अपने आप में यू नो चंदा देकर कंट्रीब्यूशन रख कर यू नो दे डू इट एंड देखिए कुछ लोगों के अंदर में ये जुनून है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट्स को अपनाना चाहे वो देश से अपने देश से बहुत दूर हैं लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एक जरिया बना लिया कि लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट तो आप लोगों ने इस वीकेंड में करा क्या इन स्पोर्ट्स आपने कोई रेडियो कॉमेंट्री या टीवी या सोशल मीडिया पर आप लोग बैठे थे किसी रिजल्ट को देखने के लिए या खामखा आप लोग ऐसे ही टहल रहे थे टहलना अच्छी बात है मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी बात है टहलने के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स को अगर थोड़ा सा देखें अरे स्पोर्ट्स इज समथिंग वेरी पैशनेट जुनून वाली बात होती है कि यार समथिंग आप कुछ अच्छे चीज़ों में आप लोग अपना जो है रुझान जो है उसमें है एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू इन एनी वन्स लाइफ और आप अपने बच्चों को भी उतना ही इंस्पायर इंकरेज कर सकते हैं आप इस तरह के अगर आप शिरकत करें स्पोर्ट्स में देखिए मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनने जा रहा हूँ आई मीन स्पोर्ट्स को मैं तवज्जो देता हूँ स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता सकता हूँ मैं हर मॉर्निंग में उठकर मैं आई डू डोंट मिस द स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग इज़ अ काइंड ऑफ फिटनेस जो मैं अपनाता हूँ एंड ये स्ट्रेचिंग ऐसे है कि 5 मिनट आप 10 मिनट आप खुद को अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए

करते हैं। एक सर्टेन एज के बाद हेवी एक्सरसाइज इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ स्ट्रेचिंग से ही आप अपना काम कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली 30 मिनट्स ऑफ वॉक एक टारगेट रखना पड़ता है, 30 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी डे। किसी भी जगह पे चले जाइए एंड वॉक करिए, घड़ी देखिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, स्पोर्ट्स से आप लोगों का इंटरेस्ट जब रेडियो की तरफ है, अब स्पोर्ट्स प्रोग्राम आप लोग सुनते हैं, तो मुझे पर्सनली आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में हैं और जैसे मैंने बताया कि कतर एशियन गेम्स में धुआंधार परफॉर्मेंस में नो दे आर शोइंग इट, एंड आई अप्रिशिएट कि कतर ओलंपिक कमेटी ने जिस तरह से खेलों को थोड़ा सा इंकरेज किया, इंस्पायर किया, यू नो इट्स शोइंग द रिजल्ट्स इज कमिंग अप। एंड 2030 का एशियन गेम्स कतर में होने जा रहा है और इसीलिए दिस सॉर्ट ऑफ मेडल्स जीतना एशियन गेम्स से कतरी टीम कंटिजेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोराल बूस्ट होता है इवन ऊपर के लेवल तक। सो दे आर हैप्पी, आई मीन स्टेट ऑफ कतर इज हैप्पी दैट हमने जो कंटिजेंट हमने भेजा है, स्क्वाड को भेजा गया है वहाँ पे, दे आर डूइंग गुड। देखिए एक एक इवेंट में दे हैव टारगेटेड कि इसमें मेडल प्रॉस्पेक्ट है एंड कतर हैज़ डन रियली वेल। और आज मुताज ईशा बाशिम का दिन है दोस्तों, और आज ये फाइनल जो होने जा रहा है हाई जंप में, और मुताज ओलंपिक चैंपियन मुताज ही इज आइंग हिज, यानी टारगेट कर रहे हैं कि उनका हदफ ये है कि फिफ्थ एशियन गेम्स गोल्ड वो जीते। एंड ही इज द वन ऑफ द लिविंग लेजेंड इन कतरी स्पोर्ट्स, मुताज ईशा बाशिम, उनका भाई खेलते हैं कतरी नेशनल फुटबॉल टीम में, नाम आपको पता होगा, हम बता देता हूँ, मिशाल बाशिम। तो दोस्तों ये अपडेट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स, और अभी आपको बताऊँ कि आज फुटबॉल में क्या होने जा रहा है कतर। जैसे कि मैंने मिशाल के बारे में बताया, तो आज कतरी फुटबॉल टीम इज अप अगेंस्ट यमन इन खलीज, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि अभी जारी है इन जद्दा में, सऊदी अरब के जद्दा में। सो वहाँ पर कतर टीम के सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि दे विल क्वालिफाई, दे शुड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड नॉकआउट स्टेज तक। ऑलरेडी फर्स्ट मैच दे हैव वन इट, एंड फर्स्ट मैच जीतने के बाद दे आर नाउ रेडी टू टेक ऑन यमन टुडे। और यमन के बारे में बात करूँ, या ट्रिकी साइड है, लेकिन कतर के पास एक्सपीरियंस है, कतर कैन रियली डू वेल अगेंस्ट यमन। जीतना है, वेल की बात नहीं है, जीतना है, और इस फतेह के साथ कतर विल रियली यू नो दे विल स्टैम्प देयर आई वुड से पोजिशन क्लास और यू नो अ प्लेस इन द नॉकआउट स्टेज। और वहीं सऊदी अरब ऑलरेडी दे हैव रीच्ड द फ्रॉम द अदर ग्रुप, ग्रुप ए से सऊदी अरब मुसलसल दो मैचेस जीतकर दे हैव रीच्ड द नेक्स्ट राउंड। और इराक की भी कल जीत हुई है, इराक हैज आल्सो वन, एंड दैट इज यू नो द मेन इवेंट जो ग्रुप ए से कल मैचेस हुए उसके बारे में आप लोगों से मैंने बता दिया। और आज हमें देखना है कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन अदर देन फुटबॉल इन क्रिकेट। दोस्तों बता दूं कि क्रिकेट में आज इंडिया का जो सीरीज़ है, होम सीरीज़ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो शुरू हो गया है, एंड ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ है। एंड इसमें आज जो लेटेस्ट स्कोर है मैं आपको बता दूं, इंडिया चूज़ टू बॉल, यानी दे वॉन द टॉस एंड दे हैव सेंट द वेस्ट इंडियंस टू बैट, एंड वेस्ट इंडीज़ 24 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 155 रन, यानी 155 रन फॉर द लॉस ऑफ जस्ट विकेट इन 24 ओवर्स, एंड दैट अ रियल स्टार्ट। आई मीन इफ आई से कि 24 ओवर में 155 रन, 6.46 करंट रन रेट है। और बैटिंग कर रहे हैं ग्रीव्स 71 गेंदों पर 80 नॉट आउट, और काटी जो 14 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वो नहीं, मुझे लग रहा है कि सब जो है, आई मीन दे स्ट्रगल्ड अ बिट। प्रसिद्ध कृष्णा जो है 21 रन देकर, यू नो 4 ओवर में 21 रन दिया है। रेड्डी उन्होंने एक ही ओवर में 17 रन दे दिए हैं। ब्रार 30 रन दे दिए हैं 4 ओवर में। रविंद्र जडेजा जो कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं इस टीम में, उन्होंने 7 ओवर्स डाले हैं और 45 रन, नॉट अ गुड ओवर फ्रॉम रविंद्र जडेजा। धीर ने 3 ओवर में 18 रन, नॉट अ गुड ओवर। और ये भी जो नामी स्पिनर है कुलदीप यादव, चाइना बॉल, चाइना मैन कहते हैं इसको, उनका भी परफॉर्मेंस सही नहीं रहा बॉलिंग में अगर देखा जाए तो। ओवरऑल अगर इस पूरे मैच में डेफिनेटली ही हैज टेकन द ओनली विकेट फॉर द वेस्ट इंडियन टीम, और 5 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट। इकोनॉमी रेट थोड़ा अगर मैं कहूँ सब इंडियन बॉलर्स में तो उनका ही बेटर है, लेकिन आज वेस्ट इंडीज़ टीम इज़ रियली गोइंग ग्रेट गन्स। और उनके जो बल्लेबाज अभी बैट करने बाकी है उनका, उनके बारे में बता दूं, शाई होप जो उनका कप्तान है, विकेटकीपर है आमिर जंगू, जुल आंड्रू,
रोस्टन चेज, मैथ्यू फोडे, गुडाकेश मोटे, अल्जारी जोसेफ, जेडन सीएल्स, ये इनके रिमेनिंग बैट्समैन हैं जो आएंगे बाद में। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स आपके साथ मैंने पेश किया और आप लोग स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, यानी आप लोग सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो। अब दूसरा एक वनडे मैं बता दूं कि इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के दरमियान एक मैच चल रहा है एंड उसमें तीन मैचों की इस सीरीज़ में ODI अभी ये बराबरी पर है, 1-1 है। और आज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज फैसला कौन इस मैच में। इंग्लैंड चूज टू बैट आफ्टर विनिंग द टॉस एंड इंग्लैंड 10 ओवर में सिर्फ 51 रन, ये क्या देख रहा हूँ मैं, 10 ओवर में 51 रन, विच मीन्स श्रीलंका इज रियली बॉलिंग टाइट। और ये मैच भी आई थिंक आज क्रूशियल है, श्रीलंका ने पिछले गेम में बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर इस सीरीज को इक्वल कर दिया है। राइट नाउ बैंटन इज बैटिंग ऑन 34 एंड जो रूट जो टेस्ट कैप्टन है फॉर इंग्लैंड वो बैटिंग कर रहे हैं 16 रन पर 24 गेंदों में और एक ही चौका लगा चुके हैं। और जो बैट्समैन आउट हो चुके हैं उनका नाम है बेन डकट, उन्होंने सिफर पर यानी बिना किसी रन बिना किसी खाता खोले पैवेलियन पर वापस चले गए। नाउ दोस्तों लेट्स मूव ऑन कि आप लोगों ने करा क्या है इस वीकेंड में एंड इस वीकेंड में आप लोगों ने किन्होंने क्या किया है बताएंगे। कोई कह रहे हैं कौन है साहब, अपना नाम ही नहीं बताते हैं, इसमें नाम लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एफ़ अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, आई स्पेंड टाइम इन बीच, माई हॉबीज स्विमिंग, आई लव, आई एम यूज टू वॉच क्रिकेट, नाउ आई एम ऑल्सो वॉचिंग साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही है, नाम आप क्यों नहीं बताते हैं, आप अपना नाम क्यों नहीं बताते हैं, आपका नाम आता ही नहीं है इस पर, सिर्फ नंबर है और आपके पुराने मैसेज भी मैं थोड़ा सा अच्छा मकसूद साहब है, अच्छा मकसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस बहुत ही स्वीट मैसेज आपने किया है। आई स्पेंड टाइम इन बीच, दैट्स रियली गुड, क्या बीच वॉलीबॉल खेलते हैं क्या, अगर बीच वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं एंड दैट्स नाइस दैट आपका जो पैशन जो है आपका जो पैशन है वो स्विमिंग है, बहुत अच्छी बात है, स्विमिंग इज़ रियली गुड फॉर ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी फिटनेस के लिए, तो आप स्विमिंग करते हैं, ये आप पहले क्रिकेट देखते थे अब क्यों नहीं देख रहे हैं, इसका कोई जवाब आपके पास है क्या, आप पहले देखते थे लिखे, बहुत अच्छी बात है, स्विमिंग क्रिकेट को कौन छोड़ सकता है, लेकिन आप अभी क्यों नहीं देख रहे हैं, ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं। ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच भी जारी है और ये ODI सीरीज़ है एंड इसमें साउथ अफ्रीका इज़ लीडिंग बाय 1-0 और साउथ अफ्रीका अभी जो सेकंड मैच इसमें चल रहा है उसमें दे हैव 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना चुके हैं और दे आर लीडिंग द सीरीज एंड विच इज़ आई बिलीव दैट दे आर द बेस्ट टीम लुक्स लाइक राइट नाउ एंड बबुआ जो उनके कप्तान हैं 78 नॉट आउट पर हैं 94 गेंदों पर एंड उसके साथ हैं मिलर जिन्होंने 44 गेंद पर 49 रन पर खेल रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा मुझे लग रहा है एंड दिस इज बबुआ इज बड़ा ही अच्छा बैट्समैन है, बबुआ बहुत ही सटीक बैट्समैन है एंड आई रियली लाइक हिम, आई रियली यू नो इज अ फाइटिंग काइंड ऑफ अ क्रिकेटर। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑस्ट्रेलिया फॉर यू नो स्टॉपिंग, अगर आप स्टॉप कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को अच्छी बात होगी, अदरवाइज ये सीरीज आपके हाथ से जाएगी। एनीवे मकसूद साहब ने कह दिया कि पहले वो क्रिकेट देखते थे लेकिन क्रिकेट अभी भी देख रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मुबीन साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा आपने कुछ इस तरह का लिखा नहीं, MBB लिखा है, जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या क्या है, स्पोर्ट्स देखा नहीं किया, नहीं प्ले किया, खेला नहीं खेला, आपने कुछ बताया नहीं, सिर्फ सलाम दुआ पे रख दिया आपने। अच्छा कौन कह रहे हैं ये अबू अहमद, उन्होंने कह रहा है कि माय सन अहमद इज सेइंग मैसेज दिस अंकल टू इज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मैसेज आपने ये मैसेज किया है एंड आपके बेटे को भी मेरे तरफ से यू नो आई कैन ऑलवेज से बेस्ट विशेस टू हिम। अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो अगले प्रोग्राम में मैं आऊँगा फिर ट्यूसडे को, मंगलवार को एंड मंगल के रोज़ आप अपने प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आप लोग बताइएगा ज़रूर कि स्पोर्ट्स आप लोग क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्यों सुनते हैं और क्यों देखते हैं, क्या है स्पोर्ट्स में। मुबीन बगदारी ने कहा कि ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया खेलने का, देखने का दिया है मौका,
क्रिकेट देखने गए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:31।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
4: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं, पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं। और आज है संडे का दिन, एक नया वीक

0: और इसमें भी का आगाज हो चुका है. वेल आप हमें बताइए आज आपके दिन का आगाज कैसे हुआ, क्या कुछ किया और अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं और इवनिंग्स में आप क्या प्लान कर रहे हैं. वेल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर्स हैं 666-22-107 या फिर अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 443-443-77 और रहना है आपको साथ.
1: हम आपके साथ हैं. और कैसा रहा वीकेंड नादिया, आपका कैसा गुजरा?
0: मेरा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई होप कि सरवर भाई आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा.
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई. वीकेंड को अच्छा बनाना पड़ता है एक्चुअली, वो बहुत जरूरी चीज है. हाँ अच्छा. मतलब जिन चीजों में दिल लगता है उन चीजों में दिल लगाना चाहिए. खाने में लग रहा हो, मुलाकातों में लग रहा हो, फैमिली के साथ बैठ के कोई मूवी वगैरह एंजॉय करने में लग रहा हो, घूमने में लग रहा हो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढे जिसमें आपका दिल लगता है एक्चुअली, जो जो टाइम आप खुशी
0: भाई, आपने मुझसे कहा था कि मुझे जो है ना गीबत करने में मेरा बड़ा दिल लगता है. आपका क्यों लगता है?
1: हाँ नहीं ये भी एक अच्छी चीज तो नहीं है बिल्कुल भी, बट ये है कि दिल उन चीजों में लगाएं, ये भी जरूरी नादिया ने अच्छा याद दिलाया, दिल उन चीजों में लगाएं जिनमें नुकसान ना हो और दूसरे को परेशानी ना हो. तो इम्पोर्टेंट ये है कि दिल उन चीजों में लगाएं और जो अच्छी हो आपको भी अच्छा रखें,
0: आप सच्ची हो
1: और सच्ची हो, समाज को भी अच्छा रखें, आपके आसपास वालों को भी अच्छा रखें और जो आपके सामने नहीं है उनको भी अच्छा रखें. एक्चुअली ये बात वहीं जाकर मिल जाती है.
0: मतलब ये है जो जो लोग रहे ही नहीं इस दुनिया में उनसे हमारे आंखों के सामने जो नहीं है, या मतलब कहने का मतलब ये कि जो सामने आपको नजर नहीं आ रहे,
1: नजर नहीं आ रहे मतलब गीबत से मैं कनेक्ट कर रहा हूं,
0: ज्यादा नजर आ रहे हैं
1: जो ज्यादा नजर आ रहे
0: हैं एहतियात करें
1: उनसे. नहीं नहीं उनसे भी
0: बातचीत जारी रखें.
1: हाँ, मतलब देखिए घुल मिल के कहीं ना कहीं एक खूबसूरत रास्ता
0: इख्तियार कर ही लेता है शख्स,
1: करना भी चाहिए और यही हमारी जिंदगी है.
0: अच्छा अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ जाए.
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम क्योंकि वक्त बहुत होता है हमारे पास और कॉलर कम होते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि शुरू से ही कनेक्ट करते चले और देखते हैं कि कौन हमारे साथ है.
0: हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कौन है हमारे साथ?
2: फजल भाई आपके साथ.
0: अरे वाह फजल भाई कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: और कैसा जा रहा है आपका बिजनेस, आपका काम?
2: भाई अल्लाह ताला की दुआ है और आपके रेडियो की भी मेहरबानी है.
0: अच्छा रेडियो की भी मेहरबानी, चलिए नाइस.
2: रेडियो की मेहरबानी इसलिए मैंने पहले भी बोला था जब भी मेरा मूड डाउन होता है, कुछ इश्यूज होती हैं, मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ गाड़ी में बैठ के, एसी चलाता हूँ पहले फिर रेडियो चलाता हूँ और 10 मिनट में मेरा मूड अप हो जाता है.
0: नाइस, चलिए फिर तो हमें भी बड़ी खुशी हुई और आपसे बात करके हमारा मूड भी अप हो जाता है एकदम.
2: बिल्कुल आपके रेडियो को भी क्रेडिट जाता है.
0: अच्छा क्योंकि आज हमारा टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकली हम एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप लाइफ कोच हैं, दिस इज समथिंग दैट वी नो, तो मुझे लगता है आपसे हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके पूछ लेते हैं. आप हमें बताइए ये और हमारी ऑडियंस को भी समझाइए कि आपको क्यों क्या लगता है ऐसा कि रिश्तों में एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है. कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनमें पर्टिकुलरली आपको लगता है कि एप्रिसिएशन इज क्वाइट मैंडेटरी?
2: जैसे देखिए जैसे ह्यूमन बॉडी को अच्छा रखना जरूरी है वैसा ह्यूमन रिलेशंस को मैं बोलूंगा, स्पेशली अपने फैमिली रिलेशंस को, बीवी बच्चे माँ बाप भाई, ये रिलेशंस को अच्छा रखना लाजिम है, देयर इज नो अदर ऑप्शन.
0: ऑलराइट.
2: और इसमें पैसा कम जबान ज्यादा खर्च करें. आप दो वर्ड बोलते हैं अपने बच्चे को गुड जॉब, उन्हीं को बोलते हैं आपने बहुत अच्छा पका दिया आज, तो
1: बीवी को बोलते हैं बहुत अच्छा पका दिया आपने आज,
0: सर में दर्द काफी हुआ, बहुत अच्छा पका दिया,
2: सालन अच्छा पका दिया, खाना अच्छा पका दिया. इसको हम लोग बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं जबानी जमा खर्च.
0: हाँ जबानी जमा खर्च. नाइस नाइस.
2: और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा पॉजिटिविटी. देखिए लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है कोई भी फील्ड, तो ये मंत्र आप पकड़ लें पॉजिटिविटी. अपने दिमाग में ना नेगेटिविटी आने दें ना अपनी जबान पे
0: ना आने दें. और कोई सामने आ जाए,
2: अगर कोई नेगेटिविटी सामने भी आ जाए तो इग्नोर करें.
1: चलिए इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं
0: तो बहस करें.
2: देखिए पॉजिटिविटी ब्रीच पॉजिटिविटी,
0: प्लस माइनस माइनस वो था ना,
2: पॉजिटिविटी ब्रीच पॉजिटिव. आप अगर पॉजिटिव

0: हैं तो आप खुद यानी आप पूंछ आपकी पॉजिटिव रखते हैं तो सबसे पहले खुद पॉजिटिव हो जाएंगे और साथ में दूसरों को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट के साथ मेरे को ये रिस्पॉन्स मिलते हैं
1: चलिए ये तो पॉजिटिविटी की बात हो गई।
2: ये तो चलिए आपने लोगों को बताया हो गया, आप खुद अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? आई एम श्योर इतने सारे लोग इतने सारे मसले लेकर आते होंगे आपके पास, तो जाहिर है बीइंग अ ह्यूमन या आप क्या करते हैं
0: आपके लिसनर्स को भी फायदा होगा। देखिए कभी भी ये सोचिए कि आने वाला कल बेहतर होगा, आने वाला कल इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। क्योंकि देखिए हर इंसान की लाइफ में जब अप्स आते हैं ना तो ये मत भूलना कि डाउन्स भी आए, और जब आपके पास डाउन्स आ रहे हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है कि धूप छांव उसकी जिंदगी में ना हो। धूप जब आती है तो छांव भी आएगी, जब छांव आती है तो धूप भी आएगी। तो उसके लिए अब लोग पूछते हैं कि भाई प्रिपरेशन, तो मैं उनको एक मुख्तसर हिस्सा है कुरान का वो बताता हूँ, प्लस सेवन ईयर्स माइनस सेवन ईयर्स ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्लस सेवन ईयर्स एंड माइनस सेवन ईयर्स ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो 7 साल जो है बहुत अच्छी खुशहाली थी, उसके बाद 7 साल जो है साहस पाली। तो अल्लाह ताला ने क्या बताया कुरान में कि जब आपके पास खुशहाली हो जिंदगी में आप अप जा रहे हो आप प्रिपेयर फॉर द डाउन, ओवर स्पेंडिंग मत करो। आप कमा रहे हो दबा के बिजनेस में या जॉब पे तो ओवर स्पेंडिंग मत करो, इसराफ मत करो, रिजर्व करो, जो जरूरी खर्चे हैं वो तो करो लेकिन ओवर स्पेंडिंग मत करो, रिजर्व करो। व्हाई? बिकॉज आपने झेलना है आगे डाउन टर्न, तो अप एंड डाउन। अच्छा डाउन आ गया, आप मैं क्या करूं, रो रहे हैं चिल्ला रहे, मत रो चिल्लाओ मत, आराम से सबर से झेलो, अप आने वाला है। अप में इतराओ मत क्योंकि बेटा डाउन आने वाला है,
2: इतराओ मत।
1: आपकी शादी हो गई है? फजल साहब शादी हो गई आपकी?
2: हाँ क्यों नहीं, एक्सपीरियंस बोल रहा है।
0: आपकी 30 साल हो गए,
2: देखा माशाल्लाह
1: 30 साल हो गए माशाल्लाह। तो अप्रिशिएट करते हैं आप बेगम को?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नाउ नाउ एंड देन
0: दूसरे तीसरे दिन। अच्छा मैं झूठी तारीफ नहीं करता, जिस दिन खाना सालन अच्छा पका हो जरूर तारीफ करता हूँ, जिस दिन मेरे टेस्ट का नहीं हो तो खामोश हो जाता हूँ। जब मैं खामोश हो जाता हूँ वो समझ जाती है कि इनके टेस्ट का नहीं।
2: यही आपकी लाइफ का आप
1: और खा फिर भी लेते हैं,
2: जाहिर है कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? आपका घर पड़ोस में होता तो आपके चले जाते।
1: क्या बात है।
0: देखिए हर रिश्तों में अप एंड डाउन होता है, लाइफ में अप एंड डाउन होता है, फाइनेंस में भी अप एंड डाउन होता है, बिकॉज अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। और अगर आप ईमान की बात करें तो हमने अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाया है, नॉट जिस अच्छी तकदीर, नॉट जिस बुरी तकदीर, दोनों का कॉम्बो है अच्छी एंड बुरी। तो जब अच्छी चल रही हो तो बुरे के लिए प्रिपेयर करो, जब बुरे में हो तो ये अपने आप को मोटिवेट करो कि भैया बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी शुरुआत। थैंक यू सो वेरी मच कि आप जब आपका मूड होता है, जब आपको टाइम मिल जाता है आप जुड़ जाते हैं।
0: मेरी तरफ से लिसनर्स को भी मुबारकबाद और नृत्य टीम को भी सॉरी रेडियो टीम को भी मुबारकबाद। आप लोगों की वजह से जो है ना काफी हमको मोटिवेशन मिलता है।
2: वाइस वर्सा, थैंक यू सो मच, और हमें भी आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू वेरी मच,
2: अल्लाह हाफिज।
1: ऑलराइट देन, ये थे फजल साहब हमें समझाते हुए कि किस तरीके से रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं जब आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और जब आप दूसरे की कमियों के अलावा उनको उनकी अच्छाई के लिए ही अप्रिशिएट करते हैं। भाई कमियां तो सभी के अंदर होती हैं, नादिया के अंदर देखिए कितनी है, हैं अब हर कोई सरवर मिर्ज़ा जैसा थोड़ी होता है, तो ये कहीं ना कहीं नादिया है ना,
2: मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नहीं, बहुत बहुत जगह।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नसीम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं?
3: ना यार, फर्स्ट बहुत तेज है, सरवर भाई को थोड़ा बदन खाया करें।
2: भाई आपको कह रहे हैं थोड़ा चुल्लू पर पानी रखा करें,
1: बादाम के पैसे होते तो यहाँ थोड़ी होते हम।
3: बादाम
2: के पैसे अगर होते तो कहाँ होते सर भाई
1: जी?
3: खाना पीना
1: हवा
3: कुछ
1: हवा खिला ना।
2: हाँ कह रहे हैं आप हवा खाया करें,
1: वही तो खा रहे हैं। और मर क्या रही है, तो नसीब भाई

0: एक ऐसा गुजरा दो दिन का वक्फा हमारे बगैर, ये बताइए पहले तो।
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा,
0: ये तो मेरी बात होगी नादिया जी के बगैर।
1: वो भी बहुत अच्छा,
2: उनके बगैर तो जैसे दाल में छोका लगता है ना तड़का।
0: क्या बात है, भगार बना दिया नादिया आपको,
1: देखा
0: क्या बात है नादिया को भगार बना दिया।
1: सर्वर मैं आपके लिए वही सूखी मिर्च तीखी वाली।
0: हाँ वो अब ये तो डिपेंड करता है। तो नसीम भाई आज कुछ खास हम खास लेके आए, लिख के दो दिन का टाइम दिया हमने आपको, पैसे भी अच्छे खासे दिए थे।
2: हाँ अफवाह तो नहीं है, मैं उधार में सुनाता हूँ।
0: अच्छा चलिए इरशाद। नहीं आ पा रहा,
2: होते कहीं और हो और बताते कहीं और हो तुम।
0: झूठा आदमी है भाई, कौन है, किसकी बात हो रही है,
1: आप ही क्या हो रही है।
0: अच्छा मेरी बात हो रही है।
2: होते कहीं और हो और बताते कहीं और हो तुम, इस दर्द एहतियात से थकते नहीं हो तुम,
0: आगे भी आ रहा
2: है। जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिश,
0: क्या करने की,
2: जैसा दिखाई देने की करते हो कोशिश, मैं खूब जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ कि ऐसे नहीं हो तुम।
0: तो ये तारीफ हो गई आखिर में, ख्याल में चलते चलते कैरेक्टर जो है वो बेहतर अच्छा हो गया,
1: निखर गया।
0: शुरुआत तो दूसरी तरफ से हुई थी,
1: शुरुआत में आपसे बहुत मिल,
0: ये किससे मुखातिब थे आप वैसे नसीम साहब,
1: सर्वर भाई आपसे,
0: मतलब हमारे हमारे अलावा
1: फिर आपसे,
2: आप
0: दोनों से। चलिए नादिया आप भी इसके अंदर शामिल,
1: आखिर में तो मैं हूँ, शुरू में आप।
0: नसीम भाई आप माशाल्लाह से शादी हो गई आपकी,
1: आज आप शादी के पीछे पड़ गए, किसी दिन खाने के पीछे पड़ जाते
0: हैं। तो अब किसी ना किसी चीज के लिए तो पीछे पड़ हुआ, एक घंटा निकाला। तो ये बताइए कि आप बेगम को कितना अप्रिशिएट करते हैं।
2: ये सवाल जो आप, मैं तो सराहना बहुत करता हूँ, लेकिन ये सवाल ऐसा है जैसे चुपते हुए चीज को अंगार लगाना।
1: ये सवाल ऐसा है बेगम,
0: कैसे करते हैं,
1: कैसे आग लगाते हैं, मतलब
2: जैसे अभी थोड़ा सा मैं लगा है वैसे।
0: तो आप बहरहाल करते हैं हम चलिए।
1: नहीं मुझे लगता है ये इसी तरह से शायरी के अंदाज में बिल्कुल तारीफ करते हैं अपनी वाइफ
0: कुछ और होती होगी। ऐसे ही कुछ है आपके पास जो आपने सुनाया हो कभी भाभी को?
2: हाँ उनको मैं अक्सर सुनाता रहा।
0: कुछ है याद अभी तो सुना दीजिए,
2: अभी सुना दूं?
0: हाँ याद आ रहा है अगर जल्दी से।
1: सही कहा उन्होंने, अभी सुनाओ आपके सामने, क्यों सुनाओ भाई वाइफ को सुनाओ।
0: नहीं आ रहा।
2: दिन को दिन लिखते हैं रात नहीं लिखते, दिन को दिन लिखते हैं रात नहीं लिखते, हम दीवानों जैसी बात नहीं लिखते। ये अल्लामा इकबाल सर पे,
1: वाह।
2: इसका जब भी दिल चाहे मिल सकता है, इसका जब भी दिल चाहे मिल सकता है, दरवाजे पे हम औकात नहीं लिखते।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नसीम भाई, एज यूजुअल बड़ी अच्छी बातें हैं आपकी और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
2: आपका
0: ये जर नवाजी है, अहलन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह
0: वही थे।
1: हमारे साथ
0: जुड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा फोन क्या बंद हो चुका है। यहाँ पर कुछ मैसेज, दो मैसेज तो ले लो। मोबिन भाई हमारे साथ,
1: कॉलर
0: भी है हमारे,
1: बेचारे को वेट ऐसे कराना ठीक नहीं लगता। हमारे कॉलर्स वेट करें।
0: जी आपको तमाम लिसनर्स को गुड आफ्टरनून,
1: वेरी गुड आफ्टरनून,
3: गुड आफ्टरनून।
1: हम तो मैसेज में गुड आफ्टरनून करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अकरम हमारे साथ है, कैसे हैं आप, खैरियत से?
3: आप लोग कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी खैरियत से हैं। आज हमारा टॉपिक है कि वाइफ को एप्रिसिएशन आप उनका करते हैं, हमने उसको वाइफ से भी हटा के रिश्ते से, हमने पूछा रिश्तों में एप्रिसिएशन क्यों ज़रूरी है, इस तरह से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन से रिश्ते, कौन कौन से रिश्ते हैं जिसमें एप्रिसिएशन ज़रूरी है और क्या आप कर पाते हैं?
3: नहीं बहुत अच्छा टॉपिक है, अप्रिसिएशन हर चीज़ में होना चाहिए, या वाइफ हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, टीम हो, फुटबॉल टीम हो, पुलिस हो, अप्रिशिएट करेंगे तो आगे ना और है ना वो लोग।

0: जो है ना और अच्छा इम्प्रूवमेंट में बहुत फर्क हो जाएगा।
1: आखिर में सुना क्या कहा उन्होंने, जब सबका नाम ले रहे थे कलीग्स का भी नाम लिया उन्होंने, कलीग्स हो कलीग्स हो।
2: आपको करना चाहिए मुझे अप्रिशिएट,
0: हर चीजों में कामयाबी पे कामयाबी बढ़ते जाएगी, यानी कि कोई पीछे नहीं रह जाएगा जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो पीछे नहीं। यानी कि अपन आप फॉर एग्जांपल भाई बहन भी है ना, अब वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं सब कर लेते हैं, लेकिन वो छोटा है नहीं उसको ना हटा के रख रहे उसको भी अप्रिशिएट करो। क्यों आप किसी को है ना कोई खड्डे में डाल दे, खड्डा है लेकिन बताएंगे नहीं तो गिर जाएगा, उसको वहां से नहीं उसको बचा के निकलना है। इसलिए हर चीज पे आप अप्रिशिएट करेंगे वो लोग और ज्यादा लर्न करने की कोशिश करेंगे। जब आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लैक हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा, कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं होगा। जैसे आप ऑफिस में हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं तो है ना
2: मोटिवेट होते हैं,
0: टीम वर्क होता है वही आपके ना टीम लीडर बन के रहते हैं और है ना हर चीज में अप्रिशिएट करेंगे तो इवन टी बॉय, हम लोग फॉर एग्जाम्पल टी बॉय को टी बॉय भी नहीं बोलते उसके नाम से पुकारते हैं, उसके साथ भी ना हंसी मजाक होता है और ना हर चीज में अप्रिशिएट करके ना आगे बढ़ते रहते हैं, कोई किसी को हम लोग पीछे नहीं छोड़ते या घर हो या बाहर।
2: बहुत ही अच्छी आपने बात कही, एक तो बंदा मोटिवेट होता है, माहौल अच्छा बनता है और किसी भी शख्स की जो काम करने की कैपेसिटी है वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है। सो दैट्स हाउ अप्रिसिएशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: बच्चों को जब अप्रिशिएट करते ना वो आगे बढ़ते जाता है।
2: बिल्कुल,
0: आज अबू मेरे को अप्रिशिएट किया, मम्मा मुझे अप्रिशिएट किया, मैं स्कूल में भी करके दिखाऊंगा। फिर अगर कहीं टीचर से भी है ना, यानी कि टीचर मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो हम लोग टीचर से डिस्कस करते हैं क्या कहां पे कान उसका
2: True,
0: तो है ना उसको टीचर भी हम लोग जब डिस्कस, जब फॉर एग्जांपल पेरेंट टीचर मीटिंग है और आप जब है ना बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो मालूम पड़ता है कि भाई पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, वो लोग आते हैं हाँ भाई ये बच्चे के पेरेंट्स आने वाले हैं, उनको देख कन्फर्म के भाई माँ बाप आके पूछते हैं और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं टीचर को क्योंकि हार्डवर्क पे बच्चा भी ना वैसे फिर हाँ पेरेंट्स से डिस्कशन कैसा वही अप्रिशिएट किया मेरे, यानी कि एक वो रहता है हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरी इज्जत बनी है नमक कम है वो हम लोग डिस्कस नहीं करते पर बना अच्छा, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी कुछ कुक की क्या वो कैसा बना, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा बना क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आप जब अप्रिशिएट करते हैं नेक्स्ट में ना और अच्छा बेहतर बन जाता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बात और बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम बताया था भाई ने?
2: इकराम भाई
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अकरम भाई
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: थैंक यू सो मच
1: जी। चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं गाना पावधारिया निकिता गांधी और तनिष्क की आवाज में, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, आप भी इनके साथ जुड़ जाइए इस वक्त एनर्जी आर पे सरवर और नाजिया आपके साथ हैं, ओनली ऑन FM 107।
2: दिल से देश

0: अब जब इतनी सारी ख्वाहिशात होंगी तो कैसे अप्रिशिएट किया जाए नाजिया?
1: जूती
0: की बात हुई तो मुझे

0: वेदर का हाल 107 दिनाल।
1: हाँ जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी, आज सरवर नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं। 155 ऑन द क्लॉक। और चलिए मौसम की बात कर लेते हैं, आज मौसम कैसा रहने वाला है। तो बस ठीक ठाक गर्मी ही रहने वाली है और टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस, बट यू गोना फील लाइक 44 डिग्री सेल्सियस। और उसकी वजह है ह्यूमिडिटी। जी हाँ, ह्यूमिडिटी जो है वो तकरीबन 40% है और इसीलिए शायद हमें और आपको थोड़ी गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। वहीं अगर मैं हवा की बात करूँ तो ये है 17 किलोमीटर पर आर, विजिबिलिटी 10 किलोमीटर, यानी तकरीबन साफ नजर आएगा, बहुत ही ठीक ठाक वाली विजिबिलिटी है। अगर क्लाउड की बात की जाए तो आसमान ऑलमोस्ट साफ है, बारिश के कोई दूर दूर तक खास चांसेस नहीं है। वहीं पर अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं तो इट्स हाई एट 7, इसीलिए दोपहर के वक्त अगर आप ज्यादा देर बाहर हैं सो मेक श्योर कि आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आई मीन टू से सनब्लॉक, अपना हाइड्रेशन का ख्याल एंड सनग्लासेस, अम्ब्रेला, व्हाटएवर जो भी आप कैरी करते हैं। तो बस, और रात के टाइम यानी इवनिंग्स के टाइम जो है वो मौसम और बेहतर होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। तो सारी एक्टिविटीज़ आप

0: काम करती हूँ और दिल निकाल के मैं थोड़ी देर पानी में भिगोती हूँ, फिर सर्फ लगा के उसे उसका मैल जो है ना वो बहुत साफ करना बहुत जरूरी है। या तो आपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए, एक दो राउंड लग गया उसके पास था
1: भाई। कदर में अगले हफ्ते जो है मौसम और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। अगर हम महकमे की बात करें और मतलब QMD की बात करें, कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें, तो बताया गया है कि अब अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला और भी जो मौसम है वो बेहतर होता चला जाएगा। और ड्राइवर्स को बताया गया, जैसे नाजी ने बताया कि ह्यूमिडिटी है तो उस वजह से जो फॉग वगैरह है सुबह जो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है वो आपको दिखता है, जो धुंध होती है, इट्स नॉट कोहरा एक्चुअली, जो धुंध होती है। तो महकमे ने बताया कि भाई जितने भी ड्राइवर्स हैं सुबह के जो अर्ली आवर्स हैं और जब एकदम सुबह सुबह आप लोग निकल रहे होते हैं हाईवे वगैरह पर, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है। और ये भी मशवरा दिया गया है कि आहिस्ता गाड़ी चलाएं और सफ़र के दौरान जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, मोबाइल वगैरह का भी इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा एहतियात से करें जिस तरीके से करना चाहिए।
0: राइट, वेल इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल चाल है?
2: सब बढ़िया,
0: सब ठीक, सब खैरियत।
2: मतलब क्या तुम जो है ना मानोगे नहीं, मान जी सरवर भाई का दिल जो है ना कुकर में उबाल के ही रहोगी।
0: अरे मैं तो गलाने की कोशिश कर रही हूँ।
1: दिल वैसे मैं बता दूं, एक आदमी बहुत
0: पत्थर हो गया इनका,
1: और इनमें बहुत सही बात याद आ गई,
0: पत्थर हुआ, मैंने कहा चलो
1: गला। एक आदमी कतर में जो दिल बहुत खाता है भाई, कौन है पूछा?
0: कौन है
2: सरवर भाई, क्या हाल चाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जासिम भाई आप खैरियत?
0: मुझे लगा कि आप वीकेंड पे आप ही
1: हैं। नहीं नहीं नहीं भाई, एक आदमी को दिल खाने का इतना शौक है।
0: अच्छा,
1: अरे वो छोड़ो यार जासिम भाई, अब आप सुनो। बहुत अच्छी रही, बहुत जबरदस्त रही, अल्लाह का शुक्र है यार, पहले से आराम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और है
2: अरे मजा
1: आया, बहुत बहुत आला, बहुत आला, बहुत ही अच्छी हम
2: सच में है। मुझे तो लग नहीं रहा यार, मुझे तो लग रहा,
1: अरे आप बात सुनिए, आप जब सुबह तशरीफ लाए ना, तो सुबह जो साहब तशरीफ लाते हैं स्टूडियो में, यहाँ पर नाम लेने से डरता हूँ मैं ना जरा, जो
0: हाँ
1: ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, रात में मम्मी मना करती है ना, सोचा जल्दी उलू आ जाएगा, तो मसला ये है मैंने नाम ले लिया तो मेरे पीछे फिर वो तीन चार दिन तक अंधेरे की तरह वो जो आप समझ रहे हैं,
2: अंधेरे की तरह नजर नहीं आता रहेगा, रात को अंधेरों में जाके खुद मिलते हो भाई।
1: अरे यार क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो जासिम भाई। अच्छा आप उनसे ये पूछिएगा, आप उनसे ये पूछिएगा कि दिल का क्या मसला है और आपको दिल खाना इतना पसंद क्यों है, तो जरा मेरी तरफ से ये सवाल कर लीजिए।
0: अरे ये तो कॉम्बिनेशन हो गया,
1: अपना आदमी दिल दे ले नहीं रहा, खा रहा है भाई, दिल ही खा जा रहा है।
0: बताओ वो आदमी दिल खा रहा है, दिमाग खा रहा है, वाह क्या दिल है दिमाग,
1: ये तो ऐसी चीज खा रहा हूँ जो लोगों के पास कम मौजूद है, ढूंढनी पड़ रही है, दिल तो सबके पास है,
0: दिमाग खा रहे
2: हैं।
1: क्या चीज का
0: क्यों खा रहे हैं
2: भाई, आप खुद थे वहाँ पे, आपने क्यों नहीं पता करा?
1: यार मैं कहाँ पे, मैं कहाँ कहाँ था, मुझे खुद नहीं पता है ये कहाँ कहाँ से बात आ रही है।
0: आप गायबाना तो थे सर्वर भाई,
1: नहीं मेरे ख्याल में
2: चल रही है,
1: नहीं नहीं कुछ
2: चल रही है, अनरेटेड
1: कुछ मीट वगैरह हुई है मेरे ख्याल में जिसमें मैं नहीं था,
0: और उनको ऐसा लग रहा
1: है मैं कैसे सुबह कुछ कह के गए हैं क्या वो इस सिलसिले में,
0: सुबह थे आप थे भाई?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं,
1: अच्छा
2: सुबह का टॉपिक तो नहीं, मुझे नहीं पता सुबह कुछ नहीं कहा,
1: अच्छा
2: नहीं कहा होगा,
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: तो हमें तो हमारी तो ये पर्सनल थे ना, हमें पता।
0: अच्छा जैज भाई की दावत में सरवर भाई आप थे?
1: यार फालतू में जैज भाई नाम भी खराब हो रहा, दावत भी नहीं दे रहे, कम से कम दावत दे ही दो, उंगली कटा के ही नाम लिखवा लें भाई। अच्छा,
0: अच्छा
1: भाई,
0: आज का हमारा सवाल भी पूछ लेते हैं,
1: आज का सवाल बहुत जरूरी है जैस भाई, और मुझे लगता है कि इस पर अच्छी रोशनी डालेंगे। के ये बताइए कि
0: रिश्तों में एप्रिसिएशन क्यों जरूरी है?
1: ना ये सवाल आपसे मैं करता रहूंगा और आपसे भी करूंगा बाद में।
2: एप्रिसिएशन मतलब के
0: सराहना चाहिए रिश्तों में, जैसे हस्बैंड को, वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को, बच्चों को, पेरेंट्स को,
1: कलीग्स को,
0: या आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं इनफैक्ट, या कोई और आसपास का रिश्ता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो है उनके काम की, उनकी बातों की, उन चीज़ों की अहमियत जो हम जिन्हें हाईलाइट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्या हम कर पाते हैं, आप कर पाते हैं रिश्तों में, या आप रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं? अरे इसमें कहने की क्या जरूरत है, अंडरस्टूड, इनका तो काम ही है, खाना तो बनाना ही है ना इन्हें, ये तो इनका काम ही है।

0: नहीं
1: तो हम क्यों, हम काहे तारीफ करें, ऐसे होता है या करते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, अगर जो चीज है जो काम है, देखो खवातीन है हमारी, जैसे मैडम है मेरी वाइफ है, मैं उसको जो है ना बहुत ज्यादा उसकी बहुत कदर करता हूँ, क्योंकि जिस
1: अच्छा
0: तरीके से बच्चे को संभालती है और जिस तरीके से सब चीज लेके चल रही है, घर को लेके चल रही है, संभालती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि समझदार बहुत है। शादी से पहले नहीं थी मगर शादी के बाद हो गई।
1: मुझे लगता है कि आप समझदार हुए हैं शादी के बाद।
0: नहीं मैं तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: देखा शादी का फर्क कितना, मतलब आपको कितना समझदार बना दिया आपकी वाइफ ने। तो अगर आपका पार्टनर समझदार है तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ते ही है, तो इस चीज के लिए आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं।
0: मैं बहुत करता हूँ, अभी भी जो है ना, अभी भी अगर कोई बात होगी, अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत होगी बताएगी नहीं बिल्कुल भी कि मुझे ये चीज चाहिए होती।
2: सुनिए
1: ये अपने आप बिना बताए ही दे रहे हैं पैसे लोगों को, पूछिए आप दे रहे हैं उनको?
0: मैं तो सब कुछ मैंने तो कह रखा है कि जो भी मन करे, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है, अकाउंट तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है, जाओ ले लो,
1: लो।
0: किसी भी चीज से परहेज करने की जरूरत नहीं।
1: समझ लिया भाई?
2: नहीं ये सब तो मैं भी कह रहा हूँ, वो बात अलग है, अकाउंट में कुछ है ही नहीं है तो कह तो दे भी रहा हूँ, उसके बाद
0: नहीं, जो भाई, नहीं, अच्छा ऐसी भी बात नहीं है कि अकाउंट में।
2: नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ यार, अपनी अपनी है। आप ठहरे रईस आदमी भाई माशाल्लाह।
0: भाई आपके पास कुछ नहीं है, सारे सारे पैसे खतर में आप नहीं पे जमा कर रहे हैं, सब इंडिया को भी नहीं भेज रहे।
2: यार ये क्या कह रहे
0: हो,
2: क्या कह रहे हो सारे बाजार भाई,
1: बहुत ही
2: बच्चे कुछ जो दो तीन रेल पड़े वो भी चिन जाएंगे, ऐसा नहीं करो भाई जुल्म। मगर ये बड़ी अच्छी बात करी जो इन्होंने बात करी है,
1: सीरियसली जो कहा कि मैं अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता हूं, दैट्स वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात कही,
2: बहुत अच्छी बात,
1: आपने इंप्रेस किया हम लोगों को।
2: मेरा जो सवाल है वो याद रखिएगा, मैंडेटरी ब्रेक है वो लेना भाई, वरना बात लंबी करते जासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यूं गए भाई हम दोनों और यूं आए, छोटा सा ब्रेक।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: टाइम चेक 2:06 हो गए हैं घड़ी में, बाकी तो नदी के 12 बजी गए। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सर आज सर्वर सर बड़े डाउन लग रहे हैं, लगता है एनर्जी डाउन है या फिर वीकेंड अच्छा नहीं गुजरा। सादत आफरीदी हमारे साथ हैं। सादत भाई यार, आपकी बिल्ली बड़ी प्यारी है जो मुझे इस वक्त डीपी में दिख रही है। आप भी प्यारे लग रहे हैं उसके साथ, ऐसी बात नहीं है, आप और भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मगर वो भी प्यारी लग रही है। इसका नाम क्या है बताइएगा। तौफीक भाई हमारे साथ नाजिया, और यहाँ पर कुछ महफिल और मजलिस की फोटो भेजी है जहाँ पे नोट उड़ा रहे हैं।
3: मतलब
2: वो तो चलिए उनकी आदत है, मगर कहते हैं सर नाजिया अस्सलाम वालेकुम तौफीक अलवाकरस, अल्लाह आपको तौफीक दे। तौफीक भाई, नसीम भाई को चाहिए अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखा करें। ये कौन है? हुसैन भाई।

0: हमारे साथ, मैं हूँ ना
1: कहते हैं कॉलर भी
0: है। अस्सलाम वालेकुम सरोर भाई, नाजिया मैडम जी वेलकम बैक करते हैं। वालेकुम अस्सलाम मकसूद हमारे साथ,
1: और हमारे साथ कॉलर यहाँ जुड़ गए। हेलो
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं? चलिए हम दोनों नहीं बता रहे, आप बताइए।
0: आप बताइए
1: रिश्तों में अप्रिसिएशन क्यों जरूरी है, आप बताइए।
0: नाम बताइए,
1: आप बताइए।
0: नहीं नाम बताइए।
1: अजीब आपने
0: आज तो दिन है मेरी भी आवाज निकल आई यार, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज है ना यार, जो मतलब जन्नती लोग हैं। और अप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो
1: आज
0: बिल्कुल इनसे अच्छा खुला था
1: पिछला वीक, वाइफ अप्रिसिएशन डे।
0: हाँ वीक वीक
1: वीक चला भाई,
0: क्या कहते हैं शिव भाई,
1: आप करते हैं अप्रिसिएट?
2: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप सरोज भाई को सारी बात का पता है, कितना करता हूँ कितना नहीं।
0: कंपनसेट ज्यादा करते हैं, अप्रिशिएट कम करते हैं। माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला हम सबको इंशाल्लाह वहाँ मिलवाएगा एक दूसरे से, और जरूर क्यों नहीं। बट ये है कि
1: वहाँ भी पहुँचेंगे,
0: जो प्रैक्टिस है वो यहीं से दिख जाती है ना कि भाई कौन कैसा है,
1: तो मुश्किल है आप पहुँचेंगे।
2: इसमें खाली मतलब ये नहीं कि एक जो आपके साथ है, और भी है फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं, और भी है दोस्त भी है, सबके कर सकता है ये।
1: हाँ, चाहे हस्बैंड चाहे पेरेंट्स हो, हाँ, चाहे आपके जो वालदेन है वो हो, बच्चे हो, दोस्त हो, सबकी सबकी अहमियत है, उनकी मेहनत है, उनकी मोहब्बत है, उनकी कोशिशों को पहचानना और उसका इजहार करना, आप कर पाते हैं ऐसा कि नहीं?
2: बेशक
1: करते हैं। तो किसको सबसे ज्यादा रिश्ता, कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसे आप सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं?
2: सबसे ज्यादा रिश्ता अभी वैसे तो खैर मैं, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। फिर उस बाद मॉम डैड है, घर पे फैमिली है, सब मतलब एक ही है, ये नहीं है कि किसी को एक तरह से खास बना दिया जाए।
0: सबको अप्रिशिएट करा करें नाजिया, ये बात समझ
1: नहीं। एक चीज इन्होंने अच्छी कही कि अप्रिशिएट हम करते हैं। अच्छा यूजुअली क्या होता है रिश्तों में, लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, दिल ही दिल में करते होंगे शायद, उसका इजहार नहीं करते। क्यों रिश्तों में हम अक्सर ये होता है ना फॉर ग्रांटेड लेके चलते कि भाई हस्बैंड का काम है बाहर जाके काम करना और पैसे अर्न करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, और आप अपनी वो ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। सेम गोज़ विद वाइफ या फीमेल्स के साथ कि भाई वो घर की टेक केयर करना, बच्चों का ख्याल करना, तो हम इस चीज़ को यूजुअली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। वी थिंक कि ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बस ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। या आप जो है वो वक्त निकाल के बकायदा उन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, फिर अप्रिशिएट करते हैं।
0: एक बार और
1: इसके
0: इसके ये कह रही है कि जो जो रिश्तों में जो जिनका जो काम है, जो दुनियावी एक तरीका है, मतलब कि शोहर जो है वो बाहर जाएंगे कमाएंगे और ख्वातीन जो है वो घर में काम करेंगी, तो वो काम को काम समझ के अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मतलब
1: काम को जिम्मेदारी समझी जाती है, और इसलिए उस जिम्मेदारी को कोई पूरा कर रहा है तो लोग उसकी सराहना नहीं करते।
2: नहीं भाई देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा है, अच्छा। का तो नहीं पता मुझे घर भाई, लेकिन अभी जैसे
0: अच्छा ये आपको नहीं पता है, वो तो जिस दिन से पता चलना शुरू हो गया मतलब घर में मिल जाएगा।
2: मैं अभी दरअसल क्या है, आप अभी मेरा आपको लास्ट शो में बताया था, चलिए छोड़े वाली बात, लेकिन ऐसा है की हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के काम के लिए बहुत सपोर्टिव है, अप्रिशिएट करते हैं। और फिलहाल देखो मैं मतलब मेरे पास भी जॉब नहीं है यहाँ, फिलहाल थोड़ा टाइम नहीं है, तो मेरी वाइफ मुझसे हमेशा कहती रहती है कोई नहीं यार हो जाएगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें मतलब अप्रिशिएट करती रहती है।
0: ये बात ये देखिए ये हुआ आज का हमारा खुलासा, एक
1: ये बेसिकली अप्रिशिएट करना नहीं, इमोशनल सपोर्ट भी है, और उसके बाद इंसान जो है वाकई बहुत ज्यादा बेहतर फील करता है और अच्छा कर भी पाता है। फैमिली अगर आपको सपोर्ट ना करे तो सोचिए किस तरह से आप बाहर वालों या बाहर के चैलेंजेस को फेस करेंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही
2: फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी
0: है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी अच्छी बात करने के लिए, समझाने के लिए, आज के मौजू के हवाले से भी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे

0: बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
1: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़। कहते हैं भाई के सरवर भाई अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने साथ दोस्त या खानदान के किसी फर्द के अच्छे काम को सराहते हैं तो उनका दिल तो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत और एहतराम मजीद बढ़ जाता है। अमल दो लोगों के दरमियान जज्बाती ताल्लुक को गहरा करता है। सलमान फारूकी हैं पाकिस्तान से। नाज़िया, आप मानती हैं इस बात को?
1: बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ रिश्तों में जो इज्जत है, जो एक दूसरे की कदर है, गलत फहमियाँ दूर हो जाती है अगर आप धीरे धीरे लोगों रिश्तों में एप्रिसिएशन लेकर आए।
0: अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नाज़िया मैम कैसे हैं आप दोनों? गुड आफ्टरनून, नाइस शो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता चलती है, तोड़ने वालों को नहीं। मुमताज यार,
1: क्या कह रहे
0: हैं भाई, बहुत खूब बहुत खूब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर जी, मोहतरम कैसे हैं आप, क्या हाल है, आपसे बहुत मिस किया आपको। अच्छा, अल्लाह हमें शादी से बचाए सर, और बस माँ बाप हैं ना सर, फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर वो साथ हो ना तो बस वही हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। नाजी क्या कहती हैं बरबस भाई के इस मैसेज पे?
1: मैं कह रही हूँ कि
0: नहीं कह पानी।
1: हाँ वही मैं।
0: सर पश्तो सॉन्ग, सर आपकी शादी हुई है? नाजी आपसे पूछ रहे हैं, बिलाल भाई
1: आपसे पूछ,
0: अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं। अस्सलाम
1: वालेकुम, कितनी बार हुई है?
0: अस्सलाम वालेकुम, बहुत ऑफ यू, बहुत ऑफ यू भाई, आप तो सुपर स्टार हैं। ने लिखा सही है मोहम्मद भाई ने,
1: बड़े प्यारे
0: मोहम्मद भाई, मुझे धोनी से मिलते हैं, MSB से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून नाज़िया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? वेल, वेलकम टू एनर्जी आर। यूसुफ भाई दिल से देसी, हैप्पी संडे आफ्टरनून, कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड?
1: अच्छा
0: रहा। ये रिश्तों को मजबूत करने और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, इससे एक दूसरे में इज्जत बढ़ती है।
1: True.
0: मैं भी करता रहता हूँ मोस्ट ऑफ देम, लेकिन वाइफ के मामले में एप्रिसिएशन देने में थोड़ा कंजूस हूँ, बस कभी कभी कर लेता हूँ।
1: अरे बहुत ही ऑनेस्ट है, चलिए एटलीस्ट इनको इस चीज़ का एहसास तो है। सो जब भी जैसा भी करते होंगे आई एम श्योर बहुत ज़्यादा कर पाते होंगे। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे कॉलर जुड़ गए हैं, काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरिफ अंसारी जी हमारे साथ, राइट?
2: कैसे हैं
1: आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ।
1: आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्तों में जो है वो एप्रिसिएशन क्यों जरूरी है।
2: रिश्तों में एप्रिसिएशन जरूरी है, रिश्ता मजबूत बनता है सबसे पहली बात। रिश्ता मजबूत होता है और छोटी छोटी एप्रिसिएशन से खुशी भी तो मिलती है ना, कि जैसे हम लोग को कोई, हाँ खुशी मिलती है, जैसे हम लोग कोई किसी का छोटा मतलब कुछ काम कर दे रहा है तो थैंक यू का एक्सेप्ट करते हैं, वो रिश्तों में भी तो होनी चाहिए ना, वो चाहे वो उसकी वो लोग उसका एक्सेप्ट करें या ना करें, पर हम लोग एक थैंक यू बोलेंगे तो खुशी अलग ही मिलती है, जैसे क्या उसको परवाह है हमारी,
1: है ना, ये लगता है। बहुत छोटा सा वर्ड है, अगर कोई कह दे आपसे कि भाई आप बहुत कर रहे हैं हमारे लिए, कहने को छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होते हैं।
2: मोटिवेट भी करे आगे मोटिवेट कंटिन्यू करने के लिए।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत ही अच्छी और सही बात
2: है। महसूस भी होता है ना, फीलिंग होती है अलग ही।
1: हाँ हमें ये एहसास होता है कि किसी को हमारी थकान, हमारी दुख, हमारी तकलीफ का एहसास है कि हम जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक कॉलर ने कहा ना, एक जमा खर्च, मतलब जबान ही आपको आके सिर्फ थैंक यू बोलना है या थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, और उसमें भी हम कंजूसी कर जाते हैं।
2: आपको दे रहा हूं। हाँ। तो हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं यार। मैं कंपनी के लिए इतना करके दे रहा हूं और कंपनी मेरे को परवाह ना करे तो फिर दिल टूट जाएगा ना इंसान का।
1: बिल्कुल, और शायद उस लगन से आप काम नहीं कर पाएंगे।
2: कुछ हो तो इंसान और मेहनत से काम करेगा।
1: ट्रू, बिल्कुल सच, बिल्कुल बहुत ही सही बात
2: है। वो अप्लाई होता है सेम रूल्स रिलेशनशिप में भी, कहीं पे भी, एक ये नहीं कि फैमिली है फ्रेंड्स है, कहीं पे भी ये अप्लाई हो जाएगा।
1: हर जगह ये एप्लीकेबल है बात, बिल्कुल वेरी वेल सेड, बहुत ही अच्छी और जबरदस्त बात, थैंक यू सो मच, और जान के खुशी हुई कि आप अप्रिशिएट करते हैं।
2: लाइन में बोलना चाहूंगा मैं दूसरों से, मतलब मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कुछ दिन पहले तो मैंने सेव करके रखा था।
1: जी जी,
2: जहाँ अप्रिसिएशन होती है वहाँ इंसान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता बल्कि दिल से रिश्ता निभाता है।
1: ओ वाह, दिल से रिश्ता निभाता है सरवर भाई।
2: सरवर भाई के लिए था।
1: और एप्रिसिएशन अगर आप वर्बली नहीं कर रहे हैं तो आई एक्सेप्ट मनी,
0: लिख के देते हैं उसको कि भाई
1: मैं पैसे की शक्ल में भी ले लेती हूं एप्रिसिएशन
0: भाई। वाह, बहुत शुक्रिया आरिफ भाई।
2: आयु भाई आपको
0: بہت بہت شکریہ,
1: بہت شکریہ جی, تھینک یو, تھینک یو سو مچ عارف جی, اپنا خیال رکھیے گا.
0: نادیہ اور سرور بھائی, آج آپ دونوں کا موضوع رشتوں میں ایک دوسرے کو سراہنا چاہیے یا نہیں, واقعی دل کو چھو گیا. میری نظر میں رشتے صرف بڑی بڑی چیزوں سے مضبوط نہیں ہوتے بلکہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کی قدر کرنے سے بھی خوبصورت بنتے ہیں. چاہے میں بیوی کا رشتہ ہو, والدین اور بچوں کا, بہن بھائی کا یا دوستوں کا, جب ہم کسی چھوٹی سی خوشی کو دل سے سراتے ہیں تو سامنے والا یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور اس کی موجودگی ہمارے لیے اہم ہے. میرے خیال میں اتنا ہی پڑھتا ہوں, میں بہت لمبا میسج ہے. سبحان یوسف زئی ہمارے ساتھ, سبحان بھائی کا کہنا صحیح ہے,
1: میرے خیال سے بہت اچھے سے
0: کہتے ہیں. بس اسی طرح لوگوں کے دلوں تک اپنی خوبصورت باتیں پہنچاتے رہیے. آپ دونوں کے لیے بہت ساری دعائیں, محبت اور دل سے اپریسیشن. میرا بھائی کیسا, سبحان بھائی جیسا. اور یہاں پر ہمارے ساتھ کالر ہیں.
1: ہیلو,
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: میں تو پہچان آپ بتا تو کھاتے.
0: سمیا, سمیا
1: سمی بتا, سمیا
0: سمیا
1: سمی,
3: تبھی تو میں نے بولا ہے کہ آئی اپریشیٹ نازیہ.
0: وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں. سمی جی, سمی تو نام ہوتا ہے نا آپ کا میرے خیال میں, جہاں تک مجھے یاد ہے.
3: پتا نہیں آپ نے نیا رکھ دیا ہو تو مجھے معلوم نہیں, ابھی ابھی ایجاد کرایا آپ نے.
1: یہ صحیح کہا, ابھی رکھ دیا تو خیر کچھ نہیں.
0: سنبل سنبل سنبل میرے خیال میں
3: سہانا,
0: سہانا نہیں سنبل,
1: سفر
0: سفا سفا سفا سفدر سفدر.
3: دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ ان کو کتنی لڑکیوں کے نام یاد ہیں.
1: ارے وہ تیرے ہب سے,
0: اور وہ بھی سین سے. واہ, سین سے,
1: سین کے بعد.
0: سوی جی کہاں تھی آپ اتنے دنوں سے, اور مطلب کیوں آپ تشریف نہیں لا رہی تھی, یہ میرے بات
3: مجھے لگا آپ کہنے والے کیوں آپ تشریف لے آئی.
0: نہیں نہیں میرا یار, ہم نے تو بہت مس کیا
1: آپ نے دل کی بات.
0: نازیہ نے پچھلے دنوں اتنا مس کیا آپ کو, نازیہ اتنا مطلب دن بھر تسبیح پڑتی رہتی ہیں آپ کے نام کی.
1: میں تو سمی کو واقعی مس کر رہی تھی,
0: ہے نا. میں وہی تو, میں
1: دو چار ہی ایسے جن میں دل سے بہت یاد کر رہی ہوتی.
0: سمی جی
1: کیوں نہیں جڑ رہے.
0: تو سمی جی مطلب ہم جان سکتے ہیں, نادیہ جاننا چاہ رہی تھی آپ اتنے دنوں سے کہاں تھی.
1: جاننا تو آپ چاہ رہے تھے, میں کہہ رہے تھے پوچھو.
3: میں یہی ہوں.
0: اچھا یہی ہے, تو سب صحیح چل رہا ہے, گھر وغیرہ, جاب وغیرہ آپ کی؟
3: الحمدللہ.
0: چلیے یار یہ تو بڑی.
1: آپ ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرتی ہیں اور کون سی بات کے لیے کرتی ہیں؟
0: بالکل نہیں, مطلب بہت زیادہ.
1: آپ کو سب پتہ ہے؟ یس شی از سیئنگ. یس
3: کیا مطلب ہے آپ کا, مطلب کیا ہے؟
0: میں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بولا میں نے.
1: آپ نے بولا کہ بالکل نہیں.
0: بالکل نہیں کہا میں نے, کیا شاید نکل گیا ہوگا جلدی میں. بہت زیادہ میں نے کہا, وہ آپ کے لیے تھا. بالکل نہیں, بہت زیادہ ادھر کے لیے. آپ نے سوال کیا نا, میں سمجھا آپ کہہ رہی ہیں. جی سمجھ.
1: اچھا کون سی ایسی ہیبٹ ہے جس کو آپ پرٹیکولرلی اپریشیٹ کرتے ہیں؟
3: سب سے زیادہ وہ میری ہیلپ کرتے ہیں ہر چیز میں. آئی اپریشیٹ اٹ.
1: سر مرزا کچھ تو سیکھیے.
0: جنتی لوگ, جنتی جنتی,
1: ماشاءاللہ.
0: مطلب جھاڑو پوچھا بھی کر دیتے ہیں, برتن وغیرہ دھو دیتے ہیں,
1: کھانا بھی.
3: یار اتنی تو میں عزت کرتی ہوں کہ میں یہ نہیں کرواؤں گی.
0: یہاں تو اتنی بھی نہیں ہو رہی, کوئی نہیں پوچھ رہا.
3: کوئی بات نہیں,
0: آپ
3: کے لیے ہے یہ بات. ہر ڈوبتا ہوا تارا جو ہوتا ہے نا, وہ ایک نہ ایک دن بہت پیک پہ شائن کرتا, تو ان شاء اللہ آئی ول پرے فور یو.
0: ارے یار کیا بات ہے سمی جی,
1: یہ ان کا بیسٹ پیریڈ چل رہا ہے
0: یار. سمی جی
1: کام
0: ایسے ایسے کام کروائے گئے کہ یہ بہترین ہے جو ہے. تو یہ ستارہ نکل چکا, ابھر چکا, چمک رہا, مطلب چمکنے کے بعد یہ حالت ہے اپنے چمکے کا. اچھا اب
1: تو ڈوبے گا.
0: چلیے ایسا بھی اچھا, ایسا بھی اچھا. یار سمی جی بہت ہی اچھا لگا, اب بڑے دنوں بعد تشریف لائیں.
1: اور پلیز جب بھی جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے جڑا کیجیے.
3: اپریسیشن جو ہے وہ ایک ریوارڈ کی طرح بھی کام کرتا ہے. مطلب انسان کے کہے ہوئے ورڈز جو ہوتے ہیں نا, وہ چیز, وہ کہیں آپ بولو کہ میں بھائی گفٹ لا کے کسی کو دے دوں, آئی اپریشیٹ, نہیں, وہ ورڈز جو ہوتے ہیں نا, دے ہیو انادر پاور.
0: इसलिए अच्छा बोला करें नादिया, कम से कम दूसरे को
3: थोड़ी मतलब है सर्वर भाई, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि मैं आज कॉल करूंगी और अगर मेरी कॉल पिक हो गई तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अप्रिशिएट क्यों नहीं करते नादिया को।
0: अरे यार मुझसे ज्यादा कौन करता होगा, मुझसे ज्यादा
1: रियली वांट टू हग यू फॉर दिस
0: नादिया जी, आपको मैं अप्रिशिएट
1: नहीं करता।
0: नादिया जी देखिए सही बात बताइए, मैं आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कसम खा लीजिए आप जल्दी से जल्दी।
1: सर भाई आप अपनी आंखों की खाइए आप कब करते हैं,
0: यार मैं
1: जवान की खाइए आप कब करते हैं,
0: यार मुझसे ज्यादा कौन करता होगा आपको बताइए, आपके तो घर वाले नहीं पूछ रहे थे इससे ज्यादा।
3: देखिए घर वालों की नजर में तो हम लोग हमेशा ही खराब होते हैं, आप जहाँ काम करते हो वहाँ अप्रिसिएशन बहुत जरूरी
0: है,
3: वो आपके साथ काम करती है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए,
1: आपको बर्दाश्त करती है, इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए।
0: हाँ नहीं मैं आपको सराहता हूँ इस बात के लिए नादिया जी,
1: बट थैंक यू सो मच सुमी, हमेशा ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, प्लीज जब आपको टाइम मिला करें जरूर जरूर जरूर जुड़िए इंशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल
0: रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नादिया कुछ मैसेजेस पढ़ लेने दीजिए मुझे वरना बहुत नाराजगी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मोहम्मद ज़ुल्कर्नैन है, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह,
1: आरिफ अंसारी साहब से
0: हमारी बात हो चुकी है, कहते हैं सलाम कैसे हैं आप लोग। सर सबसे मुश्किल है अपने फादर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, लेकिन जब आप कर देते हैं बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह हम सबके वालिदैन को सेहतियाब और सलामत रखे, बड़ा अच्छा मैसेज है भाई फैसल मलिक हमारे साथ, फैसल भाई बहुत ही अच्छी बात। ओके यूसुफ भाई का मैसेज पढ़ चुके हैं, हम और भी कुछ है भी देखते हैं फिलहाल, अल्लाह हमें अच्छा यहाँ पर इन्होंने कुछ हमें फोटो भेजा है यार, अभी देखते हैं। अरबाज साहब भाई कॉल मी भाई की याद नहीं आ रही, आसिफ भाई हमारे साथ, मोहम्मद आरजू हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आप सरवर भाई को अप्रिशिएट नहीं करता।
1: करता है भाई, करता है जब जब लगता है तो करता है
0: यार। आरजू मैं आज से आपकी आरजू करूंगा, मैं आपके कॉल की आरजू करूंगा, आप कॉल पे आइए, ऐसे लोग कॉल पे चाहिए मुझे भाई।
1: नहीं भाई आप अप्रिशिएट कीजिए ना सरवर भाई को, हमारे साथ कॉलर है। हेलो
4: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: आहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: जबरदस्त आपकी कन्वर्सेशन चल रही है फोन के ऊपर भी, बात ठीक कर रही है लेकिन मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ सर्वर भाई से।
0: वो तो आप होते ही नहीं कभी। आज माशाल्लाह 6 साल गुजर गए ज़ुल्कर्नैन साहब, ये जो परंपरा है सभ्यता है ये कायम है,
4: ये कायम है,
0: ये कायम रहेगी इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं।
4: अगर आप देखें हम लोग जितने बाहर काम कर रहे हैं ना लोग, इनको सारे रिश्तेदार जो वहाँ पर है ना सब बहुत सपोर्ट करते हैं, सब लोग बिल्कुल देखिए बहुत सपोर्ट करते हैं, कहते हैं दिलो जान से आप काम करें, ओवर टाइम करें, पैसे कमाएं भेजें, पूरी सपोर्ट होती है ना उनको,
1: भरपूर
0: सही
4: भरपूर सपोर्ट होती है इमोशनली कि आप काम करें अच्छे तरीके से।
1: सरवर भाई को तो बहुत कहती है फैमिली कि आप जो है वो वहीं टिका करें, रात में भी काम कर लें,
0: ओवर टाइम कर आया करें,
1: माशाल्लाह
0: सोने आ जाइए, आ जाइए नहीं आ रहे कोई बात,
1: कोई बात
0: नहीं साहब, आप नहीं पहले आप मुझे अप्रिशिएट करिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे कब करेंगे।
4: मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, आप जो नए नए टॉपिक ढूंढते हैं और उस पे लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं।
0: मेरा भाई
4: अच्छा सोचने से मुझे याद आ गया,
1: नहीं बोलते आप झूठ नहीं बोलते,
0: नहीं अब इससे आगे हम बात ही नहीं कर रहे
4: हैं। हाँ और वो
1: नहीं बोलते
4: नाजिया ने एक दफा मुझे बताया था, मैंने कहती है मैंने सरवर भाई को कहा कि मुझे ना एक चीज सोच के बताओ, तो उन्होंने पेट पे खारिश करनी शुरू कर दी, होते क्या हुआ, कहते हैं मैं यहाँ
0: से सोचता हूँ। नहीं हकीकत है यार, देखिए ये बहुत समझदार आदमी ज़ुल्कर्नैन, बता दूं आपको आज
1: पता चला आपको,
0: ये बहुत समझदार आदमी, जब तक मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा मैं सोच भी नहीं पाता यार वाकई।
1: और मिलने के बाद कौन सा आप सोच,
0: मेरे भाई ने मेरे ऊपर नज्म लिखी, आप समझ रहे हैं, नज्म उसके लिए लिखी जाती है जिससे इश्क करता हो आदमी, शायरी उसके लिए करी जाती है, ये आदमी मुझसे इश्क करता है इतना ज्यादा कि मैं बस कुछ भी मांग लूं ना नहीं कर सकते, ये बस थोड़ा बहुत
4: ये अल्लाह करे ये खुशफहमी कायम रहे।
0: क्या बात है भाई ज़ुल्कर्नैन साहब, और अच्छा हुआ आज आप तशरीफ लाए, ये टॉपिक आपके बगैर अधूरा था।
4: बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे जरा

0: ये बंदा मेरा जबरदस्त है, इसको मैं काम दूं ना, ये वक्त का ख्याल नहीं रखता, ये काम को कंप्लीट करके ना तभी जाता है। वो अगला बंदा दिल में सोच रहा होता है ये 2-3 दिन का काम एक ही दिन में खपाने के चक्कर में है, अब इनको मैं कैसे समझाऊं इस बात को।
1: और तो जिस बंदे की तारीफ हो रही है वो ये सोच रहा था मैंने ऐसा किया कब है, कभी।
0: सही बात है, उसके भी कान खड़े हो जाते हैं, कुछ मामला गड़बड़ है, ये जो तारीफ की हो रही है ना वही आप स्तर पे आने वाली है। हाँ, तो बाकी अप्रिशिएट घर में चलता रहता है, तो हमारी फैमिली में और उसमें तो एक रेगुलर बात है, लेकिन बात ठीक है। हर बात क्या कहना चाहिए, एक चीज़ है कि हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि एज ए फादर एज ए हस्बैंड ये ही अप्रिशिएट करे कि दूसरी तरफ से भी अप्रिशिएशन होती है। दादर साइड
2: वो भी यही कह रहे थे, सही।
0: अच्छा, जो मैदाने जंग में है उसको भी तो कोई अप्रिशिएशन चाहिए भाई, तुम लड़ रहे हो, पोछा करो।
2: सही सही बिल्कुल सही। नादिया सीखिए, दुलकर नैन साहब एक पूरी किताब है,
1: इंस्टीट्यूशन है।
0: नहीं, नहीं, प्लीज मुझे इतना ना करें, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ कभी लाइट मूड में गेटिंग रिलैक्स और बड़ी मजे की बातें।
2: नहीं यार, मेरे साथ तो रिलैक्स ही रहा करें आप, बाकी सबको आप इंस्टीट्यूशन की जितनी भी चीजें हैं आप जब मेरे साथ हंस के बात करते हैं जब भी अच्छे लगते हैं, दुलकर
0: बड़ा मजा
2: है, आप और भी अच्छे लगते हैं।
0: आप ये जो सोशल मीडिया मैसेजेस करते हैं ना, उनके आंसर मैं जरा तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
2: मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया दुलकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम हो गया।
1: जरूर जुड़ा कीजिए,
2: जरूर जरूर जुड़ा करिए आप हमारे साथ और आपका इंतजार रहेगा। यूसुफ भाई कहते हैं कल से नादिया मैसेजेस पढ़ेंगी, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि मैसेज मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह ताला ये मोबाइल जो है कल से नादिया के साथ रहने वाला है।
1: यूसुफ जी का तो मैं ही पढ़ूंगी।
2: नहीं और नहीं बिल्कुल, ये अब आप कल से इंशाल्लाह अंजाम दिएगा। नसीम भाई का मैसेज है, मोहम्मद जुल्फिकार का मैसेज है और बाकी लोगों से हमारी बात हो चुकी है भाई, जिनके मैसेज मिस हो गए माजरा चाहते हैं, क्योंकि वक्त हो गया कि आज के लिए आपसे ले लें इजाजत। फिलहाल चंडीगढ़ के हवाले करे जा रहे हैं आपको। चंडीगढ़ जगह ऐसी है भाई कि वहां पर ये सारी बातें होती रहती हैं जो गाने में बताया गया है। फिलहाल अभी लेते हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
1: देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने किराम, कभी किसी ने आपके पैगाम का जवाब देर से दिया है, अब जहन फौरन ये कहता है कि ये जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा है। किसी ने आपको देखकर सलाम नहीं किया तो आप दिल दिल में कहने लगे कि अरे इसे तो बड़ा गुरूर आ गया है। दो लोग आपके सामने बात करते करते खामोश हो गए, दिल ने फैसला कर दिया जरूर मेरे बारे में बात हो रही थी। कोई दोस्त पहले जैसा राबता नहीं कर रहा है, हमने पूरी कहानी बना ली कि अब उसके दिल में मेरे लिए कुछ और है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे पास कोई सबूत था या सिर्फ एक ख्याल, और हमने इस ख्याल को हकीकत का दर्जा दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इय्याकुम वज़्न फइन वज़्न अकज़बुल हदीस वला तजस्ससु वला तहस्ससु वला तबाग़ज़ु वकूनु इख्वाना। बदगुमानी से बचो।

क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बातों में से है। तजस्सुस न करो, लोगों के पोशीदा मामलात की टोह में न लगो, एक दूसरे से बुग्ज न रखो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। सामने की यह हदीस एक पूरा सिलसिला हमारे सामने लाती है, बदगुमानी, फिर तजस्सुस, फिर दिलों में नफरत, फिर ताल्लुकात में दूरी, और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन सब चीज़ों से बाज रहो, वकूनु इख्वाना, भाई भाई बन जाओ। गोया अगर अखुव्वत को बचाना है तो पहले दिल के गुमान को संभालना होगा। समय कराम, किसी के बारे में कोई मनफी ख्याल अचानक जहन में आ जाए तो सिर्फ इस ख्याल के आने पर इंसान मुआखजा का मुस्तहिक नहीं हो जाता। इतनी बात तो सही है, इमाम नवी रहमतुल्लाह ने वजाहत की है कि ममानत उस बदगुमानी से है जिसे इंसान अपने अंदर जमा ले, सच मान ले और उस पर कायम हो जाए। क्योंकि बाज़ ख्याल अचानक आ जाते हैं, इंसान ने उन्हें बुलाया नहीं, मसलन ख्याल आया शायद उसने मेरे खिलाफ ये किया हो, एक ख्याल है। अब यहाँ आपके पास इख्तियार है, आप कह सकते हैं मुझे हकीकत मालूम नहीं, मैं बिला दलील फैसला नहीं करूँगा, या आप कह सकते हैं नहीं, मुझे यकीन है यही हुआ होगा। पहली सूरत में आपने ख्याल को रोक दिया, दूसरी सूरत में आपने गुमान को फैसला बना दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने इस सिलसिले में नहायत गहरी बात बयान की है। वो कहते हैं कि बदगुमानी सिर्फ जहन के अंदर नहीं रहती, पहले दिल बदलता है, फिर रवैया बदलता है। पहले किसी के बारे में मनफी ख्याल आया, फिर दिल में नफरत महसूस होने लगी, फिर मुलाकात में गर्म जोशी कम हो गई, फिर जवाब मुख्तसर हो गया, फिर हमने उससे दूरी इख्तियार कर ली और सामने वाला सोच रहा है आखिर मैंने क्या किया है। और ये बहुत बड़ा खतरनाक मुकाम है। हर बदगुमानी फरासत नहीं, हर शक जहानत नहीं, बाज़ औक़ात जिसे हम जहानत समझ रहे होते हैं वो सिर्फ बिला दलील बदगुमानी होती है। सबने कराम, इस हदीस पर अमल सबसे पहले हमें अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करना है। मियाँ बीवी, भाई बहन, वालिदैन और औलाद, दोस्त, साथी, इनके साथ एक छोटी सी बात पर फौरन नियत पर हमला कर देना कि तुमने जानबूझकर किया है, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, तो ये गलत है। ज़रा रुकिए, हम तो अमल देख रहे हैं, नीयत नहीं। बाज़ औक़ात मसला सिर्फ गलत फहमी होता है। समझ के नाम, इस तरह की गलत फहमियों का हल हमें एक सवाल में मिल सकता है। ये एक सवाल हमें बहुत से झगड़े से बचा सकता है। आप इस तरह सवाल करें कि आपकी बात से मुझे ये महसूस हुआ, क्या आपका मतलब वाकई यही था? तो अंदाज़ा लगाने के बजाय पूछ लीजिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदगुमानी, कीना और बुग़्ज़ से पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की कहानी है जर्मनी के टेनिस सुपरस्टार अलेक्जेंडर ज़वरेव की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्होंने सालों तक ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी का इंतजार किया, इंजरीज और डायबिटीज जैसी चैलेंजेस का सामना किया और फिर 2026 में टेनिस की दुनिया में अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अलेक्जेंडर ज़वरेव ने बचपन से ही टेनिस को अपनी जिंदगी बना लिया था। टेनिस फैमिली में परवरिश पाने वाले ज़वरेव ने सिर्फ 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया। उनके वालिद अलेक्जेंडर ज़वरेव सीनियर और वालिदा इरेना दोनों प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, जबकि उनके भाई मिशा भी ATP टूर पर खेल चुके हैं। लेकिन ज़वरेव की कहानी सिर्फ टेनिस की नहीं है। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्हें टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई। यकीनन ये एक चैलेंज था फॉर ज़वरेव टू एक्सेल इन टेनिस। डिफिकल्ट। डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया था कि डायबिटीज की वजह से उनकी जिंदगी और स्पोर्ट्स करियर मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनकी वालदा ने हार नहीं मानी। ज़वरेव ने

2026 का US Open जीतने के बाद emotional speech में बताया कि उनकी वालदा ने हमेशा यकीन रखा कि इस बीमारी उनके बेटे के future का फैसला नहीं करेगी। See such a determination। और आपके पास अगर support हो, family support हो, तो an Allah dua। I mean definitely without Allah's dua nothing is possible। So इस दोनों के साथ family का support और ऊपर वाले के दुआ। And इसी वजह से शायद अलेक्जेंडर ज़वरेव यहां तक पहुंचे इस साल यानी सन 2026 में दो ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज यूएस ओपन से पहले ही वॉन द फ्रेंच ओपन। क्या बात है। ज़वरेव ने 2022 में अपनी डायबिटीज को पब्लिकली डिस्क्लोज किया और अलेक्जेंडर ज़वरेव फाउंडेशन कायम की जिसका मकसद डायबिटीज से मुतासिर बच्चों की मदद और अवेयरनेस फैलाना था। प्रोफेशनल टेनिस में ज़वरेव ने बहुत जल्द ही अपनी पहचान बना ली। उनकी पावरफुल सर्व, टू हैंडेड बैकहैंड और कोर्ट कवरेज ने उन्हें दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। लेकिन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उनसे दूर रही। सन 2020 यूएस ओपन फाइनल में ज़वरेव ने डोमिनिक थिएम के खिलाफ दो सेट्स की लीड हासिल की और मैच के लिए सर्व भी किया लेकिन आखिर में टाइटल हार गए। सन 2022 फ्रेंच ओपन में राफेल नदाल के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान उन्हें सीवियर एंकल इंजरी हुई जिसने उन्हें महीनों तक कोर्ट से दूर रखा। फिर सन 2026 ने सब कुछ बदल दिया। फ्रेंच ओपन 2026 ज़वरेव का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल। रोला गारो फाइनल में ज़वरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को 5 सेट्स में 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 सेट से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। मैच सुन लीजिए 4 घंटे और 16 मिनट तक चला। है आपके पास इतना पेशेंस? है आपके पास ये हार्डवर्क? इट्स डिफिकल्ट और वो भी डायबिटिक पेशेंट। और सिर्फ 3 महीने बाद यूएस ओपन टाइटल इन न्यूयॉर्क। ज़वरेव ने अमेरिकन स्टार बेन शेल्टन को फाइनल में 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 सेट से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। और इस फतेह के साथ ज़वरेव ने सन 2026 में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों टाइटल्स अपने नाम कर लिए। अच्छा, यूएस ओपन फाइनल में उनकी फर्स्ट सर्व परफॉर्मेंस भी लाजवाब रही। उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्व पर 85% पॉइंट जीते। लेकिन दोस्तों, ज़वरेव की मेडिकल जर्नी भी उतनी ही रिमार्केबल है। टाइप 1 डायबिटीज के साथ प्रोफेशनल टेनिस खेलने के लिए उन्हें अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। मैचेस के दौरान वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर या CGM यूज करते हैं। उनका फोन ग्लूकोज रीडिंग्स दिखाता है और जरूरत पर वो इंसुलिन भी ले सकते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने उन्हें मेडिकल एग्जेम्पशन दी हुई है ताकि वो कोर्ट पर अपनी हेल्थ मॉनिटर कर सके। ये सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2026 विंबलडन के दौरान भी ज़वरेव ने बताया था कि डायबिटिस मैनेजमेंट उनके प्रोफेशनल करियर का एक कांस्टेंट हिस्सा है। हेल में एक ग्लूकोज सेंसर की मैलफंक्शन की वजह से उन्हें इंसुलिन और ब्लड शुगर को अर्जेंटली मैनेज करना पड़ा था। यानी जब ज़वरेव कोर्ट पर ओपोनेंट के सामने खड़े होते हैं तो उनकी फाइट सिर्फ टेनिस बॉल और रैकेट की नहीं होती है दोस्तों, उन्हें अपने ग्लूकोज लेवल्स को भी मैनेज करना होता है। इसलिए उनकी 2026 की ग्रैंड स्लैम जर्नी और भी खास बन जाती है। दोस्तों, अलेक्जेंडर ज़वरेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी मेडिकल कंडीशन को अपनी पहचान बनने देना जरूरी नहीं। 4 साल की उम्र में डायबिटीज का डायग्नोसिस, इंजरीज, ग्रैंड स्लैम फाइनल्स की हार और फिर 2026 में दो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, फ्रेंच ओपन चैंपियन, यूएस ओपन चैंपियन और अब अलेक्जेंडर ज़वरेव टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और स्पोर्ट्स स्टार की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. दोस्तों, हर शख्स हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं. देखिए, एसेट से मुराद वो कीमती चीजें हैं जो हमें वैल्यू देती हैं या फ्यूचर में फायदा पहुंचाती हैं. ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी कोई मशीनरी हो सकती है, आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई व्हीकल है या टेक्नोलॉजी या इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. आज हम बात करेंगे इन्हें मैनेज करने की. जी हाँ, मैनेजिंग एसेट्स कहे जाते हैं कि कामयाबी का असली राज यही है. देखिए, एसेट मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने एसेट्स को इस तरह मैनेज करना कि उनकी वैल्यू, जी हाँ, उनकी वैल्यू बरकरार रहे, उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो और लंबे अरसे तक उससे आपको फायदा हासिल हो. मिसाल के तौर पे, अगर किसी के पास एक कार है और वो उसकी रेगुलर सर्विसिंग करवाता है, ऑयल टाइमली चेंज करवाता है और उसका ख्याल रखता है, तो कार ज्यादा अरसे तक बेहतर परफॉर्मेंस देगी, है ना. ये एसेट मैनेजमेंट की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी मिसाल है. अब सवाल ये उठता है कि एसेट्स को मैनेज करना क्यों जरूरी है. बहुत से लोग एसेट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उनका सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते. नतीजा ये होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है या उन पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स खरीदे, उन कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस ना की जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट ना किए जाए और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना हो, तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है. इसी तरह घर में रखी हुई प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट अगर मॉनिटर ना किए जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू या परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. अब क्या स्टेप्स हो इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले है एसेट इन्वेंट्री बनवाएं. सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपने तमाम एसेट्स की लिस्ट तैयार करें. इनमें आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और शायद आपके बिजनेस इक्विपमेंट्स. जब आपके पास इन सब का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है. वहीं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं. और ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इसको समझें और इस पर अमल करें. एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अहमद और बिलाल का. अहमद और बिलाल दोनों ने एक ही साल में एक जैसे डिलीवरी वैन्स खरीदे. अहमद ने रेगुलर मेंटेनेंस करवाई, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर की और सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किए, जबकि बिलाल ने मेंटेनेंस को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दिया. 5 साल के बाद अहमद की वैन अच्छी कंडीशन में थी और रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा थी, जबकि बिलाल की वैन फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स का शिकार हो रही थी, जिसके बाद उसकी एफिशिएंसी डिलीवरी की भी कम हुई. फर्क एसेट मैनेजमेंट का था. इस तरह से अपने एसेट्स को मैनेज करना. तो दोस्तों, आज हमने और आपने क्या सीखा? हमने आपने ये सीखा कि एसेट मैनेजमेंट सिर्फ एसेट्स को ओन करने का नाम नहीं है, उनकी हिफाजत, उनके मेंटेनेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का नाम है. जो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करती हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल रहती हैं, कम रिस्क होता है और बेहतर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा बनती है. याद रखिए, एसेट खरीदना कामयाबी की शुरुआत हो सकती है लेकिन उस एसेट को सही तरह से मैनेज करना असल कामयाबी है. चलिए, आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
1: स्कैन अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम, नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको हर रोज इत्तला करता रहता हूं. और आज भी एक ऐसे स्कैम के बारे में मैं बात करने वाला हूं. वेल, आज का स्कैम कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि आपके साथ ये स्कैम ना हो लेकिन आप इस स्कैम की तरफ बढ़े. स्कैमर्स आपके पास नहीं आते लेकिन हो सकता है आप स्कैमर्स के पास जाएं. वेल क्या है ये स्कैम कि आप मजबूर हो जाते हैं? वेल दोस्तों ये है फेक मिस्ट्री बॉक्स ओवर स्टॉक लिक्विडेशन स्कैम। कैसे काम करता है ये स्कैम के बारे में सबसे पहले देखते हैं। वेल सोशल मीडिया पर आम तौर पर ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो दावा करते हैं कि कोई बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर या ऑनलाइन जायंट क्लोज हो रहा है या उनका अनक्लेम्ड पैकेजेस का स्टॉक साफ किया जा रहा है। ये स्कैमर्स आपको मिस्ट्री बॉक्सेस ऑफर करते हैं जिनमें एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स होते हैं और उनकी कीमत 30 या 40 कतरी रियाल से भी ऊपर बताई जाती है, 50, 60, 100, 1000, 500, यू नो व्हाटएवर, जो अमाउंट आपको लुभा सके, जो अमाउंट आपको लालच की तरफ बढ़ा सके, ये अमाउंट डाली जाती है। इनकी वेबसाइट्स देखने में हाईली प्रोफेशनल लगती है और उन पर काउंटडाउन टाइमर्स भी चल रहे होते हैं ताकि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लें। पे आउट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि यार सामान तो आया ही नहीं और फिर आपके साथ स्कैम हो गया। कोई सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में आपके साथ हो जाता है बड़ा स्कैम। लेकिन इस तरीके के जो स्कैम है इनसे बचने के काफी तरीके हैं, हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए वो है ऑफिशियल यूआरएल डबल चेक करना। ऐसे एड्स पर क्लिक करने के बाद ब्राउजर का एड्रेस बार चेक करें। अगर लिंक में किसी बड़े ब्रांड के नाम की स्पेलिंग गलत है तो वेबसाइट फेक है। मिसाल के तौर पे आप माने कोई एबीसी असल में कोई एबीसी ब्रांड है, उसमें एबीडी लिखा हो या फिर हो सकता है सीबीए लिखा हो। सो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करके उस वेबसाइट को देखना चाहिए क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है, क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनीज जो बंद हो रही होती है वो अपना स्टॉक क्लियर करती है। स्टॉक क्लियर करेंगी अगर सेम रेट पे जो आम तौर पे मार्केट में अवेलेबल है तो वो स्टॉक क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे में वो बड़ी कंपनियां या फिर इवन छोटे स्टोर्स करते हैं ये है कि उसे सस्ते में 10 रियाल की चीज 2 रियाल 3 रियाल में जल्दी जल्दी उसे बेच देते हैं ताकि स्टॉक क्लियर हो, पैसा वापस आए अपने जेब में आए और फिर इस स्टोर को बंद किया जाए ताकि उसका रेंट और ना देना पड़े। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो स्टोर्स अपनाते हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार स्टोर बंद नहीं हो रहे होते लेकिन पुराने स्टॉक जो एक्सपायर हो सकते हैं उनको जल्दी निकालने के लिए उनको सस्ते में बेच दिया जाता है और नए स्टॉक को मंगाने के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। फिर नए स्टॉक को मंगाने के बाद उसे रखा जाता है और उसे नॉर्मल रेट में बेचा जाता है। लेकिन बचने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे। सेकंड जो तरीका है बचने का वो है काउंटडाउन टाइमर्स के प्रेशर में ना आए। कभी भी आपको जल्दबाजी दिखाई जाए ना किसी भी प्रोडक्ट को लेने में तो उस पर, तो इवन जो सच्ची वेबसाइट्स हैं उस पर भी अगर जल्दबाजी दिखाई जाए तो आपको होशियार रहना चाहिए। इसलिए होशियार रहना चाहिए कि यार ये तो होता रहता है। सो काउंटडाउन टाइमर्स से बिल्कुल प्रेशर में ना आए। स्कैमर्स हमेशा काउंटडाउन टाइमर्स का यूज करते हैं ताकि आप डर के मारे जल्दी कार्ड डिटेल्स एंटर कर दें। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है और ये ट्रिक आमतौर पर स्कैमर्स नहीं नॉर्मल लोग भी अपनाते हैं। रिव्यूज और डोमेन एज चेक जरूर करें। किसी भी ऐसी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले इंटरनेट पर उसके रिव्यूज को सर्च करें और चेक करें कि वो वेबसाइट कब बनी थी। इवन अगर आप ये नहीं चेक कर सकते तो आप उनके लिंक को चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ताला लगा होता है लिंक पर, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे कई बार बहुत ज्यादा ओरिजिनल लग रही होती है वेबसाइट लेकिन छोटी डिटेल्स अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो छोटी डिटेल्स गलत करके रखते हैं। तो ऐसे में उन डिटेल्स को अगर आप चेक करते हैं तो भी आप बच सकते हैं। तो वो छोटी डिटेल्स को पकड़ना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें। दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट अलर्ट।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Doha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. Duniya jo hai wo diwani hui padi hai abhi lagatar. Main to soch raha hu aise sold out ho raha hai iPhone jaise ye bas duniya ki aakhri cheez hai. पर अगर आप उसके पीछे अभी भी नहीं भागे हैं तो देर आर मेनी गैजेट्स जिनके पीछे आपको भागना चाहिए. उनके बारे में बात करता रहूंगा शो पे. बट एक बात तो है, अगर आपको आईफोन अपग्रेड करना है तो अगर आप 12, 13, 14 से सीधा जा रहे हैं 18 की तरफ तब तो सेंस बनता है. अगर आपके पास 17 और आप 18 लेने जा रहे हैं तो पैसा है फिर आपके पास. देर इज नो अदर रीजन टू रियली जम्प ऑफ ऑन 18, इतना भी नहीं. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा से सोचता हूँ इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट अप टू यू. मैं जरा वेबसाइट से शुरू करूंगा क्योंकि मेरा काम मुझे करना है. तो पहली जो वेबसाइट है इसका नाम है neuroscapes.com. NeuroScapes neuroscapes.com. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन फोटोज मिलेंगे जो AI से जनरेटेड हैं. पर आप बोलेंगे तो AI से जनरेटेड मेरे किस काम की. आपको वो कॉपी नहीं करनी, इमेज नहीं, इमेज के नीचे उसका प्रॉम्प्ट भी होगा. आपको पता लगेगा कि यार ये इमेज जो बनी है बनी कैसी होगी, इसका प्रॉम्प्ट क्या है. उस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्टर द प्रॉम्प्ट, यू नो, उसको थोड़ा सा एडिट ऑमिट करके अपने हिसाब से आप

कहीं और यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वर्थ इट. अगर आप एक चैनल बना चुके हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, कुछ भी है, सो आपके काम आ सकती है. एंड स्पेशली अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इन यू लुकिंग फॉर एन इमेज, आप कैटेगरी वाइज इमेज सेलेक्ट कीजिए, उसके नीचे उसका प्रॉम्प्ट आएगा, उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से एडिट कीजिए. यू माइट गेट समथिंग जो आपको ज्यादा मेहनत के बिना मिल जाए. और आज की दुनिया ऐसी है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा. वेरी स्मार्ट. बढ़ते हैं आगे. अगली वेबसाइट का नाम है memory.toys. ये बहुत अच्छी वेबसाइट है. मेमोरी सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत बोल दी. मेरी मेमोरी की दिक्कत है. memory memory.toys TOYS memory.toys इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उस पर बहुत सारे मेमोरी गेम्स हैं आपकी विजुअल मेमोरी को बढ़ाने के लिए. एंड मैं ये समझता हूँ ये बड़ों को भी खेलने चाहिए, बच्चों को भी खेलने चाहिए. बहुत शार्प रहता है भाई माइंड, मैं सही बता रहा हूँ आपको. आपको इसमें मेजेस मिलेंगे, पजल्स मिलेंगे, और आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी. और ये जरूरी नहीं है आप इसको एज बेस्ड समझे कि भाई अभी तो अब तो क्या एज, अभी तो क्या फोटोग्राफिक मेमोरी. आप अपनी ब्रेन को ट्रेन रखेंगे तो आपका ब्रेन हर एज में काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा. जस्ट दैट यू हैव टू ट्रेन इट. सो नॉट जस्ट फॉर यू, मगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी जरूरी है गेम खिलवाई, क्योंकि ये गेम्स बहुत जरूरी होते हैं. कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाते हैं और ब्रेन को याद रखने में और पावरफुल बनाते हैं. इट्स लाइक यू आर अपग्रेडिंग योर रैम एवरी सिंगल डे. तो ट्राई दिस वन आउट, memory.toys. ओके, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. अगली वेबसाइट है monkeytype.com monkeytype monkeytype.com. वेबसाइट में टाइप लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि टाइपिंग से जुड़ा हुआ है. और आपकी टाइपिंग स्पीड अगर आप चेक करना चाहते हैं, स्पेशल पंचुएशन, ग्रामर, जो भी आप जिस तरीके से टाइप करते हैं, वो कमांड देने के बाद आप अपनी टाइपिंग को टेस्ट कीजिए एंड स्किल सेट बढ़ाइए. भाई ये भी जरूरी है. पहले टाइपिंग तेज करना वॉज कूल, नाउ इट इज एन एक्चुअल रिक्वायरमेंट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो आपको बड़ा जरूरी हो गया है कि आज की दुनिया से मुकाबला करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए. इनके हिसाब से सोच रहे हैं तो ठीक है. अब जरा हम बढ़ेंगे आगे खबर की तरफ. तो खबर आ चुकी है एप्पल M6 मैक मिनी, उसका रिव्यू भी आ चुका है. एंड उसमें एक चीज जो सामने आई है वो है प्राइस हाइक. पूरे के पूरे $300 बढ़ा दिए हैं एप्पल ने, कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई. प्राइस हाइक थोड़ी रफ हो गई यार, ये इतनी रफ नहीं होनी चाहिए थी. क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही कुछ अलग करेगा. ठीक है, बहुत सारी स्पेशल उसमें यू नो सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड जरूर किया है, डेफिनेटली M6 तक पहुंच चुके हैं, बट $300 थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? तो अनटिल अनलेस आपको कुछ ज्यादा ही काम है, कुछ ज्यादा ही हैवी बना रहे हैं आप, आई डोंट थिंक इतना हैवी आप बना रहे होंगे कुछ काम, तब तक पुराने वाले पे रहो भाई. $300 इज अ लिटिल टू मच. ये थी टेक अपडेट्स, मैं हूं दो हवाला कबीर F107 पे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
0: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, मैं हूँ अमिता आपके साथ ऑन FM 107 पर और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो AI Unlocked। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से, और वो ये है कि क्या आपने कभी कोई गाना सुना और सोचा कि इसे लिखा किसने होगा? या इंटरनेट पर कोई बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क देखा और सोचा इसके पीछे का फनकार कौन है या इसके पीछे आर्टिस्ट कौन है? हाँ, क्या कोई ब्लॉग, कोई इश्तहार या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उस इमेजिनेशन के बारे में सोचा जिसने उसे क्रिएट किया या जिंदा किया? अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर पता चले आपको कि इनमें से कुछ भी किसी इंसान ने बनाया ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? गाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंपोज किया, पेंटिंग सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कुछ ही सेकंड्स में तैयार, आर्टिकल एक AI असिस्टेंट ने लिखा, यकीन नहीं होता है ना? लेकिन यही आज की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ नंबर्स गिनने, डेटा खंगालने या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहा। आज AI म्यूजिक बना सकता है, इलस्ट्रेशंस बना सकता है, लोगो डिजाइन कर सकता है, कहानियां लिख सकता है और फिल्म बनाने में भी मदद कर सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या AI आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस की जगह ले सकता है? या क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिर्फ इंसानों की ही रहेगी? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे कि AI क्रिएटिव इकोनॉमी को कैसे बदल रहा है और क्रिएटर्स, बिजनेसेस और ऑडियंसेस के लिए इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। और हाँ, अपने व्यूज, अपनी राय भी आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं 6622107 पर अपने नाम के साथ। तो चलिए आज के इस अमेजिंग टॉपिक को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी इंसान की पहचान। देखो, सदियों से ना क्रिएटिविटी इंसान की सबसे बड़ी पहचान रही है, ये सब हम पहले से जानते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने पहले चित्रों से लेकर आज की बड़ी फिल्मों तक, हर दौर में इंसान ने अपनी कहानी कहने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स, नॉवेल्स, गाने और फिल्में सब इंसान की कल्पना, इमेजिनेशन है, उसके जज्बात और उसके तजुर्बे से जन्मी है। एक पेंटर अपना अलग अंदाज बनाने में बरसों लगा देता है, कभी एक रंग को सही जगह लगाने के लिए रातों तक जागता है। एक नॉवलिस्ट अपनी यादें और अपने ऑब्जर्वेशंस कहानियों में भर देता है, किसी का बचपन, किसी का शहर, किसी की जुदाई, सब कुछ पन्ने पर उतार देता है। और एक म्यूजिशियन अपनी जिंदगी के तजुर्बे को ऐसी धुन में ढाल देता है जो लाखों दिलों तक पहुंचती है। हमारी अपनी तहजीब को ही देख लीजिए, अरबिक कैलीग्राफी हो, गजल हो या कहानी सुनाने की पुरानी परंपरा, इनमें सिर्फ हुनर नहीं होता, इनमें एक पूरी ट्रेडिशन सांस लेती है। पहले क्रिएटिव के लिए हुनर चाहिए था, वक्त चाहिए था और अक्सर बरसों का रियाज चाहिए था। फिर आया जनरेटिव AI। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, AI का आना और दरवाजे खुल जाना। जरा सोचिए कि आज एक स्टूडेंट बस इतना टाइप करता है, एक फ्यूचरिस्टिक अरेबिक स्टाइल का मूवी पोस्टर बनाओ और कुछ ही सेकंड्स में पोस्टर आपके सामने होता है। एक मार्केटिंग मैनेजर AI असिस्टेंट से कहता है, मुझे 10 एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स चाहिए, और चाय का पहला घूंट खत्म होने से पहले लिस्ट तैयार हो जाती है। एक कंटेंट क्रिएटर कुछ ही मिनट्स में सोशल मीडिया कैप्शंस, वीडियो के कॉन्सेप्ट्स और विजुअल डिजाइंस बना लेता है, जो काम पहले पूरी टीम और पूरे हफ्ते मांगता था वो अब एक शाम में हो सकता है। इससे क्रिएटिव काम में आने की राह बहुत आसान हो गई है कि नहीं? जिनके पास प्रोफेशनल डिजाइन, राइटिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन का हुनर नहीं था, वो भी अब AI टूल्स की मदद से अपने आइडियाज को शक्ल दे सकते हैं। एक छोटे से शहर का लड़का हो या घर से काम करती कोई लड़की, अब सबके पास एक जैसे क्रिएटिव टूल किट है। यस, ये सच में एक बहुत बड़ी बदलाव की बात है। इट्स अ ह्यूज रेवोल्यूशन। पर इन सब के बाद, इन सारी सहूलियतों के बाद, एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि क्या कंटेंट जनरेटिव करना और क्रिएटिव होना एक ही बात है? ये सवाल थोड़ा ना रुक कर सोचने लायक है। चलिए इसे एक एक करके अब हम समझते हैं। म्यूजिक जहां दिल बोलता है वहां बन जाती है, यानी कि सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं। एक AI सिस्टम लाखों गानों को एनालाइज कर सकता है, वो रिदम, मेलोडी और स्ट्रक्चर के पैटर्न्स पहचान सकता है और उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर बिल्कुल नया म्यूजिक कंपोज कर सकता है। और सच कहूं तो रिजल्ट शायद बहुत ही इम्प्रेसिव लगे। सुर सही, ताल सही, अरेंजमेंट भी साफ सुथरा। लेकिन एक चीज है जो AI के पास बिल्कुल नहीं है। AI ने कभी टूटे दिल को महसूस नहीं किया, उस दर्द को महसूस नहीं किया, उसने कभी कामयाबी का जश्न नहीं मनाया, उसे कभी घर की याद नहीं सताई और उसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। यस, एक गाना जो आपको अचानक पुरानी यादों में ले जाता है या जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आती हैं, उसके पीछे अक्सर एक सच्ची कहानी होती है, किसी इंसान का जिया हुआ दर्द या जी हुई खुशी। इंसानी फनकार अपने तजुर्बों, अपने जज्बात और अपनी तहजीब के यादों से काम करते हैं और यही जिए हुए एहसास और सच्चाई को जन्म देते हैं, जिसे ऑडियंस जुड़ जाती है। AI धुन बना सकता है, लेकिन उस धुन में कहानी कहाँ से लाएगा? मेरे हिसाब से यही फर्क है। म्यूजिक की तकनीक मशीन सीख सकती है, म्यूजिक का दिल वो अभी तक इंसान के पास ही है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो कि आर्टिस्ट की जगह आखिर कोई भी नहीं ले सकता। अब बात करते हैं राइटिंग और शब्दों की गहराई की, ठीक है? तो ये बात राइटिंग पर भी लागू होती है। AI आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स और कहानियां बहुत तेजी से सीख लेता है, ठीक है? वो अलग अलग स्टाइल्स और स्ट्रक्चर्स की नकल भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि एक रोमांटिक स्टाइल में लिखो तो वो लिख देगा, एक सीरियस न्यूज टोन में लिखो तो वैसा भी कर देगा, लेकिन एक इंसानी राइटर अपनी तहजीब, अपनी शख्सियत और अपनी जाती तजुर्बे से जो गहराई लाता है ना, वो अलग ही होती है और उसकी बात अलग होती है। एक राइटर जब किसी बुजुर्ग की झुर्रियों के बारे में लिख रहा होता है तो शायद उसे अपने दादाजी का चेहरा याद आ जाता है या घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वो एक छोटी सी याद उसकी लिखाई को या उसके लेख को जिंदा कर देती है। नकल सीखी जा सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी की छाप नहीं छोड़ सकती। अब बात करेंगे कोलैबोरेटर, रिप्लेसमेंट नहीं। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AI को क्रिएटिव रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि क्रिएटिव कोलैबोरेटर यानी साथी की तरह देखा जाना चाहिए। और दुनिया भर में ऐसा हो भी रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पहले से ज्यादा तेजी से बना सकते हैं। जहां पहले एक आइडिया का स्केच बनाने में घंटों लग जाते थे, अब कुछ ही मिनट्स में कई ऑप्शन सामने होते हैं। राइटर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च में AI की मदद ले रहे हैं, जैसे कोई दोस्त साथ बैठकर आइडियाज उछाल रहा है या यूं कहें आइडियाज के बारे में डिस्कशन कर रहा है। फिल्म मेकर्स एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के काम को तेज करने के लिए AI टूल्स अपना रहे हैं। और म्यूजिशियंस AI से बने नए साउंड्स और अरेंजमेंट्स के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसी आवाजें, ऐसा म्यूजिकल अरेंजमेंट जो शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यानी AI क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर रहा, वो क्रिएटर्स को दोहराने वाले कामों से बचा रहा है ताकि वो अपना वक्त असली क्रिएटिव फैसलों में लगा सके। कौन सा रंग चुनना है, कहानी का अंत क्या होना चाहिए, गाने में कौन सा जज्बात उभारना है, ये फैसले आज भी इंसान ही ले रहा है। अब बातें होंगी थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन सच ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ विवाद भी जुड़े हैं, यानी कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ कंट्रोवर्सीज, और उन्हें नजरअंदाज करना ठीक भी नहीं होगा, है कि नहीं? बहुत से आर्टिस्ट कॉपीराइट को लेकर चिंतित रहते हैं, बहुत वरिड रहते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या एआई सिस्टम्स को मौजूदा आर्टवर्क, किताबों और म्यूजिक पर बिना इजाजत ट्रेन करना सही है, और उन आर्टिस्ट की मेहनत का क्या जिनका काम इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया है। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ये भी पूछ रहे हैं कि एआई से बने कंटेंट का मालिक कौन है, क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, और जब मशीन कम खर्च में मिलता जुलता काम बना सकती है तो आर्टिस्ट को मुनासिब सैलरी या यूं कहें उनकी पेमेंट्स कैसे मिलेगी। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये इंसाफ के सवाल है, जस्टिस के लिए सवाल है। वेल, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी कंपनीज और क्रिएटिव संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशन सभी इस पर सक्रिय रूप से, सभी इस पर काफी चर्चाएं कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकाला जा सके। अभी हर सवाल का जवाब तय नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, इस बहस में क्रिएटर्स की आवाज शामिल होनी चाहिए। अब बात करेंगे पार्टनरशिप का फ्यूचर, तो आगे क्या होगा। एक बात धीरे धीरे साफ हो रही है, आने वाला वक्त जो है वो शायद इंसान और मशीन के मुकाबले का नहीं होगा, वो एक पार्टनरशिप का हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब कैमरा आया तो कहा जाता था कि ये जो पेंटर्स हैं अब उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उनका कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन कैमरा ने पेंटर्स की जगह नहीं ली। पेंटिंग ने नए रास्ते खोजे। जब कंप्यूटर आया तो राइटर्स को डर लगने लगा कि लेकिन कंप्यूटर ने राइटर्स की जगह नहीं ली, उसने लिखने को और भी ज्यादा आसान बना दिया। वैसे ही एआई भी शायद एक और ताकतवर टूल बनाएगा जो इंसानी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं बल्कि और उसे डिटेल्ड करेगी और डेवलप करेगी। आने वाले कल के सबसे कामयाब क्रिएटर्स शायद वो होंगे जो अपनी कल्पना या यूं कहें इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग या फिर अपने ट्रेडिशन और जज्बात को एआई की रफ्तार और एफिशिएंसी के साथ जोड़ सकेंगे। टेक्नोलॉजी कंटेंट बना सकती है, लेकिन मतलब आज भी इंसान ही देता है, और क्रिएटिव इकोनॉमी में मतलब की कीमत कभी कम नहीं होगी। अब आपसे एक सवाल है कि अगर एआई आपके साथ बैठकर काम करे तो आप सबसे पहले उससे क्या बनवाना चाहेंगे, हमें जरूर बताइए मैसेज करके 6662107 पर, या फिर आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे AI अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, तो चलिए नजर डालते हैं कि दुनिया भर में जो AI की दुनिया है उसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहां क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर जेनरेटिव AI के असर का लगातार स्टडी किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, और लेटेस्ट डिस्कशंस पर ये निकल कर आया कि जब AI इमेजेस, म्यूजिक और रिटन कंटेंट इतनी तेजी से बना सकता है तो आर्टिस्ट की सुरक्षा कैसे होगी, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। इसका मकसद इनोवेशन को रोकना नहीं है, मकसद ये है कि क्रिएटर्स को सही पहचान और डिजिटल इकोनॉमी में मुनासिब मौके मिल सके। दूसरी बड़ी बात आ रही है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से, वहाँ के रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं कि लोग AI से बने म्यूजिक को इंसानों के बने म्यूजिक के मुकाबले कैसे देखते हैं। हाँ, काफी डिस्कशंस के बाद ये समझ में आया कि AI कन्विंसिंग म्यूजिक बना सकता है और क्रिएटिव प्रोसेस में मदद भी कर सकता है, लेकिन ऑडियंस आज भी इंसानी क्रिएटर्स की ओरिजिनलिटी और जज्बाती गहराइयों को ज्यादा अहमियत देती है। ये रिसर्च एक जरूरी बात हमें बताती है कि टेक्निकल क्वालिटी और इंसानी क्रिएटिविटी हमेशा एक जैसी चीज नहीं हो सकती। और आखिर में दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज और क्रिएटिव इंस्टीट्यूशंस अब आर्ट्स की शिक्षा, यूं कहें अब आर्ट्स की एजुकेशन के साथ AI ट्रेनिंग को भी जोड़ रही हैं। डिजाइन, मीडिया, म्यूजिक और कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि AI को अपने क्रिएटिव वर्कफ्लो का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो गोल सिर्फ अपने हुनर को बढ़ाना नहीं है, लेकिन गोल है कि आने वाले क्रिएटर्स को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी साथ चलती है, यानी कि एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक और एडवर्टाइजिंग से लेकर डिजिटल मीडिया तक AI अब कई इंडस्ट्रीज में एक अहम क्रिएटिव साथी बनते जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज टूल ऑफ द वीक। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की स्पॉटलाइट है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। हाँ जी, तो बहुत से लोग कोपायलट को सिर्फ एक और चैटबॉट समझते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा मैं भी समझती थी इससे पहले कि मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ये एक जबरदस्त क्रिएटिव असिस्टेंट भी बन सकता है। राइटर्स इससे आर्टिकल्स के नए आइडियाज निकाल सकते हैं, प्रेजेंटर शो के आउटलाइंस और इंटरव्यूज के सवाल बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया के लिए नए कॉन्सेप्ट्स तैयार कर सकते हैं और डिजाइन टीम्स कैंपेन्स के आइडियाज और क्रिएटिव डायरेक्शंस एक्सप्लोर कर सकती है। इसे असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इसी चीज का हमें ख्याल रखना है। तो जब प्रॉम्प्टिंग की बात आती है तो अक्सर लोग लिखते हैं कि गिव मी आइडियाज फॉर अ कैंपेन। अब ये ट्राई कीजिए, ठीक है। मतलब सिर्फ एक लाइन की जगह अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो शायद काम और भी ज्यादा असरदार होगा, यानी कि रिजल्ट्स बड़े असरदार मिलेंगे। तो एक्ट एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, जेनरेट 5 सोशल मीडिया कैंपेन आइडियाज प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग अमंग यंग एडल्ट्स इन कतर, यूज एन इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव टोन। और फिर फर्क देखिए कि हमने पहले सिर्फ एक लाइन लिखी थी और उसके बाद जब हमने प्रॉपर तरीके से एआई को उसका काम बताया और हमें क्या चाहिए वो बताया, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे ना, रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा। अब चलिए मेरी प्रो प्रॉम्प्टिंग टिप पर आते हैं। तो आज की टिप है कि CAP फ्रेमवर्क, यानी कि कैप। सी से होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सिचुएशन को आपको समझाना है। ए से ऑडियंस, बताइए कि आप किसके लिए बना रहे हैं। एंड पी से पर्पस, बताइए कि आपको नतीजा क्या चाहिए। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए कि रेडियो शो अबाउट टेक्नोलॉजी, तो ऑडियंस क्या होगी, यंग एडल्ट्स इन कतर। पर्पस क्या होगा, जनरेट एंगेजिंग डिस्कशन क्वेश्चंस अबाउट एआई एंड क्रिएटिविटी। अब ये छोटा सा फ्रेमवर्क एआई से मिलने वाले कंटेंट की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ अब हम पहुंचते हैं आज के AI Unlocked के इस एपिसोड के अंत में। तो आज हमने एक बहुत दिलचस्प सवाल पर थोड़ी सी चर्चा की, एंड दैट वाज कि क्या AI आर्टिस्ट राइटर और म्यूजिशियंस की जगह ले सकता है। जवाब शायद हाँ या ना से कहीं ज्यादा गहरा है। AI पहले से कहीं तेजी से कंटेंट बना सकता है, वो क्रिएटिव वर्कफ्लोस में मदद भी कर सकता है, नए आइडियाज दे सकता है और क्रिएटिव टूल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ कंटेंट बनाने का नाम नहीं है, ये इंसानी तजुर्बे, जज्बात, इमेजिनेशंस और कहानी

0: इंसानों के पास है। शायद क्रिएटिव इकोनॉमी का फ्यूचर ये नहीं है कि इंसान एआई से मुकाबला करे, शायद ये है कि इंसान एआई के साथ मिलकर वही रचे, वही क्रिएट करे जो दोनों अकेले कभी सोच ही नहीं सकते थे। वेल, अगले हफ्ते एआई अनलॉक्ड में कुछ और भी कमाल की बातें होंगी जिसका जिक्र हम करेंगे, तो आप हमें सुनना ना भूलें, सेम टाइम सेम प्लेस। और हाँ, इस दौरान अगर आपको हमसे कुछ कहना है देन 666-22-107 ये हमारा नंबर है, इसके जरिए आप हमसे बातें, अपने दिल की बातें, अपने व्यू शेयर कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 से जुड़ सकते हैं। और अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: RJA फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
5: Wellness is finding yourself, finding what brings you joy and what keeps you whole.
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुनना ना भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से RJ नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
7: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

हाँ जनाब, ऐसे ही हिटेड गाने आज आप एंजॉय करने वाले हैं, तो कहीं ना जाए एफएम 107 पर बने रहे। द रिक्वेस्ट शो इज ऑन एंड डेफिनेटली वो सारे हिटेड गाने जो कि एवरग्रीन लेजेंड्स के हैं वो हम यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। अभी मुझे एक रिक्वेस्ट आई है, बॉम्बे वाइकिंग्स का ये गाना सुनना चाहते हैं, वो चली वो चली। तो चलिए वो गाना हम आपको जल्दी से सुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर ध्यान रखिए, 666-22-107, 666-22-107 इज आर नंबर। इस पर आप डेफिनेटली अपने रिक्वेस्टेड गाने हमसे शेयर कर सकते हैं एंड हम डेफिनेटली उसे यहाँ प्ले करेंगे। और हाँ, अपने गानों के पीछे की स्टोरी जरूर शेयर करना, ठीक है? तो डेफिनेटली एवरग्रीन लेजेंड्स के गाने, उनके रिमिक्सेस, उनके रिक्रिएटेड वर्जन्स भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले गाने की तरफ, कहीं ना जाए, बने रहे एफएम 107 पर, दिल

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Yes, now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता. क्या कहना द रिक्वेस्ट शो पर तो बिल्कुल हमारे सारे लिसनर्स वो कहते हैं ना कि रेट्रो एरा के डीजे वाले बाबू बन चुके हैं. मतलब ऐसे ऐसे गाने ऐसे ऐसे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि हाय अगर अभी इस वक्त मेरी मम्मी अगर इंडिया में शो सुन रही होगी तो शी विल बी वेरी हैप्पी. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी पहली रिक्वेस्ट की तरफ. पहली तो हो गई, अभी दूसरी रिक्वेस्ट की तरफ. रमेश की रिक्वेस्ट है एंड ये वो गाना सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर जी का कि जब मुझे रेट्रो एरा से प्यार हुआ था तब मुझे ये गाना बहुत पसंद आया था. इस धुन को सुनकर वो एक खूबसूरत सा मौसम, एक बड़ी सी नाव जिसे हम यहाँ पर दाव देखते हैं, हाँ, एंड देन उस पर मीना कुमारी. ओहो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन. एंड देन लता मंगेशकर जी की आवाज़ एंड दिस ट्रैक. अजीब दास्ता है ये, आपकी राहों में डेफिनेटली आने वाला है, तो आप वॉल्यूम बढ़ाकर नॉस्टैल्जिक फील के साथ इंजॉय कीजिए. और उसके बाद एक रिक्रिएटेड वर्जन की रिक्वेस्ट की है यहाँ पर आफ्ताब ने, और वो सुनना चाहते हैं गाना दिलबर मेरे सनम बैंड का.
2: दिलबर मेरे कब तक मुझे,
1: क्या बात है. ये भी एक अलग ही अंदाज का गाना है. हाँ रियल तो सत्य पे सत्ता फिल्म का था, वो भी एक खूबसूरत वर्जन है जहाँ किशोर दा ने उस गाने को गाया. एंड हियर कम्स द सनम बैंड. सो डेफिनेटली अजीब दास्ता है ये एंड उसके बाद दिलबर मेरे बाय सनम बैंड इज कमिंग अप ऑन योर वे. आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं एवरग्रीन लेजेंड्स का और क्यों, शेयर करो ना 6622107 पर. 6622107 पर आपकी ए फॉर अमिता यहाँ पर है द रिक्वेस्ट शो पर आपके हिटेड गानों को प्ले करने के लिए. तो कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए. बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
3: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? In fact हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
2: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
4: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर्ट हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
5: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज, ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
6: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 to 11 PM यू मैटर. आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107. दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM.

0: 107. Dil se desi.
1: Yes, welcome once again. FM 107 sun rahe hain aap. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. और क्या बात है, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि हमारे द रिक्वेस्ट शो का माहौल बदल गया है, है कि नहीं. जैसे ही हमने किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी की आवाज़ सुनी, उफ, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किस जगह पर हैं, लेकिन जिस जगह पर हैं काफ़ी खुश है, खुशहाल है कि नहीं. वेल, अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. और आमिर की ये रिक्वेस्ट है, कुदरत फिल्म का ये गाना है. क्या बात है, मतलब लता मंगेशकर, आर डी बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो गाने बस हम सुनते रह जाते हैं. वाओ, ऑन स्क्रीन राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, क्या केमिस्ट्री उनकी. एंड द सॉन्ग इज, बताओ बताओ कौन सा.
2: तूने वो रंगीले कैसा जादू किया.
1: हाय हाय हाय, दिस सॉन्ग, ओ हो हो, मेरे घर की सारी जितनी भी ओल्डीज है ना, मतलब आई शुड नॉट से ओल्डीज, बट हमारी सारी बुजुर्ग लेडीज उनको बहुत पसंद है. सो डेफिनेटली अगर वो मेरा शो इस वक्त सुन रही होंगी, दे वुड लव इट. और उसके बाद ये गाना ऐसा गाना है जो हर मौसम में सुना जा सकता है और आपको ये मोटिवेट करता है. एंड आई शुड टेल यू कि रफ़ीक ने इसकी रिक्वेस्ट की है, कहते हैं कि ये फिल्म उनकी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है, क्योंकि हंसते हंसते वो लोटपोट हो गए थे और किशोर कुमार की आवाज़ में जब ये गाना सुनते हैं तो ज़िंदगी को एक मकसद मिल जाता है. बताओ कौन सा गाना है. सबसे मज़े की बात है कि रेट्रो एरा के जो भी गाने हैं, जब इनकी धुनें हम सुनते हैं तो डेफिनेटली समझ जाते हैं कि गाना कौन सा है कि नहीं. आने वाला पल, आ हा हा. सो तूने वो रंगीले एंड आने वाला पल, ये दोनों ही आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग आगे आने वाले हैं. सो गेट रेडी टू एंजॉय. और आप क्या सोच रहे हो भाई, सोचो सोचो आपकी प्लेलिस्ट का वो कौन सा गाना है जो कि आप सुनना चाहते हैं एवरग्रीन लेजेंड्स का, चाहे वो ओरिजिनल ट्रैक हो चाहे वो रिक्रिएटेड वर्जन हो. आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं 6622107 पर अपने नाम के साथ. और अभी स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, तो कैसे लग रहे हैं आपको ये हिट हिट गाने द रिक्वेस्ट शो पर?

0: आई एम वेरी सर्टेन कि आप किसी ना किसी खूबसूरत ख्यालों में खो तो गए होंगे, है कि नहीं? वैसे अगली रिक्वेस्ट बड़ी कमाल की है और शहजादा सलीम ने बहुत चुन के इस गाने की रिक्वेस्ट की है. इज वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर और मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये रिक्वेस्ट किए तो ये गाना हम कैसे नहीं बजाएं. ये गाना, मतलब मैं इसको ज्यादातर नाम देती हूँ प्रपोजल सॉन्ग. सो किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर जी की आवाज़ का ये गाना, जहाँ पर दो प्यारे से लोग यू नो अपनी शादी के प्रपोजल की बात कर रहे हैं, थोड़ी आनाकानी कर रहे हैं, अपनी शर्तें रख रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग और यही खासियत थी रेट्रो एरा की कि हर एक गाना जब आप सुनो तो आपको लगता है कि उसमें बातचीत हो रही है कि नहीं. और उसके बाद जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल रिक्रिएटेड वर्जन. मोहम्मद फयाज की रिक्वेस्ट है फ्रॉम द मूवी झनकार बीट्स. मतलब एक तरफ किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी और उसके बाद के की आवाज
1: तो सब कुछ है.
0: चलिए, ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं और आप जनाब जो सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी सोचिए कि कौन सा गाना आप सुनने वाले हैं. एवरग्रीन लेजेंड्स का यही हमारी आज की थीम है क्योंकि वक्त भागे जा रहा है और अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं की तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा. वेल, कहीं ना जाए, 666-22-107 पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें, अपनी डेडिकेशंस भेजें. द रिक्वेस्ट शो पर आपकी ए फॉर अमिता हाजिर है. स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: जेन सी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा।
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक,
5: जनरेशन टॉक
4: विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM,
5: एट 3 PM
4: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
5: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ Only on FM 107. Dil se Desi.
6: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है? वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और हम सीधा अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो बड़ी एक शानदार सी रिक्वेस्ट आई है और ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि इस वक्त ड्राइव पर हमें सुन रहे हैं। सो फैजल अब्दुल गफूर की रिक्वेस्ट है और कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं मनीष, अर्पित, इब्राहिम, इन सबको मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी अनपढ़। क्या बात है, लता मंगेशकर, मदन मोहन जी की, मतलब ये कॉम्बिनेशन है, हाँ, पर आवाज़ सिर्फ लता जी की है। पता है आपको ये गाना कैसे आया अनपढ़ फिल्म का? जब ये फिल्म चल रही थी, इसका सिचुएशन जो थी, मदन मोहन ने अलग एक गाना बनाया हुआ था, बट समहाउ इस फिल्म के जो लिरिसिस्ट है, ठीक है, राजा मेहंदी अली खान, उन्होंने एकदम से कुछ और वर्ड्स को अपने ज़ुबान पर लाया और एकदम से मदन मोहन जी को कहा कि भाई हम ना इस पर गाना बनाएंगे। एंड देन मदन मोहन जी ने थोड़ा सा म्यूजिक भी गुनगुना दिया, फिर क्या, ऑन द स्पॉट ये गाना बना है आपकी नज़रों ने समझा, जिसे हम बड़े मोहब्बत से सुनते हैं। एंड सीरियसली लता मंगेशकर जी तो वॉज अ लेजेंड, उन्होंने भी ऑन द स्पॉट रिहर्स करके ये गाना गाया। सो आपकी नज़रों ने समझा इज़ द सॉन्ग जो कि पूरा पूरा हम आपको सुनाने वाले हैं। उसके बाद अगली रिक्वेस्ट है खाजा की, जो कि सुनना चाहते हैं मेरे ख्यालों की मलिका अभिजीत की आवाज़ में। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं और उसके बाद आगे आएगा क्विज टाइम, सो डोंट मिस इट। बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। एंड हमारे जो रिक्वेस्ट शो के लिसनर्स हैं भाई, बड़े खुश हो रहे हैं आज, कह रहे हैं कि अमिता आज की जो थीम रखी है वो हफ्ते में 2-3 दिन रख लिया करो बिकॉज एवरग्रीन लेजेंड्स के गाने सबको बड़े पसंद आते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। सो डेफिनेटली आपकी हम रिक्वेस्ट कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अभी आपके फिल्मी नॉलेज को चेक करने का टाइम है। सो लेट्स चेक इट।
0: क्विज टाइम।
1: तो आओ जरा एक बड़ा ही पॉपुलर सा गाना आपको हम सुनाते हैं और इसकी धुन सुनाते हैं। आई एम वेरी सर्टेन कि आप ये गाना गेस कर लेंगे। सोचो सोचो, गैस करो गैस करो, जल्दी से बता दो कि ये गाना कौन सा है, क्योंकि अगर आपने सही गैस किया तो ये गाना आपके नाम हम कर देंगे। और इसी के साथ अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही शानदार गाना है। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें की है इमदाद मलक ने। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, परदेसी परदेसी जाना नहीं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से।

नहीं जाएंगे भाई, इतने प्यार से रुकोगे तो। लेकिन अभी जाने का वक्त हो रहा है तो जाना पड़ेगा। द रिक्वेस्ट शो पर आपकी एफ और अमिता फिर से हाजिर हो चुकी है। तो कैसे लग रहे हैं हिटेड गाने, आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग? आई एम वेरी सर्टन कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज का शो। और अभी क्विज टाइम पर मैंने आपको एक गाने की धुन सुनाई, कहा गाना पहचानो। तो हमारे लिसनर्स ने काफ़ी अच्छी कोशिश की है, सबने अपने अपने मैसेजेस दिए हैं, लेकिन कुछ ही हैं जिन्होंने गाना सही पहचाना है। वेल, दिस सॉन्ग नेम इज जिंदगी मिलके बिताएंगे फ्रॉम द मूवी सत्ते पे सत्ता, जिसे किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपिंदर सिंह एंड सपन चक्रवर्ती ने साथ में मिलकर गाया है। और सही गैस किया है हिशाम ने, आफ्ताब ने, मोहम्मद यूसुफ खान ने, रिजवान ने, अनवर ने एंड एडी ने। क्या बात है, चलो तो ये गाना आपके नाम कर देते हैं और इसी के साथ आपसे कह देते हैं कि अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आपकी मेरी मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे फिर से द रिक्वेस्ट शो पर। तो जाते जाते कह दूं, हाँ हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: के सेंसर्स आपका साइज, आपका स्टाइल, आपका जो स्टाइल का प्रेफरेंस है, यहाँ तक कि भाई ये आपके फेवरेट कलर को भी जानते हैं और वो भी आपके बोलने से पहले.
1: Yes, और वो आईने, oh my dear, सफा ये ना स्मार्ट मिरर्स है. और हमारे सारे सुनने वालों को हम बताना चाहेंगे कि इमेजिन कीजिए एक ऐसा शीशा जो सिर्फ आपका चेहरा नहीं देखता, ठीक है, बल्कि आपको सेकंड्स में तैयार कर देता है. बिना कपड़े चेंज किए आप देख सकते हैं कि रेड ड्रेस आप पर कैसी लगेगी और वो ब्लू सूट आपकी पर्सनैलिटी को कैसा सूट करेगा. ये टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो प्योर मैजिक है.
0: भाई ये मैजिक इसीलिए भी है क्योंकि हम जो है वो नेक्स्ट जेन है, ठीक है. एक सीधी सी बात है, हम नेक्स्ट जेन है भाई, तो हमें इतना तो मिलना चाहिए. देखिए हम डिजिटल टूल्स को अपनी लेगेसी के साथ जोड़ रहे हैं
1: जी.
0: हमने अपनी रूट्स को भुलाया नहीं है, ऐसा नहीं. अक्सर लोग ये कहते हैं भाई, एक कॉम्प्लेक्स बात कर देते हैं कि नहीं ये तो सब कुछ भूल बैठे. नहीं नहीं नहीं, हमने जो है अपनी रूट्स को भुलाया नहीं, बल्कि उनको टेक के पर्दे दिए. और हाँ, आज का न्यू सूक एक ऐसी जगह है जहाँ हेरिटेज और हाइपर डिजिटल टेक्नोलॉजी हाथ पकड़ कर चल रहे हैं एक साथ.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और ये एपिसोड उन सब के लिए है जो फैशन के ना दीवाने हैं, जिन्हें फैशन से बेहद बेहद मोहब्बत है. जो हमारे यहाँ के बड़े ही फेमस मॉल्स हैं, जैसे कि प्लेस वेंडोम की अगर हम बात करें, तो उसकी गलियों में जो लेटेस्ट ड्रॉप्स ढूंढते हैं ना, मतलब बस एपिसोड उन्हीं के लिए है. और ये एपिसोड उन यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो रिटेल की इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो वो कहते हैं ना कि जो बिजनेसेस को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं.
0: भाई आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ शॉपिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बदलते हुए इंसानी रिश्तों की, बिजनेस के नए तरीकों की और कतर के उस विजन की जो हमें दुनिया से अलग बनाती है.
1: सो आई एम टोटली रेडी सफा. और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स भी ना क्यूरियस होते जा रहे हैं कि शॉपिंग का ये नया अवतार देखने के लिए दिल थाम कर बैठ तो गए, लेकिन ये है क्या.
0: तो चलिए साथियों अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, जैसे हम कहते हैं ना जहाज में बैठते हुए अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए. हम निकल रहे हैं कैसे सफर पर जहाँ पुराना सूक नए डिजिटल अवतार में हमारा इंतजार कर रहा है. सो लेट्स गो, नो लॉन्गर वेटिंग फॉर एनीथिंग. अमिता शैल वी?
1: यस यस सफा. तो चलिए इस फ्यूचरिस्टिक शॉपिंग एक्सपीरियंस के चेकआउट काउंटर के तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला हमारा स्पेशल सेगमेंट, दैट इज व्हाट्स ट्रेंडिंग. तो आप कहीं ना जाए, बने रहे एफएम 107 पर दिल से देसी. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107. मैं हूं अमिता, हमारे साथ है सफा और हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जेन. सो सफा, मुझे आपसे ना एक राज की बात शेयर करनी है. हाँ, तो कल मैं ना शॉपिंग पर गई थी,
0: ठीक,
1: और मेरा तजुर्बा इतना अजीब और गरीब था कि मुझे लगा शायद मैं किसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठ गई
0: है.
1: अरे मैं बता रही हूँ आपको कि मैं 2 घंटे तक मॉल्स में रही,
0: सही है,
1: शॉपिंग की, कपड़े पसंद किए, पेमेंट्स भी कर दी, लेकिन
0: सही?
1: जब मैं बाहर आई तो मेरे हाथ में ना एक भी बैग नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल पेपर बैग.
0: Literally, Amita, were you shopping in your dreams or something? कहीं आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर कर तो नहीं निकल आई और उसकी विंडो शॉपिंग की भी कीमत लग गई है अब, या फिर आप सामान कहीं उधर ही मॉल में भूल आई हैं? Are you sure? मैं तो अक्सर ये करती हूँ, बेचारे काउंटर वाले आवाज दे देकर बुला रहे होते हैं, बाजी अपना सामान ले जाए.
1: ये नहीं सफा, यही तो ट्विस्ट है कि मैं जब वहां से निकली ना तो मेरे हाथ खाली थे, लेकिन जब तक मैं अपने घर पहुंची मेरा वार्डरोब नए कपड़ों से फुल हो चुका था. यस, और ये मैजिक है या कोई नई टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिसनर्स अब गेस करेंगे.
0: देखो भाई अमिता, आप जो है ना किसी मैजिक का नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं कि आप 2026 में रह रहे हैं, तो 2026 के सबसे बड़े हाइब्रिड डिजिटल ट्रेंड का शिकार हो गई हैं आप. तो लिसनर्स ध्यान से सुनिए, क्योंकि शॉपिंग का तरीका अब हमेशा के लिए बदल चुका है.
1: राइट.
0: देखिए भाई, 2026 में रिटेल सिर्फ सामान बचा नहीं रहा, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस सेंटर बन चुका है. आजकल कतर में हर तरफ जीरो इन्वेंट्री स्टोर का बहुत ज्यादा चढ़ाव हो रहा है, मतलब ट्रेंड आ रहा है, और इसकी मकबूलियत यानी कि पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है.
1: यस, जीरो इन्वेंट्री, इसका मतलब है कि स्टोर में सामान है ही नहीं, तो फिर लोग वहां जाते क्यों है सफा?
0: देखो अमिता, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत हैरत अंगेज है. पुराने जमाने में मॉल्स, वेयर हाउसेस जैसे जो चीजें होती थी ना, हर साइज के आपको 50 पीसेस चाहिए होते थे. रैक पर आपको जो ना एक इन्वेंटरी चाहिए होती थी.

0: लेकिन आज ना दोहा की अलग अलग मुख्तलिफ गैलरीज जो हैं या आप कह लेंगे जो मॉल्स हैं, ऐसी जगहों पर नए ट्रेंड्स लीड कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और जब मैं कल वहाँ गई थी, स्पेशली जैसे हमारे कटारा साइड या मुंतजा की गलियों के साइड में जो बहुत ही लग्जूरियस मॉल्स हैं, हम जिनका जिक्र आपसे कर रहे हैं, वो स्टोर का माहौल ना किसी आर्ट गैलरी जैसा होता है। अगर आप कहीं गए होंगे, इन जगहों पर गए होंगे, तो आई एम श्योर कि आप देख पाए होंगे, वहाँ रैक्स पर हजारों कपड़े ठूसे नहीं रहते, ठीक है, सिर्फ कुछ शोकेस पीसेस होते हैं। आपको लगता है किसी बड़े ही लग्जूरियस बुटीक में आ गए हैं। तो ये जो शोकेस पीसेस होते हैं, ये बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले किए गए होते हैं, और आपको देख के लगता है कि मतलब हम शॉपिंग करें या क्या करें।
0: एग्जैक्टली मुझे ये चीज समझ में आ रही है। इसे ना क्यूरेटेड रिटेल कहते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि इसे क्यूरेटेड रिटेल कहा जाता है। आप स्टोर्स में जाते हैं, फैब्रिक को टच करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका फील लेते हैं, और फिर शुरू होता है डिजिटल मैजिक।
1: राइट,
0: आप वहाँ की स्क्रीन्स या अपने फोन को इस्तेमाल करते हुए ना अपना डिजिटल वर्जन ट्राई करते हैं, और जब आप बाय बटन दबाते हैं ना, तो वो ऑर्डर सीधा वेयर हाउस से निकलता है और आप तक पहुँचता है।
1: यस, और सबसे बेस्ट पार्ट पता है हमारे लिसनर्स क्या है? वो सामान आपको उठा कर घूमना नहीं पड़ता, जो कि अभी सफाने का सीधा आप तक पहुँचता है। तो अक्सर हमारे दोहा के मॉल्स में जब भी हम जाते हैं, तो हमें बहुत सारे ना बैग्स कैरी करने पड़ते हैं,
0: हाथ दुख जाते हैं,
1: और दूर दूर तक चल के शॉपिंग करनी होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडल में, जब तक आप शॉपिंग खत्म करके अपनी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं ना, चाहे आप फिर लुसेल में हो, वेस्ट बे में पहुंचना हो, आपका डिलीवरी एजेंट आपके दरवाजे पर होता है, एंड इट्स लाइक अ मैजिक डिलीवरी।
0: अच्छा, लेकिन अमिता, इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा होता है ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसे हम कहते हैं हाइपर पर्सनलाइजेशन। अच्छा लिसनर्स, क्या आपको आपने ये कभी नोटिस किया है कि जैसे आप जब किसी स्टोर में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे उस स्टोर को पता है कि क्या आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं।
1: यस, और कल मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं एक स्नीकर्स के सेक्शन में खड़ी थी, और मैं बस एक पेयर सस्टेनेबल स्नीकर्स को देख रही थी। मैंने उन्हें टच भी नहीं किया था।
0: वही तो, स्टोर के सेंसर और AI कैमरास करते हैं आपकी नजर को ट्रैक।
1: yes.
0: ठीक है, अगर आपने 3 मिनट तक किसी भी एक आइटम को घूर कर देखा ना, या आप उसके पास रुक कर उसकी डिटेल्स पढ़ने बैठे हैं, तो होता ही है, तो स्टोर की डिजिटल डिस्प्ले आपको पहचान लेगी।
1: right.
0: वहाँ फौरन एक नेक्स्ट जेन पर्सनलाइज डिस्काउंट फ्लैश हो जाएगा, जो सिर्फ आपके लिए होगा।
1: मतलब स्टोर मुझसे बात कर रहा है। It's like the walls have eyes and a heart.
0: Exactly. देखो, heart का तो मुझे पता नहीं, लेकिन eyes जरूर है भाई उसके पास। लेकिन इसी के साथ साथ ना दिमाग भी बहुत जरूरी होता है। ये टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है ताकि कस्टमर्स को वही दिखाया जाए जो उसकी पसंद हो।
1: right.
0: और वो एक होता है ना, हमारा किस चीज पे नजरें और दिल दोनों रुक जाते हैं।
1: right.
0: तो वो उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है। भाई इस चीज से ना शॉपिंग बहुत ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव हो जाती है।
1: हाँ.
0: आपको हजारों चीजों से बचत हो जाती है आपकी, और आपको ना उनको छूना नहीं पड़ता, आपको उनको देखना नहीं पड़ता। AI आपके लिए चॉइसेस फिल्टर कर देता है।
1: सो सफा, मैंने एक और चीज नोटिस की है इन मॉल्स में, कि वहाँ कुछ ना छोटे छोटे ग्लास कैबिन्स बने थे, जहाँ लोग लाइव कैमरा के सामने ना कपड़े दिखा रहे थे। तो वो क्या है?
0: देखो भाई, वो जो चीज है ना, उसको कहा जाता है सोशल शॉपिंग पॉड्स।
1: ओके,
0: ठीक है। 2026 में इन्फ्लुएंसर कल्चर और रिटेल एक हो गए।
1: हाँ।
0: आजकल मॉल्स में ऐसे पॉड्स होते हैं जहाँ इन्फ्लुएंसर्स बैठकर हजारों लोगों के साथ लाइव शॉप विद मी सेशंस करते हैं।
1: एग्जैक्टली, मतलब वो वहाँ फिजिकली खड़े हैं, कपड़े ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स अपने घर बैठे बैठे वही चीज ऑर्डर कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें अक्सर औकात हमारी लाइव फीड्स पर भी आती है, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। फोन की स्क्रीन और स्टोर फ्रंट के बीच जो एक फासला था ना, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इससे ना रिटेल एक सोशल इवेंट बन गया है। जैसे लोग पहले जमाने में जाते ना कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे और मेस्मराइज होते थे, वैसे ही अब ये एक इवेंट बन गया है। लोग अब सिर्फ सामान खरीदते नहीं जाते, बल्कि कंटेंट क्रिएट करने और एक्सपीरियंस का हिस्सा भी बन जाते हैं।
1: राइट,
0: ये न्यू सूक की एक बहुत बड़ी पहचान है।
1: वाह, और ये तो वाकई में शॉपिंग का एक नया वर्ल्ड या नया डायमेंशन है। और मैं सोच रही हूँ कि हमारे बुजुर्ग अगर ये देखें तो कितने हैरान होंगे ना।
0: अच्छा, ये होता है हमारे जो माशाल्लाह से जो थोड़ा सा जनरेशन गैप है, वो जब देखते हैं ना, तो

0: बड़े हैरान होते हैं
1: राइट,
0: लेकिन वो प्राउड भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्राउड भी होंगे, क्योंकि कतर ने ना हमेशा ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन को एक बेहतरीन बैलेंस दिया है.
1: राइट,
0: हम कतर नेशनल विजन 2030 की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसी का एक हिस्सा है. MOCI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट कतर जैसे जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने रिटेल टेक को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. वो आजकल उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है.
1: सही बात कह रही हो सफा. और हमारे मॉल्स ना अब सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशंस नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के हब्स बन चुके हैं. और एक तरफ सूख वाकिफ की मिट्टी की दीवारें हैं, तो दूसरी तरफ प्लेस वेंडोम जैसे बड़े मॉल की फ्यूचरिस्टिक लग्जरी है. दोनों ही जगह शॉपिंग का अपना एक लुत्फ है. हाँ, एक प्लेजर है, सही कह रही है.
0: अच्छा भाई लिसनर्स, देखें मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लंबा चौड़ा लेक्चर देना नहीं है. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगली बार जब आप शॉपिंग पर जाएं ना और हाथ में बैग्स ना हो तो घबराइएगा मत. मेरी तरह ये मत सोचिएगा हाय हाय ये चीज कहाँ चली गई, वो चीज कहाँ चली गई.
1: या
0: आप पीछे नहीं बल्कि वक्त आपसे आगे चल रहा है, ये याद रखिएगा.
1: सच में मुझे लगा कि अभी सवा बोलने वाली, देखो चाहे कुछ हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना. क्या बात है. वेल इस ट्रेंडिंग टॉपिक ने तो शॉपिंग का नजरिया ही बदल दिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बनाता कौन है, कौन है वो लोग जो इन स्मार्ट मिरर्स और AI सिस्टम के पीछे हैं?
0: भाई बाकी सारे कौन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जवाब दिया जा सकता है. देखिए इसके लिए हमें चलना होगा हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम मिलेंगे उन इन्वेंटर से, यानी कि उनके बारे में जानेंगे जो इस डिजिटल दुनिया को हकीकत बना रहे हैं.
1: हाँ, तो फिर हम कहेंगे आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर अपनी सफा और अमिता के साथ. नेक्स्ट जेन पर शॉपिंग और टेक्नोलॉजी की ये सैर अभी जारी है. स्टे ट्यून, दिल से देसी.
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है.
3: अल्लाहु अकबर.

0: हमारे गेस्ट कर चुके होंगे कि रिटेल की दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पेन, और वो पेन पॉइंट है हमारे लिसनर्स अब सोच रहे होंगे कि जब आप मॉल में जाते हैं, सोचे जरा, एक खूबसूरत सी ड्रेस आपको पसंद आती है और आप फिर शुरू होती है वो जद्दोजहद।
1: सही कहा, पता है कौन सी वाली जद्दोजहद जो हर किसी को बुरी लगती है? फिटिंग रूम की वो लंबी चौड़ी क्यूज, का खौफ करो मुझे इतनी बुरी लगती ना उनकी, ऐसे में शॉपिंग जाती नहीं। वहाँ की ना, वहाँ की अजीब सी येलो सी लाइट्स होती हैं, हमें किसी, आप कह लेंगे ऐसा लग रहा होता है हम किसी और ही मखलूक जैसे लग रहे होते हैं। और बार बार ना कपड़े उतारो पहनो उतारो पहनो, और कुछ इतने आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि फिर आपको एक टाइम बाद समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या अच्छा लग रहा है आपके ऊपर और क्या बुरा लग रहा है।
0: एग्जैक्टली, मुझे तो भूख लगने लगती है सफा उस टाइम पे। मैंने कई बार सिर्फ इसलिए शॉपिंग, जैसे आपने कहा कि मैं नहीं जाती, मैंने खुद छोड़ दी, मतलब सामान लिया वहीं छोड़ कर आ गई कि भाई ये 10 चीजें मुझे नहीं चाहिए, हो गया। सो वही वी स्टाइल कतर के फाउंडर्स ने ना इसी जो फ्रस्ट्रेशन होती है जो बायर्स की, उनको देखा और उन्होंने सोचा क्यों ना हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस फिटिंग रूम को ही गायब कर दें।
1: और भाई इसी सोच के साथ उन्होंने कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि QSTP में अपना डेरा जमाया। देखो भाई साथियों, QSTP में हमारे मुल्क का, आप कह लें कि ये वो जगह है जो हब है जहाँ नए ख्यालात को परवाज दी जाती है, या यूं कह लें कि उड़ने के लिए पर दिए जाते हैं। भाई यहाँ जो यंग इनोवेटर्स होते हैं उनका दिन रात वो काम करते हैं यहाँ पर, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है यहाँ पर जो वाकई में आप कह लें कि कमाल होती है। इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप। और उन्होंने बनाया है एक स्मार्ट मिरर, लेकिन ये कोई आम मिरर नहीं है जो सिर्फ आपका चेहरा दिखाएगा। ये मिरर लाइडार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और सफ़ा हमारे लिसनर्स को हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा और आसान शब्दों में मैं आपसे कहूँगी कि आप समझाएं कि ये लाइडार आखिर है क्या।
1: अच्छा भाई ज़रूर मैं आपको बताती हूँ। देखिए समझने वाली बात ये है कि लाइडार है क्या, ठीक है, ओके। लाइडार वही टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में रास्ता ढूंढने के लिए, नेविगेशन के लिए यूज होती है। ये लाइट बीम्स का इस्तेमाल करते हैं और डिस्टेंस नापने के लिए होते हैं।
0: यस, मतलब ये कैमरे की तरफ सिर्फ फोटो नहीं लेते है ना?
1: नहीं भाई, ये कैमरे की तरफ तस्वीर नहीं लेते, ये जो है यही तो इसकी खूबसूरती है। प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है इसके अंदर। ये मिरर मिली सेकेंड्स में आपकी बॉडी पर हजारों इनविजिबल लाइट्स पॉइंट्स भेजता है और एक एक्यूरेट 3D स्कैन बनाता है आपका, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी के हर कर्व और मेजरमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी इनवेसिव कैमरा के।
0: Exactly, और ये बड़ा ब्रिलियंट सा है सफा। मतलब मुझे अगर कपड़े पहनने की बार बार ट्राई करने की जरूरत ना पड़े, मिरर पहचान लेगा कि मेरे शोल्डर्स की विड्थ कितनी है, मेरी हाइट क्या है, फिर वो डिजिटल कपड़े मेरे 3D अवतार पर फिट करके हमको दिखा देगा कि ये साइज सही आ रहा है नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली, वाह, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगी हो अमिता, सही। अच्छा, और ये ना इतना एक्यूरेट होता है कि आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो फलानी जीन्स आपने पहनी है ना, इसकी वेस्ट थोड़ी सी टाइट हो गई है कि नहीं, या जो विजुअल ट्रायल का फ्यूचर है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। देखिए इन्होंने कतर की ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखा है, जैसे कि अबाया और सोप की जो फिटिंग होती है ना, उसके लिए भी एल्गोरिथम्स बनाए गए हैं भाई।
0: वाओ, लेकिन सफा हर कामयाबी के पीछे, जैसे हम जानते हैं कि एक बड़ी सी दास्तान, एक स्टोरी होती है। वी स्टाइल के फाउंडर की शुरुआत कोई बड़े ऑफिस से नहीं हुई थी। उन्होंने अपना पहला प्रोटोटाइप एजुकेशन सिटी के एक 48-hour हैकाथॉन में बनाया था।
1: अच्छा, मैंने ये भी सुना है इनके बारे में, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी और सुना भी। मैंने ये सुना है कि भाई इनके पास ना लैप, मतलब 2 अदद लैपटॉप से और ढेर सारी कॉफी थी, जो कि इंसान को चाहिए होती है जागने के लिए। उनका सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? उनका सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं था बल्कि लोगों का ट्रस्ट जीतना था। अब जाहिर बात है, मेरे और तुम्हारे सामने कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो हम तो पहले 10 सवाल करते हैं और फिर उसके बाद बिलीव करते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह। देखो ट्रेडिशनल रिटेलर्स को लगता था कि भाई लोग ना डिजिटल रिफ्लेक्शन पर भरोसा नहीं करेंगे। लोगों का मसला है कि लोगों को कपड़ा छू कर देखना अच्छा लगता है और समझ में आता है कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं भी एक ट्रेडिशनल शॉपर हूँ, मुझे होता है कि भाई कपड़े का मटेरियल पता नहीं कैसा होगा, मैं पहले उसको छू कर देखूँ फिर मैं अपनी शॉपिंग करूंगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट था।
0: सही बात कह रही हो। और रिटेलर्स को ना कन्विंस करना कि डिजिटल इज द न्यू फिजिकल एक बहुत बड़ी जंग है। मतलब सिर्फ कस्टमर

0: टेलर्स को शॉप जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. ठीक है, ये जो हमारे स्टार्टअप वाले फाउंडर्स थे, इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है, आप लोगों को वो विजन दिखाना है. उन्होंने कतर नेशनल विजन 2030 को ना गाइड बनाया और दिखाया कि कैसे स्मार्ट रिटेल हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है,
1: जो कि हमें अक्सर औकात नजर आती है और हम कहते हैं कि पता नहीं ये किस चीज के लिए.
0: राइट,
1: तो उससे ये होता है कि मिरर उसे RFID रीडर के जरिए स्कैन कर सकता है. इससे सिस्टम को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि उसका डिजाइन क्या है, साइज, कलर, अवेलेबल स्टॉक, और फिर काम आसान हो जाता है.
0: क्या बात है, मतलब मिरर को पहले ही पता चल जाता है कि मैं क्या ट्राई करने वाली हूँ. हाँ, लेकिन डिजिटल कपड़ा रिफ्लेक्शन पर इतना रियल कैसे लगता है?
1: देखो, यहाँ आती है रियल टाइम 3D रेंडरिंग. ठीक है, क्या चीज? रियल टाइम 3D रेंडरिंग. देखो, मिरर का सॉफ्टवेयर आपकी बॉडी मूवमेंट को ट्रैक करता है और डिजिटल गार्मेंट को उस मूवमेंट के साथ एडजस्ट करता है. होता क्या है, आप मूव करें, टर्न करें या पोज करें, वर्चुअल क्लॉथिंग भी उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेगी ना.
0: क्या बात है. और लाइटिंग का एक सवाल हो जाता है कि लाइटिंग का क्या? तो मैंने देखा था कि एक बटन प्रेस करके ही पूरा सीन, वो कहते हैं ना, उसका मूड बदल जाता है. कमाल है.
1: एग्जैक्टली, इसे कॉन्टेक्स्चुअल AR कहा जाता है.
0: हाँ.
1: ठीक है, डिफरेंट लाइटिंग एनवायरमेंट्स स्टिम्युलेट किए जा सकते हैं इस चीज के अंदर, ताकि कस्टमर्स देख सकें कि आउटफिट जो है ना वो उनका ब्राइट ऑफिस लाइट में कैसा लग रहा होगा, इवनिंग सेटिंग या वेडिंग एनवायरमेंट में कैसा नजर आ सकता है.
0: Right.
1: सब कुछ आप उसके मुताबिक एडजस्ट करके देख सकते हैं.
0: मतलब ये तो बहुत ही यूजफुल सी चीज हो गई हमारे सबके लिए, कि कभी कभी ट्रायल रूम की लाइटिंग में ड्रेस एक रंग की लगती है और बाहर निकल कर बिल्कुल डिफरेंट.
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे साथ हो चुका है. डोंट आस्क मी प्लीज, ये मेरे साथ हो चुका है. स्मार्ट टेक्नोलॉजी का पर्पस सिर्फ वाओ फैक्टर नहीं होता, बल्कि कस्टमर को, जो कंज्यूमर होता है, उसको बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करना होता है ना.
0: हाँ, लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज इन्वेंट्री लगी सफा, कि जब मैंने मीडियम साइज सिलेक्ट किया, ठीक है, और वो अनअवेलेबल था, तो सिस्टम ने दूसरा अवेलेबल ऑप्शन सजेस्ट किया.
1: अरे भाई, ये बड़ी बड़ी मजे की चीज है. और हाँ, यहाँ है जिसे हम कहते हैं बैक एंड कनेक्टिविटी. स्मार्ट मिरर स्टोर के इन्वेंट्री डाटाबेस से कनेक्टेड हो सकती है, इसलिए कंज्यूमर को बार बार सेल्स असिस्टेंट के पास जाकर, भाई स्टॉक चेक कर लो, ये कर लो, अच्छा ये है, साइज है, अवेलेबल है, नहीं है, ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ती. अगर एक साइज या कलर अवेलेबल ना हो तो सिस्टम आपको फौरन से दूसरे ऑप्शंस शो कर सकता है. कुछ सिस्टम्स में आप कह लें कि जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, वहीं से ऑर्डर या पेमेंट प्रोसेस भी कर सकता है, कि उसको काउंटर की लंबी लंबी लाइन में नहीं जाना. भाई एक होता है ना, मेरे जैसा बंदा हो, कहीं नहीं मैं दूसरी लाइन में जाकर नहीं खड़ा होऊंगा, मैं ऑलरेडी एक लाइन में खड़ा हो गया, तो बस वहीं पे सब कुछ एक क्लिक अवे.
0: राइट, मतलब फिजिकल स्टोर में ना हर प्रोडक्ट रखने की जरूरत भी कम हो सकती है और हर चीज सेटल्ड हो सकती है.
1: एग्जैक्टली, रिटेल स्पेस को स्मार्टर तरीके से यूज किया जा सकता है. कम फिजिकल सैंपल्स के साथ भी कस्टमर्स को ज्यादा चॉइसेस डिजिटली दिखाई जा सकती है.
0: लेकिन सफा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि प्राइवेसी का क्या? क्या स्मार्ट मिरर मेरी इमेज या बॉडी स्कैन सेव करता है?
1: देखो, ये टेक्नोलॉजी यूज करने वाले जो कस्टमर का है ना, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा कंसर्न है.
0: Right.
1: और ये होना भी चाहिए.
0: राइट.
1: देखो भाई, स्मार्ट मिरर की प्राइवेसी प्रैक्टिसेस सिस्टम और रिटेलर पर डिपेंड कर सकती हैं. कुछ सिस्टम्स एज कंप्यूटिंग यूज करते हैं, जहां प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है और डाटा को अननेसेसरीली क्लाउड पर भेजने की जरूरत नहीं होती.
0: Okay.
1: मतलब ये कि उसी वक्त असेस हुआ और उसी वक्त ये जा वो जा.
0: राइट.
1: इसीलिए कस्टमर्स को या जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हमेशा प्राइवेसी पॉलिसी चेक करनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो कैमराज या इमेज और बॉडी डाटा किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं.
0: राइट.
1: इसलिए चलिए अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किल अप में. लेकिन वो नेक्स्ट सेगमेंट है, तो नेक्स्ट सेगमेंट से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. तब तक के लिए बने रहिए अमिता और सफा के साथ, सुनते रहिए FM 107 पर. शो का नाम है नेक्स्ट जेन.
0: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप नेक्स्ट जेन पर. मैं हूँ अमिता और सफा आपके साथ. तो सफा, टेक्नोलॉजी तो हमको अभी तक समझ में आ गई कि स्मार्ट मिरर्स देख लिए, लेकिन आखिर रिटेल का मकसद तो सेल ही है ना. और 2026 में नेगोशिएशन का तरीका भी बदल गया है.
1: हाँ भाई, देखो पहले तो मजा आता था ना, वो आप दुकान वाले के सामने बैठे हुए, बाजी इतना आप कहोगे नहीं उतना, आप चाय भी साथ साथ पी रहे हो, लंबी चौड़ी प्राइसेस की नेगोशिएशन चल रही है. लेकिन आज के डिजिटल बाजार में ना सिर्फ अच्छा

0: की बातचीत काफी नहीं है
1: राइट
0: देखो आज के सेल्स पर्सन को डाटा और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दोनों चाहिए और इसीलिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि होनी चाहिए
1: राइट
0: पहली स्किल है वैल्यू बेस्ड सेलिंग देखो आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन खरीदता है और ये सच हकीकत बात है मिसाल के तौर पर अगर आप स्मार्ट मिरर सेल कर रहे हैं और सिर्फ ये बताएं कि भाई इसका डिस्प्ले हाई डेफिनेशन है तो कस्टमर शायद इंप्रेस ना हो क्या हम कहेंगे भाई हाई डेफिनेशन वाली चीज तो हमें कहीं भी मिल जाती है
1: राइट
0: लेकिन अगर आप ये बताएं कि ये फिटिंग रूम एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकता है प्रोडक्ट डिस्कवरी को इजियर बना सकता है और स्टाफ का टाइम सेव कर सकता है तो कस्टमर को प्रोडक्ट की रियल वैल्यू समझ में आती है
1: मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं इम्पैक्ट सेल करें
0: एग्जैक्टली कस्टमर के पेन पॉइंट को समझें और उसका सॉल्यूशन ऑफर करें ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनो ना भाई
1: और दूसरी स्किल की बात करें तो वो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि आज का बायर स्टोर में आने से पहले ही ऑनलाइन प्राइसेस रिव्यूज और अल्टरनेटिव्स चेक कर लेता है
0: अरे भाई बड़े होशियार हो गए कंज्यूमर्स बिल्कुल सही कहा इसीलिए इंफॉर्मेशन हाइड करना या अनरियलिस्टिक प्राइस डिमांड करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होता डाटा शेयर करें प्राइस जस्टिफाई करें और कस्टमर को क्लियर इन्फॉर्मेशन दें देखिए ट्रस्ट एक डिस्काउंट से ज़्यादा वैल्यूबल मैं कहूँगी चीज़ होता है बिजनेस में रेपुटेशन ही आपकी असली कैपिटल होती है कतर की शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को एक नई डायरेक्शन दे रही है
1: लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए बाजार की वो असली रूह कम्युनिटी ट्रस्ट और इंसानी कनेक्शन हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी
0: बिल्कुल फ्यूचर सिर्फ मशीन्स का नहीं है जो कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हर चीज मशीन पे चलेगी
1: राइट
0: ऐसा नहीं है स्मार्ट ह्यूमंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप के साथ नया फ्यूचर बनेगा
1: और अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं एक और फैसिनेटिंग टॉपिक 3D प्रिंटिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और एक ऐसी दुनिया जहां कुछ चीजें सिर्फ खरीदी नहीं जाएंगी बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई भी जा सकेंगी
0: तो भाई तब तक के लिए अपने आइडियाज को परवाज दें स्टे स्मार्ट स्टे स्टाइलिश एंड कीप मोटिवेटिंग
1: एब्सोल्युटली और इसी के साथ हम कहेंगे कि अपनी आरजे अमिता और सफा को दीजिएगा इजाजत आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के और आप 666-22-107 इस नंबर के जरिए अपने व्यूज अपने सजेशन भी हम तक पहुंचा सकते हैं
0: तो भाई नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाजत अपना ढेर सारा ख्याल रखें सुनते रहें FM 107 दिल से
1: देसी

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एफएम 107 पे इस्तकबाल है गुड इवनिंग क्या है हाल चाल टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में 6:02 और ये शो
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: हाँ भाई क्या हाल चाल है क्या चल रहा है जिंदगी में भाई दो दिन के बाद वापस लौटे हैं और ये दो दिन बड़ी लाजवाब रहे यार थोड़ा सा मौसम बेहतर हो रहा है हल्की हल्की हवा जो है वो शाम को चलने लगी है अब जो है ये आवारा आदमी जो है घर से बाहर निकल सकता है तो मतलब अब दिल करने लगा है कि हाँ ठीक है अपन घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन कुछ दिन पहले तो ऐसी गर्मी की इंसान घर से बाहर निकल ना पाए वेल आपने क्या किया ये भी आप शेयर कर सकते हैं नंबर है 666-22107 लेकिन इन सब के बीच जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया एक सबसे बड़ा बदलाव मुझे समझ में आ रहा है कि यार 30 के ऊपर आप जैसी उम्र अपनी पार करते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे एहसास होने लग गया है कि अब भूख जो है ना वो घर के खाने की नहीं रही है भाई ये धीरे धीरे बाहर के खाने की लत जो लग रही है वो बहुत बुरी लग रही है घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा यार हर बात में मुझे फास्ट फूड खाना ये क्या है मुझे लग रहा था कि यार ये दुनिया कैसी हो गई है कि बाहर का फास्ट फूड खाना खाती है घर का खाना नहीं खाती पिछले 5 या 10 साल या 20 साल मेरे ख्याल से पता नहीं कितने वक्त निकल गए होंगे मुझे नहीं याद है कि कभी वीकेंड में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लगातार मैंने बाहर का खाना खाया हो रात में और ये पहली बार ऐसा हुआ है लगातार 3 दिन बाहर का खाना खाया मैं बाकी लोगों के बारे में तो मेरे को नहीं पता ये बहुत बड़ी बात नहीं है ऑब्वियसली कि कई लोग तो खाते होंगे जब उनकी फैमिली नहीं है लेकिन जिनकी फैमिली है मुझे लगता है यार इन दोनों या इन तीनों में से एक दिन तो ऐसा करते होंगे ना कि वो घर पर खाना खाते होंगे मेरा पहली बार ऐसा हुआ है कि वीकेंड पे तीनों शाम बाहर का खाना ये कैसे पॉसिबल है यार क्या

हो गया है, मुझे घर का खाना पसंद क्यों नहीं आ रहा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई कह रहा हो, कोई दावत हो रही हो या कोई प्रेशर हो बाहर खाना खाने का, खुद ही दिल नहीं कर रहा घर का खाना खाने का। भाई नहीं मन कर रहा है यार चकुंदर खाने का, मैं क्या करूं यार। घर में मैं मतलब गोभी देख लो तो मैं दिमाग खराब हो जाता है, बैगन से मुझे एक अलग तरह की कोफ्त होने लगी है, भिंडी देख लो तो उलझन सी होने लगती है, लेकिन यही अगर चिकन शोरमा सामने आ जाए, कबाब आ जाए मेरे सामने, चिकन लबाबदार आ जाए, चिकन कढ़ाई आ जाए, मटन तो प्याज़ा आ जाए, और भाई मेरा दिल नहीं मानता है। और ये मेरे सामने आ नहीं रहा है, मेरे ख्वाबों में आ रहा है, और ख्वाबों के बाद मेरा दिल नहीं मानता कि घर का चुकंदर खाऊं मैं। भिंडी, टिंडे, गाजर, आलू, खीरा, इन सब से मेरा मुंह उठ चुका है। पता नहीं क्यों मुझे नॉनवेज की ऐसी तलब लगी है यार। मैं घर का नॉनवेज नहीं खा पा रहा हूँ। ये क्या हो गया है, इसमें कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, ये एक अलग टेंशन है। इस पर काम कर रहा हूँ मैं, अब ये कब तक काम चलेगा मेरे को नहीं पता। पिछले 3 दिन तो मैंने बाहर का खाना खाया। वैसे ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या कि बाहर का ही खाना चल लिया, नहीं आपका दिल मानता कि घर का खाना खाएं, और बेगम भी इस पे खुशी हो रही कि चलो अच्छा है, घर पे खाना बनाने नहीं पड़ेगा, बाहर खाना खाएंगे, बढ़िया, और क्या चाहिए। अगर ऐसा है तो बताओ, बाकी मुझे ये तसल्ली तो हो जाएगा कि मैं ही तो नहीं बर्बाद हो रहा हूँ। मेरे साथ साथ समाज के और लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये वही फीलिंग है जो फीलिंग आप एग्जाम देते हुए करते हैं ना, कि यार पता नहीं मेरे को कैसा है कि जो आंसर लिखा है वो सही है कि गलत है। फिर लेकिन जब वो एग्जाम खत्म हो जाता है, बाकी लोग कहते हैं भाई सवाल तो समझ ही नहीं आया। आपका जो दिल है ना वो खुश हो रहा होता अंदर से, ये नहीं कि अरे तुम्हें नहीं समझ में आया, बड़ी ये तो यार परेशानी वाली बात है, अंदर से खुश हो रहा था, चलो मैं फेल होऊंगा तो ये भी तो फेल होगा, इसको भी नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं समझ में आया, तो ये वही वाली फीलिंग हो जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप करें 666-22-107 पे कि भाई साहब हमारा खाना भी घर के बाहर हो रहा है, फजील भाई आप ही हमारा नहीं, और लोग भी साथ में जुड़ चुके हैं। बाकी नंबर है 666-22-107, 666-22-107। और अब वक्त आ गया है आज के सवाल पर आने का, क्योंकि 6 से लेकर 7 बजे तक का ये शो जहां पर सवाल तो मैंडेटरी है, ये जो सवाल किया ये तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए, सवाल एक और है क्योंकि मेरा एक दोस्त आया, बहुत ही जिगरी आ रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या है कि कार की ज़रूरत है ना, हर बात पे मेट्रो जो है करता नहीं है वो, और उसका काम भी ऐसा है कि उसको ज़रूरी है कार लेना, तो वो ड्राइविंग टेस्ट देने गया, पहली बार में वो फेल हो गया, बहुत ज़्यादा अफसोस में है भाई उसका, ये क्या इतने पैसे लगाएं भाई, मेरा पास होना ज़रूरी है, मेट्रो कर करके दिमाग ख़राब, और मेरा काम भी ऐसा है कि मेरे को दूर दूर भी जाना पड़ता है, और अगर जल्दी नहीं निकाला ड्राइविंग का तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल था, और ये एक्चुअली में अच्छा उसको ये है कि उसको आया 4-5 चीज़ें कि क्यों आपका ड्राइविंग टेस्ट जो है वो फेल हो गया, आप क्यों फेल हो गए, कैंसिल नहीं फेल आप क्यों हो गए, तो उसको बताया है। लेकिन मेरा ये सवाल भी था, आम तौर पे जनता क्या गलतियां करती है जिसके वजह से वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि ये सवाल सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाकी जो ड्राइविंग टेस्ट देने वाले हैं कल परसों या आने वाले महीनों में, उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा आज के सवाल से जब जवाब मिलेगा हमें कि क्या मिस्टेक आम तौर पे ड्राइविंग टेस्ट देने पर लोग करते हैं जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। ये कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर आज हम बात करेंगे, ताकि मेरा दोस्त, मैं ले जाके आज उसे बताऊंगा, और उम्मीदन हो सकता है वो सुन भी रहा हो, मैं उसे बताऊंगा कि भाई तुम्हें क्या क्या गलतियां नहीं करनी, क्योंकि आपकी तरफ से जो आएंगी वो बहुत सी, ऐसे तो आमतौर पे आती रहती हैं कि भाई वो लेफ्ट टर्न में ऐसा हो गया होगा, राइट टर्न में इंडिकेटर हलाना फलाना, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको इतना आइडिया है कि आपने राइट टर्न या लेफ्ट टर्न नहीं दिया है और फिर इसकी वजह से फेल कर दे रहे हैं, तो तब तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी कई और भी चीज़ हैं जो शायद आपके पास लिख करना है लेकिन वो नोटिस हो जाती हैं, है ना, कि आप फेल हुए, आपकी ये 4 रीज़न हैं, लेकिन 4 के अलावा 4-6 और रीज़न होते हैं जो लिख कर नहीं आए लेकिन वो रीज़न होते हैं एक्चुअली में जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं या लोगों को फेल कर दिया जाता है। तो वो आज मैं सोच रहा हूँ और अपने दोस्त को भी बताऊँगा। 666-22-107 और बाकी लोगों के लिए भी है, क्या गलतियाँ करते हैं यार ये लोग, क्यों नहीं हो रहा। मेरे को एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मेरे पास है कि क्या गलती होती है, और मुझे लगता है कि मैं जब एक बार फेल हुआ था तो यही रीज़न था। एक बार मेरे साथ एक बंदा था, वो जिस तरह से चला रहा था तो मेरे को, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग मुझे लगा यार ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन वो पास हुआ।

और वो क्यों पास हुआ मैं बताऊंगा कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे और आपके मैसेज पर भी बात करेंगे। फिलहाल डोनी कक्कड़ की आवाज में सावन को बुलाओ यार, क्योंकि सावन का आना बेहद जरूरी है। अरे इंडिया में तो बारिश रुक नहीं रही है, यहाँ हो नहीं रही है। तरस गए भाई इस आवाज के लिए।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी, दिल से देसी। और मेरे दोस्त के आंसू रोकने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके मैसेज आए ड्राइविंग टेस्ट पे। तो जो नए लोग आए हैं उनको मैं बता दूं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसने ड्राइविंग टेस्ट दिया और वो फेल हो गया बेचारा। मैं मतलब ऐसा दिल कर रहा है कि उसके लिए मैं प्ले कर दूं कि दिल गलती कर बैठा है, लेकिन छोड़ो, रहने दो, दिल नहीं तुम्हारा दिमाग गलती कर बैठा है। खैर कोई बात नहीं, मैं लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी एक टेस्ट बाकी है ना ड्राइविंग का। सो ड्राइविंग टेस्ट में ऐसी क्या गलती है जो आम तौर पर इंसान करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जिसके वजह से आमतौर पर लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो गलती करी है वो तो लिख कर आई भी नहीं आपके पास मैसेज पे, है ना। जैसे एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे हैं भाई, एक भाई ने लिखा भी है कि कुछ लोग बड़े हीरो बनकर एक हाथ से, मैं भी उसी हीरो में था एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे हैं क्योंकि मुझे किसी ने कहा था दिखाना कि बहुत रिलैक्स्ड हो तुम मेरा भाई फजील मैंने इतना ज्यादा रिलैक्स दिखा दिया उनको, इतना ज्यादा रिलैक्स दिखा दिया कि चाचा ने कहा कि अरे ये एक हाथ से चला रहे हैं, एक्टिंग, बहुत ज्यादा रिलैक्स होने की एक्टिंग कर रहा है। लो बेटा तुम तो फेल हो गए और मेरे में क्या लिख कर आया मालूम है? जब मैं फेल हुआ था लिख कर आया कि फोकस नहीं है, ठीक है, और एक दो बात लिख कर आई थी, तो मैंने तो वो छोड़ दी। मतलब फोकस नहीं, फोकस तो यार पूरा था, फोकस इस बात पे था कि आराम से चिल होकर गाड़ी चला रहा है, ये उनको दिखना चाहिए, तो किसी ने मुझे कह दिया था। खैर, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक ऐसा बंदा था जो मुझे लग रहा था शायद पास नहीं होगा, मैं उसी के साथ तीन लोग ऐसा कार में बैठते ना, तो मुझे लग रहा था कि वो पास नहीं होगा। तो जो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे वो ऐसा सामने, वो बात भी नहीं करते भाई, वो जरा भी नहीं बात करेंगे, मतलब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो बस ऐसा रिलैक्स बैठे रहेंगे। असली में रिलैक्स तो वो रहते हैं तो वो रिलैक्स थे आराम से। लड़के ने टेस्ट दिया, मुझे लगा ये तो गया बाबू, फिर बाद में पता चला यार वो बाबू पास हो गया है। और मैंने देखा था कि वो दोनों हाथ से पकड़ के चला रहा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में डर सा है उसके अंदर, तो मुझे लगा कि ये शायद फेल हो जाएगा, लेकिन भाई वो पास हो गया। तो मुझे लगा कि भाई ये सबसे बड़ी गलती करी मैंने कि एक हाथ से पकड़ कर चलाया है मैंने गाड़ी। और ये बात तो लिख कर भी नहीं आती ना जब आप फेल होते हैं कि एक हाथ से पकड़ कर चला रहे थे, एक्टिंग कर रही थी कहीं के खलीफा बने थे, बहुत बड़ा सूरमा थे, ये सब तो लिख के नहीं आता तो भाई मैंने अगली बार जब टेस्ट दिया तो दोनों हाथ से पकड़ के फिर मिरर वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें, है ना, कुर्सी वगैरह सेट करना, और फिर मैंने अपने अंदर के डर को निकाल दिया था कि भाई देखी जाएगी जो होगी, तो मैं पास हो गया। ये जो मेरे अंदर सुकून था पास होने का, भाई यार पता नहीं क्यों लोगों को कितना है याद कितना नहीं याद है, मेरे को आइडिया एक रत्ती भर का नहीं है, लेकिन जिस दिन पास हुआ तो भाई ऐसा लग रहा था ब्रह्मांड जीत लिया हो मैंने, पूरी दुनिया मेरे हाथों में आ गई हो, मैंने खुशी में

0: घर पे कॉल किया, उनने कहा इतनी क्या बड़ी बात हो गई बेटा, लाइसेंस माना है, तुम इतने ज्यादा खुश हो, यहाँ आओ, तुमको 1,500 का दिला। मैंने कहा अरे अब्बू यार ये क्या कह रहे, अरे हाँ यहाँ पर हो जाएगा। हमने कहा अरे आप नहीं समझ रहे हैं, कह रहे अरे तुम, मैं फिर उनको बताया। खैर मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, हैप्पी संडे इवनिंग। आपका वीकेंड कैसा रहा आप बताएं यार? मेरा वीकेंड खाने पीते पे जो है वो ख़त्म हुआ है। फिर उसके बाद ये मैसेज है, डर डर फजील भाई, डर के मारे फेल हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, कुरैशी साहब ने लिखा है, और कई बार आप ना जब डर में रहते हैं तो आपके हाथ थोड़े से कांपने लगते हैं, आपका फोकस हिल जाता है, आपका फोकस उन बातों पर रहता है जो सिर्फ आपका दिमाग आपको बता रहा होता है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल हो नहीं पाता है डर में, है ना, आप सिर्फ कॉन्शियसली गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन जब आप रिलैक्स होकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप देखिए जो असल में जो प्रॉपर ड्राइवर है ना, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड भी ईजली इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि बगल में आके कौन रुका और कौन उनको देख रहा है ना, इवन वो भी याद हो जाता है। लेकिन आप जब कॉन्शियसली चलाएंगे ना, तो आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपका, जो आपकी आंख दिखा रही है, और आप कॉन्शियसली फोकस करते हैं सिर्फ वही चीज़ देखने के लिए जो आपका दिमाग आपको बताता है, और फिर आप वही देखते हैं। लेकिन जब आप बहुत रिलैक्स होकर चलाते हैं, तो आपके बगल में जो बंदा रुका हुआ है ना, वो आपको देख रहा है, वो आपको यू नो देखकर स्माइल भी करता है, आप भी उस उधर देखने लग जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, क्योंकि आप रिलैक्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट दें तो डर डर को खत्म करना। लेकिन डर तो रहता कि पहली बार टेस्ट दे रहे भाई फेल हो जाएंगे तो क्या, और दूसरी बार अगर पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार दे रहे टेस्ट, तो और ज्यादा डर। तो इस डर को कैसे खत्म किया जाए कुरैशी साहब, बात तो ये है। बाकी एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, और शेख भाई ने भी यही कहा है, डर ए निजात ड्रामा का। अरे अच्छा, मुझे लगा ये कोई बात कह रहे हैं रिलेटेड टू ड्राइविंग टेस्ट, लेकिन भाई ने लिखा है डर ए निजात ड्रामा का ओरिजिनल साउंडट्रैक प्ले कर दे फजील भाई। अरे भाईजान ये रिक्वेस्ट शो नहीं है, अगर मैंने प्ले कर दिया तो कोड़े वाला आदमी सामने बैठा है, कोड़े वाले आदमी का काम ही वही है, जो शो है वो शो करो, अभी रिक्वेस्ट वाला इधर प्ले कर देंगे, सब रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे, फिर 4 बजे अमिता क्या करेगी। तो वो आप ये फर्क समझ रहे हैं, आप शो की टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने को काम करने का है, वरना अगर घोड़े वाले को मैंने काम दे दिया भाई साहब, उसकी सैलरी क्यों डबल करवाना है हमें। शेख साहब वालेकुम अस्सलाम। 301 वाले भैया कॉल कर रहे हैं, जो भी है 301 वाला भैया वो प्लीज़ 4444-3-4477 पे कॉल करें, 4444-3-4477। बाकी सर आई पास ऑन माई फर्स्ट ट्राई, अरे भाई तुम ये जला क्यों रहे हो सुफियान साहब, कुढ़ाने को नहीं कहा मैंने तुम्हें, जला रहे हो मेरा भाई आप। हम देखो ये सारे जितने हैं ना, मोस्टली लोग पहले वाले में फेल ही होते हैं, वो किस्मत वाले हैं, वैसे कई ऐसे किस्मत वाले भी होंगे जो पहली बार में पास हो गए होंगे, भाई वेल डन, क्या आपने एक्सेलरेट किया है अपनी ज़िंदगी को, और अपनी ड्राइविंग टेस्ट में आप यू नो जीत गए हैं, बहुत ही उम्दा। लेकिन आमतौर पर क्या गलतियाँ लोग जो है वो करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं, ये मैंने पूछा है। फिलहाल एक कॉलर भी हमारे साथ, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई, आप कौन?
1: जी मैं शफा बात कर रहा हूँ।
0: शफा साहब मुझे लग रहा है कि आपने रेडियो भी ऑन करके रखा हुआ है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट किया हुआ है।
1: रेडियो तो ऑफ है, ब्लूटूथ यूज किया है, जस्ट 1 मिनट।
0: ओके भाई चलेगा। पार्किंग कर रहे हैं, वाह इतना, 1 मिनट देखिए फोन ही काट दिया भाई ने। ठीक है आप आराम से पार्किंग कर लें, उसके बाद आप कॉल करें, हम आपका कॉल उठाएंगे भाई। फिर एक और ये मैसेज है, फजल भाई ड्राइविंग टेस्ट के लिए कॉन्फिडेंस से ही करें, और जैसा इंस्ट्रक्टर कहे और वैस उस तरह से गाड़ी चलाएं, रिजवान डर के आगे जीत है। रिजवान साहब मैंने ये पूछा था कि क्या गलती करता है, आपने माशाल्लाह जो ज्ञान सूता है बहुत ही उम्दा। देखो इंस्ट्रक्टर बताता है वो तो सब कर रहे होते हैं भाई, फेल तो फिर भी इंसान हो ही रहा होता है ना, आपको बताना है गलती क्या करता है। जो मुझे लगता है आमतौर पे बहुत लोग गलती करते हैं, और मैंने ऐसे, क्योंकि मैंने पहले बार जब फेल हुआ ना, मैं और लोगों को देखा था उन्होंने क्या गलती करी थी, वो तीनों फेल हो गए थे उस वक्त। उनमें था कि वो एक हाथ से चला रहे थे, और दूसरा ये कि कई ऐसे होते हैं जो अपनी सीट एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई हो रहा है कि जो मिरर एडजस्ट नहीं कर रहा है, सीट कर रहा है।

0: नहीं तो मिरर नहीं कर रहे, तो थोड़ी थोड़ी परेशानी जो है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो सबके अंदर मैंने नोटिस करी, जो मुझे लगता भी है कि नहीं करना चाहिए, कि छोटी छोटी चीज है ना उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल एक और कॉलर, वही कॉलर सेम वाले। जी भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शफक बात कर रहा हूँ।
0: जी शफक साहब कैसे हैं आप?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है।
0: बहुत ही उम्दा भाई, सवाल किया है, मुझे लगता है आप रोशनी डालेंगे यार।
1: एकदम बिल्कुल रोशनी डालेंगे, क्योंकि हम भी उसी राह ही हैं, वही रास्ते के।
0: अच्छा टेस्ट देने वाले हैं, टेस्ट दे चुके हैं या फिर आप वो है कि जो पैसेंजर सीट पे बैठते हैं?
1: नहीं, टेस्ट मैंने 2011 में मैंने लाइसेंस लिया।
0: हाँ
1: तो काफी पुराने हो गए हम तो।
0: तो क्या क्या आमतौर पे लोग गलती करते हैं भाई शफा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
1: देखिए कुछ लोग जो टेस्ट देने जाते हैं उन लोग कुछ गलती करते हैं, और कुछ गलती जो उनसे पहले जो दे के आते हैं ना उन लोग भी कुछ गलती करते हैं बेचारे, जो बाद में जो जाते हैं उनको भी कभी कभी उनका सामना करना पड़ता है।
0: हाँ, सही।
1: अभी तो फिलहाल मुझे नहीं मालूम अभी ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि वन बाई वन यानी ऑन द रोड में यानी टेस्ट होता था।
0: हाँ।
1: पीछे बस चलती थी, कुछ लोग बैठे रहते थे, एक दिए 10-15 मिनट चलाए फिर दूसरे जाते थे।
0: हाँ।
1: तो होता क्या था, कुछ लोग जैसे कुछ ज्यादा अगर ताकतवर है तो हैंड ब्रेक को थोड़ा ज्यादा खींच देते थे।
0: अरे भाई।
1: और जो नेक्स्ट जो जाते थे बेचारे उनसे हैंड ब्रेक ही नीचे नहीं होता था, बाद उनको बोल दिया लारो।
0: तो मेरे दोस्त क्या करते थे ना, जिनको आती थी, जिनके पास कार थी, अपन तो मिडिल क्लास, वो ऊपर कर देते थे, कहते थे कि भाई तुम ताकत लगाओ, इसको अगर नीचे कर लोगे ना जो तुम कहोगे वो खिलाएंगे। अपन तो एक समोसे के लिए भी भाई मान जाते थे, तो मैं नीचे नहीं कर पाता था, लेकिन जब वो करे तो वो आराम से हो जाए, तो मेरे को समझ नहीं आता था। बाद में अंदाजा हुआ कि अच्छा ये बटन दबा के होता है, और हल्का भी लिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि बटन दबाता तो मैं उनको भी देखता था, लेकिन बटन दबाने के बाद थोड़ा लिफ्ट करना होता है।
1: एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जो मेरे हिसाब से जो लोग जो जाते हैं टेस्ट देने के लिए अगर फेल जो होते हैं हड़बड़ी में हो जाते हैं, ऐसा सब हाँ, कुछ नॉलेज रहता है
0: हाँ,
1: सब क्लास अच्छे खासे वो टैलेंटेड रहते हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस रहता है,
0: करेक्ट,
1: तब ना वो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो हड़बड़ा जाते
0: हैं,
1: जिस वजह से वो नहीं गलती जो होने वाला वो भी गलती कुछ ना कुछ वो छोड़ जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कुछ मर्डर करने के लिए नहीं कुछ ना कुछ सुराग छोड़ जाते हैं।
0: अरे भाई साहब
1: इसमें भी वही हाल है,
0: शफत साहब ने एग्जांपल बहुत डेंजर दे दिया भाई।
1: इस तरह से भी जितने भी तैयारी करके आप जाइए, अगर आप हड़बड़ा गए
0: हाँ,
1: तो समझ लीजिए कि मामला कुछ गड़बड़ होने वाला, आप हड़बड़ाइए मत, एकदम फ्री माइंड होके एकदम रिलैक्स होके जाइए, बैठिए, समझे बगल वाला कोई नहीं है आपका।
0: शफत भाई आप पहली बार में, आप पहली बार में पास हो गए थे?
1: नहीं नहीं नहीं,
0: क्या गलती किया था
1: पहली बार? मेरे गलती आप सुनेंगे तो आप सब लोग हंसेंगे।
0: क्या है बताओ?
1: पहले तो जब जब जब मैं फेल हुआ तो मुझे जब आया कि हाँ भाई फेल हो गया, तो चलिए भाई नॉर्मल बात है, फेल होता है आदमी, मैं भी हो गया।
0: सही।
1: तो फिर नेक्स्ट टेस्ट जब मैं देने के लिए गया तो पूरी अरबी में थी, तो अरबी में पढ़ लेता था, नहीं समझ नहीं पाता कि यानी क्या लिखा हुआ है उसका।
0: अच्छा।
1: मीनिंग तो मेरे बगल में एक मिश्री थे, तो मैंने उनसे पूछा यानी इसमें क्या मैं गलती किया जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था। उसने पढ़ा, बोला भाई आपने जो पार्किंग जो गाड़ी किया था ना वो स्टेयरिंग आपने सीधा नहीं रखा था, उसी में आपको फेल किया। अब बताइए क्या
0: इतनी बेसिक चीज है। हाँ यार, मतलब आमतौर पे आप कहीं पर भी गाड़ी पार्क करते हैं, आप 90% यहाँ पर कार पार्क देखेंगे, स्टेयरिंग जो है वो लोग सीधी रखते हैं, लेकिन एक दो गलती की वजह से यार टेस्ट फेल हो जाना बहुत तकलीफ देता है।
1: बताइए यानी वहाँ पर दिल पर आप क्या गुजरेगा, यानी एकदम छोटा सा माइनस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने फेल हो गए। अब पता नहीं हो सकता और भी कुछ नोटिस किया होगा, लेकिन इसमें मुझे फेल किया, जबकि मैंने पहला टेस्ट दे के जो आए थे, जो मैं बस में बैठ के, उस ड्राइवर ने कहा कि भाई आप पास आप मिठाई का डब्बा एकदम रेडी रखिए मेरे लिए, आप बहुत अच्छा ड्राइविंग की है। हम भी एकदम दिल से खुश हो गए कि भाई चलो, जब ये बोल रहे हैं यानी टीचर ही है स्कूल के, तो मैं तो यानी 100% मैं पास ही मानता हूँ, लेकिन जब वहाँ गए तो हम भी बोले चलो पहला टेस्ट है सबको नॉर्मली होता है 99%। तो लेकिन जब मुझे ये मालूम चला कि हाँ स्टेयरिंग शिप यानी सीधा नहीं, तो वैसे मुझे फेल कर दिया।
0: हाँ।
1: तब जाके वहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा यानी दर्द लगा, यानी जैसे बोलते हैं ना कि सब दोस्त पास कर गए, मैं
0: नहीं किया,
1: तो जब सुन के यही होता है।
0: तो एक तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है यार फिर तो। लेकिन चले अब तो, अब तो खैर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आई होप, है ना?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, 10-15 साल से गाड़ी चल रही है, कंटिन्यू कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
0: चलो तो एक और हमें चाहे वो वो क्या कहते हैं उसे, हैंड ब्रेक को लेकर हो या फिर मिरर को लेकर हो, सीट एडजस्ट करने को लेकर हो, साथ ही एक और प्रॉब्लम मिल गई है जो आमतौर पे लोग

0: गलती करते हैं वो है आपने स्टेयरिंग सीधी नहीं करी है. और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ देर में मैं अभी बताऊंगा आपको. बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू सो मच.
1: जी, शुक्रिया.
0: थैंक यू. फिर इसी के साथ यार ये व्हाट्सएप पे कॉल

0: उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर उस गाड़ी में टक्कर पड़ी या फिर वो न्यूट्रल पे आ गई या फिर अगर आपने ढलान में खड़ी है ना खड़ी करी है तो वो सीधे नीचे आने के बजाय या अगर पीछे से टक्कर या आगे से टक्कर पड़ी ना तो सीधे आने के बजाय वो दाएं और बाएं चली जाएगी क्योंकि स्टेयरिंग उसकी दाएं या बाएं है। इसके वजह से और पीछे से आने वाली जो कारें हैं या ट्रक है या बसेस हैं वो टक्कर खा जाएंगी और उससे और ज़्यादा फिटल एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस वजह से आमतौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहा जाता है स्टेयरिंग अपनी सीधी ही रखें। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: मेरा नाम समीर है।
0: जी समीर साहब, कैसे हैं?
1: मैं आपकी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका।
0: जी जी बताएं।
1: मेरा एक फेल होने का एक रीजन बताऊंगा। गलती किस में ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अब थार रोड 40 का
0: कौन सा
1: समझ रहे हो, रास्ता था 40 का। मेरा को जो टेस्ट ले रहे थे पुलिस वाले ने बोला सिग्नल खुला था, बोलते हैं वो 80 में जा।
0: अच्छा, और आप चले गए?
1: नहीं, मैं उसको बोला मैं ये रास्ता तो 40 का है। तो उन्होंने बोला मेरे को अच्छा तो ऐसा तो तू 40 में ही चल, बोल के मेरे को फेल कर दिया।
0: अरे यार
1: समझ
0: में नहीं आया कि यार ये क्या, ये कैसे हो गया भाई, ये 40 का है तो मैं तो 40 चला रहा हूँ।
1: क्या मेरे को समझ में नहीं आया? मेरी जो रास्ता है 40 का है, सिग्नल खुला है, यानी कि कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं फास्ट चल। मैंने उनको बोला ये रास्ता तो 40 का है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो वो बोलता है तुम तो 40 में ही चल।
0: चलिए, आपने शुरुआत में बहुत बढ़िया बात बोली कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं,
1: क्योंकि दूसरे भी कॉलर लगने वाले होंगे ना।
0: नहीं, आपने इतनी बात में पूरी बात कह दी। ओके मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर, इसके कई और रीज़न भी हो सकते हैं अगर फेल किया गया है तो। पहले तो आम तौर पे जो सिग्नल होते हैं वो 80 के ही होते हैं। अगर सिग्नल कहीं पर है तो आमतौर पे आप 80 ले जा सकते हैं। स्कूल के आसपास का एरिया जो होता है वो एक रीज़न होता है, और उसके अलावा मल्टीपल रीज़न होते हैं। जब भी आपको फेल किया जाता है ना तो आपको रीज़न भी दिया जाता है, तो मैंने आमतौर पे यही देखा। तो कोई ना कोई और ठोस रीज़न होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास रीज़न आता ही नहीं है मैसेज पे कि किस वजह से आप फेल हुए हैं ना। छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ हैं जो सिस्टम में नहीं होती हैं कि वो अपडेट नहीं कर सकते। तो ऐसी गलतियाँ जो उस पर्सपेक्टिव पे है ही नहीं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी क्या गलती है। ठीक है, बाकी फिलहाल एक और कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम,
0: कौन बात कर रहा है भाई?
2: अबरार बात कर रहा हूँ सर।
0: अबरार साहब कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? ठीक है,
0: मैं बहुत अच्छा हूँ। अबरार भाई, मेरा एक दोस्त है वो फेल हो गया है, उसके लिए मैं बहुत सारे रीजन जुटा रहा हूँ कि क्या वजह है जिसके वजह से आमतौर पे लोग फेल हो जाते हैं। वो वजह हमें मिल जाएगी, मैं उसको बता दूंगा तो शायद वो नेक्स्ट टेस्ट में पास हो जाएगा।
2: अच्छा सर, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कभी फेल नहीं हुआ हूँ।
0: अरे यार क्या बात है यार, 100 में 100%।
2: सऊदी अरब में लाइसेंस लिया था तो फर्स्ट ट्राई पे।
0: अरे वाह,
2: यहाँ भी डायरेक्ट रोड टेस्ट मिला था यहाँ पे सऊदी का लाइसेंस लगा के ना।
0: हाँ।
2: तो मतलब आपका फिर वो क्लासेस वाला चीज नहीं होती, डायरेक्ट रोड टेस्ट ले लेते हैं।
0: अरे वाह यार,
2: लेकिन रीजन मुझे मतलब जो क्योंकि मैं जब गया था रोड टेस्ट के लिए फाइनल ट्राई के लिए, तो मतलब मेरे से आगे तकरीबन 43 लड़के थे।
0: अच्छा,
2: मेरा नंबर था
0: 44। हाँ।
2: लेकिन जैसे मरुवाल आ गया तो पूरा रूम खाली हो गया, लोग भाग जाते हैं डर के। मतलब मेरे हिसाब से लोगों में डर ज्यादा होता है मरुवाल को देख के, जो ट्राई लेता है ना। तो नाम ले रहा था, वन बाई वन नाम ले रहा था, एक भी आदमी हॉल में नहीं था उधर।
0: तो
2: मतलब
0: तो ये क्यों,
2: 44 नंबर मेरा था, सबसे पहले ट्राई मैंने दे दी।
0: 44 वाला नंबर वाला आदमी सबसे पहले ट्रायल दिया। वाह
2: जी जी, दो लड़के मेरे से आगे थे। लेकिन जैसे हम लोग बाहर गए स्कूल से बाहर जो कार में बैठाते हैं ना, तो वो दोनों डर के मारे सीधे पीछे बैठ गए। आगे बैठे ही नहीं,
0: खौफ पुलिस भैया का खौफ। वाह भाई वाह
2: जी सर, मेरे हिसाब से तो मतलब मुझे सबसे बड़ी रीजन ये लगती है
0: लोगों में
2: कि लोग अक्सर डर जाते हैं।
0: हाँ।
2: कि भाई ट्राई अभी लेगा, ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो फेलियर की वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, उसी की वजह से।
0: और मुझे लगता है कई बार तो डर रीजन है भी नहीं, कई बार और पीछे से लोग डरा देते हैं। अरे तुम्हारा टेस्ट है, अरे भाई ध्यान से देना है, दोनों हाथ ऐसे पकड़ना, ऐसे करना, वैसे करना। वो इतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो आप डरने लगते हैं।
2: नहीं, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरा नंबर था 44। और हॉल पे जब वो मरुआ मतलब जो पहले आता है पेपर जमा करते हैं ना डोर टेस्ट के लिए।
0: हाँ, समझ गया।
2: तो एक भी लड़का नहीं था,
0: एक भी आदमी नहीं था।
2: सब
0: उनका ये कि हाँ हमें बाद में करेंगे और बाद में दोबारा आते हैं वो नंबर वगैरह, यू नो बोल।

0: करते हैं, अनाउंस करते हैं।
1: ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है सऊदीया में भी, यहाँ में भी, भाई सबसे पहले फिटाई मत तो वो आता है जो बोलते मरूर वाला नींद में होता है।
0: एग्जैक्टली, हाँ, मूड कैसा है
1: फिर आदमी को फेल कर देता है गुस्से की वजह से, तो थोड़ा बाद में दोगे, लोग ये बोलते हैं कि अगर बाद में दोगे ना तो वो थक जाता है, तो ऐसे पास कर देता है,
0: नहीं
1: कभी पास नहीं करते हैं।
0: ये तो फिजूल की बातें हैं भाई, न जाने। मैंने भी शुरुआत में जब मैं दूसरे टेस्ट के लिए गया था तो मैं शुरुआत में ही टेस्ट दे रहा था, तो इजिली पास हो गया था मैं। मुझे याद नहीं कौन सा नंबर था, लेकिन मुझे ये याद है कि शुरुआत के 10 में ही मेरा नंबर था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई जिसकी वजह से शायद मेरा दोस्त नेक्स्ट वाले टेस्ट में पास हो जाए। थैंक यू सो मच मेरा भाई।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमको बोलिए डरे मत बस।
0: हाँ, डरे नहीं,
1: नॉर्मल ड्राइविंग करें, वो मरू वाला वैसे फेल नहीं करता। आप अच्छी ड्राइविंग करेंगे, अच्छा से पार्किंग करेंगे, यू टर्न बराबर लेंगे, राउंड अबाउट सब कुछ, तो वो लोग बोलते उनको तो ड्राइवर है कि नहीं, एक आदमी परफेक्ट ड्राइवर है तो कभी फेल नहीं करते।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रिलैक्स है कि नहीं, बिल्कुल सही। थैंक यू भाई, ओके मेरा भाई। आज लोगों का मन नहीं है कि वो व्हाट्सएप मैसेज करे, कॉल कर रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी भाई,
0: अरे वाह मेरा भाई,
2: आपने कुछ बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का ट्रैफिक के हवाले से, तो मैं भी ये कहूंगा क्योंकि मेरे साथ भी चोट हो गई थी।
0: क्या?
2: एक्सपायर के पास, एक्सपायर करने के साथ में सिग्नल है, मुनासिब सिग्नल, वहाँ पे चोट हुई थी, तो मैं 75 में मैंने लेफ्ट मार लिया।
0: अरे 75 की स्पीड पे
2: फाइन आ गया।
0: रीजन होगा यार, हो सकता सीट बेल्ट ना हुआ हो।
2: नहीं, मैं वही बताने आया हूँ, लेफ्ट हो या राइट हो, आप 40 में मुड़ो।
0: अच्छा, ओके, हाँ मतलब मेरा भाई, अरे 75 में तो पलट भी जाती है यार, ये मतलब पता नहीं कैसे कर लिया
2: सर।
0: मेन ड्राइवर
2: सर बचपन से खेलते गाड़ियों से, क्या पलट गई, वो भी वैन थी।
0: अरे हाँ, अरे आपके लिए तो एक अलग से
2: गाड़ी, अनाड़ी हो तो पटरी, बाकी मतलब यही कहना है 40 जाओ भाई लेफ्ट या राइट हो।
0: अरे ये क्या बात है, ये मुझे लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले एक भाई ने कॉल किया था ना, उन्होंने कहा था कि 80 और 40 वाली बात, हो सकता है ये लेफ्ट या राइट टर्न ले लिया उन्होंने 75 की स्पीड।
2: लेफ्ट और राइट हो तो आपको 40 ही जाना, 50 जाओगे तो भी शायद कुछ हो जाए गड़बड़।
0: हाँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये बात तो शायद अगर मुबीन भाई नहीं होते और कोई करता ही नहीं, क्योंकि इकलौते यही होंगे जिनको फाइन पड़ा 75।
2: मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको, व्हाट्सएप पे बताऊंगा क्या कांड हुआ था।
0: अरे लेकिन मैंने ये आज तक नहीं सुना, पता है मैंने दुनिया भर के तरीके सुने हैं लोगों के, चलान हो रहे हैं कि गाड़ी बीच में रोक दी हो, या फिर उन्होंने यू नो 90 पे स्पीड पार कर ली और रेड लाइट पार कर दी हो, गाड़ी जो है आपने पार्किंग में ना रखी हो, बहुत से ऐसे चलान सुने, लेकिन 75 पे मोड़ दी गाड़ी उस पर चलान, भाई यूनिक तरीका है यार आपका। नहीं भाई, बड़े एहतियात से चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई,
2: ये मैसेज देना आया था, ध्यान रखो जी।
0: हां ध्यान रखो भाई, ये तो देखो जी, बताएं
2: जी जी, बोले कुछ नहीं, आप बोले।
0: मैं ये तो देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक तरह से रूल भी पता चल गया, ये तो हम ड्राइविंग टेस्ट के आमतौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये रूल भी है, तो ये बड़ा जरूरी
2: है, बहुत जरूरी,
0: सही, बहुत शुक्रिया भाई, ओके। हाँ जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 75 पे मोड़ने वाले कौन कौन है? हल्लू हल्लू चलाया करो तुम, ठीक है?
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
6: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: बाकी और भी मैसेज हैं, और रिजवान भाई ने कहा है भाई लोग डर जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, फियर इज़ द मेन रीज़न। इस्माइल खान, यार गलतियां क्या करते हैं वो भी हम, डर तो अपने को एक वजह मिल चुकी है, और भी वजह मेरे को बता सकते हैं। कादर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आई गॉट अ लाइसेंस इन 1993 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या बात है। दुबई और सऊदी में मिला इनको, ड्राइविंग फोबिया इज़ द रीज़न फॉर माइंड डाइवर्ट अकॉर्डिंग टू योर फोबिया। हाँ, अगर आपको फोबिया है या फोबिया है तो मत ही चलाओ, मेरा मतलब ये, क्योंकि फोबिया तो फिर रहेगा आपको लंबा। शेख इरफान कहते हैं भाई ड्राइविंग लाइसेंस को तुरप का इक्का। अब देखो यार, अब मैं बताऊंगा नहीं, एक नंबर वाले भैया हैं वो कॉल कर रहे हैं 324 वाले भैया, नंबर 4434377 वाला है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। 724 वाले जो भी भैया हैं तो लैंडलाइन पे कॉल करें, या हमारा मोबाइल वाला अलग है। भाई ड्राइविंग लाइसेंस को तुरप का इक्का क्यों बनाना है, ये इतना

0: जरूरी है क्या? कतर में ये अब नेशनल इशू बन चुका है, स्किल वर्कर्स के लिए ही बेहतर उपाय हैं? नहीं देखो, मेरा अपना सीधा सा मानना ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कई बार आपको अलखोर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? आई नो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर टाइम का भी तो मसला होता है। कई लोगों का रात का काम है ना, तो काम ही इस तरह से है कि उनको ड्राइविंग आनी चाहिए और कार चलाना आना चाहिए। सेल्स में है, मार्केटिंग में है, तो तुरुप का इक्का तो है। फिलहाल एक और हमारे साथ कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रहा है? आय हाय,
1: नूर मोहम्मद।
0: नूर भाई, आपका सलाम करने का जो तरीका है माशाल्लाह, मुझे लगता है चार लोग जो सुन रहे हो ना दूर, जिनको आपने सलाम ना भी किया, वो आपको आकर बोलेंगे अरे वालेकुम अस्सलाम भैया।
1: सलाम मर्द की तरह देना चाहिए ना।
0: अरे भाई साहब, ठीक है तो इस पे आगे नहीं बोलते, कोड़े वाले भैया कोड़ा दिखा रहे मुझे। तो कैसे हैं नूर भाई आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं।
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। क्या आमतौर पे लोग गलती करते हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं ड्राइविंग का टेस्ट देते हुए।
1: लोगों का तो पता नहीं है, जो हमसे गलती हुई थी वो अजीब नहीं, अजीब गरीब थी।
0: अच्छा, क्या क्या गलती करी आपने अजीब गरीब? आपने भी, आपने 80 में मोड़ दी क्या गाड़ी?
1: 80 में तो नहीं मोड़े, हमने स्लिप मारा था गाड़ी का, गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की थी।
0: क्या
1: एल पे हमने गाड़ी चढ़ाई, हैंड ब्रेक लगाया,
0: हाँ।
1: फिर वापसी में हमने स्लिप, गाड़ी स्टार्ट थी, साउंड नहीं आ रहा था, हाँ। हमने सोचा गाड़ी बंद है, हमने स्लिप मार दिया, फेल।
0: ओए होए भाई, ये क्या है कि गाड़ी की आवाज नहीं आ रही है, तो लाओ सेल्फ एक बार मार दे दोबारा।
1: डिप्रेशन
0: फिर तो फेल, जिसको अगर जैसे आपके बगल में जो आपका टेस्ट ले रहे थे, जैसे ही आपने सेल्फ मारा होगा, वो कह रहे होंगे फेल हो गया।
2: निकाली
0: ओके, ठीक है, बट ये तो नहीं करना चाहिए था भाई कि आवाज नहीं आ रही गाड़ी की, बट इट्स ओके, कॉल कट गया भाई का, कम बैलेंस के साथ कॉल किया होगा मे बी। फिलहाल 6:41 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, काफ़ी हमें रीजन मिल गए हैं। 724 वाले भैया कॉल कर रहे हैं, फाइनली उनका कॉल उठाते हैं और फिर खत की तरफ बढ़ते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है?
0: बहुत अच्छे हैं भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया
0: जी। आज का सवाल जो है वो ये, अच्छा मुझे बताना भी पड़ रहा है आज का सवाल ये कि आमतौर पे लोग क्या गलतियां करते हैं ड्राइविंग का टेस्ट देते हुए?
3: आमतौर पे लोग सबसे बड़ी गलती जो है ये हम लोगों की जो है ना, वो शोल्डर नहीं करते।
0: क्या नहीं करते?
3: मतलब जो साइड में आपके साथ जो गाड़ी होती है ना रास्ते में, हाँ, वो आपको शीशों में नजर नहीं आती।
0: करेक्ट,
3: वो आप शोल्डर करेंगे तभी आपको नजर आएगा कि जो आपकी गाड़ी के पास साथ ही गाड़ी होती
0: है। हाँ, ये भी एक और जरूरी चीज़
3: है। जो भी लोग वो करते हैं तो उससे फिर गाड़ी इधर उधर जाती है।
0: तो भाई का कहने का मतलब है जो शोल्डर पे आपकी गाड़ी है उसको लोग ना देखते नहीं हो, और वो आपके साइड मिरर में भी नहीं दिखती है, और फिर वो आपको आपको आपके विजन में भी नहीं रहती है, और लोग इंडिकेटर देके मुड़ जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं। करेक्ट
3: जी, और मैंने खुद वो गलती की थी लेकिन मुझे पास किया था।
0: अरे
3: आमतौर पे उसको देखते हैं कि ये ड्राइवर है कि नहीं है, वो यही देखता है।
0: अच्छा,
3: गलती माफ कर देते हैं, ठीक है, ड्राइवर है कि नहीं है।
0: हाँ, मतलब ये है, ये पता लगना चाहिए। करेक्ट,
3: मैंने डायरेक्ट टेस्ट किया, गाड़ी भी नहीं चलाया, दुबई का लाइसेंस था मेरे पास।
0: अच्छा, तो यानी कि आप प्रॉपर चला लेते थे, बस ये है कि वो एक गलती छोटी सी हो गई, लेकिन हाँ, छोटी मिस्टेक्स को नहीं देखते हैं जो अनजाने में हो गई हो, लेकिन आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, आपको गाड़ी चलाना आता है, आपको
3: मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी ना, तो जो मिरर होता है ना गाड़ी का,
0: हाँ,
3: जो सामने जो मिरर होता है साइड, हाँ, वाला नहीं,
0: हाँ,
3: गाड़ी के अंदर
0: नहीं, तो गाड़ी
3: में रोड रहा है, हाँ, मैं देखा मिरर ऊपर है, तो मैंने रास्ते में ही वो मिरर को सीधा कर दिया क्योंकि मुझे पता चला कि गलती तो हो गई, फिर भी सोचा चलो गाड़ी चला लेते
0: हैं। हाँ, ये
3: तो
2: नहीं अगर हो गई है तो आप बीच में अगर सही कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो आपकी जर्नी है ना, आप तो लोगों के साथ भी हैं, आप कंटिन्यूसली चलाएंगे तो गाड़ी को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो बीच में भी सही कर लेना सही चाहिए, सही तरीका है। ओके बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए भाई।
3: ओके
2: अल्लाह हाफिज़ भाई। तो कई लोगों ने बहुत ही उम्दा

0: बात बताइए. और आज मुझे जितनी चीजें मिली है ना थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, आज हमें पता चल जाएगा कि मेरा जो दोस्त है वो गाड़ी चलाने में गलती नहीं करेगा अगर, या वो गाड़ी चला ही नहीं पाता है. ये आज पता चल जाएगा. आज तो नहीं है टेस्ट, जब भी टेस्ट देगा तब वो पता चल जाएगा. अब फेल हुए भाई अगर तुम्हें ये सब बताने के बाद भी, तो भाई तुम ड्राइवर हो नहीं. अब तो फिर शर्म ही आ जानी चाहिए तुम्हें. फिलहाल 6:44 हमारे स्टूडियो की घड़ी में. और गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ऐसी गलतियां ना करो कि गाड़ी जो है गाड़ी की आवाज़ नहीं आई, आपने एक बार फिर से सेल्फ मार दिया. ऐसी गलती ना करो कि भाई 75 की स्पीड पे आपने दाएं और बाएं कर दी गाड़ी. भाई 75 की स्पीड पे तो सेडान कार भी नहीं करता कोई, वो तो चिपकी रहती है जमीन से, उसके बाद भी भाई पलटने का डर होता है. प्लीज ये रिक्स बिल्कुल नहीं लेने का. बाकी एक खत की तरफ बढ़ते हैं. और मेरा ये खत से मतलब ये है कि आप लिखना क्या चाहेंगे उन लोगों को जो टेस्ट देने वाले हैं, क्या एक हिदायत आप उन्हें देना चाहते हैं ये आप बताएं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107. कई लोगों ने हिदायत दिया होगा कि भाई तुम ऐसे चलाना, ये काम कर लेना, इस चीज़ का तो फोकस करना. और मुझे लगता है इन सब के बीच जो भी टेस्ट देने वाला है, मैं अपनी तरफ से सबसे पहला खत देता हूँ तुम्हें. डियर वट एवर जो टेस्ट देने वाला बंदा है उसका नाम, डियर दोस्त, सबसे पहला काम जो करना वो एडजस्ट करना है ना, तीनों मिरर, लेफ्ट वाला, राइट वाला और मिडिल वाला. उसके बाद जब गाड़ी चलाना तो दोनों हाथ स्टेयरिंग पे होना चाहिए. रिलैक्स दिखने के चक्कर में, कूल दिखने के चक्कर में पुलिस भैया के सामने अगर आपने ये कर लिया कि एक हाथ से गियर लगाया, फिर वही एक हाथ जो है गियर पे रखा हुआ है और एक हाथ से आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तब तो मतलब फिर तो मैं देखो यही कहूंगा कि तुम्हारा पास होना मुमकिन नहीं है. और अगर फेल हो गए तो हम सब मिलके तुम्हारे लिए सिर्फ यही गाएंगे.
1: पहले से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला अलग ला, पहले से नागिन निकाली, मुन्ना पर डोला.
0: भाई ये मत करना भाई कि एक हाथ से गाड़ी चलाओ. बाकी एक खत लिखना है आपको, नंबर है 666-22-107. एक खत जो टेस्ट देने वाले. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी.

अरमान मलिक की आवाज में ट्रैक एफएम 107 पे सुना आपने, और इस्तकबाल आप सभी का एफएम 107 पे 6:50 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और वक्त है लोगों के खत की तरफ बढ़ने का, और खत बड़ा सिंपल सा आज मैंने पूछा था आपसे। खत आपको ये लिखना था कि एक खत या दोस्तों को क्या बताना या उन लोगों को बताना कि क्या गलतियां आमतौर पे होती हैं और आपको क्या गलतियां नहीं करना है। जो टेस्ट देने वाले हैं, ड्राइविंग टेस्ट देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्या गलती ना करें, इस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे। 666-22107 था नंबर, और मुबीन साहब का मैसेज आया और पहली बार इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही। भाई साहब, डियर फ्रेंड, ड्राइविंग के वक्त डरना नहीं पब्लिक वाले से। बहुत ही उम्दा, मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक वाले जो दोस्त हैं उनके लिए लिखा है। फ्रेंड, ड्राइविंग के वक्त डरना नहीं, ये तो आमतौर पे अभी तक सबने कह दिया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई डरेगा, सब एकदम चुस्त दुस्त हो जाएंगे। ऐसा भी ना लगे कि भाई अरे ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो गया। डरने का मतलब क्या कि आप ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा दोनों हाथों से स्टेयरिंग पकड़े हों और एकदम खड़े हुए हैं, रिलैक्स नहीं है। हल्का सा रिलैक्स रखिए अपने आप को, कंधे अंधे उचका ना लीजिए, कंधे इतने उचका लिए कि पता चला आपका जो गर्दन है वो दिख ही नहीं रहा। ऐसा भी मत करें। अशफाक साहब कहते हैं, डियर दोस्त, जब भी टेस्ट देने जाओ, जैसी भी गाड़ी चलाओ, पहले अम्मी को कहना दुआ करते रहे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बात भाई ने बहुत सही कही है। इसमें अगर आपने जरा भी कोताही बरती तो नुकसान बड़ा है। अशफाक भाई ने बहुत उम्दा बात कही कि अम्मी से कहो कि दुआ करें, पास होना बात की बात है, फेल होना बात की बात है। और फिर दुआ करते रहें कि पुलिस वाले का मूड सही हो, वो अपनी फाइट करके ना आया हो। देखो यार, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मूड पर डिपेंड करता। ऑब्वियसली यार, किसी को अगर ज़रूरत है और टेस्ट अगर दे रहा है तो ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च करने के बाद कोई टेस्ट दे रहा है, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। अजीब लोगों ने अफवाहें उड़ा रखी कि और उसका मूड नहीं सही था, ये कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ये रीज़न कभी भी। फिर इस्माइल खान का मैसेज है, हाँ ये होता है कि जब आपके बगल में वो टेस्ट लेने वाले बैठे तो जानबूझ के वो चुप रहते हैं, क्योंकि ज्यादा बात करना, और एक तो ऐसा तो है नहीं कि दो चार लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, उस दिन 100 लोगों का टेस्ट है, वो कितनों से बात करेंगे। तो उनका ये है कि भाई आप आइए, बैठिए, ड्राइव करिए और फिर जाइए, कितने लोगों से वो बात करेंगे। फिर इसी के साथ एक और है, इस्माइल भाई कहते हैं, इस्माइल डियर, टेस्ट देने वालों, पुलिस ऑफिसर से डरना नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, जो सीखा है डिलीवर करो, 100% पास हो जाओगे। हाँ ये सिंपल तरीका है, जितना भी सीखा है, और मुझे लगता है इंस्ट्रक्टर इतना तो आपको बता देते हैं बाकायदा कि आप ईजली जीत जाएंगे, ईजली पास हो जाएंगे, कुछ नहीं करना होता उसमें। इसके अलावा एक्स्ट्रा जहां करने जाता है ना इंसान, वहां नुकसान होता है। मोहम्मद साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मैं ताजुद्दीन बहरेन से। अच्छा ठीक है। शोल्डर चेक करके लाइन चेंज करना चाहिए, इससे ब्लाइंड स्पॉट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ अभी एक भाई ने कहा ना, तो हमेशा शोल्डर पे भी, अब जब भी कई बार ऐसा होता है कि आप लेफ्ट या राइट जब लेते हैं तो आप देखते नहीं है एग्जैक्ट आपके बगल, आपने तो मिरर में चेक कर लिया बट एग्जैक्ट बगल में आपके कौन है वो मिरर में, साइड मिरर में नहीं दिखता, इसलिए जरूरी है कि आप शोल्डर चेक करें। डोंट होल्ड योर हैंड्स एट द बॉटम ऑफ स्टीयरिंग, हाँ ये वो फिर कंट्रोल नहीं रहता। और एक हाथ से ना जो चलाने को कहा जाता है ना कि एक हाथ से नहीं चलाना चाहिए, उसका रीजन ही यही है कि आप जो सबसे परफेक्ट कंट्रोल जो आपका होता है वो दोनों हाथ से पकड़ने पर आपकी गाड़ी, आपकी कार परफेक्ट कंट्रोल रहती है। ये किस भाई ने लिखा है, लेकिन शेख साहब ने लिखा, बहुत ही उम्दा, बहुत परफेक्ट लिखा है। फिर एक और ये मैसेज है मोहसिन भाई का, सलाम और वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या लिखते हैं ये राउंड अबाउट पे अगर यू टर्न लें तो लेफ्ट लेन से लें। हाँ यार ये वाला मेरे सामने जो दो लोग फेल हुए हैं उनका यही कहना यार, वो राउंड अबाउट का मैसेज आया मेरे

पास, अरे क्या परफेक्ट चीज बताई मेरा भाई। तो ये आमतौर पे हर जगह आप गलती देख भी रहे होंगे, कई लोग गलती कर देते, कई लोग जल्दबाजी में ऐसा कर रहे हैं, इवन जिनके पास ड्राइविंग टेस्ट है वो भी, कि आप सेकंड लेन से यू टर्न लेते हैं, है ना। सेकंड लेन से हो सकता है कोई थर्ड एग्जिट ले रहा हो, कोई सेकंड एग्जिट ले रहा हो, और आप जो है यू नो यू टर्न वाले लाइन पे हैं, तो भी गलती होती। यू टर्न अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट लेफ्ट पे रहना है। अगर आपको थर्ड एग्जिट या सेकंड एग्जिट लेना है तो आप यू टर्न वाले लाइन पे क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर आप यू टर्न वाले लाइन पे रहेंगे तो आपको नुकसान होएगा, गाड़ी लड़ सकती है, हो सकता है सेकंड लेन वाला भी थर्ड एग्जिट ले रहा हो और आपको सेकंड एग्जिट लेना है, वहां पर सबसे बड़ा मसला हो जाता है कि गाड़ी दोनों ना कोलैप्स, सामने से लड़ने का डर होता है गाड़ी का। तो वो रिस्क जो है उसको कम करने के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है जिसका ख्याल जो है हमें और आपको रखना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ दो और जल्दी से मैसेज पढ़ते हैं और निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोंट रिपीट पुलिस कमांड, हाँ जो भी उन्होंने कहा है उसे रिपीट ना करें। हुसैन साहब कहते हैं, डियर दोस्त, जब पुलिस वाला कहे तेज चलाओ तो 80 के रोड पर 100 पर मत जाना, आय हाय क्या बात है। हाँ जबरदस्ती ऐसा ना हो, स्मार्ट बनने के चक्कर में नुकसान हो जाए। मोहम्मद साद ने कहा है, सबसे बड़ी टिप, ये सारी टिप्स लाइसेंस के बाद भी फॉलो करें, आय हाय। कितनी तगड़ी बातें बोल रहे हैं यार लोग, मजा आ गया ये वाला सुन के। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। जितने लोग भी टेस्ट देने वाले हैं इंशाल्लाह पास हो जाएंगे ड्राइविंग टेस्ट में। ये सारे जितने भी टिप्स हैं इनको फॉलो करें, उस वक्त भी जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हो और उस वक्त भी जब आपको ड्राइविंग टेस्ट मिल जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे एक नए टॉपिक के साथ। सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।
2: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस

0: चाहें तो कलम की आजादी आपके पास है। फैज साहब मुस्कुरा दिए और कहा, बस वही तो सहारा है। जेल के उन अंधेरों में फैज ने ऐसी ऐसी नज़में कहीं जो बाद में उनकी शायरी का मरकजी हिस्सा बन गई। उन्होंने लिखा, मत समझो हमने भुला दिया, जो कुछ हमने देखा था झेला था ये सब लफ्जों में उतरता है और लफ्ज बंद नहीं किए जा सकते। फैज के लिए कैद खुद एक तजुर्बा था। उनका कहना था कि इंसान की असल पहचान सुख चैन में नहीं बल्कि मुश्किलात में होती है। इस दौर में उनका सबसे मशहूर मजमुआ दस्त सबा तैयार हुआ। इसमें वो नज़में भी थीं जो जेल की दीवारों के दरमियां कही गईं। 1955 में अचानक हुकूमत ने उनकी रिहाई का ऐलान किया। इस वक्त तक फैज सिर्फ एक शायर ना रहे बल्कि आवाम के दिलों की धड़कन बन चुके थे। लाहौर आते ही उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। आवाम उन्हें देखकर नारे लगाने लगी। ऐसा लगता था एक शायर नहीं एक इनकलाबी लीडर उनके सामने है। रिहाई के बाद फैज साहब की जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। उनके घर वालों ने सोचा कि शायद अब वो सियासत और इनकलाब से दूर रहेंगे, मगर फैज की फितरत ही कुछ और थी।
1: उनका सबसे बड़ा सहारा उनकी बीवी एलिस प्रेस थी। एलिस अंग्रेज थी लेकिन उन्होंने फैज का साथ आखिर तक निभाया। वो सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी बल्कि फैज के ख्यालात और उनकी शायरी का हिस्सा भी बन गई थी। एलिस ने एक मर्तबा कहा, फैज के साथ जिंदगी मुश्किल जरूर है मगर उसमें एक अजीब खूबसूरती भी है। उनका दर्द, उनका जज्बा, उनका इश्क, सब कुछ दिल को छू जाता है। फैज साहब की शायरी अब सिर्फ किताबों तक महदूद ना रही, अब वो अवाम की जबान बन गई थी। उनकी नज़में चौराहों, मजदूरों की महफिलों और तलबा के जुलूसों में पढ़ी जाने लगी। उनका कलाम था, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। ये नज़्म मजदूरों और तलबा का तराना बन गई। अवाम के दिलों में एक नया जज्बा जाग गया। फैज साहब की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रही, उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दावत मिलती रही। कहीं उनकी शायरी तर्जुमा होती रही, कहीं उन्हें इनकलाबी शायर के तौर पे समझा जाता रहा। 1959 के बाद जब हुकूमत का दबाव बढ़ गया तो फैज साहब ने मुल्क से बाहर भी वक्त गुजारा। वो लंदन, बेरूत और मॉस्को तक गए। उन्हें दुनिया के शायरों और अदीबों ने खुले दिल से कबूल किया। 1962 में उन्हें लेनिन पीस प्राइज से नवाजा गया। ये उनके लिए बहुत बड़ी पहचान थी। फैज ने उस वक्त कहा, ये इनाम मेरी शख्सी मेहनत का नहीं बल्कि उन आवाज़ों का है जो इंसाफ के लिए उठती हैं। लेकिन मुल्क के अंदर उनकी मुसीबत कभी कम ना हुई। कभी सेंसर की कैंची, कभी पुलिस की निगरानी, कभी हुकूमत के इल्ज़ाम, मगर फैज मुस्कुराहट के साथ सब झेलते रहे। उनका कलाम और उनका लहजा हमेशा नरम था, चाहे बात सख्त से सख्त ही क्यों ना हो। वो कहते थे, शायर का काम नफरत फैलाना नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसाफ का पैगाम देना है।
2: 1970 के दौर में जब दुनिया में सियासी तहरीकें बढ़ रही थीं, फैज बेरूत चले गए। वहाँ उन्होंने लोटस नाम का अदबी जर्नल शुरू किया। इससे उनका रिश्ता पूरी अरब दुनिया से बन गया। बेरूत में उनकी मुलाकात फ़लस्तीनी शायर महमूद दरवेश से भी हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों के कलाम में दर्द था, अपनी ज़मीन से दूरी का दर्द, अपनी आवाम के दुख का दर्द। फैज़ की शायरी अब फ़लस्तीन और बेरूत के दर्द को भी आवाज़ देने लगी। उनके अल्फाज थे, दिल से कह दो कि हम अभी ज़िंदा हैं और हमारी सांसों में अभी भी उम्मीद है। 1982 में फैज साहब वापस पाकिस्तान आए। अब वो बुज़ुर्ग हो चुके थे लेकिन उनका जज्बा अभी भी जवान था। उनके आखिरी दिन ज़्यादा सेहतमंद ना रहे। दिल का दर्द अक्सर सताता मगर कलम कभी रुका नहीं। 20 नवंबर 1984 को लाहौर में फैज अहमद फैज इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके इंतकाल की खबर सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। उनका जनाजा एक अवामी समंदर बन गया। मजदूर, तलबा, अदीब और आम लोग सभी उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हुए। आज भी फैज का कलाम सिर्फ शायरी नहीं बल्कि एक नारा है, इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का।
3: इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत का।
4: आप
3: सुन रहे हैं महफिले शायरी, महफिले शायरी सिर्फ FM 107 पर, 107 पर।
0: तो आज हमने जिस शायर की बात करी, उन्होंने ये साबित कर दिया, हम कहते हैं ना कि पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। तो वही वाली बात है कि आप कलम को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और ऐसे इनकलाबी शायर बहुत सारे हुए जिनमें फैज अहमद फैज साहब का जो नाम है वो काफी,
1: उन्होंने हक के लिए हमेशा आवाज,
0: हमेशा
1: ये नहीं देखा कि सामने कौन है।
0: हाँ, और चाहे डीएनए एज क्यों ना आ जाए, मगर ये अभी भी साबित है कि अगर आपका कलम उस राह पे है, वैसे चलता है, तो फिर आप दुनिया बदल सकते।
2: तो हिम्मत होनी चाहिए,
0: हिम्मत होनी चाहिए। तो अब हिम्मत हम तीनों को दिखानी है, क्योंकि बैतबाजी के वक्त आ गए, देखते हैं कि क्या क्या मामला सेट होता है। तो आज जो है ना, आज शुरू कौन करने वाला,
1: मुझे देखा जा रहा है।
0: पिछली बार मैंने शुरू किया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है।
2: चलो आज मैं शुरू करें।
0: ठीक है, डन। तो आपसे शुरू करते हैं।
1: तो फैज अहमद फैज का बहुत ही तारीखी, बहुत ही जबरदस्त शेर, जो कि बहुत से गानों में भी हमें सुनाई दिया। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा।
2: हाय हाय,
1: क्या बात,
0: क्या बात,
2: क्या बात, क्या बात। तो आप पर अलिफ आया होगा शायद,
0: अलिफ आ गया।
1: सिवा,
0: चलो, कल तक ऐसा होता कि नून, ये, और आज अलिफ।
1: अलिफ,
0: अब क्योंकि अलिफ आया है, और ये बात जो है ये शुरू से आखिर तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रहती है, और सिफर भी यही है और आखिर भी यही है, तो वैसा कुछ मामला है, इसमें सब समेट दिया जाएगा।
1: ठीक है,
0: तो अर्ज किया है
2: इरशाद,
0: और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, कहानी खत्म हो गई।
1: ये अलिस के लिए होगा, है ना?
0: यस यस यस, ये सारी कहानी
2: ही तमाम है जिंदगी।
0: तो ये जो पूरी कहानी को दो लाइनों में समेट दिया है, उसके बाद अलिफ आपके हिस्से में आ गया।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलिफ से, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना ना थे।
1: या अल्लाह,
0: ये तो
1: ये उधार लेने के बाद होता।
0: हाँ,
2: याद ही नहीं आ रहा है,
1: याद ही नहीं, मतलब कौन आए तो यू, आए तो यू उधार लेने।
2: कभी कभी ऐसा होता है ना, अपनी पैसा होता है, मांगने में इतनी बेइज्जती लगती है, ऐसा लगता है कि कैसे मांगे। फरमाती है,
0: आपने जहाँ फिट किया है, ये बहुत लोगों के काम आने वाला है।
1: मैंने तो, बिल्कुल
2: सही, बिल्कुल। तो ये से अब महविश सुनाई,
1: सही, ये और फैज अहमद। अच्छा जी, तो फिर ये से जो है इरशाद,
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
1: ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं।
0: सिर्फ आरजू की बात नहीं है, ठीक है, क्या आ गया मेरे हिस्से में,
1: कोशिश भी करना पड़ेगी,
0: कोशिश भी करनी पड़ेगी, बैठे बैठे सब नहीं हो जाए।
1: बिल्कुल, तो आप कोशिश करें अब कबीर।
2: तो कबीर, आप पर नून आया है, कुछ नया।
0: नून इज माई फेवरेट, मुझे लगता है कि बहुत दिनों से नून मेरा,
1: नून हो गए हो तुम काफी।
0: चलिए फिर, अर्ज किया है, ये भी, ये बहुत गहरा है, हाँ, तो देखिएगा। इरशाद हो जाए, इरशाद,
1: इरशाद, इरशाद।
0: नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही।
1: या अल्लाह, आरजू पे फिर ये तमाम हो गया,
0: आरजू,
1: आरजू सही,
0: तो आरजू
1: ही सही,
2: ये मेरे हिस्से आ गया
1: जी।
2: चले तो इरशाद,
0: इरशाद, इरशाद, इरशाद।
2: ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं।
1: आहा,
0: वो तो नहीं लग रहा,
1: बिल्कुल चेंज है,
0: चेंज है।
2: तो अभी नून आया था कबीर पे,
1: अब नून दोनों पे आ गया
2: जी, बिल्कुल।
0: अरे ये गलत बात है, इस बार आपने जो है छीन लिया मुझसे,
1: छीन लिया। नून इतना प्यारा,
0: नून इतना प्यारा,
1: अगर बताए हमारी है ना, एक हाँ। आता था सीरियल अलिफ नून नाम था उसका,
0: हाँ।
1: तो वो उसमें जो अलिफ थे वो कमाल अहमद रिजवी थे, जो कि बहुत ही लंबे पत्ते दुबले से थे, और नून जो थे ना वो मोटे से नन्ना, उनका नाम हुआ करता था अलिफ नून। बड़ा बहुत ही मजे का सीरियल है, तो आप लोग दगे हाथों वो भी देख लीजिएगा। तो मैंने तो आपको वो नून बोला था, लेकिन अब मुझ पे नून आ गया।
0: नहीं, पहले मैं कुछ सालों पहले अलिफ हुआ करता था, आजकल
1: आजकल नून चल रहे। सही जी, तो फिर नून, नून जो है मेरे पास है, तो चलिए जी, नून से ना, मतलब फैज अहमद फैज का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सा शेर है।
0: जी जी जी।
1: ना गुल खिले हैं, ना उनसे मिले, ना मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है।
2: अरे क्या बात है,
0: क्या बात है,
2: ये मेरे पसंदीदा अशार हैं कुछ।
0: नहीं अगला जो है
2: जी इरशाद,
0: मुझे लग रहा है मैं खुद ही चुराने वाला हूँ और कहीं ना कहीं स्टेटस पर डाल लूँगा।
2: सही,
0: ठीक है, तो शुक्रिया। तो अर्ज किया है, हम शेख ना लीडर।

0: हिदायत भी ना करेंगे।
1: क्या बात,
2: मुझे लग रहा है ये इस बार का सबसे पसंदीदा शेर,
1: पसंदीदा शेर हो गया। मतलब बड़ी गहरी बात है इसमें,
2: गहरी बात है,
1: गहरी बात
2: तो करेंगे।
0: तो अब ये पे मैं इसको मुकम्मल करती हूँ,
1: इख्तिताम हमारा बैतबाजी का राउंड मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पे
0: जी।
1: तो ये
0: इख्तितामी शेर
1: साथ,
0: यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग।
1: होय होय होय,
2: सब बदल गया, बदल के रखते, जज्बात बदल दिए,
1: जज्बात बदल दिए। चलिए जी, तो फिर फैज अहमद फैज हो गए यहाँ पे तमाम, और हमने इनका, इनके बारे में भी, इनकी लाइव स्टोरी के बारे में भी आपको बताया, साथ ही साथ इनके अशार भी आपको कुछ सुनाए। और फैज अहमद फैज का इतना बड़ा नाम है आजकल, इनकी मतलब आज भी देखो तो इनकी आवाज जो है ना, वो आवाज है जो गूंज रही होती है मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आ।
2: हम भी आज भी तलाशते रहे कैसे लोग जो अपने ख्याल से आपके खैर बदल सके,
1: बदल
2: ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो असली इन्फ्लुएंसर तो उस जमाने में
1: exactly, मैं भी यही बोलने वाली थी, तूने मेरे दिल की लाइन ली है, मेरे मुंह पे थी ये लाइन तूने पहले बोलती है
2: तो खा गया।
1: हाँ बिल्कुल, आप खा गए। तो बिल्कुल ऐसे ही कि असल जो है वो इन्फ्लुएंस करना भी इसी तरीके से चाहिए।
2: सो यस,
1: चले रही, तो फिर इसी के साथ हमें लेनी है आप लोगों से इजाजत, लेकिन हम जाते जाते आपको याद कराते चलें कि आपने हमें मैसेज जरूर करना है।
0: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6622107, दोबारा से बताती हूँ 6622107। तो हमें मैसेजेस करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा शेर हमें पढ़ के सुनाएं या भेजें तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे।
2: और इसी के साथ साथ जो आपने स्टोरीज बनाना शुरू करी हैं, बड़ा अच्छा तरीका है, और अच्छी बात है कि उसको थोड़ा प्रमोशन मिल गया था। तो इमोशन के साथ प्रमोशन बहुत जरूरी है, जब आप सफर में रहें और सुनते हुए जा रहे हैं ये खास शो जो आपके लिए बनाया गया है, तो एक स्टोरी तो बनती है। जरूर टैग कीजिएगा हमें FM107 दादर, इस नाम हमारा जगह मौजूद है,
1: हमारा हौसला बढ़ जाता
2: है, हौसला बढ़ जाता है। देखो प्लीज, नया नया शो है, नए नए हमें, मतलब एक तरीके से
0: हमें सराहा जाए तो हम अगला सीजन भी लेके आ सकते हैं। हाँ। कुछ नए तरीके से
2: लालच
1: नहीं नहीं, इसको कहते हैं रिश्वत,
2: रिश्वत। इसी के साथ हम जीरो आपसे ज्यादा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नाजिया. दोस्तों, हर शख्स हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं. देखिए, एसेट से मुराद वो कीमती चीजें हैं जो हमें वैल्यू देती हैं या फ्यूचर में फायदा पहुंचाती हैं. ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी कोई मशीनरी हो सकती है, आपकी सेविंग्स हो सकती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई व्हीकल है या टेक्नोलॉजी या इवन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. आज हम बात करेंगे इन्हें मैनेज करने की. जी हाँ, मैनेजिंग एसेट्स कहे जाते हैं कि कामयाबी का असली राज यही है. देखिए, एसेट मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने एसेट्स को इस तरह मैनेज करना कि उनकी वैल्यू, जी हाँ, उनकी वैल्यू बरकरार रहे, उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो और लंबे अरसे तक उससे आपको फायदा हासिल हो. मिसाल के तौर पे, अगर किसी के पास एक कार है और वो उसकी रेगुलर सर्विसिंग करवाता है, ऑयल टाइमली चेंज करवाता है और उसका ख्याल रखता है, तो कार ज्यादा अरसे तक बेहतर परफॉर्मेंस देगी, है ना. ये एसेट मैनेजमेंट की एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी मिसाल है. अब सवाल ये उठता है कि एसेट्स को मैनेज करना क्यों जरूरी है. बहुत से लोग एसेट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन उनका सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते. नतीजा ये होता है कि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है या उन पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स खरीदे, उन कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस ना की जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट ना किए जाएं और प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ना हो, तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है. इसी तरह घर में रखी हुई प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट अगर मॉनिटर ना किए जाएं, तो उसकी मार्केट वैल्यू या परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. अब क्या स्टेप्स हो इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट के? तो सबसे पहले है एसेट इन्वेंट्री बनवाएं. सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अपने तमाम एसेट्स की लिस्ट तैयार करें. इनमें आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके सेविंग अकाउंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और शायद आपके बिजनेस इक्विपमेंट्स. जब आपके पास इन सब का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है. वहीं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करते हैं और ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम इसको समझें और इस पर अमल करें. एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अहमद और बिलाल का. अहमद और बिलाल दोनों ने एक ही साल में एक जैसे डिलीवरी वैन्स खरीदे. अहमद ने रेगुलर मेंटेनेंस करवाई, फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर की और सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन किए, जबकि बिलाल ने मेंटेनेंस को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने पर जोर दिया. 5 साल के बाद अहमद की वैन अच्छी कंडीशन में थी और रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा थी, जबकि बिलाल की वैन फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स का शिकार हो रही थी, जिसके बाद उसकी एफिशिएंसी डिलीवरी की भी कम हुई. फर्क एसेट मैनेजमेंट का था, इस तरह से अपने एसेट्स को मैनेज करना. तो दोस्तों, आज हमने और आपने क्या सीखा? हमने आपने ये सीखा कि एसेट मैनेजमेंट सिर्फ एसेट्स को ओन करने का नाम नहीं है, उनकी हिफाजत, उनके मेंटेनेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का नाम है. जो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अपने एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करती हैं, वो ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल रहती हैं, कम रिस्क होता है और बेहतर लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा बनती है. याद रखिए, एसेट खरीदना कामयाबी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उस एसेट को सही तरह से मैनेज करना असल कामयाबी है. चलिए, आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों की इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Doha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. Duniya jo hai wo deewani hui padi hai abhi lagatar. Main to soch raha hu aise sold out ho raha hai iPhone jaise ye bas duniya ki aakhri cheez hai. पर अगर आप उसके पीछे अभी भी नहीं भागे हैं तो देर आर मेनी गैजेट्स जिनके पीछे आपको भागना चाहिए. उनके बारे में बात करता रहूंगा शो पे. बट एक बात तो है, अगर आपको आईफोन अपग्रेड करना है तो अगर आप 12, 13, 14 से सीधा जा रहे हैं 18 की तरफ तब तो सेंस बनता है. अगर आपके पास 17 और आप 18 लेने जा रहे हैं तो पैसा है फिर आपके पास. देर इज नो अदर रीजन टू रियली जंप ऑफ ऑन 18, इतना भी नहीं. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. म्यूजिक एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा से सोचता हूँ इट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट अप टू यू. मैं जरा वेबसाइट से शुरू करूंगा क्योंकि मेरा काम मुझे करना है. तो पहली जो वेबसाइट है इसका नाम है neuroscapes.com. NeuroScapes neuroscapes.com. इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन फोटोज मिलेंगे जो एआई से जनरेटेड हैं. पर आप बोलेंगे तो एआई से जनरेटेड मेरे किस काम की. आपको वो कॉपी नहीं करनी, इमेज नहीं, इमेज के नीचे उसका प्रॉम्प्ट भी होगा. आपको पता लगेगा कि यार ये इमेज जो बनी है बनी कैसी हुई, इसका प्रॉम्प्ट क्या है. उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्टर द प्रॉम्प्ट, यू नो, उसको थोड़ा सा एडिट ऑमिट करके अपने हिसाब से आप कहीं और यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं. बट डेफिनेटली वर्थ इट. अगर आप एक चैनल बना चुके हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, कुछ भी है, सो आपके काम आ सकती है. एंड स्पेशली अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इन लुकिंग फॉर एन इमेज, आप कैटेगरी वाइज इमेज सेलेक्ट कीजिए, उसके नीचे उसका प्रॉम्प्ट आएगा, उस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से एडिट कीजिए, यू माइट गेट समथिंग जो आपको ज्यादा मेहनत के बिना मिल जाए. और आज की दुनिया ऐसी है, थोड़ा सा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, वेरी स्मार्ट. बढ़ते हैं आगे. अगली वेबसाइट का नाम है memory.toys. ये बहुत अच्छी वेबसाइट है. मेमोरी सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत बोल दी. मेरी मेमोरी की दिक्कत है. memory memory.toys TOYS memory.toys. इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो उस पर बहुत सारे मेमोरी गेम्स हैं आपकी विजुअल मेमोरी को बढ़ाने के लिए. एंड मैं ये समझता हूँ ये बड़ों को भी खेलने चाहिए, बच्चों को भी खेलने चाहिए. बहुत शार्प रहता है भाई माइंड, मैं सही बता रहा हूँ आपको. आपको इसमें मेजेस मिलेंगे, पजल्स मिलेंगे, और आपकी जो फोटोग्राफिक मेमोरी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी. और ये जरूरी नहीं है आप इसको एज बेस्ड समझे कि भाई अभी तो क्या एज, अभी तो क्या फोटोग्राफिक मेमोरी. आप अपनी ब्रेन को ट्रेन रखेंगे तो आपका ब्रेन हर एज में काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा. जस्ट दैट यू हैव टू ट्रेन इट. सो नॉट जस्ट फॉर यू, मगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी जरूरी है गेम खिलवाई, क्योंकि ये गेम्स बहुत जरूरी होते हैं. कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाते हैं और ब्रेन को याद रखने में और पावरफुल बनाते हैं. इट्स लाइक यू आर अपग्रेडिंग योर रैम एवरी सिंगल डे. तो ट्राई दिस वन आउट, मेमोरी डॉट टॉयज. ओके, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. अगली वेबसाइट है monkeytype.com. monkeytype monkeytype.com. वेबसाइट में टाइप लिखा हुआ है तो मतलब यह है कि टाइपिंग से जुड़ा हुआ है. और आपकी टाइपिंग स्पीड अगर आप चेक करना चाहते हैं, स्पेशल पंचुएशन, ग्रामर, जो भी आप जिस तरीके से टाइप करते हैं, वो कमांड देने के बाद आप अपनी टाइपिंग को टेस्ट कीजिए एंड स्किल सेट बढ़ाइए. भाई ये भी जरूरी है, पहले टाइपिंग तेज करना वॉज कूल, नाउ इट इज एन एक्चुअल रिक्वायरमेंट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो आपको बड़ा जरूरी हो गया है कि आज की दुनिया से मुकाबला करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए. इनके हिसाब से सोच रहे हैं तो ठीक है. अब जरा हम बढ़ेंगे आगे खबर की तरफ. तो खबर आ चुकी है एप्पल M6 मैक मिनी, उसका रिव्यू भी आ चुका है. एंड उसमें एक चीज जो सामने आई है वो है प्राइस हाइक. पूरे के पूरे $300 बढ़ा दिए हैं एप्पल ने, कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई. प्राइस हाइक थोड़ी रफ हो गई यार, ये इतनी रफ नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही कुछ अलग करेगा. ठीक है, बहुत सारी स्पेशल उसमें यू नो सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड जरूर किया है, डेफिनेटली M6 तक पहुंच चुके हैं. बट $300 थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? तो अनटिल अनलेस आपको कुछ ज्यादा ही काम है, कुछ ज्यादा ही हैवी बना रहे हैं आप, आई डोंट थिंक इतना हैवी आप बना रहे होंगे कुछ काम, तब तक पुराने वाले पे रहो भाई. $300 इज अ लिटल टू मच. ये थी टेक अपडेट्स, मैं हूं हवाला कबीर एफएम 107 पे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन एफएम 107, दिल से देसी।

0: Well, social media पर आम तौर पर ऐसे ads दिखाए जाते हैं जो दावा करते हैं कि कोई बड़ा department store या online giant close हो रहा है या उनका unclaimed packages का stock साफ किया जा रहा है. ये scammers आपको mystery boxes offer करते हैं जिनमें एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स होते हैं और उनकी कीमत 30 या 40 कतरी रियाल से भी ऊपर बताई जाती है. 50, 60, 100, 1000, 500, यू नो, व्हाटएवर, जो अमाउंट आपको लुभा सके, जो अमाउंट आपको लालच की तरफ बढ़ा सके, ये अमाउंट डाली जाती है. इनकी वेबसाइट्स देखने में हाईली प्रोफेशनल लगती है और उन पर काउंटडाउन टाइमर्स भी चल रहे होते हैं ताकि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर लें. पे आउट करने के बाद आपको ये पता चलता है कि यार सामान तो आया ही नहीं और फिर आपके साथ स्कैम हो गया. कोई सस्ती चीज खरीदने के चक्कर में आपके साथ हो जाता है बड़ा स्कैम. लेकिन इस तरीके के जो स्कैम है इनसे बचने के काफी तरीके हैं, हम उन पर बात करेंगे. लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए वो है ऑफिशियल यूआरएल डबल चेक करना. ऐसे एड्स पर क्लिक करने के बाद ब्राउजर का एड्रेस बार चेक करें. अगर लिंक में किसी बड़े ब्रांड के नाम की स्पेलिंग गलत है तो वेबसाइट फेक है. मिसाल के तौर पे आप माने कोई एबीसी, यू नो, असल में कोई एबीसी ब्रांड है, उसमें एबीडी लिखा हो या फिर हो सकता है सीबीए लिखा हो. सो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करके उस वेबसाइट को देखना चाहिए क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है क्योंकि कई ऐसी बड़ी कंपनीज जो बंद हो रही होती हैं वो अपना स्टॉक क्लियर करती हैं. स्टॉक क्लियर करेंगी अगर सेम रेट पे जो आम तौर पे मार्केट में अवेलेबल है तो वो स्टॉक क्लियर नहीं होगा. तो ऐसे में वो बड़ी कंपनियां या फिर इवन छोटे स्टोर्स करते हैं ये है कि उसे सस्ते में 10 रियाल की चीज 2 रियाल 3 रियाल में जल्दी जल्दी उसे बेच देते हैं ताकि स्टॉक क्लियर हो, पैसा वापस आए अपने जेब में आए और फिर इस स्टोर को बंद किया जाए ताकि उसका रेंट और ना देना पड़े. तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो स्टोर्स अपनाते हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए. या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार स्टोर बंद नहीं हो रहे होते लेकिन पुराने स्टॉक जो एक्सपायर हो सकते हैं उनको जल्दी निकालने के लिए उनको सस्ते में बेच दिया जाता है और नए स्टॉक को मंगाने के लिए पैसे जुटाए जाते हैं. फिर नए स्टॉक को मंगाने के बाद उसे रखा जाता है और उसे नॉर्मल रेट में बेचा जाता है. लेकिन बचने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे थे. सेकंड जो तरीका है बचने का वो है काउंटडाउन टाइमर्स के प्रेशर में ना आए. कभी भी आपको जल्दबाजी दिखाई जाए ना किसी भी प्रोडक्ट को लेने में तो उस पर, तो इवन जो सच्ची वेबसाइट्स हैं उस पर भी अगर जल्दबाजी दिखाई जाए तो आपको होशियार रहना चाहिए. इसलिए होशियार रहना चाहिए कि यार ये तो होता रहता है. सो काउंटडाउन टाइमर्स से बिल्कुल प्रेशर में ना आए. स्कैमर्स हमेशा काउंटडाउन टाइमर्स का यूज करते हैं ताकि आप डर के मारे जल्दी कार्ड डिटेल्स एंटर कर दें. ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है और ये ट्रिक आमतौर पर स्कैमर्स नहीं, नॉर्मल लोग भी अपनाते हैं. रिव्यूज और डोमेन एज चेक जरूर करें. किसी भी ऐसी अनजान वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले इंटरनेट पर उसके रिव्यूज को सर्च करें और चेक करें कि वो वेबसाइट कब बनी थी. इवन अगर आप ये नहीं चेक कर सकते तो आप उनके लिंक को चेक करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. ताला लगा होता है लिंक पर, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा. जब आप वेबसाइट पे जाएंगे कई बार बहुत ज्यादा ओरिजिनल लग रही होती है वेबसाइट लेकिन छोटी डिटेल्स अगर आपको देखने को मिलेंगी तो वो छोटी डिटेल्स गलत करके रखते हैं. तो ऐसे में उन डिटेल्स को अगर आप चेक करते हैं तो भी आप बच सकते हैं. तो वो छोटी डिटेल्स को पकड़ना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें. दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत. मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए. तब तक सुनते रहे FM 107 दिल से देसी.
1: स्कैम अलर्ट. आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में कहानी सुनने की रिवायत बहुत दिलचस्प और कीमती है। पुराने जमाने में कहानियां सिर्फ तफरी का जरिया नहीं होती थी, बल्कि तजुर्बा, नसीहत, तारीखी यादें और इखलाकी सबक पहुंचाने का एक तरीका भी थी। रात के वक्त या शाम की महफिल में लोग अक्सर एक जगह जमा होते थे। घर की मजलिस, खेमे या समंदरी सफर की जगह पर बुजुर्ग अपने तजुर्बे और यादें सुनाते, बच्चे तवज्जो से बैठकर उन कहानियों को सुनते और उनसे अपने माशरे और जिंदगी के बारे में सीखते। कतरी रिवायती कहानियों में रेगिस्तान, समंदर, सफर, खानदान, जानवरों और रोजमर्रा जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू नजर आ सकते हैं। इन कहानियों में अक्सर मेहनत, हिम्मत, सब्र, वफादारी और समझदारी जैसे उसूलों को नुमाया किया जाता है। रेगिस्तान से जुड़ी कहानियों में सफर और मुश्किल हालात का जिक्र मिलता है। पुराने लोग लंबी मुसाफतों का सामना करते, पानी और मौसम का ख्याल रखते और कुदरती निशानियों की मदद से रास्ते पहचानते थे। ऐसी कहानियां नई नस्ल को बताती हैं कि लोग किस तरह सब्र और हिकमत के साथ जिंदगी गुजारते थे। समुद्री कहानियां भी कतर के विरसे का खूबसूरत हिस्सा हैं। मछली पकड़ने, कश्ती चलाने या मोती की तलाश में जाने वालों के तजुर्बे कहानियों की सूरत में आगे पहुंचते थे। इनमें समंदर के एहतराम, टीम वर्क और सफर की जिम्मेदारियों का जिक्र होता था। कहवे और खजूर के साथ कहानी सुनने का माहौल और भी पुरकशिश हो जाता था। एक शख्स कहानी शुरू करता और दूसरे अफराद दिलचस्पी से सुनते। कभी कहानी के किसी पहलू पर सवाल होता, कभी कोई बुजुर्ग अपना तजुर्बा भी शेयर कर देते। इस तरह एक पुरानी कहानी नई गुफ्तगू का सबब बन जाती। बुजुर्गों का किरदार इस रिवायत में बहुत अहम रहा है। उनके पास खानदान और इलाके से मुतालिक बहुत सी यादें होती हैं। जब वो अपने तजुर्बात सुनाते हैं तो बच्चों को अपने बुजुर्गों की जिंदगी समझने का मौका मिलता है। ये कहानियां खानदानी रिश्तों को मजबूत करती हैं और वर्षों को महफूज रखती हैं। कहानियां सिर्फ बोलकर सुनाने का नाम नहीं, बल्कि अंदाजे बयां भी बहुत अहम होता है। अच्छी कहानी में मौजू अल्फाज, मुनासिब लहजा और मुनज्जम तरतीब होती है। बुजुर्ग कहानी को इस तरह सुनाते हैं कि सुनने वाला खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगता है। कतरी कहानियों में कभी जानवर भी किरदार के तौर पर शामिल होते हैं। ऐसी कहानियों का मकसद आम तौर पर किसी सिफ्त या रवैये को आसान मिसाल के जरिए समझाना होता है। बच्चे इन कहानियों से लुत्फ भी लेते हैं और अच्छे इखलाक का सबक भी हासिल करते हैं। कहानी सुनाने के महफिल अदब का भी तकाजा करती है। कहानी सुनते वक्त तवज्जो देना, दरमियान में बिला जरूरत मुदाखलत ना करना और कहानी खत्म होने पर शुक्रिया अदा करना अच्छे रवैये हैं। ये अदाब बच्चों को मजलिस और समाजी जिंदगी में बेहतर अंदाज से शिरकत करना सिखाते हैं। आज के जदीद कतर में कहानी सुनाने के अंदाज बदल गए हैं। किताबें, स्कूल प्रोग्राम, म्यूजियम, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहानियों को नए सुनने वालों तक पहुंचाने में मदद देते हैं। फिर भी पुराने अंदाज में आमने सामने बैठकर कहानी सुनने का सुकून अपनी जगह ही अपनी वैल्यू रखता है। रेडियो भी कहानी सुनाने का एक खूबसूरत जरिया है। आवाज के उतार चढ़ाव, रुकने के मुनासिब लम्हात और अल्फाज के इंतखाब से मामूली सी बात भी दिलकश महसूस हो सकती है। इसी तरह कतर की कहानियां रेडियो के जरिए भी मुख्तलिफ उम्रों और जबानों के लोगों तक पहुंचती हैं। नई नस्ल के लिए इन कहानियों को महफूज रखना बहुत जरूरी है। बच्चे अपने बुजुर्गों से कहानियां सुन सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं या ऑडियो की सूरत में महफूज कर सकते हैं। इससे खानदानी यादें भी बचती हैं और सकाफती वरसा भी महफूज होता है।
कहानियां हमें ये समझाती हैं कि जिंदगी के तजुर्बे कीमती खजाना होते हैं। हर बुजुर्ग की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकती है। कहानी सुनना और सुनाना लोगों के दरमियान रابطہ पैदा करता है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि कतर की रिवायती कहानियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त की यादें नहीं बल्कि आज के लिए भी रहनुमाई रखती हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: वो कौन सी बातें हैं जो एक शख्स को अजीम बनाती हैं वो कौन से काम हैं जो एक शख्स को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं जानना चाहोगे
1: जानना चाहोगे
0: अपने मैदान अमल में कारनामे दिखाने वाले और अपने हौसलों से समुद्र का सीना चीरने वाले ऐसी ही अजीम शख्सियतों और जाबाजों की दास्तान लेकर आए हैं हम इनकी जिंदगी और कारनामों पर रोशनी डालें सुनिए स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: आज के दौर में संघर्ष करना कोई नहीं चाहता सभी चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे ही पैसा रुतबा इज्जत गाड़ी मकान सब मिल जाए पर ऐसा कहां होता है सक्सेस एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको मिल जाती है उसकी जिंदगी रातों रात सातवें आसमान पर पहुंच जाती है और कुछ ऐसी ही कहानी है श्रीकांत बोला की तो यस जनाब बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूं अनटोल्ड स्टोरीज और आज हम बात करने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरीज में श्रीकांत बोला के बारे में
3: I feel God can give us only starting circumstances, but we make our own destiny. The future is in our hands and we have enough opportunities to craft in whatever way we wish. If you envision or if you want your kids to be in a future where there are equal opportunities or a sustainable living, you might as well craft that future.
2: तो सोचिए कि जब किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरे घर का जो एनवायरनमेंट होता है जो वातावरण होता है वो खुशियों से गूंज उठता है खुशियों का जैसे तांता सा लग जाता है पर अचानक से अगर घर वालों को पता चले कि उनके घर जो बच्चा जन्म लिया है वो देख नहीं सकता तो क्या होगा पूरी खुशियों पर पानी फिर जाता है ठीक वैसा ही कुछ हुआ श्रीकांत बोला के साथ जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उस दिन उनके घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और जैसे ही उनके पिता को पता चला कि वो नेत्रहीन है देख नहीं सकते तो उसके आसपास के लोगों ने ये सुझाव दे डाला कि बच्चे को मार डालो इसे बड़ा मत होने दो वरना बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी पर श्रीकांत बोला कि माता पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया यहाँ तक कि किस्मत ने कुछ और ही प्लान्स श्रीकांत बोला के लिए बना रखे थे बोला ने जब अपनी स्कूलिंग खत्म की तो बिजनेस मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT US में जाकर और ये सबसे पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे जिन्हें 100% फाइनेंशियल एड के साथ एडमिट किया गया था आगे बढ़कर ये CEO बने बोलांट इंडस्ट्रीज के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चर करती थी इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल कंज्यूमर पैकेजिंग के सॉल्यूशंस और लेट बिजनेस टाइकून रतन टाटा भी इस बिजनेस के स्टेक होल्डर थे बोला कि इंस्पिरेशनल जर्नी को एक बायोपिक का रूप दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इस नाम से इस फिल्म को बनाया श्रीकांत जिसमें फेमस एक्टर राजकुमार राव ने भी काम किया वैसे ये फिल्म बड़ी कमाल की है अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा फिलहाल के लिए बोला जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो अपनी एक इंस्पिरेशनल लाइन सबसे शेयर करते हैं और वो ये है
3: When the world looks up to me and says, Shrikant, you can't do this, I tell them, why can't?
2: तो yes, आज ऐसे ही कमाल की शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं श्रीकांत बोला कैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ी कौन सा वो मोमेंट था जो टर्निंग पॉइंट रहा ये सब कुछ आप जानेंगे कुछ ही देर में तो बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता अनटोल्ड स्टोरीज में आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही स्पेशल कैरेक्टर श्रीकांत बोला के बारे में तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इनका जन्म हुआ सीतारामपुरम एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में वहां जुलाई 1991 में अब इन्होंने उस किसान की फैमिली में जन्म लिया था जिनकी सालाना इनकम बमुश्किल 20,000 रुपए थी लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो लोग ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे कि मिलियन डॉलर की लॉटरी लग गई हो बोलते हैं कि ये बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह दिख रहे थे

इन्हें दूध से जब नहलाया गया और नहला कर जब इन्हें सामने लाया गया तो लालटेन में इनके फादर ने इनको देखा तो एक छोटे से चेहरे में जो छोटी छोटी आंखें थी वो बंद थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो आंखें नहीं खुली और ये देखकर श्रीकांत के जो माता पिता थे वो पूरी तरह से टूट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहली औलाद देख नहीं सकती। ये जानने के बाद उनके आस पड़ोस वालों ने, उनके रिलेटिव्स ने, सब ने कहा इस बच्चे की आंखें बंद है, इसे हमेशा के लिए सुला दो वरना अगर ये बड़ा होगा तो आप सभी के लिए ये बड़ी मुश्किल का कारण बनेगा। एक मिनट के लिए श्रीकांत बोला के जो माता पिता थे उनके जहन में ये बात आई कि इस बच्चे को हमेशा के लिए सुला दें। कोशिश भी की लेकिन नाकामयाब रहे। उनके दिल ने इस बात को पूरी तरह से नहीं माना और फिर उसे जैसे तैसे वो बड़ा करने लगे, प्यार मोहब्बत से कोशिश करने लगे कि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। और जब श्रीकांत छोटे से बच्चे थे तो उनको एक काम दे दिया गया कि देखो जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना उनकी आवाज सुनकर उनको घर के पास आने से रोकना, ठीक है, आप उनको किसी तरह भी घर से दूर रखना। ऐसे में एक इंटरव्यू में श्रीकांत बोला कहते हैं कि जब मैं छोटा था और मुझे ये काम मिला तो मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो किसी ना किसी लक्ष्य या किसी ना किसी पर्पस के लिए हुआ है और ये मेरा पर्पस था कि मैं अपने घर को प्रोटेक्टेड रख रहा था स्ट्रीट डॉग से। वाह क्या बात है। वैसे जब श्रीकांत छोटे थे तो काफी स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ा, काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन उन्हें मिलता गया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किसी ब्लाइंड स्टूडेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। अब ये लैक ऑफ सपोर्ट के चक्कर में उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते लोगों ने उन्हें कहा कि तुम क्यों नहीं आर्ट्स लेके पढ़ लेते,

0: जहाँ पर लिटरेचर, सोशल साइंसेस, मतलब लैंग्वेजेस होंगी और पढ़ाई में दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे में श्रीकांत बोला, पूरी तरह से चकरा गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अरे मेरा दिल है अच्छी पढ़ाई करने का, तो क्यों मुझे रोका जा रहा है।
1: So I decided to join science stream in the intermediate level after passing out my 10th grade with over 90%. But to my surprise, I was told people with visual challenges cannot take up science. I faced discrimination and it was devastating for me to see that I can't take up sciences. So I told myself, why should I follow everybody and take up arts and be a linguist or a professor or a literate.
0: श्रीकांत बोला कि एक टीचर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही। उन्होंने श्रीकांत की हमेशा हेल्प की, हमेशा उसका सपोर्ट किया। और जब देखा कि श्रीकांत को सीनियर इयर्स में स्टेट बोर्ड में साइंस लेके पढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो फिर सीधा कोर्ट केस कर दिया।
1: And that's how I followed my heart and said, look, I'm going to fight with the government until I achieve it. Rather, I'm not going to take up economics or do something. And of course, I got permission after 6 months after a huge legal battle. And that not only allowed me to succeed with a district rank, but also helped the younger generations to find their platform to fulfill their aspirations and their goals as well.
0: कोर्ट में गए तो काफी सारे सवाल श्रीकांत से पूछे गए, लेकिन श्रीकांत फुल ऑन कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने अपने जवाबों को बहुत अच्छे से पेश किया और एक ही चीज कही कि अगर वो देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम उनसे उनके पढ़ने की जो काबिलियत है वो छीन लेगा, उनकी इच्छाओं को खत्म कर देगा। वैसे ये सबसे पहली टसल थी और इस टसल में जीत हासिल तो हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पढ़ाई तो इन्होंने कर ली और 98% एग्जाम्स में मिल भी गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इंडिया का प्रेस्टीजियस इंजीनियरिंग कॉलेज IITs इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि श्रीकांत ने कई सारे IIT पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट की कि किसी तरह उन्हें पढ़ने का मौका मिल जाए, लेकिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया।
1: I faced so much hardship in my life that it has become an addiction for me. But I also think if your response to challenges is to say bring it on, and I'm sure the whole world will conspire to help you succeed.
0: उसके बाद बोला ने जितनी भी US की universities थी वहाँ पर apply किया और luckily उन्हें 5 offers मिल गए, जिसमें से उन्होंने MIT Cambridge को choose किया, जो कि Massachusetts में थी। और इस MIT में जब उन्होंने दाखिला लिया तो वहां पर इंडिया को क्रिकेट और चेस के नेशनल लेवल्स में रिप्रेजेंट किया। कैन यू इमेजिन, ये करने के बाद उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जहां पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था, आज वहीं पर ये खड़े होकर बंद आंखों से लेकिन खुले दिमाग से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। है ना कमाल की बात।
1: As an outstanding student, getting all top ranks and you know played chess and cricket for India.
0: वैसे MIT में पढ़ाई में ये अव्वल थे, exceptional इनका performance था और इसके चलते इनके सारे teachers बहुत खुश थे। यूं माना जा रहा था कि ये लड़का जो है श्रीकांत बोला अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि academically भी ये काफी strong हो गए थे। आंखें नहीं थी लेकिन नजर बहुत दूर की थी। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का कोई सोच सकता था कि दुनिया भर में एक एग्जाम्पल स्थापित करेगा और सारे स्पेशली चैलेंज लोगों को एक इंस्पिरेशन देगा। वेल, ये है हमारे श्रीकांत बोला। वैसे इन्होंने बोलांट इंडस्ट्रीज की कैसे शुरुआत की और इनकी लेगेसी में क्या क्या खास है, बस जानेंगे कुछ ही देर में। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड ए फॉर अमिता के साथ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता अनटोल्ड स्टोरीज में आप सभी का बहुत-बहुत इस्तकबाल है और आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी ही कमाल की शख्सियत श्रीकांत बोला के बारे में So, श्रीकांत बोला के बारे में अब तक हमने जाना कि कैसे उनका बचपन बीता कैसे आगे बढ़े कौन कौन से चैलेंजेस हुए और ये है कि सारे चैलेंजेस को सारे स्ट्रगल्स को फेस करते हुए बढ़ते हुए अब एक नामी शख्स बनते जा रहे थे अब नामी शख्स तो बन गए लेकिन अब नाम कमाने के लिए कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग इन्हें लुकअप करें और वही हुआ 2012 में हैदराबाद ये वापस आए जब वापस आए तो इनके जहन में आया कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग इन्हें याद रखें एंड एट द सेम टाइम जो लोग स्पेशली चैलेंज्ड हैं उनके लिए नए रास्ते खुले तो इन्हें एक आइडिया आया कि चलो बोलांट इंडस्ट्रीज खोलते हैं
2: 10% ऑफ इंडियाज डिसेबल्ड पॉपुलेशन टुडे सफर्स मोस्ट ऑफ देम सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ education and mainstream facilities and this has been known for decades but nobody ever thought of solving it but this is why we wanted to bring this 10% of India's population who are so called disabled people who are so called useless and put out of the economy and out of the society into the society and integrate them into the mainstreaming
1: बोलांट इंडस्ट्रीज क्या थी ये इको फ्रेंडली रीसाइक्लिंग कंपनी थी इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है जो कि ऑफर करती है पैकेजिंग सॉल्यूशंस को और वो सारे एम्प्लॉयज जो इस कंपनी में है वो स्पेशली एबल्ड है इमेजिन मतलब इस कंपनी का सीईओ

0: जिसने दुनिया भर को इंस्पायर किया, उसके बाद एक एग्जाम्पल स्थापित किया कि जनाब दुनिया में जो भी स्पेशली चैलेंज्ड है वो भी किसी ना किसी काम का जरूर है। वैसे लेट प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काफी काम किया।
1: One visually challenged boy studying 9th class got up. His name is Srikant. He answered me, I am Srikant. I will become visually challenged first president of India. I was happy to see his vision and ambition. This young boy, small young Sakrai, hence I congratulated him to realize the vision and told him work for realizing the vision.
0: और 2017 में फेमस मैगजीन फोर्ब्स में भी ये फीचर किए गए। इनकी रिमार्केबल जर्नी का एक सबसे अहम हिस्सा एक फिल्म के रूप में भी दिखाया गया। जी हाँ, जहाँ पर राजकुमार राव इस फिल्म के लीड रोल एज अ श्रीकांत प्ले कर रहे थे।
2: I have no words to say, but I congratulate the entire cast, crew, one and all who has worked on this film, especially brother Raj. It is a great work put in by the team, especially to show this kind of a story in the most funny and yet inspiring way is a big challenge. And Tushar and team has done a phenomenal job.
0: राजकुमार राव ने अपने इंटरव्यू में ये भी शेयर किया कि जब उनकी मुलाकात श्रीकांत से हुई तो उन्हें लगा कि क्या कमाल की शख्सियत है, मतलब कभी भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे जिंदगी में कैसी भी सिचुएशंस आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितना भी लोग उन्हें ताने मारें, लेकिन श्रीकांत तस से मस ना हो। और यही वजह थी जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे।
3: This film is not about Shrikant being visually impaired. That's something that is there. It's a story. We are seeing an aspirational story. Wo visually impaired hai, ye ek fact hai. But we're not going to focus on him being visually impaired. Because when I met Shrikant, we were very normal. Like, you know, we were like talking, discussing. He's very witty. He's very funny. I asked him so many questions. Some of them were very personal as well. But he was very open to the idea. Unhone mujhe puri zindagi apne khol ke rakh di samne. And then as an actor, ye meri job hai ki main kitna usse loon. और उनको कितना ऑब्जर्व करूं, कितना अपनी जिंदगी में उतारूं।
0: वेल, बोलांट इंडस्ट्रीज के मालिक तो बन गए थे, लेकिन अब श्रीकांत की जिंदगी में सिर्फ इंडस्ट्री को चलाना ही काफी नहीं था। उन्होंने ये भी ठान ली थी कि वो सोसाइटी को चेंज करके रहेंगे। कैसे? इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा मिशन, गोल ये है कि जो लोग स्पेशली चैलेंज्ड हैं उन्हें वो जॉब दें, उन्हें ये बताएं कि तुम अगर एक तरफ से काम नहीं कर सकते तो दूसरे ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुले हैं। यहाँ तक कि ये मेक श्योर करते हैं कि सिर्फ स्पेशली चैलेंज्ड लोगों के लिए ही काम ना करें, बट एट द सेम टाइम जिंदगी के अलग अलग एरियाज जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पर भी ये काफी जोर देते हैं। इनफैक्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर ये हमेशा आगे रहते हैं। और जब सोसाइटी के एटीट्यूड्स की बात करें तो वो कहते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए।
2: आई वॉन्ट टू बी इन अ फ्यूचर वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू एवरी वन अक्रॉस दिस ग्लोब इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम एंड द सर्टेनिटी, बिकॉज द आउटकम कैन बी डिसाइडेड इन द सेकेंड स्टेप, बट द अपॉर्चुनिटीज मस्ट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी गिवन सो दैट वी हैव इनफ चांसेस टू प्रूव।
0: ये काफी इंस्पिरेशनल लीडर भी हैं, जो लोगों को कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारा कोई सपना है ना तो टेंशन मत लो, उस सपने को पूरे करने के लिए बस आगे बढ़ जाओ। ये मत सोचो कि वो सपना पूरा होगा कि नहीं, बस कोशिश में लग जाओ और जब ये कोशिश करोगे तो वो सपना एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा।
2: यू नो व्हाट, वी आर ऑन डे वन ऑफ आवर ग्रोथ एंड वी हैव अ लॉन्ग रोड टू गो एंड आई एम श्योर वी हैव माइल्स टू वॉक बिफोर वी स्लीप।
0: यहाँ तक कि ये काफी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स में भी हिस्सा लेते हैं और स्पेशली चैलेंज्ड लोगों के लिए तो हमेशा ही आगे रहते हैं। तो देखो, श्रीकांत बोला लाइफ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, लोगों को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं और पॉजिटिविटी फैलाते रहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू श्रीकांत बोला, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर किसी की आंखें बंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकता, वो देख भी सकता है और औरों को राह भी दिखा सकता है। सो यस, आज की हमारी अनटोल्ड स्टोरी श्रीकांत बोला के ऊपर थी एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आई होगी। और शो कैसा लगा ये आप हमसे जरूर शेयर करें 666

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जो सदियों से इंसान के जहन में सवालात पैदा करता रहा है, एक ऐसा मौजू जिसका ताल्लुक हमारे ईमान, हमारी जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे मुस्तकबिल से है। ये मौजू है तकदीर। तकदीर क्या है? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानता है तो फिर हमारे आमाल की जिम्मेदारी किस पर है? अगर कोई गुनाह करता है तो क्या वो मजबूर है? अगर कोई हिदायत पाता है तो क्या उसमें उसका अपना कोई किरदार नहीं? ये वो सवालात हैं जो सिर्फ आज के नौजवानों के जहन में नहीं आते, बल्कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में भी लोगों ने यही सवालात उठाए हैं। सबने कलम, आज हम इस मौजू को कुरान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला पहले से जानता है कि फला शख्स गुनाह करेगा और आखिर का जहन्नम में जाएगा तो फिर उसे पैदा क्यों किया गया? बज़ाहिर ये सवाल बहुत मुश्किल महसूस होता है, लेकिन अगर हम इसको सही जाविये से देखें तो जवाब नहायत वाज़ेह हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने GPS लगा हुआ है। GPS आपको बताता है कि अगर आप बाएं तरफ मुड़ेंगे तो आगे गढ़ा है और आप नुकसान उठा सकते हैं, और अगर दाएं तरफ जाएंगे तो मंजिल तक सही सलामत पहुंचेंगे। अब अगर आप GPS की हिदायत को नज़रअंदाज करके खुद अपनी मर्जी से गलत रास्ता इख्तियार कर लें और नुकसान उठा लें तो क्या GPS आपको मजबूर कर रहा था? हरगिज़ नहीं। GPS को सिर्फ रास्ते का इल्म था, उसने आपको मजबूर नहीं किया था। समय कराम, अल्लाह ताला का इल्म कामिल और कामिल तरीन है, वो आलीमुल हकीम है। अल्लाह जानता है कि बंदा क्या करेगा, लेकिन अल्लाह का जानना बंदे को मजबूर नहीं करता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा इल्म महदूद है और अल्लाह का इल्म लामहदूद है। समय कराम, चले इस मसले को एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक फुटबॉल मैच पहले ही देख लिया है और वहाँ आपने किसी एक प्लेयर को गिरते हुए देखा। अब आके दोबारा उस मैच के हाइलाइट्स वगैरह देख रहे हैं। जब आपने पहली मर्तबा वो मैच देखी तो आपको पता था कि चंद मिनट बाद एक खिलाड़ी फिसल कर गिरने वाला है या किसी ने फाउल करके उसे गिराया है। तो जब आप दूसरी मर्तबा उसी खेल को देख रहे हैं, मैच को, अब वो बंदा जब गिरता है तो क्या वो खिलाड़ी इसलिए गिरा कि आप जानते थे? नहीं, वो अपने अमल और अपनी हरकत की वजह से गिरा या किसी ने उसको वहाँ गिराया था फाउल करके। तो आपका इल्म उसके अमल का सबब नहीं बना। तो इस मिसाल के बाद अब ये भी जानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला जानता है कि कौन क्या इंतखाब करेगा, लेकिन अल्लाह का इल्म इंसान के इख्तियार को ख़त्म नहीं करता। कुरान मजीद बार बार इंसान को जिम्मेदार ठहराता है। अल्लाह फरमाता है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए

0: करते हैं तब तक अल्लाह की रहमत भी हमारे लिए खुली हुई है, हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं है। अल्लाह ताला किसी बंदे को हिदायत से महरूम करना नहीं चाहता। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को बार बार अपनी तरफ बुलाता है। कुरान इसी दावत का नाम है। शर्त सिर्फ एक है, बंदा खुद भी सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाए, वो खुद भी रोशनी को कबूल करने के लिए तैयार हो, वो खुद भी दिल का दरवाज़ा खोले, फिर अल्लाह की रहमत उसे ऐसी राहों पर ले जाती है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, हमें हिदायत की तलब नसीब फरमाए और कुरान के नूर से हमारी जिंदगियों को रोशन फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सभी कराम प्रोग्राम के इस मरहले में चलें एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहम कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में। इस हलके में हमारी गुफ्तगू हो रही है तकदीर के हवाले से, और तकदीर और इंसानी इख्तियारात के मसले में बहुत ही एक उम्दा और मरकजी आयत कुरान करीम की सूरत अर-रअद में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। गोया अल्लाह ताला बंदे के इरादे, उसके स्टेप्स को देखना चाहता है। बंदा अगर सच्चाई चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। बंदा अगर हिदायत की तरफ एक कदम बढ़ाता है अल्लाह उसके लिए रहमत के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। लेकिन अगर कोई शख्स खुद ही हक से मुंह मोड़ ले, दीन का मजाक उड़ाए, कुरान से दूर भागे और फिर कहे कि मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, तो ये इंसाफ की बात नहीं। समझने के नाम तकदीर, जैसे कि हम सब जानते हैं सूरतुल बुरूज में ये बताया गया है, फी लौहे महफूज, लौहे महफूज में सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इस सिलसिले में एक और सवाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि अगर सब कुछ पहले से लौहे महफूज में लिखा जा चुका है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा। अगर किसी शख्स की उम्र, रिज़्क़ और ज़िंदगी के हालात पहले से तय हैं तो फिर हम अल्लाह से दुआ क्यों करें। यहाँ एक इस सवाल के जवाब जानने के लिए हमें एक बुनियादी नुक्ता समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये समझते हैं कि तकदीर और दुआ एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी दुआ तकदीर से मुस्तकिल कोई अलग कोई चीज़ है। हालांकि इस्लाम हमें बताता है कि दुआ तकदीर से अलग कोई मुस्तकिल कोई जुज़ नहीं, बल्कि ये तकदीर का हिस्सा है। समझ करम अल्लाह ताला का इल्म ला महदूद है, वो सिर्फ नतीजा नहीं जानता बल्कि नतीजे तक पहुंचने वाले तमाम असबाब भी जानता है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला किसी शख्स के बारे में जानता है कि वो कामयाब होगा तो वो ये भी जानता है कि वो मेहनत करेगा, तालीम हासिल करेगा, कोशिश करेगा और फिर कामयाब होगा। इसी तरह दुआ भी एक सबब है। दुआ अल्लाह के फैसलों के खिलाफ जंग नहीं करती बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा निज़ाम के अंदर काम करती है। इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक तालिबे इल्म जामिया में दाखिला लेना चाहता है, उसका एक दोस्त आकर कहता है अगर तुम्हारे नसीब में दाखिला है तो मिल जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब बताइए क्या कोई अक्लमंद इंसान ये बात मान लेगा? हरगिज़ नहीं। वो रात दिन मेहनत करेगा, किताबें पढ़ेगा, इम्तहान देगा, फिर नतीजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कामयाबी के लिए असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है। इसी तरह दुआ भी कामयाबी के उन असबाब में एक सबब है। अल्लाह ताला ने दुआ को अपने निज़ाम का हिस्सा बनाया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करता है, और इसी कबूलियत के ज़रिए तकदीर का ज़हूर भी होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में सिर्फ नताइज नहीं लिखे बल्कि नताइज के असबाब भी लिखे हैं। मसलन अल्लाह जानता है कि फ़ला बंदा फ़ला वक्त दुआ करेगा, वो ये भी जानता है कि इस दुआ के नतीजे में उसके लिए फ़ला खैर

0: ही और तवाज़ुन भी।
1: भाई ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है, दिन में कंसिस्टेंसी बर्नआउट से बेहतर है। देखिए है ना, आप दो हफ्ते एक्सट्रीम रूटीन बनाकर फिर छोड़ दें, इससे बेहतर है कि आप सस्टेनेबल रूटीन अख्तियार करें। भाई इबादत हो, स्टडी हो, फिटनेस हो, वर्कआउट हो, डिसिप्लिन का मतलब अपने आप को तोड़ देना नहीं है, बैलेंस भी सुन्ना का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है।
0: बिल्कुल, दाऊद अलैहि सलाम के जिक्र के साथ एक और चीज बार बार आ जाती है, हुस्न सौत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की खूबसूरत क़िरात सुनी तो फरमाया कि उन्हें आले दाऊद के मज़ामीर में से एक मिज़मार अता किया है, यानी उनकी आवाज़ की खूबसूरती को दाऊद अलैहि सलाम के घराने से तशबीह दी गई। और कुरान हमें एक अजीब मंजर भी दिखाता है कि हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को मुसख़्ख़र कर दिया कि वो तस्बीह करें, यानी दाऊद अलैहि सलाम सुभान अल्लाह कहते थे, पहाड़ों में उसकी सदा सुनाई देती थी, और दाऊद अलैहि सलाम सुभान अल्लाह कहीं पर जिक्र के लिए बैठते तो वहां परिंदे जमा हो जाते थे, तो वो क्या कैफियत होगी,
1: क्या आवाज अल्लाह ताला ने
0: तफ। इन्ना सखरना الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب। तो सामने किराम अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहि सलाम को खास वस्फ के साथ भी याद किया है, वस्कुर अब्दना दाऊद अलैद इन्नह अवाब, हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो बड़ी कुव्वत वाले और बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। यहाँ ज़लाइद का मतलब हाथों की, यानी वो नहीं कि हाथों की कुव्वत नहीं, यानी इबादत में कुव्वत, क़याम में कुव्वत, रोज़े में कुव्वत, ज़िक्र में कुव्वत, यानी हर तरफ उनमें एक कुव्वत थी, और एक जैसे वो मैदान जंग में भी आगे बढ़ गए किस कुव्वत के बिना पर, यानी उनके वो तरीका जानते थे, दिल की कुव्वत सबसे बड़ी कुव्वत होती है कहते हैं ना, तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, इन्नहु अवाब। तो रिवायत में दाऊद अलैहिस्सलाम की चंद सिफात खास तौर पर बयान हुई हैं कि वो दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम और बहादुर थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, और एक बहुत खूबसूरत वस्फ है कि वो अपने हाथ की कमाई खाते थे, यानी नबी भी बादशाह भी मगर मेहनत से बेनियाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वो अपने हाथ की कमाई से खाते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है कि नबूवत इंसान को दुनियावी मेहनत से नहीं काटती। अंबिया सिर्फ इबादत गाहों के लोग नहीं थे, वो अमल, ताबीर, हुनर और जिम्मेदारी के लोग भी थे। तो इससे वरसतुल अंबिया की जिम्मेदारी भी हमें समझ में आती है, जो वरसतुल अंबिया हैं, जो उलमा हैं, जो अंबिया की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके लिए इसमें एक सबक है कि अपने हाथ की कमाई भी एक अहम पहलू है जिस पर हम तवज्जो दे सकते हैं।
1: तो दोस्तों, इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सिर्फ बैटलफील्ड की स्टोरी नहीं, ये एक कंप्लीट लाइफ मॉडल है। भाई स्ट्रांग रहिए लेकिन हम्बल रहिए, प्रोडक्टिव रहिए लेकिन स्पिरिचुअल रहिए, सक्सेसफुल रहिए लेकिन अल्लाह से डरिए जरूर, और अल्लाह सुभान व तआला नवाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही सिर्फ मत कहिए, उस नेमत को सही जगह यूज भी कीजिए।
0: बिल्कुल, बहुत ही इस इम्पॉर्टेंट पैगाम के साथ आज हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपके साथ यानी मेज़बानी में मेज़बान के तौर पर सरवर मिर्ज़ा और तलहा अशरफ ज़मान थे, और उम्मीद है कि आपने इस किस्से से काफ़ी सारे असबाक सीखे होंगे, और इस तरह जो है ना नई दास्तान के साथ दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मा सलामा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है. उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है. Stories of Prophets.

0: आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयाने सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियाँ उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको आजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आए। हर आजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही के हम उन पर से आजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रौ और नमूना इबरत बनाकर रख दिया।

बस तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा न हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरीह निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूं, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी इस साफ तालीम के बावजूद ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया। पस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के आजाब से।

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम। कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमानों जमीन के दरमियान है, अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो। कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं, मगर फिल वाकई इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरीह धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं

ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को। ये बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग? हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी हैं, इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। इन सब के उठाए जाने के लिए तय शुदा वक्त